दोस्तों, हमें केवल वही बातें याद रह जाती हैं जो हमारे संगी साथी होते हैं, और उनसे भोलेपन का साथ और जो सच्चा रिश्ता उनके साथ होता है। बचपन की यादें हर किसी के साथ जुड़ी होती हैं। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं, चाहते हुए भी हम उन लम्हों को बटोर नहीं पाते।

सच में दोस्तों, बच्चे तो मन के सच्चे होते ही हैं और इसके साथ ही भोर सुहानी कार्यक्रम अब संपन्न होता है। आपने ट्यून किया है एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर और अब प्रस्तुत है वंदे।

नमस्कार, सुप्रभात। FM 102.5 MHz और साथ ही न्यूज़ ऑन AIR के मोबाइल एप्लीकेशन पर ये आकाशवाणी का उज्जैन केंद्र है। आज रविवार है। शक संवत 1948 के श्रावण मास की 18वीं तिथि, तदनुसार 9 अगस्त सन 2026 सुबह के 5:55 और ठीक 50 सेकेंड हुए हैं। अब हमारी आज की प्रातःकालीन सभा आरंभ होती है।

ये आकाशवाणी का उज्जैन केंद्र है। सुबह के 6 बजने को हैं। अब समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित होंगे, कृपया प्रतीक्षा करें।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। हर घर तिरंगा अभियान आज से शुरू हो रहा है और इस महीने की 17 तारीख तक चलेगा। अभियान का उद्देश्य लोगों को अपने घरों पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने और देशभक्ति तथा राष्ट्रीय एकता से जुड़े कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना है। ये अभियान 2022 में शुरू हुआ था और अब एक बड़े जनभागीदारी अभियान का रूप ले चुका है। इस वर्ष अभियान का विशेष महत्व है क्योंकि यह राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ के साथ मनाया जा रहा है। देशभर में वंदे मातरम का सामूहिक गायन भी होगा। 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाया जाएगा। दुनिया भर में 200 से अधिक भारतीय दूतावास, उच्चायोग और वाणिज्य दूतावास भी अभियान के तहत कार्यक्रम आयोजित करेंगे। इस वर्ष सूर्य पथ तिरंगा डिजिटल रिले भी आयोजित होगी। इसमें 54 भारतीय राजनयिक मिशन और केंद्र हिस्सा लेंगे। ये रिले 15 अगस्त को फिजी से शुरू होकर सैन फ्रांसिस्को में समाप्त होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के विकास के लिए नवाचार, अनुसंधान और उभरती प्रौद्योगिकियों के महत्व पर जोर दिया है। श्री मोदी ने कल भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT दिल्ली के विद्यार्थियों से आग्रह किया कि वो अपने निर्णयों में राष्ट्रीय हित को सर्वोपरि रखें। श्री मोदी ने IIT दिल्ली के 57वें दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि देश में नए क्षेत्र उभर रहे हैं जो युवाओं को नए अवसर प्रदान कर रहे हैं। श्री मोदी ने सेमीकंडक्टर, अंतरिक्ष और ड्रोन जैसे क्षेत्रों का उदाहरण देते हुए कहा कि भारत सभी क्षेत्रों में आत्मनिर्भर बनने की दिशा में कार्य कर रहा है।
1: सेमीकंडक्टर सेक्टर का उदाहरण भी हमारे सामने है। जब हमने इस दिशा में कदम बढ़ाया तो कुछ लोगों ने सवाल उठाए, कहा गया भारत ये नहीं कर पाएगा, लेकिन पहली सेमीकंडक्टर यूनिट्स में प्रोडक्शन शुरू हो चुका है और मैं साफ मानता हूँ चिप से लेकर के शिप तक सब कुछ यहीं पर आप ही के हाथों से बनेगा। और कहीं कोई युवा पूरे आत्मविश्वास से कह रहा है फर्स्ट इन माई ब्लड लाइन टू मेक अ चिप इन इंडिया।
0: श्री मोदी ने कल अमरीका के उपराष्ट्रपति जेरी वेन से फोन पर बातचीत की। इस दौरान दोनों नेताओं ने भारत अमरीका व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने के उपायों पर चर्चा की। श्री मोदी ने उपराष्ट्रपति जेरी वेन्स और सेकंड लेडी उषा वेन्स को उनके पुत्र के जन्म पर बधाई देते हुए शुभकामनाएं भी व्यक्त की। विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने कल आबिजान में कोटे डी आइवर के राष्ट्रपति अलासानी ओटारा से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने भारत और कोटे डी आइवर के बीच बढ़ती साझेदारी पर चर्चा की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज सुबह पुदुचेरी के गोरीमेडू स्थित पुलिस प्रशिक्षण स्कूल मैदान में पुदुचेरी पुलिस को राष्ट्रपति पुलिस कलर प्रदान करेंगे। दोपहर में श्री शाह मुरुगा थिएटर सिग्नल से हर घर तिरंगा रैली को झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। श्री शाह दो दिन के दौरे पर कल पुदुचेरी पहुंचे थे। भारत ने स्वच्छ ऊर्जा क्षेत्र में महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। देश ने गैर जीवाश्म ईंधन आधारित बिजली उत्पादन क्षमता में 300 गीगावाट का आंकड़ा पार कर लिया है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने बताया कि पिछले 12 वर्षों में भारत की नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में 400% की वृद्धि हुई है। श्री जोशी ने कहा कि यह आंकड़ा भारत की स्वच्छ ऊर्जा उपयोग की दिशा में वैश्विक प्रगति दर्शाता है। झारखंड में JPSC और JSSC की भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर जारी गतिरोध

इस सिलसिले में आज राज्य सरकार और प्रदर्शनकारी छात्रों के बीच अगले दौर की वार्ता होगी। झारखंड सरकार ने परीक्षा प्रक्रिया में अधिक पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए एक आधिकारिक फीडबैक ईमेल आईडी जारी किया है। इसके माध्यम से छात्र और सभी संबंधित पक्ष अपने सुझाव भेज सकते हैं। असम में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है। राज्य में बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 99 हो गई है, जबकि 147,000 से अधिक लोग अब भी प्रभावित हैं। सरकार ने बताया है कि 12 जिले बाढ़ की चपेट में हैं। उधर जम्मू कश्मीर में अमरनाथ यात्रा से जुड़े मार्गों की मरम्मत और प्रतिकूल मौसम को देखते हुए इस यात्रा को आज से बालतल और पहलगाम दोनों मार्गों से स्थगित कर दिया गया है। कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स के फाइनल में आज भारत की अश्मिता चालिहा का सामना चीन की क्यू हान से होगा। ये मुकाबला दक्षिण कोरिया के आसन में भारतीय समय अनुसार सुबह 7:30 बजे से खेला जाएगा। अश्मिता ने कल सेमीफाइनल में भारत की ही रक्षिता रामराज को हराकर फाइनल में जगह बनाई थी। वहीं क्यू हान ने दूसरे सेमीफाइनल में दक्षिण कोरिया की जी किम को हराकर फाइनल में प्रवेश किया। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

आज का चिंतन। श्री अरविंद का कथन है, सारा जगत स्वतंत्रता के लिए लालायित रहता है, फिर भी प्रत्येक जीव अपने बंधनों को क्यों प्यार करता है। अब प्रस्तुत है भक्ति रचनाएं।

भारतीय राष्ट्रीय सेवा। प्रस्तुत है झरोका। लीजिए सुनिए आज दिन भर प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। सुबह 6:35 पर अब से थोड़ी देर बाद सुनेंगे श्री रामचरित मानस गान भाग 275। सुबह 6:45 और शाम 6:45 पर सुनिए संगीत सरिता कार्यक्रम। संगीत सरिता कार्यक्रम में सुनिए श्रृंखला वर्षा चौमासा, कलाकार गायिका शुभा मुद्गल, भाग 9, प्रस्तुति कांचन प्रकाश संगीत की। सात बजे से सुनिए भूले बिसरे गीत कार्यक्रम। 7:30 पर हमें राही प्यार के। आठ बजकर 15 पर त्रिवेणी। 8:30 से सुनिए चित्रलोक कार्यक्रम। 9:30 और 9:30 पर आज के फनकार कार्यक्रम केंद्रित होगा आज फिल्मकार सावन कुमार पर, प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले। सुबह 10 पिटारा में बॉम्बे टॉकीज, इसके अंतर्गत सुनिएगा कोरियोग्राफर शबीना खान से विधि जैन की बातचीत का पहला भाग, प्रस्तुत करता है जुबैर खान। ग्यारह बजे विविधा में सुनिए भारतीय फिल्म में बंदे मातरम, संकल्पना मिलिंद सबनीस, संयोजन शिल्पा सबनीस, संपादन सहयोग प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। बारह 12:05 पर यादों की महफिल। 1 से सुरीला सफर। 2 त्रिवेणी। 2:30 पर सदाबहार नगमे आप सुनेंगे। मन जाएगी 3 से। 3:30 पर नाट्य तरंग कार्यक्रम में आज सुनिएगा किसी एक फूल का नाम लो, इसका दूसरा भाग, मूल गुजराती लेखक मधुराय, रूपांतरकार ज्योति व्यास, निर्देशक सुशील बैनर्जी। शाम 4 पिटारा में उजाले उनकी यादों के, फिल्म निर्देशक लेखिका

नाटककार पद्मभूषण सई परांजपे से यूनुस खान की बातचीत का चौथा भाग प्रस्तुत करता है तेजश्री कांबले। शाम 5 बजे छाया गीत 5:30 पर तराने नए पुराने। शाम 6:35 पर संध्या रंजन। शाम 6:45 पर संगीत सरिता कार्यक्रम 7 बजे से विशेष जयमाला के अंतर्गत सुनिएगा सैनिकों की शौर्य गाथा। महावीर चक्र से सम्मानित कर्नल ठाकुर पृथ्वी चंद की शौर्य गाथा सुनिएगा। प्रस्तुत करता है तेजश्री कांबले। 7:45 पर इंद्रधनुष के अंतर्गत साज और आवाज। हवा महल में रात 8 बजे सुनिए नाटिका सेंट की बोतल, लेखन हरी मेहरा, निर्देशन गंगा प्रसाद माथुर। 8:15 पर चित्रलोक। 9 बजे कार्यक्रम आपके लिए। 9:30 पर आज के फनकार। 10 बजे छाया गीत। प्रस्तुत करता है राघवेंद्र नेगी। 10:30 पर ढलती जाए रात और 11 बजे विविधा। आप सुन रहे थे आज दिन भर प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण। अब प्रस्तुत है श्री रामचरित मानस गान भाग 275।

सीता जी की खोज में सारा वानर समाज जंगलों की खाक छान रहा है, किंतु उनका कोई सुराग नहीं मिलता। वन वन भटकते हुए एक दिन सबको बड़ी प्यास लगी, किंतु पानी का कोई स्रोत दूर दूर तक दिखाई नहीं देता था। हनुमान ने भांप लिया कि यदि पानी नहीं मिला तो सबके प्राण जाएंगे। उन्होंने पहाड़ की चोटी पर चढ़कर पृथ्वी के गर्भ में एक अद्भुत दृश्य देखा। एक गुफा के ऊपर अनेक पक्षी मंडरा रहे थे, अनेक उसमें प्रवेश कर रहे थे। हनुमान पूरे वानर समाज को लेकर उस गुफा में पहुंचे।

0: आप सुन रहे थे श्री रामचरित मानस गान। आज आपने सुना भाग 275।
1: संगीत सरिता।

0: संगीत सरिता कार्यक्रम में आजकल हम सुन रहे हैं श्रृंखला वर्षा चौमासा और हमारी अतिथि कलाकार हैं प्रख्यात गायिका शुभा मुद्गल। शुभा जी नमस्कार।
1: नमस्कार।
0: श्रोता मित्रों, कल हमने शुभा जी से दो राग सुने, चंद्रमल्हार और अरुण मल्हार। शुभा जी, ये दोनों राग प्रचलन में तो मतलब ज्यादा कर
1: नहीं, इतने ज्यादा आपको सुनने को नहीं मिलेंगे इतने, लेकिन ऐसा भी नहीं कह सकते कि मतलब और किसी के पास नहीं है, क्योंकि आप जानती हैं कि इसी प्रकार के जो मिश्रित राग हैं वो ऐसे इतने असंख्य हैं कि जरूर, वैसे तो भातखंडे जी की किताबों में भी इन रागों की चर्चा है
0: जी,
1: तो अवश्य बंदिशें होंगी, पर मुझे जो मिली हैं वो ये बंदिशें मिली।
0: तो ये हम ये कहें कि ये अक्षोभ राग ही हैं जैसे
1: एक तरह से।
0: तो श्रोता मित्रों, कुछ अक्षोभ बंदिशें और राग हमने सुने हैं और आज अब फिर शुभा जी की तरफ मैं बढ़ती हूँ और उन्हीं को पूछती हूँ।
1: मुझे लगता है कि हम क्यों ना अब ठुमरी दादरा की ओर चलें, आपका क्या ख्याल है?
0: ये तो बहुत ही बढ़िया ख्याल है।
1: तो एक दादरा मुझे याद आ रहा है जो कि काफी सुना होगा लोगों ने, लेकिन उसका जो साहित्य है वो ऋतु संबंधी है, वर्षा ऋतु संबंधी है और बहुत खूबसूरत है।
0: वैसे दादरा ताल में जो गाई जाती है रचनाएं
1: जी,
0: उन्हीं को दादरा कहेंगे?
1: दादरा ताल में भी गाई जाती हैं और कुछ कुछ कहरवा ताल में भी गाई जाती हैं, लेकिन इसके बहुत सारे लोगों ने इसकी परिभाषा करने की कोशिश की है और एक जो परिभाषा है वो ये है कि दादुर की जो गति है उससे मिलता जुलता जो एक लचक उस गीत में है,
0: ठुमक,
1: वो हाँ ठुमक है, वो दादरे में मिलती है और ठुमरी में विस्तार का की जगह ज्यादा मिलती है। गति भी उसकी कई बार दादरे से ज्यादा थमी हुई होती है, लेकिन हमेशा ऐसे कह देना कि नहीं यही सही है हमारे संगीत में जरा कठिन होता है
0: जी।
1: तो ये दादरा, इसके बारे में थोड़ी बातचीत करें
0: जी।
1: भीगी जाऊं मैं गुइयां,
0: हाँ,
1: बचाए लइयो।
0: अच्छा,
1: क्यों बचाए लइयो, किस चीज से बचाए लइयो? झरन लागी बदरिया गुइयां,
0: हाँ?
1: भीगी जाऊं मैं गुइयां, बचाए लइयो। ये स्थाई है इसका। और कंचुकी मोरी भीजत सारी, लाज आवत देखत नारी, शर्मीली है। बिनती करो करहूं छुपाए लइयो गुइयां, बचाए लइयो, भीगी जाऊं मैं गुइयां, बचाए लइयो
0: जी। श्रृंगार का कितना अनूठा और तरल सा एक भाव है
1: जी,
0: बहुत ही सुंदर। लेकिन शुभा जी, एक सवाल मेरे मन में और है
1: जी।
0: दादरा जिसे कहा जाता है उसमें जो शब्द होते हैं, जो पद पद कहूं या बंदिश कहूं
1: जी,
0: तो वो अलग अलग तरीके के होते हैं, इसके बारे में कुछ बता सकती हैं?
1: जी हाँ, बहुत मतलब दादरा आपको ऐसा भी मिलेगा जिसमें होली का वर्णन मिले, आपको ऐसा भी मिलेगा जिसमें विरह का वर्णन मिले, ऐसा भी मिलेगा जिसमें के छेड़छाड़ की बात हो, बरजोरी की बात हो, वो भी है। और ऋतु संबंधी भी चीजें हैं जिसमें कि एक एक अनोखा एक नखरा सा है। यूं तो ऐसे कोई भीग जाता है तो ऐसी तो बड़ी बात नहीं है, पिघल नहीं जाएगा कोई, लेकिन वो उसी में वो जो
0: मिठास,
1: हाँ मिठास है, जो एक लजीलापन है वो बड़ा खूबसूरत है
0: जी।
1: और इसे मैं प्रस्तुत करना चाहूंगी, लेकिन ठुमरी दादरा में एक और भी प्रथा रही है कि इस इन पंक्तियों को उभारने के लिए या इनका जो भावार्थ है उसे उभारने के लिए या एक नयापन लाने के लिए स्वर विस्तार तो होता ही है, बढ़त तो होती ही है, लेकिन साथ ही साथ साहित्य के साथ भी खेल हो सकता है। तो इन्हीं पंक्तियों को आगे पीछे तो करते ही हैं, बोल बनाते तो हैं ही, लेकिन ये भी कुछ लोग करते हैं कि दोहे शेर या अन्य किसी कविता की कुछ पंक्तियां लेके उन्हें इसमें साथ साथ गिरह लगा दी जाए
0: जी,
1: जो उन्हें जोड़ दिया जाए, इस सिर्फ इस बात को और उभारने के लिए कि क्या कहा जा रहा है। अब इसमें झरन लागी बदरिया गुइयां, यदि इसी को उभारना है तो संभव है कि मैं किसी दूसरी कविता की कुछ पंक्तियां ले लूं, और मुझे ब्रजभाषा के एक आधुनिक ही उनको कवि आप कह सकती हैं, उनका नाम है आत्मप्रकाश शुक्ला
0: जी,
1: उनकी कुछ पंक्तियां हैं जो कि बरखा के बारे में है, और देखिए कि बरखा को नारी का प्रतीक बना के उन्होंने लिखा है इसको। सांझ ने आंज दयो कजरा,
0: आंज मतलब आंख में,
1: हाँ, हाँ काजल डालने को,
0: हाँ, सांझ ने काजल डाला,
1: हाँ
0: सांझ ही जैसे काजल बनके आंखों में आई है
1: बिल्कुल। सांझ ने आंज दयो कजरा, एक भौं पे काम कमान चढ़ाई, केसन बीच बंधे बदरा,
0: केसन के बीच बदरा
1: बादल बंधे हैं क्योंकि इतना इतने काले हैं केश
0: बहुत अच्छे।
1: और सघन है। केसन बीच बंधे बदरा पुरवैया ने जूरा में गांठ लगाई। तो जो जूड़ा बना है उसमें पुरवैया ने गांठ लगाई है
0: जी।
1: मांग में दामिनी सी दमके द्युति आनन देखी घटा घिर आई। नेह के नीर भरे गगरा बहुत ही सुंदर है। नेह के नीर भरे गगरा ढरकाइबे को बरखा ऋतु आई।
0: बहुत सुंदर बहुत सुंदर।
1: तो यदि मैं बढ़त कर रही हूँ झरन लागी बदरिया गुइया तो मैं ऐसी पंक्तियां भी ला के और
0: एक नई मिठास
1: जी
0: घुल जाएगी इसमें।
1: तो वो प्रयत्न करेंगे अभी हम
0: जी और हम सुनेंगे
1: जरूर।

0: संगीत सरिता में आप सुन रहे हैं श्रृंखला वर्षा चौमासा, प्रस्तुति प्रख्यात गायिका शुभा मुद्गल की। संगतकार हैं हारमोनियम पर सुधीर नायक, तबले पर संगत की अनीश प्रधान ने, ध्वन्यांकन चित्रलेखा जैन, तकनीकी सहयोग विनीता ढोलकिया। विविध भारती के संग्रहालय से प्राप्त इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता कांचन प्रकाश संगीत।
1: FM 102.5 MHz पर ये आकाशवाणी का उज्जैन केंद्र है। सुबह के 7 बज रहे हैं, समय हो रहा है भक्ति संगीत के विशेष कार्यक्रम महाकाल वंदन का।

जय श्री महाकाल। अवंतिका की इस पावन धरा पर आज की सुबह मंगलकारी है। श्रावण का यह पवित्र महीना अपने मन में शिव की भक्ति जगाने का पावन महीना है। चलिए इस मंगलकारी श्रावण महीने की पावन बेला की शुरुआत उस परम पिता के चरणों में ध्यान लगाकर करें जो कालों के काल हैं और समस्त जगत के आधार हैं।

अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी उज्जैन से प्रसारित महाकाल वंदन। आपका दिन मंगलमय हो। जय श्री महाकाल।

FM 102.5 MHz और साथ ही न्यूज़ ऑन AIR के मोबाइल एप्लीकेशन पर ये आकाशवाणी का उज्जैन केंद्र है। आइए आपको आज प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों की जानकारी देते हैं।

सुबह 7:20 पर होगा प्रातःकालीन सूचना परक कार्यक्रम सुप्रभात उज्जैन। 8:30 पर आप सुनेंगे फिल्म संगीत का विशेष कार्यक्रम उज्जैनी आरजे। नए फिल्मी गीतों का कार्यक्रम बॉलीवुड बीट्स आप सुनेंगे सुबह 9:30 पर। सुबह 10:00 से आप सुनेंगे अपना मनपसंद कार्यक्रम आपकी फरमाइश।

11 बजे से आप सुनेंगे विविध भारती मुंबई के कार्यक्रम, जिसमें आप सबसे पहले सुनेंगे रंग तरंग। 12:05 पर सुने कार्यक्रम यादों की महफिल। दोपहर 1 बजे समय होता है कार्यक्रम सुरीला सफर का। फिल्म संगीत आप सुनेंगे दोपहर 2 बजे। 2:30 पर सुने कार्यक्रम विविधा।

नाट्य दर्शन का कार्यक्रम आप सुनेंगे दोपहर 3:30 पर। 4 बजे खुलता है पिटारा, जिसमें आप सुनेंगे उजाले उनकी यादों के। आकाशवाणी उज्जैन से संध्याकालीन सभा में सुनिए शाम 5 बजे युवा श्रोताओं का अपनी पसंद का कार्यक्रम युवावाणी। शाम 6 बजे आप सुनेंगे भक्ति संगीत का कार्यक्रम भजन संध्या।

6:30 पर आप सुनेंगे फिल्म संगीत। अपने केंद्र से आपको चौपाल पर ले चलेंगे। शाम 7:21 पर कार्यक्रम होगा मालवी गीतारी गूंज, जिसमें आप सुनेंगे मालवी समाचार और मालवी लोकगीत। रात 8 से सुनिए कार्यक्रम सुर्खियों में। रात 8:15 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम डगर विकास की। फिल्म संगीत आप सुनेंगे रात 8:30 पर। रात 9:30 पर सुनिए रूपको का अखिल भारतीय कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। रात 10 से सुने अखिल भारतीय रविवासरीय संगीत सभा।

सुबह के 7:10 होने को हैं। थोड़ी ही देर में प्रादेशिक समाचारों का अनुप्रसारण आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से होगा। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं अभिषेक कटियार। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने सहकारी बैंकों के लिए मजबूत साइबर और डिजिटल सुरक्षा उपायों पर बल दिया। सांस्कृतिक सहयोग को मजबूत करने के संकल्प के साथ भोपाल में संपन्न हुआ ब्रिक्स सांस्कृतिक सम्मेलन 2026। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव आज राजा भोज एयरपोर्ट भोपाल में प्रदेश की 4 नई हवाई सेवाओं का शुभारंभ करेंगे और आज से 17 अगस्त तक जनभागीदारी के साथ हर घर तिरंगा अभियान शुरू हो रहा है। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने शहरी सहकारी बैंकों के लिए मजबूत साइबर सुरक्षा और डिजिटल सुरक्षा उपायों की आवश्यकता पर बल दिया है। मुंबई में कल उन्होंने साइबर और वित्तीय अपराधों से निपटने में राष्ट्रीय फॉरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय के साथ राष्ट्रीय शहरी सहकारी वित्त एवं विकास निगम के सहयोग को महत्वपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि डिजिटल लेनदेन में धोखाधड़ी बढ़ रही है और बैंकिंग सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए मजबूत फॉरेंसिक सहायता की जरूरत है। श्री शाह ने देश के सभी सहकारी बैंकों से राष्ट्रीय शहरी सहकारी वित्त एवं विकास निगम में शामिल होने का आग्रह किया।
1: आज हमारे अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन और NFSU फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी के साथ जो समझौता हुआ, इससे हमारी छोटी सी छोटी बैंक की हर ब्रांच में भी ये सारी सुविधाएं बहुत कम लागत में देने का काम अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन करेगा। इससे साइबर सुरक्षा, डिजिटल फॉरेंसिक कर्मचारियों का इस दोनों क्षेत्र में प्रशिक्षण और अनुसंधान, ये सभी व्यवस्था एक साथ बैंक इन बॉक्स से हो जाएगी।
0: भोपाल में 4 दिवसीय ब्रिक्स सांस्कृतिक सम्मेलन 2026 कल ब्रिक्स संस्कृति मंत्रियों की बैठक के साथ संपन्न हुआ। समापन के अवसर पर भोपाल घोषणा पत्र जारी किया गया। इसके साथ ही सभी देशों के कलाकारों को मौका देने, चोरी या गलत रास्ते से विदेशों में पहुंची सांस्कृतिक संपदाओं को वापस लाने का निर्णय लिया गया। केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि घोषणा पत्र सदस्य देशों और साझेदार देशों के बीच सांस्कृतिक सहयोग को मजबूत करने के लिए व्यावहारिक और दूरदर्शी ढांचा प्रदान करता है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि भोपाल में ब्रिक्स का यह आयोजन देश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के स्वर्णिम अध्याय को वैश्विक मंच पर प्रस्तुत करने का सशक्त अवसर रहा है।
2: मध्यप्रदेश की इस राजधानी में संस्कृति मंत्रियों का ये सम्मिलित आयोजन, ये हमारे लिए गर्व और गौरव का विषय है। कल्चर का, अतीत का हमारा बहुत स्वर्णिम अध्याय रहा है, उसको जीवंत करते हुए और वो सभी वेदवाक्य जो माननीय मंत्री जी ने भी बोले, हमारा तो भाव वसुदेव कुटुम्बकम का है। वास्तव में आज ये नगरी धन्य हुई, हमारा राज्य आभारी है माननीय मंत्री जी का कि मध्यप्रदेश ये देश का दिल है और देश का दिल ऐसा ही धड़कता रहे और आपका साथ मिलता रहे।
0: वहीं समापन के बाद ब्रिक्स देशों के 42 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के साथ सांची स्तूप और म्यूजियम का भ्रमण भी किया। रेल परिचालन को अधिक सुरक्षित और विश्वसनीय तथा आधुनिक बनाने के लिए नागदा संत हिरदाराम नगर रेलखंड के कुल 226 किलोमीटर मार्ग में मानक कवच प्रणाली का सफलतापूर्वक कमीशनिंग किया गया। मानक कवच प्रणाली उन्नत स्वदेशी ऑटोमेटिक ट्रेन संरक्षण प्रणाली है, जिसका उद्देश्य ट्रेन परिचालन के दौरान संभावित जोखिमों को कम करना तथा असामान्य परिस्थितियों में लोको पायलट को तकनीकी सहायता प्रदान करते हुए रेल सुरक्षा को और सुदृढ़ करना है। कवच प्रणाली को पूरी तरह से लागू करने के लिए आवश्यक टावर लगाने का कार्य भी प्रगति पर है। वहीं रेलवे ने मध्य प्रदेश

0: में रेल कनेक्टिविटी को बेहतर करने के लिए रोजाना चलने वाली इटारसी मदन महल पैसेंजर रेलगाड़ी को मंजूरी दी है। ये रेलगाड़ी 5 घंटे से अधिक समय में 242 किलोमीटर की दूरी तय करेगी और बगरा, तवा, सुहागपुर तथा दूसरे स्टेशनों पर रुकेगी। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का।
1: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक के साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर या न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: समाचारों में पुनः आपका स्वागत है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज राजा भोज एयरपोर्ट भोपाल में आयोजित कार्यक्रम में प्रदेश की 4 नई सीधी हवाई सेवाओं का शुभारंभ करेंगे, जिनमें भोपाल रीवा, भोपाल पटना, रीवा कोलकाता और जबलपुर कोलकाता हवाई मार्ग शामिल हैं। इस अवसर पर मुख्यमंत्री भोपाल से रीवा की पहली उड़ान को फ्लैग ऑफ करेंगे। इन नई सेवाओं के शुरू होने से प्रदेश की आंतरिक एवं अंतर्राज्यीय हवाई कनेक्टिविटी को और मजबूती मिलेगी। इन सेवाओं का संचालन अलायंस एयर द्वारा किया जाएगा। इन सभी घरेलू हवाई मार्गों को मध्य प्रदेश नागरिक विमानन नीति के अंतर्गत वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। अब तक 8 नए हवाई मार्ग स्वीकृत किए जा चुके हैं, जिनमें से 4 मार्गों पर हवाई सेवाएं प्रारंभ हो चुकी हैं, जबकि 4 नए मार्गों पर सेवाएं प्रारंभ की जा रही हैं। स्वतंत्रता दिवस के पूर्व प्रदेश में आज से 17 अगस्त तक जनभागीदारी के साथ हर घर तिरंगा अभियान चलाया जाएगा। इस दौरान तिरंगा यात्रा, तिरंगा मेला, प्रदर्शनी और साइकिल रैली जैसे कार्यक्रम आयोजित होंगे। लोगों को तिरंगे के साथ सेल्फी लेकर हर घर तिरंगा पोर्टल पर अपलोड करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। 13 अगस्त को बड़े पैमाने पर तिरंगा बाइक रैली तथा 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने बताया कि राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने के अवसर पर इसे भी अभियान से जोड़ा गया है।
2: हर घर तिरंगा 5 वर्ष पूरे कर चुका है और 5 वर्ष पूरे होने के बाद में हर वर्ष हर घर तिरंगा का व्याप जो है वो बढ़ता जा रहा है। इस बार हमने 2 नए विषयों को इसके साथ में जोड़ा है, क्योंकि इस बार देश वंदे मातरम की 150 वर्ष सम्मान के साथ में मना रहा है। इसलिए हमने आग्रह किया है कि इस बार हम वंदे मातरम के गायन करते हुए उसका एक वीडियो बना करके अपलोड करें।
0: खंडवा में शहरी क्षेत्रों में तिरंगा बाइक, ई बाइक और साइकिल रैली, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में तिरंगा रैली और प्रभात फेरी की तैयारी की जा रही है। वहीं स्कूलों में तिरंगा रंगोली, प्रश्नोत्तरी, नुक्कड़ नाटक और अन्य देशभक्ति कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। सरकार ने स्पष्ट किया है कि उपभोक्ताओं के लिए UPI निःशुल्क रहेगा और सभी व्यक्तिगत लेन देन निःशुल्क बने रहेंगे। वित्त मंत्रालय ने कहा है कि UPI के माध्यम से भुगतान करते समय उपभोक्ताओं को किसी भी प्रकार का लेन देन शुल्क नहीं देना होगा, जबकि अधिकांश व्यापारी लेन देन भी निःशुल्क रहेंगे। मंत्रालय ने कहा कि यदि व्यापारी छूट दर शुल्क लागू किया जाता है तो यह केवल एक निश्चित सीमा से अधिक के सीमित व्यापारी लेनदेन पर नाम मात्र दर से लागू होगा। मंत्रालय ने कहा है कि भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम में संशोधन एक सक्षम प्रावधान है, जिसका उद्देश्य UPI की दीर्घकालिक स्थिरता, तकनीकी उन्नति और उभरते जोखिमों के प्रति लचीलापन सुनिश्चित करना है। अब रुख करते हैं मौसम का। प्रदेश में मानसून की बेरुखी के बीच पन्ना, सतना और रीवा में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने इन तीनों जिलों में अगले 24 घंटे के दौरान 4 इंच तक बारिश का अनुमान जताया है। वहीं भोपाल में सुबह से ही हल्की बूंदाबांदी हो रही है। इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर और जबलपुर समेत प्रदेश के 52 जिलों में हल्की बारिश के आसार हैं। मंडला जिले में बीती रात से ही अच्छी बारिश हो रही है और सावन में पहली बार बारिश की झड़ी देखने को मिली है। अब रुख करते हैं खेल की खबर का। प्रदेश की अंतर्राष्ट्रीय फेंसिंग खिलाड़ी खुशी दाभाड़े का चयन सीनियर कॉमनवेल्थ फेंसिंग चैंपियनशिप 2026 के लिए भारतीय टीम में किया गया है। ये प्रतियोगिता 9 से 14 अगस्त तक नाइजीरिया में आयोजित की जा रही है। खुशी वुमेन्स AP स्पर्धा में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी। वे वर्तमान में भारतीय टीम के साथ नाइजीरिया में हैं। अब कुछ समाचार संक्षेप में। इंदौर जिले के प्रवास के दौरान कल केंद्रीय विधि एवं न्याय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने रेवती रेंज में वृक्षारोपण किया। आगरमालवा जिले के प्रभारी मंत्री नागर सिंह चौहान आज सुसनेर में पंडित दीनदयाल उपाध्याय की प्रतिमा का लोकार्पण करेंगे। सिंगरौली जिले के शासकीय पूर्व माध्यमिक विद्यालय सिद्धिकला में कलेक्टर गौरव बैनल ने औचक निरीक्षण कर शैक्षणिक व व्यवस्थागत गतिविधियों का जायजा लिया। नीमच जिले में विद्यार्थियों और अभिभावकों को अपार ID के निर्माण व सत्यापन की प्रक्रिया से अवगत कराया गया। और खंडवा जिले में मुख्यमंत्री जनविश्वास अभियान के दौरान नगरीय प्रशासन आयुक्त संकेत भुंडवे ने नमो वन में बेंबू पार्क एवं मियावाकी पद्धति से एक नगर एक जंगल विकसित करने के निर्देश दिए। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सहकारी बैंकों के लिए मजबूत साइबर और डिजिटल सुरक्षा उपायों पर बल दिया। सांस्कृतिक सहयोग को मजबूत करने के संकल्प के साथ भोपाल में संपन्न हुआ ब्रिक्स सांस्कृतिक सम्मेलन 2026। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज राजा भोज एयरपोर्ट भोपाल में प्रदेश की 4 नई हवाई सेवाओं का शुभारंभ करेंगे और आज से 17 अगस्त तक जनभागीदारी के साथ हर घर तिरंगा अभियान चलाया जाएगा। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए 2:10 पर। नमस्कार।

0: पहुंचाएं हम जन जन तक, सपनों को दें हम आकार।
1: FM 102.5 MHz और साथ ही न्यूज़ ऑन AIR के मोबाइल एप्लीकेशन पर, यह आकाशवाणी का उज्जैन केंद्र है। आइए सुनते हैं अगला कार्यक्रम, सुप्रभात उज्जैन।

ओम नमः शिवाय। अवंतिका नगरी बाबल महाकाल की पावन धरा उज्जैन से मैं आपकी दोस्त और होस्ट कृष्णा पंडित आकाशवाणी के सभी प्रिय श्रोताओं का आज के इस सुहानी सभा में हार्दिक स्वागत करती हूँ। आप सभी को मेरा सादर प्रणाम और एक ऊर्जावान प्रभात। श्रोताओं, आज 9 अगस्त है। पवित्र श्रावण मास की रिमझिम फुहारों के बीच आज का दिन हमारे इतिहास, संस्कृति और स्वतंत्रता संग्राम के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं आपका पसंदीदा प्रातःकालीन कार्यक्रम सुप्रभात उज्जैन। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं एक बहुत ही मधुर गीत के साथ।

गीत के बाद एक बार फिर स्वागत है आप सभी का सुप्रभात उज्जैन में। सावन के इस पावन महीने में पूरा उज्जैन शहर शिव भक्ति के आनंद में सराबोर है। महाकाल मंदिर परिसर से लेकर शिप्रा के राम घाट तक हर ओर हर हर महादेव का उद्घोष गूंज रहा है। हमारे उज्जैन वासियों के लिए एक विशेष सूचना, आज सावन महोत्सव के अंतर्गत त्रिवेणी कला संग्रहालय में सांस्कृतिक संध्या का भव्य आयोजन किया जा रहा है। शाम 6:30 से आयोजित इस संध्या में मालवीय लोक संगीत, शिव भजन प्रस्तुति और मनमोहक शास्त्रीय नृत्य देखने को मिलेंगे। आप सभी परिवार सहित इसमें जरूर शामिल हों। चलिए सावन के इस खूबसूरत सुबह को और संगीतमय बनाते हैं इस सदाबहार नगमे के साथ।

FM 102.5 MHz पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का उज्जैन केंद्र। श्रोताओं, आज 9 अगस्त की तारीख भारतीय इतिहास में अगस्त क्रांति दिवस के नाम से दर्ज है। 8 अगस्त 1942 को मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान से महात्मा गांधी जी ने अंग्रेजों के खिलाफ भारत छोड़ो आंदोलन का आह्वान करते हुए करो या मरो का ऐतिहासिक नारा दिया था। 9 अगस्त 1942 की सुबह ब्रिटिश सरकार ने भले ही शीर्ष नेताओं को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन देश का हर नागरिक सड़क पर उतर आया और यह आंदोलन एक महाक्रांति बन गया। अनेक वीरों ने इस क्रांति में अपनी सहभागिता दी थी। उन सभी अमर सेनानियों को हमारा शत शत नमन। आइए, देशभक्ति के इसी भाव को नमन करते हुए सुनते हैं यह अगला गाना।

साथियों सुप्रभात, उज्जैन में आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं आज की उज्जैन की कुछ महत्वपूर्ण खबरें। उज्जैन में कायस्थ महाकुंभ 2026 पूरे 30 साल बाद राष्ट्रीय अधिवेशन का आयोजन होने जा रहा है और बाबा महाकाल की सवारी की सुरक्षा पुख्ता करने के लिए पुलिस ने विशेष अभ्यास किया है। सिंहस्थ 2028 के मेला क्षेत्र के जोन अगले 7 दिन के भीतर तय कर दिए जाएंगे और इसके साथ ही 15 नए चौड़ीकरण व निर्माण कार्य भी जल्द ही शुरू होने वाले हैं। साथ ही शहर के फ्यूचर विजन कॉलेज में साइबर मित्र प्रशिक्षण का कार्यक्रम का भी आयोजन किया जा रहा है। जिले में 600 विद्यार्थियों ने मिलकर 21 लाख बार ओम

नमः शिवाय का जाप किया है। साथ ही एक विशेष ऑफिसर मीट के दौरान प्रशासनिक अधिकारियों को कार्य प्रणाली की भी ट्रेनिंग दी गई है, जिससे आने वाले सिंहस्थ में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जा सके और नागरिकों को बिना किसी भी मुश्किल के सिंहस्थ अच्छे से मनाने का मौका मिले। तो चलिए दोस्तों, इसी के बीच आइए सुनते हैं ये अगला गाना।

संगीत के इस सुहाने सफ़र के बीच आइए याद करते हैं इतिहास के एक और पराक्रमी अध्याय को। आज ही के दिन यानी 9 अगस्त 1925 को काकोरी ट्रेन एक्शन की ऐतिहासिक घटना हुई थी। काकोरी में पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां, चंद्रशेखर आज़ाद और उनके साथियों ने ब्रिटिश हुकूमत के सरकारी खजाने को रोककर जब्त किया था। इस साहसिक कदम का मकसद आज़ादी की लड़ाई को वित्तीय रूप से मजबूत करना और अंग्रेज़ों की नींव हिलाना था। उन अमीर बलिदानियों का अदम्य साहस आज भी हर भारतीय के दिल में देशभक्ति की ज्वाला प्रज्वलित करता है। उन वीरों को हम नमन करते हैं। कार्यक्रम में आगे और भी बातें होंगी, पर उससे पहले आइए सुनते हैं ये अगला गाना।

श्रोताओं, आज 9 अगस्त को पूरा विश्व आदिवासी के रूप में भी मना रहा है। मध्य प्रदेश की पहचान यहाँ की समृद्ध जनजातीय परंपराओं, पिथौरा कला, लोकधुन और वन्य जीवन से है। भगवान बिरसा मुंडा, टंट्या भील और भीमा नायक जैसे जननायकों का योगदान न केवल हमारी संस्कृति बल्कि देश की

आजादी की रक्षा में भी अतुलनीय रहा है। आज विश्व आदिवासी दिवस हमारी मूल जनजातीय विरासत के संरक्षण और सम्मान का दिन है। इसी के साथ कार्यक्रम में अब वक्त हो रहा है अगले गीत का।

श्रोताओं, आज 9 अगस्त का दिन भारतीय खेल जगत के लिए भी बेहद गर्व का दिन है। आज भारत की स्टार जिमनास्ट और पद्मश्री से सम्मानित दीपा कर्माकर जी का जन्मदिन है। 9 अगस्त 1993 को दीपा ने 2016 रियो ओलंपिक्स में खतरनाक प्राडुनोवा वॉल्ट को सफलतापूर्वक पूर्ण करके इतिहास रचा था। फ्लैट फीट जैसी शारीरिक चुनौतियों के बावजूद उन्होंने अपनी कड़ी मेहनत से साबित कर दिखाया कि लक्ष्य अगर पक्का हो तो कोई भी रुकावट आपको रोक नहीं सकती। आकाशवाणी परिवार की ओर से दीपा कर्माकर जी को जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। साथ ही श्रोताओं, आज 9 अगस्त का दिन दुनिया भर में विश्व पुस्तक प्रेमी दिवस के रूप में भी मनाया जा रहा है। किताबें हमारी सबसे अच्छे मित्र, मार्गदर्शक और ज्ञान का महासागर होती हैं। उज्जैन तो वैसे भी महाकवि कालिदास की ज्ञानमयी नगरी रही है।

जहाँ पन्नों और साहित्यों की समृद्ध परंपरा है। आज के दिन अपनी भाग दौड़ भरी जिंदगी और स्क्रीन टाइम से थोड़ा सा ब्रेक लें, अपनी पसंदीदा किताब उठाएं और पढ़ने के आनंद में खो जाएं। चलिए, समय हो चला है कार्यक्रम के अगले गीत का, आइए इसका लुत्फ उठाते हैं।

साथियों, अब समय हो रहा है सुप्रभात उज्जैन के समापन का। आज हमने सावन की फुहारों, सांस्कृतिक आयोजनों, भारत छोड़ो आंदोलन, काकोरी एक्शन, दीपा कर्माकर जी का जन्मदिन, बुक लवर्स और डे और विश्व आदिवासी दिवस के महत्व को याद किया। साथ ही आज मैं आपको फिर एक बार याद दिलाना चाहती हूँ, त्रिवेणी कला संग्रहालय की शाम की सांस्कृतिक संध्या में जाना ना भूलें। मैं हूं आपकी दोस्त कृष्णा पंडित, अब आपसे इजाजत लेती हूं। सुनते रहिए आकाशवाणी उज्जैन। नमस्कार।

0: सब ऊपर वाले की दया है मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
1: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं हैं, मदद बस एक कॉल दूर है।
4: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने प्रमुख क्षेत्रों में व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी और प्रगाढ़ करने के उपायों पर चर्चा की। राष्ट्रगीत वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ के साथ हर घर तिरंगा अभियान आज से देश भर में शुरू। मद्रास, कलकत्ता, मध्य प्रदेश और कर्नाटक उच्च न्यायालयों में 30 न्यायाधीशों की नियुक्ति की अधिसूचना जारी। वर्षा के कारण पहलगाम और बालतल मार्गों से श्री अमरनाथ जी यात्रा अस्थायी रूप से स्थगित। मौसम विभाग का उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ में आज तेज वर्षा का ऑरेंज अलर्ट। और साग्निक रॉय और सायंतन कुशारी ने 9वीं वर्ल्ड यूथ ट्रांसनेशनल चैंपियनशिप के अंडर 31 स्पर्धा का स्वर्ण पदक जीता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल अमरीका के उपराष्ट्रपति जीडी वेंस से टेलीफोन पर बातचीत की। इस दौरान दोनों नेताओं ने भारत अमरीका व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी और मजबूत करने के उपायों पर चर्चा की। दोनों नेताओं ने व्यापार, रक्षा, महत्वपूर्ण और उभरती प्रौद्योगिकियों, ऊर्जा सुरक्षा तथा महत्वपूर्ण खनिजों के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने की प्रतिबद्धता दोहराई। आपसी हित से जुड़े क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचार विमर्श किया गया। श्री मोदी ने उपराष्ट्रपति जेडी वेंस और उनकी पत्नी उषा वेंस को उनके पुत्र के जन्म पर शुभकामनाएं दी। हर घर तिरंगा अभियान आज से शुरू हो रहा है। यह अभियान 17 तारीख तक चलेगा। इसका उद्देश्य लोगों को अपने घरों पर तिरंगा फहराने और देशभक्ति तथा राष्ट्रीय एकता से जुड़े कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना है।
5: घर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा।
6: हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत वर्ष 2022 में हुई थी और अब ये एक बड़े जन भागीदारी अभियान का रूप ले चुका है। इस वर्ष हर घर तिरंगा अभियान का विशेष महत्व है क्योंकि ये राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ के साथ मनाया जा रहा है। देश भर में वंदे मातरम का सामूहिक गायन भी होगा।

14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाया जाएगा। दुनिया भर में 200 से अधिक भारतीय दूतावास, उच्चायोग और वाणिज्यिक दूतावास भी अभियान के अंतर्गत कार्यक्रम आयोजित करेंगे। इस वर्ष सूर्यपथ तिरंगा डिजिटल रिले भी आयोजित होगी। इसमें 54 भारतीय राजनयिक मिशन और केंद्र हिस्सा लेंगे। ये रिले 15 अगस्त को फिजी से शुरू होकर सैन फ्रांसिस्को में समाप्त होगा। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।

0: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 2 दिन की आधिकारिक यात्रा पर पुद्दुचेरी में हैं। श्री शाह गोरीमेडू के पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय में पुद्दुचेरी पुलिस को राष्ट्रपति का पुलिस ध्वज प्रदान करने के समारोह में भाग लेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: गृह मंत्री अमित शाह आज पुडुचेरी पुलिस को औपचारिक झंडा सौंपेंगे। भारत के राष्ट्रपति ने 8 मई को पुडुचेरी पुलिस की असाधारण सेवा, अनुशासन और शानदार उपलब्धियों के सम्मान में उन्हें पुलिस कलर देने की घोषणा की थी। इस कार्यक्रम के अंतर्गत आयोजित औपचारिक परेड में केंद्र शासित प्रदेश पुलिस की विभिन्न शाखाओं के जवान भी भाग ले रहे हैं। इस समारोह में पुडुचेरी के उपराज्यपाल के कैलाश नाथन, मुख्यमंत्री एन रंगासामी और गृह मंत्री ए नमासीवयम भी मौजूद रहेंगे। दोपहर बाद अमित शाह पुडुचेरी में मुरुगा थिएटर सिग्नल पर हर घर तिरंगा यात्रा को हरी झंडी दिखाएंगे। गृह मंत्री के दौरे को देखते हुए पूरे पुडुचेरी में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। विपिन एस नाथ की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमित कुमार त्यागी।
0: आंध्र प्रदेश के

0: मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने राज्य और देश के विकास में प्रत्येक नागरिक की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए 15 अगस्त से राष्ट्र निर्माण में भागीदार कार्यक्रम शुरू करने का आह्वान किया है। श्री नायडू ने कार्यक्रम के अंतर्गत लोगों से 13 से 15 अगस्त तक अपने घरों पर राष्ट्र ध्वज फहराने और मेरा राष्ट्र राष्ट्र सर्वोपरि की भावना को बढ़ावा देने का आह्वान किया है। सरकार ने 4 उच्च न्यायालयों में 30 नए न्यायाधीशों की नियुक्ति की अधिसूचना जारी कर दी है। इनमें मद्रास, कलकत्ता, मध्य प्रदेश और कर्नाटक उच्च न्यायालय शामिल हैं। सबसे अधिक 15 न्यायाधीशों की नियुक्ति मद्रास उच्च न्यायालय में की गई है। वहीं कलकत्ता उच्च न्यायालय में 8, कर्नाटक उच्च न्यायालय में 6 और मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में 1 न्यायाधीश की नियुक्ति की गई है। विधि और न्याय मंत्रालय के अनुसार इन 30 न्यायाधीशों में 20 वकील और 10 न्यायिक अधिकारी शामिल हैं। इन नियुक्तियों को राष्ट्रपति ने भारत के मुख्य न्यायाधीश और सर्वोच्च न्यायालय की कलीजियम की सलाह के बाद मंजूरी दी है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। झारखंड में JPSC और JSSC भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर जारी गतिरोध अब समाधान की दिशा में बढ़ता दिख रहा है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि सरकार और आंदोलनकारी छात्रों के प्रतिनिधियों के बीच आज दोपहर करीब 12 बजे अगले दौर की वार्ता होने की संभावना है।
1: सरकार के वार्ता दल ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात कर छात्रों के साथ हुई पहली दौर की बातचीत में हुई प्रगति से उन्हें अवगत कराया है। सरकार और आंदोलनकारी छात्रों के विभिन्न गुटों के बीच पहले दौर की उच्च स्तरीय वार्ता कल रांची के स्टेट गेस्ट हाउस में सकारात्मक माहौल में हुई थी। सरकार के प्रतिनिधियों ने परीक्षा व्यवस्था में व्यापक सुधार के प्रति प्रतिबद्धता जताई। पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने एक आधिकारिक फीडबैक ईमेल आईडी भी जारी की है, जिसके माध्यम से छात्र और हितधारक अपने सुझाव दे सकते हैं। इधर छात्र नेता रविंद्र पासवान ने कहा कि छात्र पिछले 15 दिनों से अनिश्चितकाल धरने पर हैं और पहली वार्ता में उन्होंने अपनी मांगे विस्तार से सरकार के सामने रखी हैं। इस बीच कल शाम रांची में छात्रों ने JPSC JSSC परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के लिए जवाबदेही तय करने की मांग को लेकर फ्लैशलाइट मार्च भी निकाला। महवेश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
0: जम्मू कश्मीर में वर्षा और खराब मौसम के कारण पहलगाम और बालतल मार्गों से श्री अमरनाथ जी यात्रा स्थगित कर दी गई है। मौसम विभाग के अनुमान को देखते हुए यात्रा अस्थायी रूप से रोकी गई है। जम्मू के भगवती नगर आधार शिविर से कल किसी भी नए जत्थे को रवाना नहीं किया गया। इस बीच बालतल आधार शिविर में ठहरे हुए 1202 तीर्थयात्रियों के 28वें जत्थे को 44 वाहनों में जम्मू के लिए रवाना किया गया। श्री अमरनाथ गुफा में कल 3,336 श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। इस वर्ष अब तक अमरनाथ यात्रा में दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं की संख्या 4,80,019 हो गई है। 57 दिन की अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई को पहलगाम के पारंपरिक चंदनवाड़ी मार्ग और गांदरबल के बालतल मार्ग से एक साथ शुरू हुई थी। यात्रा का समापन 28 अगस्त को पारंपरिक छड़ी मुबारक समारोह के साथ होगा। इस बीच मौसम विभाग ने आज उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ में मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, झारखंड, मध्य प्रदेश और पूर्वोत्तर क्षेत्र में भी तेज वर्षा की आशंका है। विभाग ने जम्मू कश्मीर, आंध्र प्रदेश, केरलम, माहे, कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में गरज चमक और आंधी तूफान की संभावना जताई है। इधर दिल्ली और आसपास के इलाकों में दिन के दौरान हल्की वर्षा और बादल छाए रहने का अनुमान है। मौसम विभाग ने उत्तराखंड के कई जिलों में अगले 48 घंटों में बहुत तेज वर्षा की चेतावनी जारी की है। एक रिपोर्ट।
2: मौसम विभाग के अनुसार आज राज्य के पर्वतीय जिलों में तेज वर्षा की संभावना है। देहरादून, बागेश्वर, नैनीताल और चंपावत में कल भी भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। वहीं उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, टिहरी, पौड़ी, पिथौरागढ़ और उधम सिंह नगर में कहीं कहीं भारी वर्षा का येलो अलर्ट है। मौसम की स्थिति को देखते हुए सचिव आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास विनोद कुमार सुमन ने सभी संबंधित जिलों को 24 घंटे सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं। श्री सुमन ने प्रदेशवासियों और पर्यटकों से मौसम विभाग की चेतावनी को ध्यान में रखते हुए सावधानी बरतने की अपील की है। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, देहरादून।
0: उड़ीसा में भी कई क्षेत्रों में तेज वर्षा जारी है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य में बाढ़ के कारण बड़े स्तर पर फसलों को नुकसान होने की आशंका है।
3: उड़ीसा में एक बार फिर बड़े पैमाने पर बारिश हो रही है। IMD ने कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी दी है।

श्रोताओं, संगीत की दुनिया में कुछ आवाज़ें ऐसी होती हैं जो सिर्फ कानों को नहीं सीधे रूह को छूती हैं। ऐसी ही एक आवाज़ थी हिंदी में सिनेमा के महान पार्श्व गायक मुकेश चंद्र माथुर, यानी हमारे प्यारे मुकेश जी की। उनकी जन्म जयंती और पुण्यतिथि के आसपास के इस अवसर पर आज का यह पूरा विशेष शो समर्पित है मुकेश जी के जीवन, उनके संघर्ष, प्यार, सफलता और उनके उस मखमली तरन्नुम को जिसने करोड़ों दिलों को राहत दी है। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी उज्जैन और समय है अपने पसंदीदा कार्यक्रम उज्जैनी आरजे का। प्रिय श्रोताओं को कृष्णा पंडित का प्यार भरा प्रणाम। आज के इस कार्यक्रम में हम मुकेश जी के जीवन के हर पहलू को उजागर करेंगे, साथ ही सुनेंगे उनके सदाबहार नगमे। तो थाम लीजिए अपना दिल और चलिए सुरों के इस अमर सफर पर। इसकी शुरुआत करते हैं इस बेहद ही खूबसूरत गीत के साथ।

0: तो चला जिधर चले रास्ता, मैं तो चला जिधर चले रास्ता।
1: सड़क पर पैदल चलते समय रखें हम कुछ बातों का ध्यान।
2: हमेशा सड़क के किनारे बनी पटरियों पर ही चलें।
1: सड़क पार करने के पूर्व दाएं और बाएं अवश्य देख लें।
2: तेज गति से आ रहे वाहन के सामने से निकलने की भूल ना करें।
1: सड़क पार करते समय मोबाइल पर बात ना करें।
2: चौराहे पर हमेशा ज़ेब्रा क्रॉस से ही सड़क पार करें।
1: हम रहेंगे अगर सावधान, राह हो जाएगी आसान।
3: ए भाई, जरा देख के चल।

साथियों, क्या आप जानते हैं, शुरुआती दौर में लोग मुकेश जी को सहगल साहब का नकलची कहने लगे थे। इसी दौरान महान संगीतकार नौशाद साहब ने मुकेश जी को एक बहुत ही बहुमूल्य सलाह दी। नौशाद साहब ने कहा, मुकेश, अगर संगीत की दुनिया में लंबे समय तक टिकना है तो सहगल साहब की नकल छोड़ो और अपनी खुद की आवाज़ तलाशो। मुकेश जी ने इस सलाह को दिल से लगाया और अपनी आवाज़ के स्वाभाविक ठहराव और सादगी पर काम करना शुरू किया। और फिर 1949 में आई फिल्म अंदाज, जहां मुकेश

0: वर्क फ्रॉम होम, हाई सैलरी, बस एक क्लिक में। अरे वाह।
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है,
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी उज्जैन, RJ कृष्णा पंडित के साथ FM 102.5 MHz पर। श्रोताओं, मुकेश जी जितने भावुक अपनी गायकी में थे, उतने ही वे अपनी निजी जीवन में भी थे। 1946 में मुकेश जी का दिल आया सरल त्रिवेदी जी पर, जो एक समृद्ध गुजराती परिवार से थी। उस समय मुकेश जी संघर्ष कर रहे थे, उनके पास न पक्का घर था न स्थायी आय। दोनों के परिवारों ने इस शादी से साफ इनकार कर दिया, लेकिन सच्चा प्यार बंदिशों से कहाँ डरता है। 22 जुलाई 1946 को, यानी अपने ही 23वें जन्मदिन पर, मुकेश जी और सरल जी ने मंदिर में शादी कर ली। इस शादी के गवाह बने अभिनेता मोतीलाल और संगीतकार अनिल विश्वास। शादी के बाद सरल जी ने हर मुश्किल वक्त में मुकेश जी का हौसला बढ़ाया। उनके इस सुखद वैवाहिक जीवन में 5 बच्चे हुए, जिनमें नितिन मुकेश ने बाद में अपने पिता की गायकी की विरासत को आगे बढ़ाया। शादी के बाद मुकेश जी का करियर एक नई ऊंचाई पर पहुंचा, जब उनकी जोड़ी राजकुमार साहब के साथ बनी। 1950 का दशक आते आते मुकेश जी राज कपूर की ऑन स्क्रीन आवाज़ बन चुके थे। फिल्म आवारा के इस टाइटल ट्रैक ने खूब धूम मचाई थी। यह गीत न केवल भारत में बल्कि रूस, तब सोवियत संघ, मिश्र और चीन में तहलका मचा दिया। चलिए सुनते हैं वो वैश्विक एंथम।

आवारा की सफलता के बाद राज कपूर और मुकेश जी की जोड़ी ने श्री 420 में सादगी और देशभक्ति का ऐसा मेल प्रस्तुत किया जो इतिहास बन गया। लाल किले के प्राचीर हो या विदेशों में भारत की पहचान, यह गीत हमेशा ही गुनगुनाया गया।

साथियों, राज कपूर और मुकेश जी की दोस्ती केवल काम तक सीमित नहीं थी। राज कपूर साहब कहा करते थे, मैं तो सिर्फ एक शरीर हूँ, मेरी आत्मा तो मुकेश की आवाज़ में बसती है। जब मुकेश गाता है तो लगता है कि मेरे दिल की बात बाहर आ रही है। मुकेश जी की गायकी की सबसे बड़ी खासियत यही थी कि वे जटिल शास्त्रीय हरकतों के बजाय सुरों के ठहराव और जज्बात पर जोर देते थे। उनकी आवाज़ में एक अजीब सा दर्द, सच्चाई और मासूमियत थी।

श्रोताओं, हर महान कलाकार के जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं। 1950 के दशक के मध्य में मुकेश जी ने अभिनय और फिल्म निर्माण में किस्मत आजमाने की सोची। उन्होंने माशुका और अनुराग जैसे फिल्मों में काम किया और पैसा लगाया, लेकिन दोनों फिल्में बुरी तरह फ्लॉप हो गईं। मुकेश जी आर्थिक रूप से टूट गए। उन्होंने कुछ समय के लिए गाना भी बंद कर दिया था। स्थिति इतनी बिगड़ गई थी कि उनके बच्चों के स्कूल की फीस भरने तक के पैसे नहीं थे। लेकिन मुकेश जी ने हार नहीं मानी। उन्होंने अपनी भूल को स्वीकार किया और फिर पूरे शिद्दत के साथ पार्श्व गायन में वापसी की। और जब वापसी की तो ऐसा इतिहास रचा कि आज भी मिसाल है। 1995 में आई फिल्म अनाड़ी के इस गीत ने मुकेश जी को उनका पहला फिल्मफेयर सर्वश्रेष्ठ गायक का पुरस्कार दिलाया। यह गाना उनकी अपनी जिंदगी के संघर्षों और इंसानी फितरत पर एक सुंदर कटाक्ष था।

साथियों, 1970 का दशक मुकेश जी के लिए सफलताओं का नया दौर लेकर आया। उन्हें अपने करियर में कई प्रतिष्ठित पुरस्कारों से नवाजा गया। 1974 में फिल्म रजनीगंधा के बेहद संवेदनशील गीत कई बार यूं भी देखा है के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ पुरुष पार्श्व गायक का राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। साथ ही उन्हें कुल 4 बार फिल्म फेयर पुरस्कार अवार्ड मिला है, अनाड़ी, पहचान, बेईमान और कभी कभी के लिए। कार्यक्रम में उनके बारे में और भी बातें करेंगे, पर उससे पहले आइए सुनते हैं फिल्म कभी कभी का ये बेहद ही खूबसूरत सा गीत।

1976 में यश चोपड़ा की फिल्म कभी कभी के लिए खयाम साहब के संगीत में मुकेश जी ने जो शीर्षक गीत गाया उसने प्रेम की नई भाषा गढ़ दी। इस गीत के लिए उन्हें उनका चौथा फिल्मफेयर पुरस्कार मिला। उनकी गायकी की एक और बेहतरीन नज़रिए को सुनते हैं धर्मात्मा मूवी के इस अगले गीत के साथ।

श्रोताओं, 1976 का वर्ष जहां मुकेश जी के लिए व्यावसायिक रूप से बेहद सफल रहा, वहीं नियति ने उनके लिए कुछ और ही तय कर रखा था। अगस्त 1976 में वे लता मंगेशकर जी के साथ एक कॉन्सर्ट टूर के सिलसिले में अमेरिका गए थे। 27 अगस्त 1976 को एक शो से ठीक पहले उन्हें दिल का भीषण दौरा पड़ा और मात्र 53 वर्ष की उम्र में इस महान फनकार ने दुनिया को सदा के लिए अलविदा कह दिया। जब उनका पार्थिव शरीर भारत आई तो राज कपूर साहब बिलक बिलक कर रो पड़े। उन्होंने रोते हुए कहा था, आज मेरी आवाज़ चली गई, अब राज कपूर की फिल्मों में कौन गाएगा। मुकेश जी हमारे बीच शारीरिक रूप से नहीं, लेकिन उनकी आवाज़ की गर्माहट और सादगी आज भी हमारे दिलों में जिंदा है। मुकेश जी के निधन के बाद रिलीज हुई फिल्म धर्म करम का यह गाना जैसे उनके अपने जीवन का ही दर्शन था। आर डी बर्मन के संगीत में पिरोया यह गीत हमें जिंदगी की नश्वरता और कला की अमरता याद दिलाता है।

मुकेश जी एक महान गायक होने के साथ साथ एक बेहद नेक दिल, नम्र और सहृदय इंसान थे। आकाशवाणी उज्जैन परिवार की ओर से हम मुकेश जी की अमर स्मृतियों को शत शत नमन करते हैं। दोस्तों, इसी के साथ आज का यह उज्जैनी आरजे यहीं समाप्त होता है। दीजिए अपने साथी कृष्णा पंडित को इजाजत। सुनते रहिए आकाशवाणी उज्जैन FM 102.5 MHz पर।

0: आकाशवाणी उज्जैन केंद्र से अब वक्त हो रहा है प्रायोजित कार्यक्रम डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस के एपिसोड 5 का।
1: सीनियर सिटीजंस केयर सिस्टम वल्नरेबिलिटी टू अब्यूज वेलफेयर अवेयरनेस एंड स्ट्रेंथनिंग एक्सेस टू जस्टिस by Dr. Abha Chaudhary, Founder, Secretary and Chairperson, Anugraha RRTC. This talk was part of a webinar organized by the Department of Justice.
2: Senior citizens care ka, chahe wo gaon mein ho, chahe wo shaharon mein ho, uske prati jagrukta karni ho, ya policy makers, NGOs, civil society, ya wider society ko

0: उसमें इंटीग्रेट करना हो, एक ब्रॉड पिक्चर कि भारत धीरे से ही सही पर एजिंग सुनामी की ओर हम धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, बेहतर मेडिकल सुविधाएं और जो लॉन्जिविटी है उसकी वजह से जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो बढ़ रही है, और धीरे धीरे ये जो संख्या है ये चिंता का कारण मेरे विचार से नहीं है यदि हम सही प्रकार के केयर सिस्टम्स, इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म्स और जो हमारी मल्टीपल पॉलिसीज हैं गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट की या सेंट्रल गवर्नमेंट की उनका क्रियान्वयन सही रूप से करें तो ये चैलेंज नहीं पर बल्कि हमारे लिए एक ये बोन बनकर आ सकता है। हमारी संस्कृति में और हमारे समाज में प्राचीन काल से ही जो एक संयुक्त परिवार ज्वाइंट फैमिली सिस्टम रहा है और सीनियर सिटीजन्स के प्रति केयर और रिस्पेक्ट की एक भावना रही है उसमें कुछ हल्की दरारें या कुछ हल्के स्ट्रेन्स हम जरूर देख रहे हैं। 80% लोग हैं वरिष्ठ नागरिक वो ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं और एक सोच का विषय ये है कि उसमें से एक बहुत बड़ा तबका इलिटरेट है, कम पढ़ा लिखा है और सिर्फ फिजिकल लेबर में ही वो एंगेज रहते हैं। 58% से ज़्यादा महिलाएं जो 60 साल के ऊपर हैं कि उनकी जो आर्थिक दशा है या सोशल सपोर्ट है, इमोशनल सपोर्ट है, उसके प्रति ज़्यादा हमें काम करने की आवश्यकता है। ब्रॉडली जो चैलेंजेस वृद्धावस्था अपने साथ लेकर आती है वो भावनात्मक स्तर पर ही नहीं बल्कि शारीरिक और मानसिक स्तर पर भी बहुत ज़्यादा डॉन्टिंग होते हैं। वृद्धावस्था के साथ साथ बीमारियों का घेरना, अकेलापन और बच्चों का बाहर शहरों में चले जाना, बाहर काम करना, और क्योंकि शरीर क्षीण है मानसिक रूप से या शारीरिक रूप से आप उतने सक्षम नहीं हैं तो घर से ज़्यादा बाहर निकलकर आप काम भी उतना ज़्यादा नहीं कर पाते, इसलिए आजीविका संबंधी परेशानियाँ भी वृद्धावस्था के साथ एक चैलेंज के रूप में उभर रही हैं। कुछ साल पहले अखबारों ने ये भी पढ़ा था जो बेगरी करते हैं काफ़ी सारी वरिष्ठ नागरिक महिलाएं वो भी सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन तक का वो शिकार हुई हैं। फाइनेंशियल एक्सप्लॉयटेशन या फाइनेंशियल अब्यूज़ ज़्यादा चर्चा में रहता है क्योंकि वो प्रॉपर्टी से संबंधित है, उनको डरा के, धमका के या बहला फुसला के उनके चेक साइन करवा लेना, प्रॉपर्टी के कागज़ अपने नाम करवा लेना, फिर उनको घर से बाहर निकाल देना, ये अक्सर आप समय समय पर मीडिया में चर्चा में पढ़ते रहे हैं। जैसे जैसे समाज में बदलाव आ रहे हैं, पारिवारिक ढांचा एक ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ से जा रहा है, तो पहले जो एक साइलेंट प्रॉब्लम हुआ करती थी या घर के बंद दरवाजों के पीछे ये बात होती थी, अब धीरे धीरे मीडिया और बाकी अवेयरनेस या रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन, सीनियर सिटीजन एसोसिएशन, पेंशनर्स एसोसिएशन एंड इवन एनजीओस इस चीज़ को बाहर अब ला के खुले में बात कर रही हैं। अब ये प्रश्न आता है जब ये सर्वे हुआ पिछले 7 साल से कि ये एल्डर अब्यूज करते कौन हैं, तो बहुत चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए कि कम से कम जो सर्वेक्षण ने शो किया पूरे इंडिया में 82% एडल्ट जो उनके बच्चे हैं सन्स और डॉटर्स वही इसको और डॉटर इन लॉ के बाद जो उनके देखभाल करता है चाहे वो फॉर्मल देखभाल करता है या इनफॉर्मल देखभाल करता है जो बेड रिडन लोग हैं वो इसके शिकार पाए गए। तो ये सवाल उठता है कि अब्यूज तो बच्चों का भी होता है, महिलाओं का भी होता है, तो वरिष्ठ नागरिकों के प्रति ज्यादा हम क्यों वल्नरेबल होते हैं, क्यों ससेप्टेबल होते हैं एल्डर अब्यूज के, तो उसके कुछ कारण हैं। आपने सभी ने ये शब्द जरूर सुना होगा अल्जाइमर्स या डिमेंशिया, तो मेंटल हेल्थ रिलेटेड इश्यूज काफ़ी ज़्यादा अब प्रोनाउंस होते जा रहे हैं और यदि व्यक्ति को अपने बारे में, अपनी कंडीशन के बारे में, अपने फाइनेंसेस के बारे में, अपने खान पान के बारे में सुदबुद्ध ही नहीं है, भूलने की समस्या आ रही है, तो वो अब्यूज़ के प्रति ज़्यादा वल्नरेबल हो जाते हैं। दूसरा, खासकर शहरी इलाकों में अकेलापन या बच्चे बाहर चले गए, सोशल आइसोलेशन, अपने हम उम्र लोगों के साथ मिलना जुलना कम कर देना, बाहर निकलना कम कर देना, उससे भी एक वल्नरेबिलिटी अब्यूज़ के प्रति बढ़ती है। और एक और जो सर्वेक्षण में बात सामने आई जो केयर गिवर्स का स्ट्रेस है उसमें भी जो उनकी देखभाल करते हैं लोग कई बार वो प्रेशर नहीं झेल पाते और उस फ्रस्ट्रेशन में उन लोगों के प्रति, वरिष्ठ नागरिकों के प्रति अत्याचार या दुर्भावना उनके प्रति आती है। इसमें एक चीज़ और देखी गई है कि वो वरिष्ठ नागरिक जो फाइनेंशियली इनसिक्योर हैं, जिनकी रेगुलर इनकम नहीं है, सेविंग्स नहीं है, या अपने अधिकारों या जो स्कीम्स हैं सरकार की या कानून है उनके प्रति बिल्कुल कम जानकारी है, वो ज्यादा फिजिकली और इमोशनली वल्नरेबल रहते हैं एल्डर अब्यूज के प्रति। और जो डिपेंडेंस भी, जो एक निर्भरता है केयर गिवर के प्रति, वो भी कहीं ना कहीं उनकी इस वल्नरेबिलिटी को बढ़ाती है। एक अब्यूज है वो जो उनके केयर गिवर समाज या परिवार के लोग करते हैं, एक वो प्रकार का अब्यूज है जो सेल्फ निग्लेक्ट है। व्यक्ति जब बहुत ज्यादा निराश हो जाता है या समाज के प्रति या परिवार के प्रति उदासीन हो जाता है तो वो स्वयं अपने प्रति भी उदासीन हो जाता है, और ऐसे में सही समय पे दवाई लेना, खाना लेना, अपनी हाइजीन मेंटेन करना, अपने लिए भजन पूजन, बाहर जाना, वो सब चीजें जो स्टॉप कर देते हैं वो अपने प्रति भी निग्लेक्ट या अब्यूज माना जाता है। जो एक ब्रॉड साइंस हम सब जानते हैं फिजिकल अब्यूज के, निग्लेक्ट के, वो चोट के निशान हो सकते हैं, बर्न्स के निशान हो सकते हैं, या किसी भी वरिष्ठ नागरिक जो नॉर्मल एक्टिविटी कर रहे हैं पर एकदम से वो विड्रॉ कर गए, बातचीत उन्होंने बंद कर दी, बाहर निकलना, दोस्तों से मिलना या रोज की जो एक्टिविटीज हैं वो बिल्कुल बंद कर दी, और उनकी फाइनेंशियल सिचुएशन में मान लीजिए अचानक से आप कोई बहुत ज़्यादा बदलाव देखते हैं कि पहले वो ठीक ठाक थे और अब बिल्कुल ही उनके लिए कोई खर्च करने के लिए उनके पास पैसे नहीं हैं, या वो घर में से आपको उनके मारपीट की या उनके आर्ग्यूमेंट्स की अगर आपको आवाज़ें सुनाई देती हैं, उनकी देखभाल करता और वरिष्ठ नागरिक के प्रति, उनका हाइजीन, उनकी डेली ज़रूरतें, उनकी दवाई, ये सब, और अनएक्सप्लेन्ड अगर उनकी तबीयत खराब बहुत लंबे समय तक चल रही है तो ये कुछ सिम्टम्स या साइंस होते हैं जिनसे आप पता कर सकते हैं कि वरिष्ठ नागरिक के साथ सब कुछ सही नहीं हो रहा है। इंटिमिडेशन, किसी भी बात पे उनको साइडलाइन करना, उनको उनके बारे में चर्चा नहीं करना। फाइनेंशियल एक्सप्लॉयटेशन बहुत ज़्यादा प्रोनाउंस्ड है और अब काफ़ी बढ़ता जा रहा है। हमारी जो मंत्रालय की नेशनल हेल्पलाइन है 14567 एल्डर लाइन जो है, उस पर इसके बहुत ज़्यादा केसेस आते हैं जिसमें या तो बरगला के या प्यार से या उनको बहला फुसला के, चाहे वो उनके घर में काम करने वाली डोमेस्टिक हेल्प हों, चाहे परिवार के लोग हों, देखभाल करता हों, तो वो एक बार अपने नाम कर लेते हैं तो फिर उन्हें बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। तो इस प्रकार की जागरूकता वरिष्ठ नागरिकों के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो समय पर अपनी वसीयत बनाएं, अपने नाम पर सेविंग्स रखें और चीज़ों को सभी के सामने उजागर या डिस्क्लोज ना करें।
1: यू हैव बीन लिसनिंग टू अ टॉक ऑन सीनियर सिटीजंस केयर सिस्टम, वल्नरेबिलिटी टू अब्यूज, वेलफेयर, अवेयरनेस एंड स्ट्रेंथनिंग एक्सेस टू जस्टिस फ्रॉम द वेबिनार ऑर्गेनाइज्ड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस। वी स्लिप इनटू अ शॉर्ट ब्रेक।

0: वेबसाइट www.daily-law.in या टोल फ्री नंबर 14454 से प्राप्त की जा सकती है।
1: We continue with the talk on senior citizens, care system, vulnerability to abuse, welfare, awareness and strengthening access to justice.
2: हम किस प्रकार से न्याय उन तक पहुंचाएं? तो ये केवल एक ही वर्ग का दायित्व नहीं है, एक ही वर्ग की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, इसमें मल्टी स्टेक होल्डर पार्टनरशिप की बहुत ज्यादा जरूरत है। मैं तीन लेवल्स आपके सामने जरूर बात करना चाहूंगी। एक, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट सीनियर सिटीजन्स देमसेल्व्स, स्वयं की जिम्मेदारी लेना समय पे, जब वो 40s में है या 50s में है या अर्ली 60s में है, तो अपनी सेहत की जिम्मेदारी, समय पे खान पान की जिम्मेदारी, अपनी सेविंग्स, बचत, इन सब का ध्यान रखना, सारे पैसे बच्ची की शादी में या घर बनाने में व्यय नहीं कर देना, ये हम लोगों की रिटायरमेंट काउंसलिंग, ये हमारे मेन मुख्य दायित्व हैं। दूसरा, जो उनके लिए काम करते हैं, प्रोफेशनल्स हुए, हेल्थ वर्कर्स हुए या फाइनेंशियल वर्कर्स हुए, उनके लिए जागरूकता प्रसार करना, जो एजेंसीज उनके लिए काम करती हैं, लॉ मेकिंग, लॉ एनफोर्समेंट, पुलिस हो गई, एनजीओज हो गई, पैरालीगल वॉलंटियर्स होते हैं, उनके प्रति एल्डर अब्यूज क्या है, मेंटेनेंस एक्ट क्या है, इस प्रकार की जानकारियाँ उन्हें देना। और जो ग्रासरूट स्तर पे जो एजेंसीज हैं, चाहे वो पंचायत है, चाहे वो RWAs हैं, चाहे वो बाकी एसोसिएशंस हैं, अर्बन लोकल बॉडीज हैं, तो वहाँ कोई ना कोई इस प्रकार का सुविधा होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब बदलते परिवेश में केवल ओल्ड एज होम होना हमारे लिए एक जवाब नहीं है आने वाले समय में। डे केयर सेंटर्स, मल्टी सर्विस सेंटर्स या ऐसी जगह, इंटरजेनरेशनल बॉन्डिंग, कुछ स्कूल्स या कॉलेजेस में

0: प्रकार का उनके लिए स्थान निर्धारित हो। एक क्रिटिकल भूमिका जो नोडल मंत्रालय है सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय उसकी रही है वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण के प्रति। और सन 2010 में ये स्कीम लॉन्च हुई थी रीजनल रिसोर्स एंड ट्रेनिंग सेंटर्स ऑन एजिंग। और हमारा इसमें मुख्य रोल जो रहता है वो ये रहता है कि टेक्निकल सपोर्ट और इनपुट्स हम मंत्रालय को प्रोवाइड करते हैं, जो हमारे अंडर हमें स्टेट्स आवंटित किए जाते हैं उन एजेंसीज को हम ट्रेन करते हैं, और मल्टीपल एजेंसीज चाहे वो स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, पंचायतें हैं, हेल्थ डिपार्टमेंट है, हर वो विभाग जो वरिष्ठ नागरिकों से डील करता है हम उन्हें ट्रेनिंग, कैपेसिटी बिल्डिंग, हैंड होल्डिंग और अवेयरनेस प्रोवाइड करते हैं। वाइड स्केल पे कैंपेन्स रन की जाती हैं। हर वर्ष जब 1 अक्टूबर आता है वरिष्ठ नागरिक दिवस, तो उसमें थीम्स डिसाइड की जाती हैं, कभी फाइनेंशियल, कभी लीगल, कभी हेल्थ, और एजिंग विद डिग्निटी, गरिमामय वृद्धावस्था हमारा मुख्य ध्येय है। सो दिस इज अ ब्रॉड मैंडेट फ्रॉम ट्रेनिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग टू रिसर्च टू एडवोकेसी टू डेटा बैंक जनरेशन। और इसमें एक बहुत एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है एंश्योरिंग मॉडल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ओल्ड एज होम्स। मंत्रालय के अंडर जितने ओल्ड एज होम्स आते हैं उनमें किस प्रकार की सुविधाएं हैं, सीसीटीवी या जितने वहाँ वर्कर्स काम कर रहे हैं, इनमेट्स हैं, उनकी सुपरविजन और हैंड होल्डिंग भी हमारा एक कार्यक्षेत्र में आता है। जैसे अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस मास अवेयरनेस प्रोग्राम जिसमें हजारों लोग पार्टिसिपेट करते हैं, वर्ल्ड एल्डर अब्यूज अवेयरनेस डे 15 जून को आता है, कृपया आप सभी इसको नोट कर लीजिए और जितने आपके सर्कल है उसमें ज़रूर इसका ऑब्जर्व होना चाहिए। इसमें हम रैलीज निकालते हैं, रोड शोज करते हैं, सेमिनार्स, वर्कशॉप्स करते हैं, और मंत्रालय एक बहुत अहम भूमिका जो निर्वहन करते हैं, एक ओथ एडमिनिस्टर की जाती है, एक शपथ ग्रहण किया जाता है यंग जनरेशन के थ्रू कि हम अपने वरिष्ठ नागरिकों का जीवन पर्यंत ध्यान रखेंगे, और वो हमारे नॉर्मली मंत्री जी और बाकी वरिष्ठ लोग इसका संचालन करते हैं। स्वच्छता दिवस, योग दिवस और एजिंग विद डिग्निटी कैंपेन्स जैसे मैंने कहा, इसके अलावा एक एक दिन के अलग अलग पॉलिसीज पे हम सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम्स करते हैं। एल्डर्स मंथ होता है अक्टूबर में, पूरा महीना अलग अलग एक्टिविटीज को हम इम्प्लीमेंट करते हैं भारत के ऑलमोस्ट डिस्ट्रिक्ट लेवल तक जाके। इसमें महिलाओं का कार्यक्रम में हम खासकर तवज्जो देते हैं, जो मातृशक्ति कार्यक्रम है सीनियर सिटीजन विमेन के ऊपर। जम्मू कश्मीर से लेकर लेह लद्दाख और दिल्ली, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा और यूथ, नुक्कड़ नाटक, हर प्रकार के जेल्स में एक और जो बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जो अलग अलग जेलों में वरिष्ठ नागरिक 70 साल के, 80 साल के, 90 साल तक के हैं, उनकी किस प्रकार से कंडीशन है उसके ऊपर भी काम हो रहा है स्टेट सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट और होम डिपार्टमेंट के साथ मिलकर। और ये एजिंग विद डिग्निटी कैंपेन अब पैन इंडिया कैंपेन है। दिल्ली में हमारी संस्था अनुग्रह, दिल्ली स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी, दिल्ली हाईकोर्ट के साथ मिलकर भारत का एकमात्र यूनिक सेंटर हम रन करते हैं, स्वाभिमान परिसर। इस प्रकार की जो जागरूकता प्रसार कार्यक्रम है जो उनके दरवाजे तक उनके पास जाए, दिस इज व्हाट आई वाज मेंशनिंग टू। सो इट बेसिकली फोकसेस लीगल एड, काउंसलिंग, ट्रेनिंग एंड होलिस्टिक केयर, इंडियाज फर्स्ट मॉडल वेलफेयर सेंटर फॉर सीनियर सिटीजन। जैसे मैंने आप सबसे कहा, वी हैव टू वर्क कलेक्टिवली टूवर्ड्स अ सोसाइटी विच इज an age-friendly India and age-friendly society, and especially I would say youth has a very important responsibility, not only government but all the stakeholders in this.
1: You had been listening to a talk on senior citizens, care system, vulnerability to abuse, welfare, awareness and strengthening access to justice by Dr. Abha Chaudhary, Founder Secretary and Chairperson, Anugraha RRTC. This talk was part of a webinar organized by the Department of Justice.

FM 102.5 MHz और साथ ही न्यूज़ ऑन AIR के मोबाइल एप्लीकेशन पर। यह आकाशवाणी का उज्जैन केंद्र है। सुबह के 9:30 हो रहे हैं। आइए सुनते हैं अगला कार्यक्रम बॉलीवुड बीट्स।

उज्जैन के सभी कूल बिंदास और म्यूजिकल लवर्स को आज ही कृष्णा पंडित का बहुत बहुत प्यार भरा हेलो, नमस्ते और प्रणाम। आप सुन

रहे हैं आपका अपना चहेता स्टेशन आकाशवाणी उज्जैन FM 102.5 MHz पर और बज चुका है आपके सबसे पसंदीदा शो बॉलीवुड बीट्स का बिगुल। श्रोताओं, आज का यह शो होने वाला है सुपर डुपर हिट, क्योंकि आज मेरे पास आपके लिए एक ऐसा म्यूजिकल कॉकटेल है जिसमें नए ज़माने का स्वैग भी है, थोड़ा सा देसी रोमांस भी है और रूह को सुकून देने वाली सूफी धुनें भी हैं। तो दिल थाम कर बैठिए और अपनी गाड़ी की स्टीरियो को थोड़ा सा बढ़ा लीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज के इस संगीतमय सफ़र को हमारी पहली ट्रेंडी ट्रैक के साथ।

वाह क्या बीट्स है। वैसे सच सच बताइए श्रोताओं, क्या आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है कि किसी से पहली बार मिले और उसकी बातों में ऐसे उलझे कि दिन रात बस उसी का ख्याल आने लगा। आज के दौर का प्यार थोड़ा फास्ट ज़रूर है, लेकिन यह जो उलझन है ना, यह हर दौर में एक जैसी ही मीठी होती है। चलिए इसी ट्रेंडी वाइब को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं ये अगला गाना, जिसे सुनते ही आपके कदम खुद ब खुद थिरकने लगेंगे।

0: दीदी नौकरी लग गई।
1: अरे वाह बधाई हो, तो अब तो ढेर सारी शॉपिंग।
0: हाँ दी नया मोबाइल।
1: अरे रुको शहजादे, सैलरी से पहले खर्चे।
2: इंस्टेंट लोन भी तो मिलता है।
1: पहले बजट बनाना सीखो फिर खर्च करो।
0: पर दीप
1: देखो कमाई का एक हिस्सा हमेशा बचाना चाहिए, लेकिन पार्टी देने से नहीं बचोगे तुम।
0: हाँ दी पार्टी मेरी बजट तुम्हारा।
1: अच्छा
3: आरबीआई कहता है
4: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।
5: जब दिल में कोई खास आ जाता है ना तो फिर गिनती वहीं से शुरू होती है और वहीं पर खत्म। अच्छा जब प्यार में पहला और दूसरा नंबर तय हो ही गया है तो थोड़ा सा देसी अंदाज भी आजमा लिया जाए। अब जो गाना आ रहा है उसमें वो ठेठ यूपी बिहार वाली मिठास है और सलमान खान वाला बिंदास स्वैग भी। जब हीरो अपनी गोरी से इजहार करता है तो सीधे दिल पर वार करता है। चलिए सुनते हैं फिल्म वांटेड का यह जबरदस्त गाना।

FM 102.5 MHz पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का उज्जैन केंद्र और मैं हूं आपकी होस्ट कृष्णा पंडित। श्रोताओं, प्यार में वादे और दावों की अपनी ही एक अलग दुनिया होती है। इंसान जब मोहब्बत में होता है तो पूरी दुनिया जीत लेने का हौसला आ जाता है। कुछ ऐसा ही जज्बा है हमारे अगले गाने में, जहां दिल की हसरत को बड़े ही खास अंदाज में पिरोया गया है। हाल ही में चर्चा में आई फिल्म धुरंधर का यह गाना सीधे आपके दिल में उतर जाएगा, तो आइए सुनते हैं।

वाकई तू अगर मेरी धुन की एक अलग ही सम्मोहन है। चलिए श्रोताओं, अब थोड़ा सा बीट्स की रफ्तार को धीमा करते हैं और अपनी इस म्यूजिकल राइड में घोलते हैं प्यार की पहली धड़कन। जब प्रीत का रंग चढ़ता है तो दिल की हर धड़कन एक संगीत बन जाती है। नया दौर, नया अंदाज, लेकिन एहसास वही पुराना और पाक। फिल्म धड़क 2 से यह खूबसूरत नगमा पेश है, जिसे सुनकर आपको अपनी पहली मोहब्बत की याद तो ज़रूर आएगी।

साथियों, जब बात प्रीत और मोहब्बत की हो रही हो तो सूफियाना रंग कैसे छूट सकता है। श्रोताओं, सच्चा प्यार वही है जिसमें इबादत हो, जिसमें कोई शर्त ना हो। जब विशाल शेखर के संगीत पर राहत फतेह अली खान साहब की आवाज़ गूंजती है तो माहौल अपने आप रूहानी हो जाता है। फिल्म द डर्टी पिक्चर का यह गाना आज भी हर दिल अजीज है। आइए मिलकर सुनते हैं।

दोस्तों, बॉलीवुड बीट्स का शो हो और थोड़ा सा हाई वोल्टेज ड्रामा और जुनून ना हो तो बात अधूरी सी लगती है। 2000 के दशक का वो दौर याद कीजिए जब हिमेश रेशमिया जी के म्यूजिक का जादू हर युवा के सर पर चढ़कर बोलता था। प्यार में सब कुछ निछावर कर देने का यह जो जुनून है, यह इस गाने में साफ झलकता है। आज के हमारे इस शो का आखिरी धमाकेदार गाना फिल्म आशिक बनाया आपने से, आइए सुनते हैं।

क्या एनर्जी थी इस आखिरी गाने में। सचमुच संगीत में वो ताकत है जो पल भर में हमारा मूड बदल देती है। श्रोताओं, अब आपसे विदा लेने का वक्त आ गया है। उम्मीद है बॉलीवुड बीट्स के इस म्यूजिकल सफर ने आपकी सुबह को यादगार बना दिया होगा। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे कुछ नए गानों, नए चटपटे किस्सों और ढेर सारी मस्ती के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, मुस्कुराते रहिए और सुनते रहिए अपना पसंदीदा स्टेशन आकाशवाणी उज्जैन FM 102.5 मेगाहर्ट्ज़ पर। आपकी दोस्त आरजे कृष्णा पंडित को दीजिए इजाजत। नमस्कार।

FM 102.5 MHz और साथ ही न्यूज ऑन AIR के मोबाइल एप्लीकेशन पर। यह आकाशवाणी का उज्जैन केंद्र है। आइए सुनते हैं अगला कार्यक्रम, आपकी फरमाइश।

खुशनुमा हो जाती है। जी हाँ, बज चुके हैं सुबह के 10 और यह समय है आपके अपने चहेते फरमाइशी कार्यक्रम आपकी फरमाइश का। हर सुबह देश के कोने कोने से, हमारे उज्जैन के गली मोहल्ले से आपके भेजे हुए डाकियों के खत जब हमारे पास पहुंचते हैं तो ऐसा लगता है मानो आपने अपने दिल का एक टुकड़ा और ढेर सारा प्यार कागज़ पर उकेर कर भेजा है। तो चलिए उठाते हैं आज की सुबह का पहला फरमाइशी खत। ये खत हमें भेजा है मानसरोवर जयपुर राजस्थान से प्रतीक्षा, आलोक और शिवदेव ने, साथ ही दादू दयाल नगर जयपुर से मानवी, प्रियंका दोषी, हनी, संजना, शुभम, आकांक्षा, मोहित और आकाश शर्मा ने। और ये इनकी पसंद का अगला गाना आप सभी के लिए।

साथियों, अब बढ़ते हैं अगले खत की तरफ, जिसे भेजा है बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशन देवांगन, कौशल्या, हेमलता और डिंपल देवांगन ने। डोंगरगांव जिला रांजनांदगांव छत्तीसगढ़ से राजपाल गजबिये, तन्मय बेबी अनुष्का और राधिका गजबिये। ऊपरकोट बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निगहत परवीन अब्बासी, फरदीन अब्बासी, शहनवाज अब्बासी, सुहान अरजान और अबान अब्बासी ने। आइए उनकी पसंद का ये अगला गाना सुनते हैं।

0: प्रदूषित पानी पीने से हम हो सकते हैं बीमार,
1: फैल सकती है महामारी, खतरे में पड़ सकती है जिंदगी,
0: छीन सकती है खुशियाँ हमारी, इसलिए पानी के स्रोत को रखें हम साफ।
1: फैलाएं नहीं गंदगी उसके आसपास,
0: पानी को रखें हम हमेशा ढककर,
1: और उसको पिएं छानकर उबालकर,
0: पीने के पानी में हम हाथ नहीं डालें,
1: लंबी डंडी वाले बर्तन से पानी निकालें।
2: पानी रे पानी,
3: पानी पानी रे पानी,
0: आओ मिलकर करें प्रयास,
1: शुद्ध पानी हो सबके पास।
4: साथियों, अगला खत हमें भेजा है शीतल रेडियो श्रोता संघ ग्राम बहरामपुर टीमा सी जिला खरगोन मध्य प्रदेश से डॉक्टर त्रिलोक चंद्र वर्मा, श्रीमती भागवत वर्मा, अभिषेक सीमा, डॉक्टर अमित, सचिन, समर राज, आर्यन, बीबी आरोही, इशिका, अंजलि और श्वेता वर्मा ने। बतरंगी भाटपाड़ा छत्तीसगढ़ से नूखीलाल वर्मा, हीरामणि वर्मा, पारसमणि वर्मा और पुष्पेंद्र मणि वर्मा ने। साथ ही गौतम नगर जिला नांदेड़ से प्रभाकर जोंदड़े और आदि जोंदड़े ने, और ये सुनना चाहते हैं ये अगला बहुत ही खूबसूरत सा गीत।

आप सुन रहे हैं FM 102.5 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का उज्जैन केंद्र। कार्यक्रम है आपकी फरमाइश। साथियों, कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं अगला खत, जिसे भेजा है कवर कॉलोनी बड़वा से प्रवीण श्रीमाली, मीना श्रीमाली, आदित्य, अदिति, शिवानी और मीनू श्रीमाली ने। देवखड़ी से हुकुम करमरकर, सुनीता करमरकर, हार्दिक, प्राची और तनु करमरकर। साथ ही महाराजा श्री रेडियो श्रोता संघ जिला खंडवा ग्राम लोहारी से राजकुमार धनजे, राहुल धनजे, विशाल, शीला और गायत्री धनजे।

खुर्दी मानपुर से विजय वैद्य, रानी वैद्य, महिमा और नीतु वैद्य ने। गांव लाहौरडडा जिला बागपत से जगमोहन सिंह प्रजापत, श्रीमती मुनेश देवी, अर्जुन भारती, अंजलि, नितिन जगमोहन, सुधीर नूतन, भुवनेश्वरी और रामानंद कश्यप ने। और जिला फिरोजपुर पंजाब से स्वर्ण सिंह गिल, दलजीत सिंह, राजदीप सिंह, गुरलाल सिंह, अविराज सिंह और गुरनूर सिंह। और ये सुनना चाहते हैं ये अगला बहुत ही खूबसूरत सा गीत।

अगला खत हमें भेजा है मुंबई महाराष्ट्र बोरीवली से। प्रतीक्षा, भूमि, मुकेश, अगस्त्य, ललिता, महक, पहल, सीमा, मनोज और बुलबुल ने। महाराष्ट्र नांदेड़ से अनामिका, रानी, सोनी, प्रियंका, रजनी, राहुल और मिशिका वर्मा ने। अरुणाचल से रंजीत गोगोई, रूपाली गोगोई, सिवान गोगोई और उनका परिवार, साथ ही पीयूष शर्मा, पूजा शर्मा, प्रणम्य शर्मा और प्रार्थना शर्मा। चलिए सुनते हैं उनकी पसंद का ये अगला गाना।

अगले गाने की फरमाइश हमें की है गौरीनगर इंदौर से आनंद कुमार कामले, रेखा कामले, राखी पारस, तपस्या और करिश्मा कामले ने। पुणे से पंकज वाडोदे, आर्या प्रियंका विटी वाडोदे और चंद्रप्रभा वाडोदे ने। रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश और करुणा वर्मा ने। इनकी फरमाइश का ये अगला गाना आप सभी के लिए।

FM 102.5 MHz पर ये आकाशवाणी का उज्जैन केंद्र है। चलिए श्रोताओं, कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं ये अगला खत, जिसे भेजा है आज़ाद नगर लक्सर हरिद्वार से ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही, मेराज जहां, ताल मंजिल लक्कड़ बाजार खंडवा से मोहम्मद रफीक पवार, मोहम्मद साकिब पवार, मोहम्मद हसनैन पवार, साथ ही बाजार चौक ग्राम देवाल से शंकरलाल गंगराड़े, वनीता गंगराड़े, छोटू, पूजा, रोशनी, अजय और वामिका गंगराड़े ने, ग्राम छैगांव देवी जिला खंडवा से अशोक कुमार वागे, वंदा वागे, भूपेंद्र झवर, तनुश्री आरोही और कान्हा वागे ने, पटेल नगर मलोट पंजाब से रमेश कुमार जाजोरिया, गीता रानी, गगनदीप और बेबी आरजू जाजोरिया ने इनकी पसंद का ये अगला गाना आइए सुनते हैं।

इस खूबसूरत गीत के बाद अब बढ़ते हैं अगले खत की तरफ। यह अगला खत हमें भेजा है राजावत कॉम्प्लेक्स नई सड़क एमपी शाजापुर से एमएम राजावत ने। राज, मधु, राशि, रक्षित, चितरंजन, कमलेश, उमेश, सरोज, आरती, रेखा, रितिका, रिचा, स्वीटी, सागर, रिया, रीत, ऋषभ राजावत एवं समस्त राजावत परिवार ने। साथ ही दौलतबाग मुरादाबाद से जाफर हुसैन, नहिमा बेगम, कासिम अली, नदीम अली और जुनेद अब्बासी ने। आदर्श नगर मलोट से राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश मेंडी, सौरभ और शाइना शर्मा ने। इनके पसंद का ये अगला गाना आइए सुनते हैं।

साथियों, अब बढ़ते हैं अगले खत की तरफ, जिसे भेजा है बीड महाराष्ट्र से प्रकाश पगारिया, पराग पगारिया, प्रदीप और केशव पटेल ने, रामनिवास अग्रवाल ने, कनेरा मोहल्ला पटियाला से बत्ता परिवार, मुकेश बत्ता, नीलम बत्ता, नितिन, पलक, करण, गीतू, निहारिका, हार्दिक और वंश बत्ता ने। इनकी फरमाइश का ये अगला गाना आप सभी के लिए।

साथियों, क्या आपके दिल में भी छुपकर बैठी है कोई बात, कोई पुराने गाने से जुड़ी खास याद, या किसी अपने को भेजना चाहते हैं कोई सुरीला पैगाम? तो देर किस बात की, उठाइए कलम कागज पर, उतारिए अपने दिल की बात और भेज दीजिए अपने पसंदीदा कार्यक्रम आपकी फरमाइश के नाम। आपका खत और आपकी पसंद का नगमा इंतजार कर रहा है रेडियो का यह सुरीला मंच। हमारा पता है आपकी फरमाइश द्वारा केंद्र निर्देशक आकाशवाणी उज्जैन, विद्यापति नगर, नानाखेड़ा, उज्जैन। पिन कोड है 456010। सुनते रहिए आकाशवाणी, दीजिए अपनी आरजे कृष्णा पंडित को इजाजत। नमस्कार।

FM 102.5 MHz पर यह आकाशवाणी का उज्जैन केंद्र है। सुबह के 11 बजने को है अगला कार्यक्रम। आप सुनेंगे विविध भारती मुंबई से।

विविधा के सभी सुनने वालों को जयंत पात्रीकर का नमस्कार। मित्रों, विविधा के इस अंक में हम लेकर आए हैं सृजन भारती के अंतर्गत 28 जुलाई 2026 को विविध भारती में आयोजित विशेष कार्यक्रम के संपादित अंश, जिसका शीर्षक था भारतीय फिल्म संगीत में वंदे मातरम। विशेषज्ञ थे राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के मूर्धन्य अध्येता एवं लेखक मिलिंद प्रभाकर सबनीस। पेशे से चित्रकारिता के शिक्षक रह चुके मिलिंद जी को प्रेरणा मिली वंदे मातरम के बारे में लिखी पुस्तक से, जिसके लेखक थे अमरेंद्र गाड़गिल। अप्रैल 1994 में वंदे मातरम के रचयिता बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की निर्वाण शती के अवसर पर अपनी युवावस्था में

अरविंद जी ने वंदे मातरम पर एक आयोजन में विचार व्यक्त किए और तब से आरंभ हुई एक शोध यात्रा जो आज तक अनवरत जारी है। भारतीय फिल्म संगीत में वंदे मातरम इस शोध यात्रा का एक हिस्सा भर है। आइए सुनते हैं सृजन भारती के अंतर्गत 28 जुलाई 2026 को विविध भारती में आयोजित एक विशेष ऑडियो विजुअल शो भारतीय फिल्म संगीत में वंदे मातरम, इसके संपादित

परिचय है। मैं करता रहा हूँ पिछले 30-35 साल से वंदे मातरम पर जो कुछ अभ्यास संशोधन में कर रहा हूँ वो सब समग्र वंदे मातरम का एनसाइक्लोपीडिया जैसा है, उसमें मैंने लिखा है। लेकिन वंदे मातरम ये जो मंत्र है, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय बहुत बड़े लेखक थे, उपन्यासकार थे, काव्य बहुत उन्होंने कम किए, लेकिन भारत के साहित्य में उपन्यास लिखने वाले जो पहले 3-4 लेखक है, उपन्यासकार है, उसमें बंकिम चंद्र जी है। वंदे मातरम का जो संगीत प्रवास है वो बहुत बहुत ही लंबा है, रविंद्रनाथ से लेकर आज के AR रहमान और अजय अतुल तक अभी भी वो चालू है। और कुल मिलाकर मेरे ही पास 240 से भी ज्यादा वंदे मातरम की रिकॉर्डिंग्स है। भारतीय फिल्मों में वंदे मातरम का जो इस्तेमाल किया है, वंदे मातरम जिस स्वरूप में पिछले 100 बरस में आया है वो प्रस्तुत करने मैं जा रहा हूँ। बंकिम चंद्र एक विख्यात उपन्यासकार थे। 1857 के प्रथम स्वाधीनता संग्राम के बाद भारत में जनाकोश की एक लहर फैल गई। विशेषकर महाराष्ट्र और बंगाल में सामाजिक परिवर्तन तीव्र गति से हो रहे थे। उस समय के साहित्यकारों और कलाकारों ने भी इस जागरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बंकिम चंद्र जी के जो साहित्यिक गुरु थे उनका नाम था ईश्वर चंद्र गुप्त। उन्होंने 1850 के आसपास एक कविता की थी, जननी भारत भूमि आव केन थाक तुमि। आधुनिक साहित्य में, पूरे भारतीय साहित्य में जननी भारत भूमि यानी मातृभूमि ये शब्द का इस्तेमाल करने वाले आधुनिक साहित्य के वो पहले साहित्यिक थे, ईश्वर चंद्र गुप्त। और उन्होंने बंकिम चंद्र जी को प्रोत्साहित किया उनके कॉलेज आयुष्य में। बाद में उस कविता के बाद शिशिर कुमार घोष ने 1870 के आसपास भारत माता नाम की एक बहुत अच्छी कविता लिखी। उस पर किरण चंद्र बंदोपाध्याय द्वारा 1873 में एक नाटक रचा गया और वो नाटक बहुत ही प्रसिद्ध हुआ। बंकिम चंद्र अपने घर नैहाटी कांटा पड़ा, कलकत्ता से 30-35 किलोमीटर के आसपास ये छोटा गांव है। अश्विन शुद्ध अष्टमी के, दुर्गाष्टमी के रात वो मूर्ति के सामने बैठे थे और रात के समय उन्हें उस मूर्ति में उन्हें भारत माता प्रतीत होने लगी और उन्होंने उठकर अपने कमरे में जाकर एक लेख लिखा। उसका नाम था अमार दुर्गोत्सव। अश्विन शुद्ध अष्टमी के रात और नवमी के प्रातः काल में उन्होंने लेख लिखा। वो अमार दुर्गोत्सव उनका मानस पुत्र साहित्य का कमलाकांत, वो नदी के किनारे पर बैठा है, उसमें उन्हें भारत माता दिखाई देती है और अदृश्य हो जाती है तो वो व्याकुल होता है और वो माता का जय जयकार करता है, माता को बुलाता है, ऐसा उसमें आया है। ये लेख वंदे मातरम का पहला गद्य स्वरूप है, बहुत महत्वपूर्ण है। और उसके बाद केवल एक महीने के बाद कार्तिक शुद्ध नवमी के दिन 7 नवंबर 1875 के दिन बंकिम चंद्र ने एक ही समय पूरा वंदे मातरम 25 पंक्तियों का लिखकर पूर्ण किया। वो वंदे मातरम का पहला जो उपयोग है वो आनंदमठ कादंबरी में हुआ। आनंदमठ कादंबरी में वंदे मातरम का इस्तेमाल एक थीम सॉन्ग जैसे किया। कथानक में बार बार वंदे मातरम के शब्द आते हैं और उसके बाद आनंदमठ नाम का नाटक रंगमंच पर आया और उसमें पहली बार वंदे मातरम किसी ने, भवानंद के काम करने वाले पात्र ने पहली बार वंदे मातरम का गायन किया। वंदे मातरम लोगों तक पहुंचने लगा। लेकिन 1894 में बंकिम चंद्र जी का देहांत हुआ, तब तक वंदे मातरम इतना प्रसिद्ध नहीं हुआ था। 1905 में बंगाल के पार्टीशन के समय वंदे मातरम ये शब्द हर एक भारतीयों के मन में जा चुके। हर एक संग्राम को एक रणगर्जना की आवश्यकता है ही।

वर्णगल जना हमारे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को वंदे मातरम ये शब्द के रूप में मिली और वो दिन था 7 अगस्त 1905। बालजी पेंढारकर और उनके भाई बाबूराव पेंढारकर ने वंदे मातरम आश्रम नाम की एक मुखपट बनाया था। उनकी फिल्म कंपनी का नाम भी वंदे मातरम फिल्म कंपनी था। 1924 में उन्होंने ये फिल्म निकाली, लेकिन सेंसर ने इतने कट्स का सुझाव किया कि वो फिल्म प्रदर्शित ही नहीं कर सके। उसके बाद मुखपटों में वंदे मातरम ये शब्द स्क्रीन पर दिखाई दिए। वंदे मातरम 1935 में पहली बार फिल्म में गाया गया और वो फिल्म का नाम ही था वंदे मातरम। बंगाली फिल्म थी। सुकृति सेन इन संगीतकार ने इसकी संगीत रचना की है।

वंदे मातरम ये शब्द भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में सबसे ऊंचा स्थान पर गए। वंदे मातरम ये शब्द बोलकर स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेना बहुत महत्वपूर्ण समझने जाने लगा। कलाकार, संगीतकार, चित्रकार, इन लोगों को भी ऐसे लगा कि हम भी इस स्वतंत्रता संग्राम में अपने कला द्वारा सहभाग लेंगे। तो संगीतकार और गायक लोगों ने वंदे मातरम का गायन किया। मराठी फिल्म नीलकंठ मास्टर 2015 में ये फिल्म रिलीज हुई। गजेंद्र अहिरे नाम के बहुत जाने माने दिग्दर्शक है, उन्होंने दिग्दर्शित की थी। और संगीतकार है अजय अतुल। इंग्रजी में जैसे हम थीम सॉन्ग कहते हैं वैसे ही इस फिल्म में उसका उपयोग किया है।

1909 साल में हुतात्मा अनंत कानेरे ने अपना बलिदान दिया, वंदे मातरम बोलकर वो फांसी पर चढ़े। यह फिल्म उनके चरित्र पर, उनके बलिदान पर आधारित थी। उनकी क्रांतिकारी यात्रा का चित्रण करते हुए वंदे मातरम का प्रयोग क्रांतिकारियों को प्रेरणा गीत के रूप में इस फिल्म में किया है। यह गीत फिल्म में अपने संपूर्ण रूप में नहीं बल्कि विभिन्न प्रसंगों में खंडों के रूप में सुनाई दिया है। केवल यही फिल्म ऐसी है कि इसमें पूरा वंदे मातरम का इस्तेमाल किया है। संगीतकार प्रदीप वैद्य ने केवल यही एक फिल्म संगीतबद्ध की है। गायक जयदीप दिग्विजय वैद्य। हम सुनेंगे वंदे मातरम हुतात्मा अनंत कानेरे 1909 फिल्म से।

वंदे मातरम ये शब्द हर एक भारतीय व्यक्ति के लिए गौरव की बात है, अभिमान की बात है। तो वंदे मातरम का उपयोग केवल मराठी या हिंदी फिल्म में किया ऐसे नहीं है, सभी भारतीय भाषाओं में उसका प्रयोग किया है। अब हम सुनेंगे तमिल फिल्म भारती, इसमें वंदे मातरम का इस्तेमाल किया है। ये वंदे मातरम तमिल रूपांतर है। प्रसिद्ध कवि सुब्रमण्यम भारती, तमिल भाषा के बहुत बड़े राष्ट्र कवि, उन्होंने वंदे मातरम ये शब्द सुनकर उन्होंने एक गीत तमिल भाषा में किया। ये जो फिल्म है उसे राष्ट्रपति अवार्ड मिला था सन 2000 में। इस फिल्म की विशेषता यह है कि इसमें सुब्रमण्यम भारती का कैरेक्टर जो किया है वो मराठी अभिनेता सयाजी शिंदे ने किया है और उसके लिए

उन्हें राष्ट्रपति पुरस्कार भी मिला है। और इस फिल्म का संगीत विख्यात संगीतकार इलाय राजा ने किया है। इलाय राजा ने केवल दो फिल्मों के लिए वंदे मातरम संगीतबद्ध किया, इसमें एक हिंदी है और एक ओरिजिनल वंदे मातरम है, और दूसरा वंदे मातरम ये तमिल है। गायक और गायिका मधु बालकृष्णम।

1996 में एक फिल्म आई थी फातिमा मीर के उपन्यास द अप्रेंटिसशिप ऑफ अ महात्मा, इस उपन्यास पर आधारित ये फिल्म थी। महात्मा गांधी के युवावस्था के उन 21 वर्षों का चित्रण इस फिल्म में किया है। 8 फिल्म के जाने माने निर्देशक श्याम बेनेगल ने इसका निर्देशन किया था। रजत कपूर ने युवा गांधी का पात्र निभाया था। इस फिल्म का नाम था मेकिंग ऑफ द महात्मा और हिंदी में नाम था गांधी से महात्मा तक। इस फिल्म में गांधी जी एक सत्याग्रह के दौरान जन प्रेरणा के लिए वंदे मातरम गीत केवल 2 पंक्तियों का प्रयोग इसमें उन्होंने किया है। ये गाना गाया है प्रसिद्ध पॉप गायिका उषा उत्तप ने और संगीत दिया है वनराज भाटिया ने।

अगला फिल्म है सबुज द्वीप राजा। चिल्ड्रंस फिल्म सोसाइटी के तरफ से ये फिल्म का निर्माण किया था बच्चों के लिए। दिग्दर्शक थे तपन सिन्हा और संगीतकार थे तपन सिन्हा और आलोकनाथ डे। फिल्म में वंदे मातरम दो भागों में प्रस्तुत किया था। पहला भाग फिल्म के आरंभ में आता है जहां क्रांतिकारी तालुकदार के अतीत का चित्रण किया गया है, जबकि दूसरा भाग फिल्म के समापन पर सुनाई देता है। इसकी धुन में बंगाल की रविंद्र संगीत की परंपरा का स्पष्ट प्रभाव अनुभव होता है, जो इस प्रस्तुति का एक विशिष्ट सांगीतिक पहचान होती है।

1971 में और एक बंगाली फिल्म बनी, उसका नाम था महाविप्रभो अरविंद, श्री अरविंद, योगी अरविंद के जीवन पर आधारित यह फिल्म थी। इसमें वंदे मातरम गीत तीन अलग अलग प्रसंगों में सुनाई देता है। इसके संगीतकार है हेमंत कुमार मुखर्जी। हेमंत कुमार मुखर्जी बहुत प्रतिभावान संगीतकार थे। उन्होंने दो अलग अलग चित्रपटों के लिए संगीतबद्ध वंदे मातरम किया और वो दोनों ही वंदे मातरम अलग अलग ही है। ये जो धुन है वो रविन्द्रनाथ ठाकुर की मूल धुन के आधार पर उन्होंने बनाई है। पहली बार यह गीत फिल्म के शीर्षक यानी टाइटल सॉन्ग के स्वरूप में आती है। हेमंत कुमार का स्पष्ट एवं शुद्ध उच्चारण विशेष रूप से ध्यान आकर्षित करता है। हम पहले सुनेंगे वंदे मातरम टाइटल सॉन्ग महाविप्रभो अरविंद से।

इसी फिल्म में तीसरा जो वंदे मातरम है वो और भी थोड़ा अलग है। अंत में जब योगी अरविंद सांसारिक जीवन का त्याग कर ईश्वर प्राप्ति के लिए आध्यात्मिक मार्ग का वर्णन करते हैं, तब देवी की दर्शन के प्रसंग में वंदे मातरम एक बार पुनः सुनाई देता है। इस प्रकार गीत का अंतिम प्रयोग राष्ट्रभक्ति और आध्यात्मिक चेतना के अद्भुत संगम का प्रतीक बनकर उभरता है।

इसी फिल्म में टाइटल सॉन्ग के रूप में वंदे मातरम प्रस्तुत किया था। वैसे ही और एक हिंदी फिल्म में केवल टाइटल सॉन्ग के लिए वंदे मातरम का प्रयोग किया था, इसीलिए उसकी रिकॉर्ड बाजार में नहीं आई। वो फिल्म थी विडर, दिग्दर्शक थे राम मुखर्जी और प्रख्यात संगीतकार नौशाद ने इस गीत को संगीतबद्ध किया था। इस फिल्म की शुरुआत ही इसी टाइटल सॉन्ग से होती है। वंदे मातरम मार्चिंग सॉन्ग जैसे केवल दो संगीतकारों ने ही बनाया है, उसमें से एक ये है और दूसरे तिमिर बरन भट्टाचार्य है। हम सुनेंगे फिल्म विडर वैजयंती माला और दिलीप कुमार समूह स्वर में।

स्वतंत्रता के बाद जो पहली फिल्म आई जिसमें वंदे मातरम का उपयोग किया था वो थी आंदोलन। निर्देशक थे फणी मुजुमदार और संगीतकार थे विख्यात बांसुरी वादक पन्नालाल घोष। वंदे मातरम की संगीत रचना 200 से ज़्यादा है, उसमें जो चार पांच संगीत रचना सबसे बढ़िया है उसमें से ये एक है। और फिल्म की एक विशेष उपलब्धि यह है कि इस फिल्म में रविन्द्रनाथ ठाकुर द्वारा गाया गया जन गण मन चित्रित किया था वो देखना मिलता है। इसके अतिरिक्त 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के वायु दृश्यों को प्रस्तुत करने वाली यह स्वतंत्रता के बाद की पहली फिल्म थी। इस गीत के संगीत प्रख्यात बांसुरी वादक पन्नालाल घोष ने किया था। इसमें सुधा मल्होत्रा, पारुल घोष और मन्नाडे ने स्वर दिया था।

1951 में आनंद मठ फिल्म, लेकिन वो थी बंगाली फिल्म। हिंदी फिल्म किससे पहले ये फिल्म आई थी, उसमें दिग्दर्शक थे सतीश दास गुप्ता और संगीत था सुबर दास गुप्ता, बंगाल के प्रख्यात संगीतकार थे। इस फिल्म में वंदे मातरम फिर एक बार अलग ढंग से प्रस्तुत किया है। बंगाल की एक लोक संगीत प्रसिद्ध है बाउल संगीत, इसमें वंदे मातरम का इस्तेमाल बाउल संगीत जैसा किया है, यानी भजन जैसा किया है। बहुत ही अलग सा ये संगीत है। हिंदी जो आनंद मठ फिल्म है उसमें रण गीत जैसा वंदे मातरम का इस्तेमाल किया है, लेकिन इसमें पूजा गीत जैसा, प्रार्थना गीत जैसा वंदे मातरम का उपयोग किया है। हम सुनेंगे बंगाली फिल्म आनंद मठ, संगीत सुबरदास गुप्ता और स्वर है द्विजेन मुखोपाध्याय और अरुंधति मुखर्जी।

लेकिन ऐसे कुछ फिल्म जगत के जाने माने संगीतकार हैं जिन्होंने वंदे मातरम की धुन बनाई है, लेकिन उसका इस्तेमाल फिल्मों में नहीं किया गया। पहली है संगीतकार और गायक पंकज मौलिक। इनकी धुन पंकज मौलिक न्यू थिएटर के प्रमुख संगीतकारों से एक थे। वे रविंद्र संगीत के विख्यात गायक भी थे और उनके द्वारा प्रस्तुत वंदे मातरम की धुन, वंदे मातरम की रविंद्रनाथ की जो धुन है उससे अलग है, ये महत्वपूर्ण बात है। उन्होंने अपनी विशिष्ट शैली के माध्यम से इस गीत को अलग सांगीतिक पहचान प्रदान की है। हम सुनेंगे पंकज मौलिक द्वारा गाया हुआ वंदे मातरम।

मास्टर कृष्णराव पुरंबीकर ये प्रख्यात गायक और संगीतकार थे, भास्कर बुआ बखरे के शिष्य और बाल गंधर्व के गुरु बंधु थे। उन्होंने वंदे मातरम जो किया वो वंदे मातरम राष्ट्रगीत बनाने के लिए पंडित नेहरू के साथ उन्होंने सांगीतिक संघर्ष किया, उसकी एक अलग ही कहानी है। आज जो हम वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत के रूप में देखते हैं उसका कारण मास्टर कृष्णराव पुरंबीकर ने घटना समिति के साथ किया गया सांगीतिक संघर्ष ये महत्वपूर्ण कारण है। मास्टर कृष्णराव ने झिंझोटी राग में वंदे मातरम का बंधन किया और अन्य कुछ रागों में भी उन्होंने वंदे मातरम किया था। हम सुनेंगे मास्टर कृष्णराव द्वारा झिंझोटी राग में वंदे मातरम।

तीसरे संगीतकार है वसंत देसाई। वंदे मातरम को बहुत सारे संगीतकारों ने संगीतबद्ध किया, लेकिन वंदे मातरम ये राष्ट्रगीत है और राष्ट्रगीत की तरह से उन्हें संगीतबद्ध किया जाना चाहिए, ये विचार बहुत कम संगीतकार ने किया है। उसमें से एक है वसंत देसाई। धुन एक ही है, लेकिन उसके लिए जो वाद्य का इस्तेमाल किया है वो अलग अलग है। हम सुनेंगे जो रिकॉर्ड, उसमें उन्होंने ढोल, ताशा, तुतारी, बांसुरी, ये भारतीय वाद्यों का उपयोग किया है, शंख का भी उपयोग किया है।

चौथे संगीतकार है ज्ञान दत्त और इसका गायन किया है गीता दत्त और जीएम दुरानी ने। लेकिन ये वंदे मातरम थोड़ा अलग ही है। इस रिकॉर्ड में अपेक्षापूर्ण तेज गति से प्रस्तुत किया है। संक्षिप्त होने पर भी इसकी प्रस्तुति अत्यंत प्रभावशाली है। हम सुनेंगे गीता दत्त, जीएम दुरानी, संगीतकार ज्ञान दत्त।

ये संगीत रचना है तिमिर बरन भट्टाचार्य। भारतीय शास्त्रीय संगीत के इतिहास में सरोद वाद्य पर शास्त्रीय संगीत बजाने वाले वे पहले सरोद वादक थे। 1938 के आसपास सुभाष चंद्र बोस इसके अध्यक्ष थे, तब तिमिर बरन भट्टाचार्य ने वंदे मातरम उनके लिए तैयार किया था और पहला भाषण सिंगापुर से किया आजाद हिंद सेना का नेतृत्व लेने के बाद। तब भाषण पूरा होने के समय यही रिकॉर्ड उन्होंने बजाए। सुभाष चंद्र बोस की अत्यंत प्रिय ये रिकॉर्डिंग थी।

यार रहमान ने वंदे मातरम किसी फिल्म के लिए नहीं किया है। स्वतंत्रता को जब 50 बरस पूरे हुए तो 1997 में उन्होंने वंदे मातरम का एल्बम बनाया था। उसी बरस में 1997 में रंजीत बारोट ये संगीतकार ने वंदे मातरम 2 नाम की पहले कैसेट बाद में सीडी बनाई। उसमें साजिद खान ने राजस्थानी लोक संगीत जैसे वंदे मातरम गाया था। कौशिकी चक्रवर्ती आज की प्रख्यात गायिका, उन्होंने वंदे मातरम का गायन किया था। और पॉप म्यूजिक शैली में प्रसिद्ध शास्त्रीय गायिका शुभा मोदगल ने वंदे मातरम का गायन किया था। हेमंत कुमार मुखर्जी ने 3 फिल्म के लिए वंदे मातरम गाया और 2 फिल्म के लिए संगीतबद्ध किया, लेकिन वो सब वंदे मातरम एक से दूसरे अलग है। इसी फिल्म में 2 बार वंदे मातरम प्रस्तुत किया है। हिंदी आनंद मठ में 1952 में यह फिल्म आई। इस फिल्म का बहुत सारे वैशिष्ट्य है कि जिसमें दिग्दर्शक है हेमेंद्र गुप्ता। हेमेंद्र गुप्ता जी ने स्वातंत्र संग्राम में सहभाग लिया था, इसलिए इस फिल्म का दिग्दर्शन कर अलग ही दिखाई देता है। राष्ट्रभक्ति की भावना अन्य फिल्मों से ज़्यादा इसमें दिखाई देती है। पहला जो गायन है वो खुद हेमंत कुमार ने किया है। गीत का आरंभ हेमंत कुमार के करुण स्वर और आत्मस्वरण से होता है। हेमंत कुमार का भावदर्शन बहुत ही सुंदर है।

वंदे मातरम को अब तक अनेक संगीतकारों ने विभिन्न धुनों में स्वरबद्ध किया है और लगभग सभी धुनें अपने अपने ढंग से उत्कृष्ट है, किंतु फिल्मी रूपांतरण में इस प्रस्तुति को जो लोकप्रियता और जन स्वीकृति मिली वह अद्वितीय है। 2003 में बीबीसी वर्ल्ड सर्विस द्वारा 165 देशों के श्रोताओं के बीच कराए गए सर्वेक्षण में लता मंगेशकर द्वारा गाए गए इसी वंदे मातरम को विश्व के सार्वकालीन 10 सर्वश्रेष्ठ गीतों में दूसरा स्थान प्राप्त हुआ था। लता मंगेशकर का गायन एक साथ वीरता और करुणा दोनों भावों से परिपूर्ण है। अनेक स्वर में जहां एक और ओज और आक्रोश का संचार है, वही दूसरी ओर मातृभूमि के प्रति समर्पण और संवेदना की गहरी अनुभूति भी है। यह गीत अभिनेत्री गीता बाली पर फिल्माया गया है। यदि लता मंगेशकर द्वारा वंदे मातरम शब्द पर ली गई प्रत्येक तान को ध्यानपूर्वक सुना जाए तो हर बार उनके एक नया स्वर विन्यास और सूक्ष्म वैविध्य अनुभव होता है। वंदे मातरम का यह रिकॉर्डिंग आज सबसे लोकप्रिय रिकॉर्डिंग माना जाता है।

कंठ संगीत में यानी वोकल गायन में तीन गायकों को भारत रत्न मिला, उनमें से पहली थी डॉक्टर एम एस सुब्बलक्ष्मी, दूसरी थी लता मंगेशकर और तीसरे थे पंडित भीमसेन जोशी। तीनों भारत रत्न ने वंदे मातरम गाया है अलग अलग तरह से। लता मंगेशकर जी ने गाया है अनंत मठ फिल्म के लिए, एम एस सुब्बलक्ष्मी ने गाया है दो वंदे मातरम की उनकी रिकॉर्ड है, एक गाई है दिलीप कुमार रॉय के साथ दक्षिणी और उत्तर हिंदुस्तानी।

0: गलबंदी के रूप में वंदे मातरम का गायन, और दूसरा वंदे मातरम उन्होंने गाया है सुब्रमण्यम भारती द्वारा तमिल वंदे मातरम। और भीमसेन जोशी जी ने 1997 में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को 50 वर्ष जब पूर्ण हुए तो 14 अगस्त को रात 12 बजे संसद के विशेष अधिवेशन में भीमसेन जोशी जी ने वंदे मातरम गाया। तीनों भारत रत्न ने वंदे मातरम गाया है, ये एक अलग ही बात है।
1: वंदे मातरम।
2: सृजन भारती के अंतर्गत 28 जुलाई 2026 को विविध भारती में आयोजित विशेष ऑडियो विजुअल शो भारतीय फिल्म संगीत में वंदे मातरम, इस कार्यक्रम के ये थे संपादित अंश। विशेषज्ञ थे राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के मूर्धन्य अध्येता एवं लेखक मिलिंद प्रभाकर सबनीस। इस विशेष कार्यक्रम का संयोजन किया था शिल्पा मिलिंद सबनीस ने। संपादन एवं प्रस्तुति अनुश्री पाठक की। इसी के साथ आज का विविधा कार्यक्रम अब संपन्न होता है।
3: ये थी विविध भारती के विविध रंगी कार्यक्रमों की विविधा।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। हर घर तिरंगा अभियान आज से शुरू होकर 17 अगस्त तक चलेगा। अभियान का उद्देश्य लोगों को अपने घरों पर तिरंगा फहराने और देशभक्ति तथा राष्ट्रीय एकता से जुड़े कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना है। ये अब एक बड़े जनभागीदारी अभियान का रूप ले चुका है। इस वर्ष देशभर में वंदे मातरम का सामूहिक गायन भी होगा। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि मोदी सरकार द्वारा औपनिवेशिक काल के कानूनों की जगह लाए गए 3 नए आपराधिक कानून प्रौद्योगिकी, समयबद्धता और विश्वास के 3 महत्वपूर्ण स्तंभों पर आधारित हैं। गृहमंत्री ने गोरीमेडू स्थित पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय के मैदान में पुदुचेरी पुलिस को राष्ट्रपति का पुलिस ध्वज प्रदान करने के समारोह में ये बात कही।
1: नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने अंग्रेजों के बनाई हुई दंड संहिता को बदलकर 3 भारतीय न्याय संहिताओं को लागू किया है। ये न्याय संहिताओं की सोच दंड आधारित नहीं है। ये न्याय संहिताओं की सोच नागरिकों को न्याय दिलाने के लिए केंद्रित, तकनीक सक्षम और समयबद्ध बनाने की है। ये तीनों न्याय संहिताएं टेक्नोलॉजी, टाइमलाइन और ट्रस्ट, ये 3 पिलर पर खड़ी की गई है।
0: श्री अमित शाह आज पुदुचेरी के मुरुगा थिएटर सिग्नल से हर घर तिरंगा यात्रा को हरी झंडी दिखाएंगे। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने राज्य और देश के विकास में प्रत्येक नागरिक की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए 15 अगस्त से राष्ट्र निर्माण में भागीदार कार्यक्रम में शामिल होने का आह्वान किया है। श्री नायडू ने कार्यक्रम के अंतर्गत लोगों से 13 से 15 अगस्त तक अपने घरों पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने और मेरा राष्ट्र राष्ट्र सर्वोपरि की भावना को बढ़ावा देने का आह्वान किया। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मध्य प्रदेश में 124 पात्र कैदियों की सजा में कमी की जाएगी। इनमें से 118 आजीवन कारावास की सजा काट रहे कैदियों को समय से पहले रिहा किया जाएगा। 6 अन्य पात्र कैदियों को विशेष छूट दी जाएगी।

0: सरकार ने पंजाब की मंडियों में पड़े 18 लाख मीट्रिक टन पुराने अनाज के भंडार को 20 सितंबर तक उठाने पर सहमति व्यक्त की है, ताकि राज्य में धान की बंपर फसल की उम्मीद के चलते भंडारण की जगह खाली हो सके। पंजाब से इस वर्ष केंद्रीय भंडार में 170 लाख मीट्रिक टन अच्छी गुणवत्ता वाले चावल की आपूर्ति होने की उम्मीद है। सरकार ने 4 उच्च न्यायालयों में 30 नए न्यायाधीशों की नियुक्ति की अधिसूचना जारी कर दी है। इनमें मद्रास, कलकत्ता, मध्य प्रदेश और कर्नाटक उच्च न्यायालय शामिल हैं। सबसे ज्यादा 15 न्यायाधीशों की नियुक्ति मद्रास उच्च न्यायालय में हुई है। झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर जारी गतिरोध अब समाधान की ओर है। राज्य सरकार आज आंदोलनकारी छात्रों के साथ अगले दौर की वार्ता करेगी। आज विश्व जनजातीय दिवस के अवसर पर नागालैंड के राज्यपाल नंद किशोर यादव ने प्रकृति और समृद्ध संस्कृति तथा परंपराओं और विरासत का संरक्षण करने वाले सभी जनजातीय समुदाय के लोगों के प्रति सम्मान व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो ने सोशल मीडिया पोस्ट में स्थानीय ज्ञान, परंपराओं और सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण का आह्वान किया। इस बीच नागालैंड जनजातीय मंच आज दीमापुर के टाउन हॉल में विश्व जनजातीय दिवस का आयोजन कर रहा है। पूर्वोत्तर क्षेत्र में नागालैंड पहली बार इस दिवस की मेजबानी कर रहा है। भारत की अश्मिता चालिहा ने कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट में महिला सिंगल्स का खिताब जीतकर अपना पहला बीडब्ल्यूएफ विश्व टूर खिताब हासिल किया है। फाइनल में अश्मिता ने चीन की हान क्यानशी को हराया। चीन के हेफेई में 9वीं वर्ल्ड यूथ ट्रांसनेशनल चैंपियनशिप में भारत के साग्निक रॉय और सायंतन कुशारी की जोड़ी ने स्वर्ण पदक जीता है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की।

0: आ रहे हैं विविध भारती पर
1: सुंदरा
0: 12 अगस्त दिन में और रात में 11 बजे
2: विविध भारती का ये कार्यक्रम है यादों की महफिल।

0: मुकेश की आवाज में सबक फिल्म का गीत आप सुन रहे थे।
1: वो कॉमिक क्रिएटर है।
2: अगर अमेरिका भी देखें तो सुपरमैन की पहली किताब आई थी 1938 में, पहली फिल्म मेरे ख्याल से 70 के दशक के अंत में आई है।
1: और विविध भारती पर आ रहे हैं अपनी जिंदगी की कहानी सुनाने।
2: उन्होंने लोला कुट्टी करके एक कैरेक्टर क्रिएट किया, तो बहुत गाली दी उन्होंने। प्रोड्यूसर बनना चाहता है, डायरेक्टर बनना चाहता है, स्पॉट बॉय बनना चाहता है, फिल्म मेकर क्या होता है?
1: कॉमिक क्रिएटर और डायरेक्टर आलोक शर्मा होंगे आज के मेहमान।
2: जितने भी फिल्मी कलाकार थे उनके सबके इंटरव्यूज मैं करता था और उसके बाद उसमें आरजेस के वॉइसेस चिपका दी जाती।
1: 12 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

राजेश किशोर की आवाज थी। सावन कुमार की रचना आपने सुनी। बिपिन सचदेव और लता मंगेशकर के युगल स्वरों में ये गीत था सनम बेवफा फिल्म से।

श्रोताओ, आज यादों की महफिल कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं लेखक, निर्माता और निर्देशक सावन कुमार की फिल्मों के नगमे।

0: उषा खन्ना की बनाई तर्ज पर इसे गाया मोहम्मद रफी ने। हवस फिल्म का गीत आपने सुना, सावन कुमार का लिखा।
1: एक अभिनेत्री और उसके बनने की दास्तान।
2: चार औरतों की कहानी थी वो, और उन्होंने वहाँ से मुझे कास्ट किया। हमें बहुत मजा आया और हम लोग शाम को बैठ के म्यूजिक, क्योंकि हम लोग गाँव में शूट कर रहे थे जहाँ बिजली नहीं,
1: और बातें जिंदगी की जद्दोजहद की।
2: और आप इतने बड़े बड़े हॉलीवुड स्टार्स और इंटरनेशनल स्टार्स से बिल्कुल सेम प्लेटफॉर्म पे मिलते हो, तभी भी स्ट्रगल पीरियड था, -10। मेरे पास एक ही कोट था, साड़ी पहन के गई थी मेरी मम्मी की, बहुत अच्छी, लेकिन -10।
1: तनिष्ठा चटर्जी, सेल्यूलॉइड के सितारे, 11 अगस्त शाम 4 बजे, सिर्फ विविध भारती पर।

0: साजन की सहेली इस फिल्म का दो गाना था, मोहम्मद रफी सुलक्षणा पंडित की आवाजों में। मजरू सुल्तानपुरी का लिखा ये गीत आपने सुना, संगीत था उषा खन्ना का।
1: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी,
2: देखो जी बहार आई बाहों में खिली गलियां,
1: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत भूले बिसरे गीत,
3: मैं तेरा राग तू मेरी रागनी,
1: गुजरे दौर की आवाजें धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज आपकी सुबह को बनाए खास, भूले बिसरे गीत
2: तुम्हारी याद सताते हैं
1: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

आप आए बाहर आई फिल्म का गीत था, मोहम्मद रफी लता मंगेशकर का गाया, आनंद बख्शी के बोलों को सुरों में ढाला लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। यही है श्रोताओं आज के कार्यक्रम यादों की महफिल की आखिरी पेशकश।

विविध भारती से लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम सुरीला सफर। अपने सभी श्रोताओं का हम इस प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। रुनझुन बूंदों की बौछारें लिए आपके रेडियो सेट पर श्रोताओं आ चुका है विविध भारती का कार्यक्रम सुरीला सफर। हम सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत करते हैं और हमारे जो श्रोता आज नए नए जुड़े हैं फेसबुक से या फिर हमारे इस कार्यक्रम से, उन सभी का भी हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। कार्यक्रम में बने रहिए हमारे साथ सुरीला सफर कार्यक्रम में। आज की जो इबारत है वो हमारे श्रोताओं ने वैसे देखी है और पढ़ी भी है, देखी भी है फेसबुक पेज पर और लिखा भी है बहुत कुछ। तो ये इबारत जल्दी से आपके लिए पढ़ देते हैं। सुंदर सजीली धरा पर हरियाले सावन की छटा, नव पल्लवित पुष्पों की झनकार, बादलों का मृदंगवाद, चमकी बिजुरिया, बूंदों की गागर छलकी, तो नींद नहीं आए, कोई पास तो कोई दूर, कहीं मेघ मल्हार, कहीं कजरी की तान, कोयल की कूक, पपीहे की पुकार, बाग बगीचे और खेतों की हरियाली, पावस ऋतु में मिलन की आस, मोर का सजीला नृत्य, सावन की इस नैया में तन भीजे मन भीजे, जी डरे और करे प्या की पुकार, कि घर आजा संग साजन झूला झूली, अब के सावन में गजब हुई गवा, मन लाजवंती सा छुई मुई हुई गवा, झरने पानी से इठलाते हैं, सरिता में भर गया नूतन पानी, पत्थरों में भी फूलों का इंद्रधनुषी श्रृंगार, छोटी सी उम्र से अनजान प्रकृति में रंग भरती नन्ही तितलियां, धरती अंबर में ये कैसा लगा है सावन का मेला। श्रोताओं आप समझ चुके हैं आपके रेडियो सेट पर आजकल वैसे सावन का मौसम छाया है, क्या क्या छुपा है सावन?

क्या कुछ नयापन लेकर आया हरियाला सावन। क्योंकि ये एक मौसम ऐसा है श्रोताओ, जितनी खुशी हमारे दिल में होती है उतनी ही खुशियाँ घर के बाहर प्रकृति में भी नजर आती हैं। सावन का वो कौन सा खास अंदाज है जो आपके दिल को छू जाता है, ये बातें आप हमसे साझा कर सकते हैं। और ज्यादा से ज्यादा कमेंट्स हम आपके आज पढ़ने की कोशिश करेंगे। हमारे जो श्रोता नए हैं उन्हें बता दें, आपको लॉग ऑन करना है www.facebook.com/vbsmumbai और आपको इस पते पर अपनी प्रतिक्रियाएं अपने कमेंट्स भेजने हैं। रेडियो श्रोताओं का भी हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। अब ये फिल्म पहचानिए। सुनने वालों को संगीता श्रीवास्तव का प्यार भरा नमस्कार।

दोहरा तो सचमुच नाच उठता है सावन में, और जब गायन की बात करें तो राग मेघ मल्हार और कजरी की तान हर सू सावन के मौसम में नजर आती है। श्रोताओं, अगले गीत में आपको संगीतकार बताने हैं और फिल्म में जो कलाकार हैं उन्हें पहचानना है। वैसे इन कलाकारों की और भी फिल्में हैं, कौन सी फिल्म आपको अच्छी लगती है अगर आप चाहें तो बता सकते हैं। एक हमारे श्रोता ने लिखा है कि सावन आते ही जैसे प्रकृति अपने आंचल में धरती को सजा लेती है, नव पल्लवों की हरियाली, फूलों की मुस्कान, बादलों का मृदंग और बिजली की चमक सब मिलकर ऐसा संगीत रचते हैं जिसमें मन अनायास ही झूम उठता है। बारिश की बूंदें जब धरती पर गिरती हैं तो लगता है जैसे आसमान ने अपनी प्रेम पाती धरती के नाम लिख दी हो। कहीं मेघ मल्हार की तान तो कहीं पपीहे कोयल कजरी की मिठास, बाग बगीचों से लेकर खेतों तक हर ओर हरियाली का साम्राज्य है। झरने इतलाते हुए बह रहे हैं और मोर अपने सजीले नृत्य से सावन का स्वागत कर रहे हैं, और बहुत सारे मधुर गीत भी।

इन्हें आज याद आ रहे हैं, कुछ एक गीत इन्होंने बताए भी हैं। वैसे आपको ये भी बताना है श्रोताओं कि आजकल जब हम सावन की बात करते हैं तो खेतों की भी बात करते हैं। आप जरूर व्यस्त होंगे, हमारे कृषक जो हैं वो खेतों में, तो आप विविध भारती कहाँ से सुन रहे हैं जरूर बताइए, और वहाँ का मौसम कैसा है ये भी बताइए। वैसे आपके प्रदेश में सावन किस खास अंदाज में मनाया जाता है, कोई खास परंपरा तो आप लिख सकते हैं। एक और श्रोता ने लिखा है कि सावन के सुहावने मौसम में रिमझिम फुहारों के बीच पिया मिलन की आस और उनसे जुदाई किए का एहसास दिल को बहुत तड़पाती है, और हर पल अपने पिया के पास होने की इच्छा और तीव्र हो जाती है, जिससे दो दिलों की दूरियां दिल में बेचैनी और तड़प को बढ़ा देती है, जिससे बारिश की बूंदें मन में ठंडक के बजाय सुरीली उदासी से भर देती हैं। सावन के सुहावने मौसम में अपने पिया मिलन की पुरानी यादों को जगाता है, जिससे भीगी हुई धरती और उमड़ते घुमड़ते काले बादल मन को अत्यधिक भावुक बना देते हैं। जी हाँ, आजकल वैसे श्रोताओं देखें तो हर तरफ बस निगाहें बादलों पर ही टिकी हैं। ये बादल जो सावन में आजकल छाए हुए हैं, इनका रंग बड़ा निराला होता है।

मलसिन्हा और शमी कपूर पर फिल्माया गया दिल तेरा दीवाना फिल्म का ये टाइटल सॉन्ग आप सुन रहे थे श्रोताओं। दो बीघा जमीन फिल्म के लिए हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने डिटेल्स जो लिखी है बिल्कुल ठीक लिखी है, और शैलेंद्र की रचना थी गीत जो आपने सुना। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि ग्राम में पृष्ठभूमि और शैव क्षेत्र के वाशिंदे होने के कारण सावन सदैव सर्वश्रेष्ठ लगता है, कृषि धान रोपण आदि आदि की इन्होंने बात करी है। एक और हमारे श्रोता ने लिखा है कि सावन का महीना केवल प्रेमियों के मिलने का समय नहीं बल्कि ये आम आदमियों परिवारों और पूरी दुनिया के लिए भगवान शिव की भक्ति प्रकृति के उत्सव और आत्म शुद्धता का पवित्र मास है। इसका धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व शिव उपासना का है। ये पूरा महीना भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा को समर्पित है। एक और हमारे श्रोता ने लिखा है अब के सावन में जी डरे तन मन पे पानी गिरे, और कुछ हमारे श्रोताओं ने सावन का महीना पवन करे शोर इस फिल्म की इस गीत की बात की है। और हमारे एक और श्रोता हैं जिन्होंने लिखा है कि इतने सारे गीत जो हैं वो हमें याद आ रहे हैं, देखते हैं कि कौन सा गीत जो है वो आज शामिल हो पाता है। और एक और श्रोता हमारे लिखते हैं कि ऋतु चक्र के गतिमान जीवन का की उत्सव धर्मिता के परिप्रेक्ष्य में सावन प्रकृति के उल्लास सृजन का प्रतीक है। ये केवल जल वर्षा का समय नहीं बल्कि मनुष्य के भीतर छिपे राग प्रेम और सांस्कृतिक उत्सवों को जीवंत ताने बाने का अनुपम दस्तावेज है। रिम झिम फुहारे फुहारे कजरारे बादलों की गर्जन मोर और पपीहे की कोख से उत्पन्न होने वाली संगीत लहरियों से मानव मन में एक उत्सव धर्मिता का संचार होता है। झूला झूलना मल्हार कजरी और अन्य लोकगीतों के गायन की गूंज सामाजिक सौहार्द को मजबूत करती है। सावन पावस के रूप में भक्ति और श्रृंगार रस के विभिन्न रंगों से जुड़कर विरह और वियोग की तीव्रता से प्रकृति के उल्लास चित्त को आकर्षित करता है। ऋतुओं के इस शाश्वत चक्र में सावन मनुष्य को प्रकृति के साथ लयबद्ध होने और जीवन को उत्सव की तरह जीने का संदेश देता है। जी हाँ, प्रकृति के साथ रहना लयबद्ध होना ये भी सावन सिखाता है। और इसी लय में एक बड़ी खूबसूरत सी चिड़िया जो मानसून के सीजन में अपना खास घोंसला बनाती है, ये कौन सी चिड़िया है और ये किस तरह का घोंसला बनाती है, क्या आपने इसे देखा है, तो आप हमें जरूर लिखें। और ये गीत जो अब हम आपको सुनवाने जा रहे हैं, इस गीत को कब आपने गाया, गाते हैं इस गीत को बारिश के मौसम में।

छलिया फिल्म के इस गीत को हमारे सभी श्रोताओं ने बिल्कुल ठीक पहचाना है। राज कपूर पर फिल्माया गया, मुकेश की आवाज में कमर जलालाबादी के बोल थे, कल्याण जी आनंद जी की तर्ज थी। हमारी एक श्रोता ने लिखा है कि स्कूल के दिनों में अगर बारिश हो गई और हमें मौका मिला रोड पर चलने का तो गाने की लाइन इतना याद नहीं रहती, उस समय राज कपूर का पानी में छप्पा छैया करना बहुत पसंद आता था और हम सभी एक इस तरह की हरकत करके एक दूसरे को भी भिगोते थे। वैसे राज कपूर साहब का एक और गीत है श्रोताओं जो बारिश का बहुत ही प्रसिद्ध गीत है, वो गीत अगर आपको याद आ रहा हो तो आप जरूर बताएं। एक और श्रोता ने राज कपूर नूतन द्वारा जो है इस फिल्म में अभिनीत इस फिल्म छलिया की बात की है। एक और श्रोता लिखते हैं कि सावन आते ही हरियाली जो चारों तरफ दिखाई देती है और हमारे घर के पास के मंदिर से आती शिव जी के भजनों की आवाज और महिलाओं का हरे रंग की साड़ी पहनकर सजना संवरना बड़ा ही अच्छा है। और जी हाँ, और मेहंदी भी तो लगाई जाती है, तो हमारी जो श्रोता सखियां हैं वो बता सकती हैं। वैसे मेहंदी की अगर बात किया जाए तो मेहंदी का आजकल चलन थोड़ा थोड़ा सा बदल रहा है, यानी मेहंदी जो है वो अलग तरह से लगाई जाती है, इस बारे में अगर आप बताना चाहें तो बता सकती हैं। एक और श्रोता ने लिखा है कि सावन का महीना केवल बारिश का नहीं बल्कि यादों, प्रेम और आस्था का भी है। शिवालयों में गूंजते हर हर महादेव के स्वर और मन में उमड़ते भाव जीवन को एक नई ताजगी दे जाते हैं। शायद यही वजह है कि सावन हर साल आता तो है लेकिन हर बार दिल में एक नई कहानी छोड़ जाता है। पिछले सावन में श्रोताओं कौन सी ऐसी बात थी जो आपकी इस सावन में पूरी हुई, तो ये जो परिवर्तन है वो कैसा लगा या क्या कुछ परिवर्तन हुआ ये आप बता सकते हैं। एक और श्रोता ने लिखा है कि पटना में कल रात में बारिश हुई, अभी तो तेज धूप निकली है। आज एकादशी के दिन मंदिरों को खूब सजाया जा रहा है और श्रीहरि और महादेव दोनों की पूजा चल रही है। एक और श्रोता ने लिखा है क्या किए कोई मन भाग गया, दिल में हमारे वो समा गया, हंस के किसी ने देखा एक बार, दिल की मुराद कोई पा गया, सांसों की मीठी आग, होंठों पे मीठा।

मीठा राग और अपने मन का इन्होंने गीत भी बताया है। एक और श्रोता लिखते हैं कि आज जो गीत हैं, यानी सावन का के जो गीत हैं और जो बारिश के जो गीत हैं वो सुनवाए जाएंगे। जी हाँ, बिल्कुल हैं। और कौन से गीत आपके पसंद के हैं? वैसे इस इबारत में बहुत सारे शब्द भी ऐसे हैं श्रोताओं, जिनसे आप अपनी कोई बात लिख सकते हैं। फिल्म पहेली का ये गीत है, इस अभिनेत्री को आपको पहचानना है, यही

हमारे श्रोताओं ने अभिनेत्री का नाम कुछ कुछ लटपटा सा बताया है, लेकिन हम आपको बता दें श्रोताओं, पहली फिल्म का ये गीत था हेमलता की आवाज में। गीत और संगीत था रविंद्र जैन का। नमिता चंद्रा पर फिल्माया गया गीत था। हमारी एक श्रोता ने लिखा है कि अंताक्षरी में जब द शब्द आता है तो ये गीत बरमास गाया जाता है, डम डम डिगा डिगा। जी हाँ, ये तो है कि अंताक्षरी में ये गीत बहुत गाया जाता है। वैसे हमने एक सवाल और भी श्रोताओं आपसे पूछा था कि जो एक पक्षी है बड़ा सुंदर सा घोंसला बनाता है मानसून में, वो आपको बताना है। एक और श्रोता ने लिखा है कि सावन को झूलना उत्सव पर्व के रूप में भी मनाया जाता है, पास के मंदिर का हरियाली श्रृंगार हुआ है। जी हाँ, अब तो धीरे धीरे सावन जो है वो शबाब पर आ रहा है। एक और श्रोता हमारे लिखते हैं कि महाकवि कालिदास ने मेघदूत और ऋतु संहार, जी मेघदूतम हो सकता है ये है, और ऋतु संहार लिखा है। तो मोहन राकेश ने आषाढ़ का एक दिन नाटक लिखा है। कवि भवानी प्रसाद मिश्र ने आषाढ़ का पहला दिन कविता लिखी, तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने कविताओं में बादल और वर्षा जीवन की सृजन और संघर्ष के रूप में लिखा है इसे और दिखाई देता है। और

तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में भी लिखा है, घन घमंड नभगर्जत घोरा दामिनी दमक रहन घन माही। और मलिक मोहम्मद जैसी की भी ये बात करते हैं, पद्मावत की भी बात करते हैं। जी हाँ, ऐसे तो बहुत सारे हमारे कवि हैं जिन्होंने सावन और जो वादियां हैं बारिश की, उन पर बहुत सारे कविताएं लिखी हैं, गीत भी लिखे हैं। इस गीत में श्रोताओं मेला नजर आता है, तो मेले की कोई यादें अगर आपकी हों तो आप साझा कर सकते हैं।

जरीना बहव और अरुण गोविल पर फिल्माया गया ये गीत आपने सुना। और इस गीत में अरुण गोविल के हाथ में श्रोताओ एक वाद्य यंत्र है, वो आपको बताना है कि ये वाद्य यंत्र कौन सा है। और जो भारत है वो बड़ा ही अलग प्रकार का, अगर हम बात करें प्रकृति के नजरिए से तो प्रदेश है, यहाँ पर हैं अलग अलग। तो तितलियों का प्रदेश किसे कहते हैं, क्योंकि बारिश के मौसम में बड़ी अलग अलग सुंदर सुंदर तितलियां नजर आती हैं। लैंड ऑफ बटरफ्लाइज किसको कहते हैं, आपको ये बताना है। और साथ ही ये बताना है कि एक प्रदेश जिसके नाम में मेघ आता है वो कौन सा प्रदेश है,

ये आपको बताना है। एक श्रोता लिखते हैं कि बारिश के आगमन के बाद प्रकृति अपना रूप निखारती है, चारों ओर छटा देखते ही बनती है, धरती पर चारों ओर हरियाली ही हरियाली छा जाती है। मुझे भी बारिश में भीगना बेहद अच्छा लगता है। कल ऑफिस से लौटते वक्त भी बारिश में भीगता हुआ ही आया। जब घर में होता हूँ तो टेरिस पर चला जाता हूँ और बारिश में भीगने का आनंद लेता हूँ। और गीत भी इन्होंने बताए हैं, रामा रामा गजब होई गवा। और एक और श्रोता ने लिखा है कि हमारे यहाँ सावन का विशेष महत्व है, जिसमें भोले बाबा का जलाभिषेक पूजन किया जाता है, जिसमें हरे श्रृंगार अर्पित किए जाते हैं। सावन में हर सोमवार को विशेष व्रत रखते हैं। हमारे घर में सभी लोग इस व्रत को रखते हैं। और इसके अतिरिक्त सावन में मेहंदी रचाने का भी विशेष महत्व है, झूले भी डाले जाते हैं और महिलाएं और कन्याएं विशेषकर हरे परिधान श्रृंगार का प्रयोग करती हैं। तो आपने किसके साथ झूला झूला, ये आप बताइए हमें। और हमने एक और सवाल आपसे पूछा, लैंड ऑफ बटरफ्लाइज और ऐसा प्रदेश जिसके नाम के साथ मेघ जुड़ा हुआ है। और एक श्रोता ने लिखा है, बया पक्षी घोंसले बनाती है और घोंसले को घर में रखना, उस घोंसले को घर में रखना शुभ माना जाता है। ये कलाकार जोड़ी आपको बतानी है श्रोताओं।

जैसे को तैसा फिल्म का गीत आपने सुना, रीना रॉय और जितेंद्र पर फिल्माया गया, और इनकी जोड़ी का कौन सी ऐसी फिल्म है श्रोताओं जो आपको अच्छी लगती है, क्योंकि इस जोड़ी की और भी बहुत अच्छी अच्छी फिल्में हैं, तो अगर आप बताना चाहें तो बता सकते हैं। हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि लैंड ऑफ बटरफ्लाइज सिक्किम को कहते हैं। जी हाँ, सिक्किम में श्रोताओं जो जोंगो क्षेत्र है वो लैंड ऑफ बटरफ्लाइज कहलाता है, तितलियों का प्रदेश, क्योंकि यहाँ बड़ी सारी तितलियां हैं। और एक और सवाल हमने आपसे पूछा था कि किस प्रदेश के नाम के साथ मेघ जुड़ा हुआ है, ये आपको बताना है। हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि हम तो अभी सावन की रिमझिम बारिश में अपने घर में खिले हुए उन गुड़हल के सफेद फूलों को देख रहे हैं जिन पर ये बूंदें ओस के जैसे चमक रही हैं और उन्हें नीचे की तरफ झुका रही हैं, और हमारा दिल एक गीत गुनगुना रहा है, नैना बरसे रिमझिम रिमझिम। भाई ये तो बड़ा ही मतलब थोड़ा दुखी कर देने वाला गीत है, तो नैना क्यों बरसे, बादल बरसे, ऐसा होना चाहिए। पहले पत्थर पर पीस कर मेहंदी लगाते थे, फिर सूखी मेहंदी को छानकर चाय के पानी में घोलकर रात में रात भर रखते, फिर दूसरे दिन माचिस की तीली से तार बनाकर बारीक डिजाइन बनाते। समय के साथ अब बहुत परिवर्तन आया है, अब बने बनाए कोन मिल जाते हैं, लाओ और लगा लो, सुंदर सुंदर डिजाइन भी आसानी से बन जाती है। जी हाँ, और कई बार छाप कर भी मेहंदी लगाते हैं, लेकिन उसमें थोड़ा सा अलर्ट रहना पड़ता है कि कहीं कुछ हाथ में इन्फेक्शन ना हो जाए। एक और हमारे श्रोता ने लिखा है कि आजकल मैं अपनी बेटी के घर बर्लिन आई हुई हूँ और यहाँ जो टाइम है थोड़ा पीछे चलता है, और इन्होंने वहां के टाइम के बारे में भी लिखा है। एक और हमारे श्रोता ने लिखा है कि सावन तो नहीं बरस रहा पर विविध भारती हमको रोज सावन के गीतों से भिगो रही, अच्छा लगता है। शुक्रिया विविध भारती। जी हाँ, आप सभी का भी बहुत बहुत शुक्रिया। वैसे सावन है तो भीगना तो पड़ता ही है। एक और श्रोता ने लिखा है कि पतझड़ सावन बसंत बहार एक बरस के मौसम चार तमाम सारे गीतों को इन्होंने लिखा है, अब इनमें छठे मौसम का इजाफा कर देते हैं, वो मौसम है सुरीले सफर का इंतजार। जी हाँ, वो तो पूरा हुआ। एक और श्रोता लिखती है कि सावन की हर बूंद में एक कहानी है, हर पुहार में प्रेम की रवानी है, भीगी धरती कहती चुपके से ये मौसम नहीं किसी के आने की कहानी है।

आर डी बर्मन की तर्ज थी छोटे नवाब फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे, शीला आवाज पर फिल्म आया गया। श्रोताओं, बारिश का मौसम जो होता है वो अपने आप में बड़ा सुहावना होता है। अगर किसी एक जगह आपको जाना हो बारिश के मौसम में तो आप कहाँ जाएंगे और क्या आपको तस्वीरें उतारना बारिश के मौसम का अच्छा लगता है? तो कुछ तस्वीरें तो जरूर आपके पास होंगी जो आज भी आपने सहेज कर रखी होंगी, तो ये बातें आप हमसे साझा कर सकते हैं। एक श्रोता लिखती हैं कि सावन का मौसम प्रकृति के सौंदर्य को बढ़ा देता है, चारों ओर हरियाली छा जाती है, रंग बिरंगे फूल, हरे भरे लहलाते खेत, कलकल करती नदियां, पहाड़ों से बहते झरने, बादल की गड़गड़ाहट, रिमझिम वर्षा और तमाम बातें इन्होंने लिखी हैं। और वैसे छोटे छोटे जो झरने होते हैं श्रोताओं, वो भी इस समय अपने पूरे शबाब पर होते हैं, तो ये झरने समय के साथ बिल्कुल सूख जाते हैं, यानी बारिश होगी उसके बाद फिर नजर नहीं आते। तो ऐसे प्यारे प्यारे झरने आपकी तरफ हैं क्या, और कौन सी ऐसी जगह है जहां बारिश में आप जाना पसंद करेंगे, ये हमने अभी आपसे पूछा था, आप बता सकते हैं। वैसे अगर ऐसी जगहों की बातें की जाए तो हो सकता है कि आपका खुद का शहर हो, खुद का प्रदेश हो, जो ऐसे सुंदर जो चित्र कह सकते हैं बारिश के मौसम का वहाँ नजर आता है। हमारी एक श्रोता ने लिखा है कि हम आपका प्रोग्राम सुनते हुए हम देख रहे हैं कबूतरों को, वो इतने खुश हैं कि साथ नीचे घास पर बैठे हैं, मानो उनकी अपनी कोई महफिल चल रही हो, हमने उन्हें उस तरह पहले कभी नहीं देखा। अरे वो तो उड़ गए बहुत जल्दी। जी हाँ, पंछी होते हैं ये तो उड़ जाते हैं, और गौरैया भी बहुत नहाती है पानी में, आपने देखा है, तो आप गौरैया की जो बातें हैं वो भी ताज़ा कर सकते हैं। गौरैया बड़ी ही सुंदर होती है श्रोताओं। एक और हमारी श्रोता ने लिखा है कि पूर्णिमा की सुनहरी रात और चंचल पुरवैया, हवा के झोंके गगन में तैरते उमड़ते घुमड़ते मेघ और चपला की चमक, रिमझिम फुहारों के बीच भीगी बलखाती वसुंधरा और मयूर का मन भावन नृत्य, तमाम सारी बातें जो सावन की।

इस गीत से जो सवाल वाबस्ता है उसका जवाब अभी मुझे तो नजर नहीं आया श्रोताओं। फिलहाल एक श्रोता लिखते हैं कि श्री 420 का गाना प्यार हुआ इकरार हुआ बहुत ही प्रसिद्ध है। जी हाँ, ये तो है बारिश का गीत। और एक और श्रोता लिखते हैं कि मेघालय का जो दुनिया है, मेघालय की मैसनराम दुनिया सबसे अधिक वर्षा होने वाली जगह के रूप में ये प्रसिद्ध है। जी हाँ, मेघालय जो है वो बड़ा ही प्रसिद्ध जगह है श्रोताओं। वैसे अगर हम सेवन सिस्टर्स की बात करें, इन जगहों की बात करें सेवन सिस्टर्स की, तो यहाँ बारिश बहुत ज़्यादा होती है। और एक श्रोता ने लिखा है कि सावन की ऋतु कितनी अनोखी, कितनी अलहदा है, इस पर जितना लिखा जाए कम ही लगता है। सावन की ऋतु में प्रकृति अपने पूरे उफान पर पूरा श्रृंगार किए एक आमंत्रण सा देती है। सावन रंगों में सराबोर होने के दिन लेकर आता है धानी चादर लिपटी, ये धरती नीले आसमान को ओढ़े ऐसे प्रतीत होती है जैसे ऋतुराज हो। सावन की हरियाली संदेश लेकर आती है कि जीवन हरा भरा तभी हो पाता है जो इंसान प्रतीक्षा करना जानते हैं। तो इस सावन आप कहाँ हैं बताएं, क्योंकि कुछ तो हमारी सखियां ऐसी हैं जो अपने मायके में होंगी, कुछ होंगी जो अपने ससुराल में होंगी।

हेमा मालिनी पर फिल्माया गया ये गीत आप सुन रहे थे नया जमाना फिल्म से। और हमारे श्रोताओं के कमेंट्स, हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि आज पहाड़ से घूम के लौट रहे थे तो हल्की हल्की बारिश हो रही थी और ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी, अच्छा लग रहा था। भीगते भीगते पहाड़ों का मौसम और वहां का नजारा, जी हाँ पहाड़ों का मौसम बड़ा ही अलग होता है बारिशों में। अगर आप ऐसे किसी क्षेत्र में रह रहे हों तो आप लिख सकते हैं कि वहां इस समय क्या मौसम है। एक और हमारे श्रोता ने लिखा है कि लिखती हैं कि आज की भीगी भीगी सुरमई ये सफर आज का है, सावन का मेला, मेले में बादल, बादल में बिजुरिया, बूंदों की गागर छलकी रे, कोयल की कजरी तान, पपीहे की पुकार, पिया मिलन की आस जगाए। और इन्होंने बहुत सारे शब्दों को जोड़कर एक पैरोडी सी बनाई हुई है। कलाकार आपको पहचानने हैं श्रोताओ और संगीतकार।

0: अरुण गोविल के हाथ में जो वाद्य यंत्र होता है श्रोता, वो रावण हत्था है।
1: गजरा लगा के, गजरा सजा के,

भारत भूषण और मीना कुमारी जी के लिए लिखा है हमारे श्रोताओं ने कि उन्हीं पर फिल्माया गया बैजू बावरा फिल्म का गीत था। और एक श्रोता ने लिखा है कि बारिश में हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड जाना बेहद पसंद है।

एक हमारे श्रोता ने लिखा है कि हमारे यहाँ तो टिटेरी बहुत आती है, उसके लिए पीने का पानी सकोरे में बहुत रख देते हैं भरकर, और वो नहाती भी है, अभी भी खिड़की के कांच को अपनी चोंच से ठोक रही है, बहुत शोर कर रही है। एक और श्रोता ने लिखा है, तस्वीरें लेना, वीडियो बनाना, वो भी चिड़ियों के फूलों पर गिरते पानी की बूंदों के, अच्छा लगता है। एक और श्रोता ने लिखा है, हम तो मैदानों के उत्तर प्रदेश में रहते हैं जहाँ पहाड़ और झरने बिल्कुल नहीं है, नदियाँ तो बहुत तेरी हैं और इनमें कई जगह बांध बनाकर बिजली पैदा की जाती है, झरनों का लुत्फ इन बांधों पर लिया जा सकता है।

0: मुमताज और राजेश खन्ना पर फिल्माया गया अपना देश फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। हमारे श्रोता लिखते हैं कि भोपाल से 170 किलोमीटर दूरी पर पंचमढ़ी है, वहाँ मध्य प्रदेश का हिल स्टेशन ये है और वहाँ पर बरसात के मौसम में पहाड़ से बहुत सारे झरने निकलते हैं। ये समय यहाँ
1: पहला गीत हमने लिया अनामिका फिल्म से, किशोर कुमार की आवाजें मजरू सुल्तानपुरी के बोलों को संगीत से सजाया आर डी बर्मन ने।

लता मंगेशकर का गाया अनामिका फिल्म का ये गीत अभी आप सुन रहे थे। कार्यक्रम का अगला गीत आशा भोसले का गाया हुआ है, जिसे हमने लिया कश्मीर की कली फिल्म से, एसएच बिहारी के बोल, संगीत ओपी नैयर का।

0: संगीत अब यही समाप्त होता है। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। 2:10 होने को है, आप सुनेंगे अब प्रादेशिक समाचार।
1: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं धारणा सचदेव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लेने वाले सभी स्वतंत्रता सेनानियों और आंदोलनकारियों को आज श्रद्धांजलि अर्पित की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि इन वीरों का साहस हमेशा हर भारतीय के लिए प्रेरणा स्रोत बना रहेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि महात्मा गांधी के नेतृत्व से प्रेरित होकर भारत छोड़ो का आह्वान देश के स्वतंत्रता संग्राम में नई ऊर्जा लेकर आया। उन्होंने कहा कि इस आंदोलन ने औपनिवेशिक शासन से मुक्ति पाने के लिए भारतीय जनता के अटूट संकल्प को प्रतिबिंबित किया। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने आज भोपाल के टीटी नगर स्टेडियम में आयोजित तिरंगा यात्रा में सहभागिता की। यह आयोजन हर घर तिरंगा अभियान के तहत किया गया। मुख्यमंत्री ने स्वतंत्रता संग्राम के शहीदों और स्वतंत्रता सेनानियों को नमन करते हुए कहा कि तिरंगा यात्रा के माध्यम से देशभर में स्वतंत्रता का उत्सव मनाया जा रहा है। उन्होंने बच्चों, युवाओं, बुजुर्गों और मातृशक्ति सहित सभी देशवासियों से राष्ट्र सेवा का संकल्प लेने और देश की प्रगति में योगदान देने की अपील की।
1: आज तिरंगा यात्रा हम सब पूरे देश में निकाल रहे हैं, हर राज्यों में, राजधानी में आज सब दूर तिरंगा यात्रा निकल रही है और उम्मीद करता हूं कि पूरे देश में आज ये तिरंगा यात्रा के माध्यम से सारे देश के युवा, महिला, बूढ़े, बच्चे, जवान सब मिलकर संकल्प करें देश की स्वतंत्रता के लिए। अपनी आजीवन वो सेवा भी करते रहे और जीवन भर ये परमात्मा करे कभी हमारे देश पे दुश्मन की नजर न लगे।
0: गौरतलब है कि प्रदेश भर में हर घर तिरंगा अभियान आज से शुरू होकर 17 अगस्त तक चलेगा। राज्य को आज 4 नई सीधी हवाई सेवाओं की सौगात मिलेगी। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव भोपाल के राजा भोज एयरपोर्ट में आयोजित कार्यक्रम में इन सेवाओं का शुभारंभ करेंगे। नई उड़ानें भोपाल से रीवा, भोपाल पटना, रीवा कोलकाता और जबलपुर से कोलकाता के बीच शुरू होंगी। मुख्यमंत्री भोपाल से रीवा की पहली उड़ान को हरी झंडी दिखाएंगे। इन सेवाओं का संचालन अलायंस एयर द्वारा किया जाएगा। राज्य सरकार की नागरिक विमानन नीति के तहत प्रत्येक राउंड ट्रिप पर 10 लाख रुपए तक की वायबिलिटी गैप फंडिंग दी जाएगी। नई सेवाओं से प्रदेश की आंतरिक और अंतर्राज्यीय हवाई कनेक्टिविटी मजबूत होगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि मोदी सरकार द्वारा औपनिवेशिक काल के कानूनों के स्थान पर लागू किए गए 3 नए आपराधिक कानून प्रौद्योगिकी, समयबद्धता और विश्वास के 3 महत्वपूर्ण स्तंभों पर आधारित हैं। पुदुचेरी में आज पुदुचेरी पुलिस को राष्ट्रपति का पुलिस ध्वज प्रदान करने के समारोह में श्री शाह ने कहा कि नए कानूनों का उद्देश्य प्रौद्योगिकी आधारित और समयबद्ध व्यवस्था के माध्यम से नागरिकों को न्याय सुनिश्चित कराना है। राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण NBA ने 33 राज्य जैव विविधता बोर्डों, केंद्र शासित प्रदेशों की जैव विविधता परिषदों और राष्ट्रीय संस्थानों को अभिगमन और लाभ साझाकरण के तहत 3 करोड़ रुपए से अधिक की राशि वितरित की है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने बताया कि यह राशि भारत के कृषि और पशुपालन क्षेत्र की जैव विविधता संरक्षण के लिए भी है। विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर आज इंदौर में आदिवासी समाज की ओर से विशाल रैली निकाली जा रही है। सुबह 6 बजे से लालबाग परिसर से शुरू हुई रैली में हजारों युवा पारंपरिक वेशभूषा और वाद्य यंत्रों के साथ शामिल हुए। रैली कलेक्ट्रेट टावर चौराहा और भंवर कुआं होते हुए राजीव गांधी चौराहे पहुंचेगी। पुलिस ने वाहन चालकों से वैकल्पिक मार्ग अपनाने की अपील की है। बात मौसम की। प्रदेश में मॉनसून एक बार फिर सक्रिय हो रहा है। मौसम विभाग ने आज दतिया, रीवा और सीधी जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। इन जिलों में अगले 24 घंटों के दौरान 4 इंच तक बारिश होने की संभावना है। वहीं भोपाल, इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर और जबलपुर सहित प्रदेश के कई हिस्सों में हल्की बारिश या बूंदाबांदी हो सकती है। मौसम विभाग के मुताबिक प्रदेश में अब तक औसतन 17.2 इंच बारिश हुई है, जो सामान्य से करीब 20% कम है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। आगरमालवा में एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत शासकीय महाविद्यालय परिसर सोयत कला में पौधाकरण किया गया। डिंडौरी जिले में लगातार हो रही बारिश से नर्मदा पुल पूरी तरह जलमग्न हो गया है, जिससे कई क्षेत्रों का मुख्यालय से संपर्क बाधित हो गया है। और पन्ना में प्रभारी मंत्री इंदर सिंह परमार ने प्राचीन चंदेल कालीन महाराज सागर तालाब और परिसर का भ्रमण किया और कदम्ब के पौधे का रोपण किया। इस बुलेटिन में इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए शाम 7:10 पर। नमस्कार।

नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। देशभक्ति और राष्ट्रीय एकता का जश्न मनाने के लिए देशभर में हर घर तिरंगा अभियान आज से शुरू। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा, औपनिवेशिक काल के कानूनों की जगह लाए गए 3 नए आपराधिक कानूनों का उद्देश्य प्रौद्योगिकी के माध्यम से समयबद्ध न्याय प्रदान करना है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने केरलम के मलप्पुरम में जब्त की गई अवैध विस्फोटकों की बड़ी खेप के मामले में एक और आरोपी को गिरफ्तार किया। ओडिशा में बारिश से कई नदियों में जलस्तर बढ़ा, फिर से बाढ़ की आशंका। उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ में आज मूसलाधार वर्षा की चेतावनी। चीन में तूफान डॉल्फिन के मद्देनजर 1,300 से अधिक उड़ानें रद्द, 3,00,000 से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। और भारत की अश्मिता चालिहा ने कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट में अपना पहला BWF विश्व टूर खिताब जीता। अब समाचार विस्तार से। हर घर तिरंगा अभियान आज से 17 अगस्त तक चलेगा। गृहमंत्री अमित शाह ने पुदुचेरी से हर घर तिरंगा अभियान यात्रा रवाना की। अभियान का उद्देश्य देशवासियों को अपने घरों पर तिरंगा फहराने और देशभक्ति तथा राष्ट्रीय एकता से जुड़े कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना है।

0: हर घर तिरंगा अभियान पूरे देश में देशवासियों में देशभक्ति की भावना को बढ़ावा देने, राष्ट्रीय एकता को मजबूत करने और भारत की सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित करने के लिए मनाया जा रहा है। यह अभियान हर घर तिरंगा पहल का 5वां वर्ष है। इसकी शुरुआत 2022 में हुई थी और तब से यह देश के सबसे बड़े जन भागीदारी आंदोलनों में से एक बन गया है। इस पहल का उद्देश्य देशवासियों को राष्ट्रीय ध्वज फहराने और देशभक्ति, राष्ट्रीय एकता तथा भारत की सांस्कृतिक विरासत का उत्सव मनाने वाली गतिविधियों में हिस्सा लेने के लिए प्रोत्साहित करना है। भारत के राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ होने के कारण इस वर्ष का अभियान विशेष महत्व रखता है। यह अभियान देशभक्ति के एक अनूठे उत्सव में राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय गीत को एक साथ लाता है। उत्सव के हिस्से के रूप में पूरे देश में सामूहिक रूप से वंदे मातरम का गायन आयोजित किया जाएगा। समाचार कक्ष से मैं जया भारती।
1: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने आज हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की राजधानी श्री विजयपुरम स्थित फ्लैग पॉइंट पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया। इस अवसर पर उन्होंने वीर स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि अर्पित की। उपराष्ट्रपति ने डॉ बी आर आम्बेडकर प्रौद्योगिकी संस्थान के सभागार में आयोजित राजकीय समारोह वंदे मातरम पर तिरंगा संगीत कार्यक्रम में भी भाग लिया। अपने संबोधन में उपराष्ट्रपति ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के गौरवशाली इतिहास को स्मरण किया। उन्होंने 30 दिसंबर 1943 के उस ऐतिहासिक दिन को भी याद किया जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने पोर्ट ब्लेयर में तिरंगा फहराया था।
2: इट इज इंडीड टू प्लेजर टू लॉन्च दिस कैंपेन टुडे ऑन द ऑगस्ट क्रांति दिवस एस वी कमेमोरेट द क्विट इंडिया मूवमेंट ऑफ 1942। मिलियंस ऑफ इंडियंस रिस्पॉन्डेड टू हिस कॉल एंड रोज अगेंस्ट द ब्रिटिश विद द अनवावरिंग रिजॉल्व ऑफ डू ऑर डाई ऑन दिस डे। इट इज देयरफॉर डीपली सिग्निफिकेंट दैट वी लॉन्च द हर घर तिरंगा कैंपेन फ्रॉम द हिस्टोरिक आइलैंड्स ऑन दिस हिस्टोरिक डे।
1: उपराष्ट्रपति राधाकृष्णन 2 दिवसीय अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की यात्रा पर हैं। इधर दिल्ली में अभियान के हिस्से के रूप में लोकसभा में भाजपा सांसद बांसुरी स्वराज ने मालवीय नगर में पंडित मदन मोहन मालवीय के स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित की, जिसके बाद पिलांजी गांव से ग्रेटर कैलाश तक तिरंगा यात्रा निकाली गई। संवाददाताओं से बातचीत में सुश्री स्वराज ने कहा कि ये स्वतंत्रता दिवस विशेष रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत अपनी स्वाधीनता का 80वां वर्ष मना रहा है।
3: भारत अपना 80th इंडिपेंडेंस डे मना रहा है और भारतीय जनता पार्टी ने आज से एक सप्ताह की मुहिम शुरू करी।

0: है, जहाँ पर हम हमारे राष्ट्र के नायक, जितने भी हमारे शहीद स्मारक है, वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, लोकल RWAs, MWAs और स्थानीय निवासियों के साथ जाकर, हमारे स्वच्छता वॉरियर्स के साथ यहाँ पर आकर स्वच्छता का अभियान भी शुरू करेंगे और पुष्पांजलि का भी कार्यक्रम करेंगे।
1: केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में भी आज से हर घर तिरंगा अभियान 2026 के तहत सभी 20 जिलों में सप्ताह भर के कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि मोदी सरकार द्वारा औपनिवेशिक काल के कानूनों की जगह लाए गए 3 नए आपराधिक कानूनों का उद्देश्य प्रौद्योगिकी आधारित और समयबद्ध प्रणाली के माध्यम से नागरिकों को समयबद्ध न्याय सुनिश्चित करना है। गृहमंत्री ने गोरीमेडू स्थित पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय के मैदान में पुदुचेरी पुलिस को राष्ट्रपति का पुलिस ध्वज प्रदान करने के समारोह में ये बात कही।
2: नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने अंग्रेजों के बनाई हुई दंड संहिता को बदलकर 3 भारतीय न्याय संहिताओं को लागू किया है। ये न्याय संहिताओं की सोच दंड आधारित नहीं है, ये न्याय संहिताओं की सोच नागरिकों को न्याय दिलाने के लिए केंद्रित, तकनीक सक्षम और समयबद्ध बनाने की है। ये तीनों न्याय संहिताएं टेक्नोलॉजी, टाइमलाइन और ट्रस्ट, ये 3 पिलर पर खड़ी की गई है।
1: श्री अमित शाह ने पुदुचेरी पुलिस को राष्ट्रपति का पुलिस ध्वज प्राप्त करने पर बधाई दी।
2: राष्ट्रपति ध्वज किसी भी डिसिप्लिन फोर्स के लिए उसके जीवन काल का सबसे गौरवपूर्ण क्षण होता है। पुदुचेरी पुलिस भले ही संख्या में 5,000 से कम हो, मगर आप इस देश की आध्यात्मिक धरोहर को संभाले हुए पुदुचेरी की रक्षा, आंतरिक सुरक्षा और पुदुचेरी के सम्मान की रक्षा करने का काम करते हैं।
1: राष्ट्रपति पुलिस ध्वज से सम्मानित होने की इस उपलब्धि के साथ ही पुदुचेरी देश का 18वां राज्य केंद्र शासित प्रदेश बन गया है, जिसे पुलिस बल को दिए जाने वाले इस सर्वोच्च सम्मान से नवाजा गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज कहा कि ऑपरेशन सिंदूर ने दुनिया को यह स्पष्ट संदेश दिया है कि भारत अपने नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है और देश की महिलाओं के माथे के सिंदूर की रक्षा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। रक्षा मंत्री ने ये बात नई दिल्ली के बेस अस्पताल में सिंदूर महारक्तदान यात्रा के शिविर उद्घाटन के अवसर पर कही। राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA ने केरलम के मलप्पुरम में जब्त की गई अवैध विस्फोटकों की बड़ी खेप के मामले में एक और आरोपी को गिरफ्तार किया है। एजेंसी के अनुसार आरोपी को कल मलप्पुरम जिले के मंजेरी से गिरफ्तार किया गया। एजेंसी ने बताया कि आरोपी इस मामले का मुख्य साजिशकर्ता है। झारखंड में JPSC और JSSC भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर गतिरोध जारी है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि रांची के स्टेट गेस्ट हाउस में सरकार और आंदोलनकारी छात्र प्रतिनिधियों के बीच तीसरे दौर की वार्ता जारी है।
3: सरकार की 4 सदस्यीय मंत्री स्तरीय टीम छात्रों की मांगों पर चर्चा कर रही है। इधर JKLM विधायक जयराम महतो ने छात्रों के समर्थन में एक दिन की भूख हड़ताल शुरू की है। उन्होंने कथित परीक्षा अनियमितताओं की CBI जांच और मुख्यमंत्री से छात्रों के सीधे संवाद की मांग की है। वहीं राज्य के सांसद और केंद्रीय मंत्री संजय सेठ ने जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम पहुंचकर आंदोलनकारी छात्रों से मुलाकात की और उनकी मांगों का समर्थन किया। उन्होंने CBI और ED जांच, JPSC JSSC परीक्षाएं रद्द करने तथा पुलिस टेबल शारीरिक परीक्षा के दौरान जान गंवाने वाले 19 युवाओं के परिवारों को 1-1 करोड़ रुपए मुआवजा देने की मांग की। महवेश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
1: केंद्र सरकार ने 4 उच्च न्यायालयों में 30 नए न्यायाधीशों की नियुक्ति की अधिसूचना जारी की है। इनमें मद्रास, कलकत्ता, मध्य प्रदेश और कर्नाटक उच्च न्यायालय शामिल हैं। नवनियुक्त न्यायाधीश जल्द ही शपथ लेकर कार्यभार संभालेंगे। इन नियुक्तियों से चारों उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की कमी दूर करने और लंबित मामलों के निपटारे में तेजी आने की उम्मीद है। सरकार ने पंजाब की मंडियों में पड़े 18 लाख मीट्रिक टन पुराने अनाज के भंडार को 20 सितंबर तक उठाने पर सहमति व्यक्त की है, ताकि राज्य में धान की बंपर फसल की उम्मीद के चलते भंडारण की जगह खाली हो सके। पंजाब से इस वर्ष केंद्रीय पूल में 170 लाख मीट्रिक टन अच्छी गुणवत्ता वाले चावल की आपूर्ति होने की उम्मीद है। पंजाब में आज तड़के सरहिंद GT रोड पर एक कार की टक्कर में 3 कांवड़ियों की मौत हो गई और एक गंभीर रूप से घायल हो गया।

0: वे उत्तराखंड के गंगोत्री से पवित्र जल लेकर पंजाब के फरीदकोट जिले के कोटकापुरा लौट रहे थे। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और मौके से फरार चालक की तलाश जारी है। जम्मू कश्मीर में रेल संपर्क को मजबूत करने के लिए कई बड़ी रेलवे परियोजनाओं का काम प्रगति पर है। जम्मू रियासी को पुंछ से जोड़ने वाली नई रेल लाइन सहित प्रमुख परियोजनाओं के लिए अंतिम स्थल सर्वेक्षण को मंजूरी दे दी गई है। 190 किलोमीटर लंबी जम्मू रियासी पुंछ रेल लाइन की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने के लिए फील्ड सर्वे शुरू कर दिया गया है। जम्मू और श्री माता वैष्णो देवी कटरा के बीच 78 किलोमीटर लंबी अतिरिक्त रेल लाइन के लिए भी सर्वे को मंजूरी दी गई है। इस बीच जालंधर कैंट जम्मू तवी के बीच 216 किलोमीटर लंबी तीसरी रेल लाइन की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट भी तैयार कर ली गई है। राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण एनबीए ने 33 राज्य जैव विविधता बोर्डों, केंद्र शासित प्रदेशों की जैव विविधता परिषदों और राष्ट्रीय संस्थानों को अभिगमन तथा लाभ साझाकरण के तहत 3 करोड़ रुपए से अधिक की राशि वितरित की है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने बताया कि ये राशि भारत के कृषि और पशुपालन क्षेत्र की जैव विविधता संरक्षण के लिए भी है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। चीन में तूफान डॉल्फिन के मद्देनजर शंघाई के दोनों हवाई अड्डों पर 1,300 से अधिक उड़ानें रद्द कर दी गई हैं। आसपास के क्षेत्रों के 3 लाख से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। एक रिपोर्ट।
1: तूफान के बाहरी हिस्से ने कल राजधानी ताइपे सहित उत्तरी ताइवान को भी प्रभावित किया और उन क्षेत्रों में मूसलाधार बारिश हुई। ताइवान की कुछ एयरलाइंस ने भी चीन जाने वाली अपनी उड़ानें रद्द कर दी हैं। तूफान की अधिकतम निरंतर हवा की गति आज सवेरे तक लगभग 162 किलोमीटर प्रति घंटा आंकी गई थी। इससे तेज बारिश हो रही है जिससे भीषण बाढ़ और भूस्खलन का खतरा मंडरा रहा है और इसके चाचियांग प्रांत और पड़ोसी फुचियान प्रांत के उत्तरी हिस्सों को प्रभावित करने की आशंका है। अधिकारियों ने चाचियांग भीषण भूस्खलन के खतरे की चेतावनी जारी कर दी है। शंघाई के हांगशाओ और पुडोंग हवाई अड्डों ने भी लगभग 60% अपेक्षित उड़ानों को रद्द कर दिया है। समाचार कक्ष से मुनीश शर्मा।
0: जापान में आज नागासाकी पर अमेरिका के परमाणु बम हमले की 81वीं बरसी है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री सानाए ताकाइची ने परमाणु हथियारों से मुक्त दुनिया के लक्ष्य को हासिल करने के लिए यथार्थवादी और व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाने की अपनी नीति दोहराई। ओडिशा में बारिश से कई इलाकों में नदियों का जलस्तर दोबारा बढ़ने से बाढ़ की आशंका बढ़ गई है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रशासन राज्य भर में निचले इलाकों और नदियों के जलस्तर पर लगातार नजर रख रहा है।
2: उड़ीसा में लगातार हो रही बारिश से बाढ़ का खतरा फिर बढ़ गया है और कई बाढ़ प्रभावित इलाकों में और ज्यादा पानी भरने की आशंका है। बालेश्वर के बस्ता इलाके में हालात फिर गंभीर हो गए हैं क्योंकि मयूरभंज के ऊपरी इलाकों में भारी बारिश के बाद जलका नदी का जलस्तर बढ़ गया है। राजगोविंदपुर, सुलियापदा, मोरड़ा और चित्रड़ा में बारिश से जलका नदी उफान पर है जिससे निचले इलाकों में पानी भर गया है और सैकड़ों हेक्टर खेती की जमीन जलमग्न हो गई है। भद्रक में बैतरणी और सालंदी नदियों के बढ़ते जलस्तर ने चिंता बढ़ा दी है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: इस बीच मौसम विभाग ने उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ में मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तर प्रदेश, असम और मेघालय में भी कल तक तेज बारिश की संभावना है। आज शाम राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में हल्की बारिश हो सकती है। भारत की अश्मिता चालिहा ने कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट में महिला सिंगल्स का खिताब जीतकर अपना पहला BWF विश्व टूर खिताब हासिल किया है। फाइनल में अश्मिता ने चीन की हान चेन शी को हराया। अमेरिका में आयोजित विश्व एथलेटिक्स अंडर 20 चैंपियनशिप में भारत के पदकों की संख्या बढ़कर 3 हो गई है। भारत के बसंत कुमार मेघवाल ने हाई जंप में रजत पदक जीता जबकि शाहनवाज खान ने लॉन्ग जंप में कांस्य पदक अपने नाम किया। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। देशभक्ति और राष्ट्रीय एकता का जश्न मनाने के लिए देशभर में हर घर तिरंगा अभियान आज से शुरू। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा, औपनिवेशिक काल के कानूनों की जगह लाए गए 3 नए आपराधिक कानूनों का उद्देश्य प्रौद्योगिकी के माध्यम से समयबद्ध न्याय प्रदान करना है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने केरलम के मलप्पुरम में जब्त की गई अवैध विस्फोटकों की बड़ी खेप के मामले में एक और आरोपी को गिरफ्तार किया। ओडिशा में बारिश से कई नदियों में जलस्तर बढ़ा, फिर से बाढ़ की आशंका। उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ में आज मूसलाधार वर्षा की चेतावनी। और अश्मिता चालिहा ने कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट में अपना पहला BWF विश्व टूर खिताब जीता। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम सदाबहार नगमे आप सुनेंगे कुछ ही पलों में।

रवि ने इस गीत को सुरबद्ध किया। सहल लुधियानवी की रचना थी, महेंद्र कपूर की आवाज में। हमराज फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। हरे कांच की चूड़ियां इस फिल्म का गीत है। आशा भोसले की आवाज, शैलेंद्र के बोल, शंकर जयकिशन की तर्ज।

0: पालकी फिल्म का गीत आप सुन रहे थे मोहम्मद रफी का गाया, शकील बदायूनी के बोल थे, नौशाद का संगीत था और इस गीत से पहले सगाई फिल्म का गीत हमने आपको सुनवाया था, महेंद्र कपूर की आवाज थी, राजेंद्र कृष्ण के बोल थे, रफी का संगीत था।
1: एक आवाज जिसमें है जोश जुनून नशा,
2: कभी तो लिफ्ट करा दे, थोड़ी सी तो लिफ्ट करा दे।
1: एक आवाज जो आपको अपने साथ

0: फिल्म शागिर्द का दो गाना आप सुन रहे थे, मोहम्मद रफी लता मंगेशकर का गाया, मजरूर सुल्तानपुरी के बोल थे लक्ष्मीकांत, प्यारे लाल की तर्ज थी।
1: एक अभिनेत्री और उसके बनने की दास्तान,
2: चार औरतों की कहानी थी वो, और उन्होंने वहाँ से मुझे कास्ट किया। हमें बहुत मजा आया और हम लोग शाम को बैठ के म्यूजिक, क्योंकि हम लोग गाँव में शूट कर रहे थे जहाँ बिजली नहीं,
1: और बातें जिंदगी की जद्दोजहद की।
2: और आप इतने बड़े बड़े हॉलीवुड स्टार्स और इंटरनेशनल स्टार्स से बिल्कुल सेम प्लेटफॉर्म पे मिलते हो, तभी भी स्ट्रगल पीरियड था, -10। मेरे पास एक ही कोट था, साड़ी पहन के गई थी मेरी मम्मी की, बहुत अच्छी, लेकिन -10।
1: तनिष्ठा चटर्जी, सेल्यूलॉइड के सितारे, 11 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

राम और श्याम फिल्म का गीत था लता मंगेशकर मोहम्मद रफी का गाया। शकील बदायूनी के बोलों को सुरों में ढाला नौशाद ने। सदाबहार नगमे कार्यक्रम श्रोताओं यहीं संपन्न होता है।

विविद भारती से लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम मन चाहे गीत। सभी श्रोताओं का इस प्रोग्राम में हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। बादलों का दिल लिए, फूलों की मुस्कान लिए आ चुका है आपके रेडियो सेट पर आप ही के पसंदीदा गीतों का कार्यक्रम मन चाहे गीत। चलिए देखते हैं श्रोताओं आज कौन से गीत हैं शामिल और किन श्रोताओं की पसंद है शामिल आज के इस प्रोग्राम में। सुनने वालों को संगीता श्रीवास्तव का प्यार भरा नमस्कार।

गीत और संगीत थे रविंद्र जैन के, किशोर कुमार, लता मंगेशकर के युगल स्वरों में आप सुन रहे थे फकीरा फिल्म का ये गीत। सुनना चाहा आप सभी ने धमतरी राजिम से रमेश लाल धीवर, यदुवंश धीवर, कुणाल ममता और मुन्नी धीवर ने इस गीत को सुनना चाहा। रियासत हुसैन सिद्दीकी, नजमा रियाज, शमरीन मोहम्मद रेहान, माहिरा नूर, ये हमारे श्रोता हैं जसपुर उत्तराखंड के। और पालदानाका इंदौर से इसी गीत को सुनना चाहा हसीना बी मंसूरी, मोहम्मद रफी मंसूरी और बबलू मंसूरी ने इसी गीत की फरमाइश की। कुंडलिक मोरे, पांडुरंग मोरे, अश्विनी वैष्णवी ने हिंगोली वारंगा से। और मेहरनगर उमरखेड़ महाराष्ट्र से अभिजीत गवाड़कर, श्रीमती सरिता गवाड़कर, प्रिंस। और बदलापुर मुंबई के हमारे श्रोता हैं सिद्धांत गवाड़कर, प्रणीता, अर्जुन गवाड़कर। और बहादुरा नागपुर के ये श्रोता हैं वैशाली, शैलेश, सुमित और कुमार ध्वनि। और इसी गीत को सुनना चाहा जफर हुसैन, नईमा बेगम, कासिम अली, नदीम अली, जुनैद अब्बासी, ये हमारे श्रोता हैं दौलत बेग, दौलताबाग, मुरादाबाद से।

रोटी कपड़ा और मकान इस फिल्म का गीत आपने सुना। लता मंगेशकर, मुकेश और साथियों की आवाजें थी। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की बनाई धुन पर ये गीत था और लिखा संतोष आनंद ने। गीत की फरमाइश की भुज कच्छ गुजरात से विपिन भाई देविका और इनके परिवार के सभी सदस्य, और इस गीत को सुनना चाहा छत्तीसगढ़ बेमेतरा से हमारे श्रोता हैं भरतलाल सिन्हा, लव कुमार सिन्हा और लकी सिन्हा। इसी गीत के लिए हमें पत्र लिखे ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम और मेहराज जहानी। इन्होंने लिखा है आजाद नगर लक्सर से, ये हरिद्वार से ये पत्र आया है। और हमारे जो श्रोता हैं ये हैं कालेगांव जाफराबाद के सुधाकर, प्रशांत, सचिन, सर्वद, प्रथमेश प्रणाली और कल्पना ने इस गीत को सुनना चाहा। इसी गीत के लिए हमें पत्र लिखे मानिक सिंह बैसे, कावेरी विनीत बैसे, लल्ली लेखमणि बैसे। इन्होंने लिखा है शंकर नगर दुर्ग से। और ये हमारे श्रोता हैं शुभांगी अनिल वागबेकर, ये हैं ग्राम बालिंगा करवीर कोल्हापुर महाराष्ट्र के श्रोता। विविध भारती से आप सुन रहे हैं अपने ही पसंदीदा गीतों का कार्यक्रम मनचाही गीत।

लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की बनाई धुन पर साहिर लुधियानवी की ये रचना आपने सुनी लता मंगेशकर मोहम्मद रफी की गई इज्जत फिल्म का ये गीत था। बड़ा बाजार उदयपुर राजस्थान से गोपाल तंबोली कांता तिलक किरण सक्षम।

और लावण्य तंबोली की ये फरमाइश थी हिच्छा महासमुंद से अदालत दास वैष्णव मानसी शांति मानस और शांति ऋचा गायत्री वैष्णव की ये फरमाइश थी और ये पत्र है छत्तीसगढ़ के इस जगह का नाभा जिला पटियाला से पंजाब सोमदत्त केरव और ज्योति रानी और गुरमंत की ये फरमाइश थी और जोधपुर से गिरधारी लाल विश्वकर्मा ने इस गीत को सुनना चाहा था। नचगांव जिला वर्धा महाराष्ट्र से आरती भगत वैशाली भगत पूर्वी भगत लता प्रदीप विशाल रामचंद्र भगत और चंद्रकांत भगत और इनके परिवार के सभी सदस्य इस गीत को सुनना चाहते थे।

बख्शी का लिखा अनजाना फिल्म का ये गीत आपने सुना लता मंगेशकर, आवाजें थी सुमन कल्याणपुर और मोहम्मद रफी की, ये आवाजें थी। अनजाना फिल्म का गीत आपने सुना, आनंद बख्शी का लिखा। पुराना तालाब डुमराओं से वलीउल्लाह अंसारी, आसमान नाज वसीम अकरम की ये फरमाइश थी। और इस गीत को सुनना चाहा, इसी गीत को बीकानेर राजस्थान से हुसैन भिश्ती, सुल्ताना भिश्ती, असलम और विनोद, इस गीत के लिए हमें पत्र लिखे। इस्लामपुर जिला बुल्ढाना, सहदेव दामोदर, शशिकला कुमारी, साधना सुमेद कुमार दामोदर की ये फरमाइश थी। चंडीगढ़ से सतीश, अनेजा, विमला, शेफाली, मास्टर डेविस और शेफी की ये फरमाइश है। और टीवी टावर नागपुर से डूंगर दिवे और दीक्षा, रमा ताई, सीमा ताई और राहुल की ये फरमाइश है। और इसी गीत के लिए लेक सिटी उदयपुर से पत्र आया है। प्रकाश चंद्र, इंदिरा देवी, शैलेंद्र बाबू, सुरुचि, नेहा और इनके परिवार के सभी सदस्यों की ये फरमाइश है। और श्रोताओं, इस गीत के पहले हमने आपको इज्जत फिल्म का गीत सुनवाया था। चंद्रेश गौहर, वंदना गौहर, मयंक गौहर और तन्वी गौहर की भी फरमाइश थी।

आप ये गीत सुन रहे हैं श्रोताओं, कभी कभी फिल्म से लता मंगेशकर, किशोर कुमार की आवाजें हैं, साहिल ध्यानवी के बोल खयाम की तर्जी है। और इस गीत के लिए फरमाइश भेजी मछली गोदाम कौदीमुड़ा रायगढ़ से भाई पुरुषोत्तम सिंह, उषा सिंह, ऋषभ, प्रियंका, पूजा सिंह, लीलू और रीतू की फरमाइश है। ये बाबूराम आनंद, बीना खुशी, नंदग्राम, गाजियाबाद से इन्होंने पत्र भेजा है। पीबी कुलथे, हनुमंत कुलथे, समर्थ कुलथे, इनकी फरमाइश आई है बीड़ शहर से।

और कभी कभी फिल्म के इस गीत के लिए जिसे गाया लता मंगेशकर और किशोर कुमार ने, जगमाल सिंह डागला, हैप्पी डागला, इनकी फरमाइश आई हनुमान जंक्शन राजस्थान के। ये हमारे श्रोता हैं बागपत उत्तर प्रदेश से, संजय ढींगिया, नमन ढींगिया, अपा ढींगिया, और ये हमारे श्रोता हैं मालेगांव से अरविंद, सुनीता, रोहित और निखिल सारकर, ये हमारे श्रोता हैं। और चौक रोड यानी गांधी चौक रोपड़ पंजाब से हरदेव, बलविंदर, जीतेंद्र और मीका विरक की फरमाइश हमने आज शामिल की। आपके पत्रों का श्रोताओं रहता है हमें इंतजार। मनचाहे गीत कार्यक्रम का यही था आखिरी गीत और हमें रहेगा आपके पत्रों का इंतजार। मनचाहे गीत कार्यक्रम अब संपन्न होता है, दीजिए इजाजत संगीता श्रीवास्तव को नमस्कार और जरूर लिखिए पत्र अपने पसंदीदा गीत मनचाहे गीत कार्यक्रम के लिए। नमस्कार।

0: नाटी तरंग में कल हमने आपको सुनवाया था नाटक किसी एक फूल का नाम लो का पहला भाग। मूल गुजराती लेखक मधुराय, हिंदी रूपांतरण ज्योति व्यास, संपादन चिरंजीत, निर्देशक सुशील बनर्जी। आज सुनिए दूसरा भाग किसी एक फूल का नाम लो।
1: नहीं, आप सब लोग कुछ छिपा रहे हैं। अदालत फिर आपसे पूछती है, शेखर खोसला को आप जानते हैं? शेखर खोसला को आप जानते हैं? शेखर खोसला को आप जानते हैं?
2: शेखर खोसला के बारे में आप क्या जानते हैं? शेखर खोसला के बारे में आप क्या जानते हैं? शेखर खोसला के बारे में आप क्या जानते हैं? शेखर खोसला के बारे में आप क्या जानते हैं?
3: जस्टी आवाज
2: के बारे में आप क्या जानते?
3: मुकदमा खत्म हुआ। कामनी को उम्र कैद की सजा हो गई, लेकिन अदालत की ये आवाज मेरा पीछा नहीं छोड़ रही, मेरा पीछा नहीं छोड़ रही।
4: प्रीतम सोनी,
3: कौन?
4: मुझे नहीं पहचानते? प्रीतम अपने अंतःकरण की आवाज को भी नहीं पहचानते? उस अदालत में तुमने झूठ बोला। स्वाति, पाठक, सुंदर और केशव सबके साथ मिलकर तुमने अदालत में कहा था कि तुम शेखर खोसला के बारे में कुछ नहीं जानते।
3: नहीं,
4: लेकिन क्या ये सच है?
3: कामनी को बचाने के लिए औरों की तरह मुझसे जो कुछ बन पड़ा किया, सच को छिपाया, सच को छिपाया।
4: क्या अब अपनी अदालत, अपने अंतःकरण की अदालत में भी वो सब छुपाओगे? झूठ छुपाओगे?
3: नहीं,
4: बोलो।
3: नहीं, अब सच सच कहना होगा। मैं जानता हूं कि कामनी ने जानबूझकर, सोच समझकर शेखर खोसला का खून किया। शेखर खोसला उसे ब्लैकमेल करना चाहता था, ब्लैकमेल करना चाहता था।
5: वाह, वो तुम्हें कैसे ब्लैकमेल कर सकता है? तुम्हारे पास पैसे कहाँ है कामनी?
6: प्रीतम भाई, मेरे पास पैसे ना हो, लेकिन जो है वही मांगता है वो।
5: क्या मतलब?
6: मतलब मेरा रूप, मेरा शरीर, मैं आपको कैसे समझाऊं?
5: ये बात और कोई भी जानता है?
6: नहीं।
5: पाठक भी नहीं?
6: नहीं, पाठक भी नहीं। सबसे ज्यादा डर तो मुझे पाठक का ही है। ये बात जानते ही पाठक समझ जाएगा कि मैं उससे डरती हूं, उसे खो देने के लिए तैयार नहीं। तब क्या वो मुझे अपनी बांदी न समझेगा? मेरा मनमाना इस्तेमाल नहीं करेगा? शेखर खोसला की तरह वो मुझे ब्लैकमेल नहीं करेगा?
3: तुम्हारी बात सही है कामनी। प्रेमी कमजोरी जानकर और भी बेरहम हो जाता है। स्वाति मेरी कमजोरी जानती है, मैं कुछ भी नहीं कर सकता, कुछ भी नहीं कर सकता उसका। और सुंदर का कड़वा प्रसंग छेड़ने की मुझमें हिम्मत नहीं है। और वो जानती है कि मैं उसे प्यार करता हूं, मैं उदारता का ढोंग रचता हूं। पर रात दिन क्या बीतती है मुझ पर, वो मैं ही जानता हूं। कई बार सोचता हूं नाटक ही नाटक में पिस्तौल के अंदर असली गोली भरकर आत्महत्या कर लूं, या कहीं चला जाऊं। पर मुझे डर है स्वाति और सुंदर मुझ पर हंसेंगे, हंसेंगे। और इस तरह अनजाने ही मैंने यह ख्याल कामनी के दिमाग में डाला, पिस्तौल में असली गोली भरकर आत्महत्या करने की। उसने आत्महत्या न करके खून किया और जिंदगी भर की कैद पाई। उस घटना के लिए मैं अपने आप को अपराधी मानता हूं। भले ही अदालत में कोई बात नहीं खुली, आखिर तक बिल्कुल चुप रही।
7: शेखर खोसला का राज अभी तक राज ही है,
3: पर मैं अपने आप को उसकी आत्महत्या के लिए जिम्मेदार मानता हूं, जिम्मेदार मानता हूं, जिम्मेदार मानता हूं।
8: ओ, ये कौन आमर आई समय कौन है?
9: भैया मैं हूँ, मैं यानी केशव ठाकर।
8: क्या
9: गुड इवनिंग यानी नमस्कार। आपने मुझे बुलाया था ना?
8: ओ हाँ आओ।
9: नमस्कार कावनी जी।
6: नमस्कार, कैसे हैं केशव जी?
9: अजी मजे में हूँ। सुंदर भाई ने कहा था एक नाटक चाहिए, सोचा दे आऊं।
8: तुम जरा जल्दी आ गए।
9: मैं पहले पैदल आ रहा था, फिर सोचा बस में चलूं। ये रही नाटक की कापी। ठीक है तो मैं जाऊं।
6: फिक्र कीजिए, जल्दी भी क्या है?
9: क्यों, जल्दी होगी तभी बस में आए हैं। नहीं नहीं, मुझे कोई जल्दी नहीं। हाँ हाँ, मैं तो नाटक सुनाना चाहता था।
6: बैठिए बैठिए, क्यों जल्दी है?
8: हम कुछ जरूरी बात कर रहे थे।
9: जरूरी बात? अति सुंदर अति सुंदर। हाँ हाँ कहिए, मैं कुछ सलाह दे सकता हूँ तो
8: हमारी निजी बातें थी।
9: निजी बात? ओ समझा, आप लोग शायद मेरा मतलब है शेखर खोसला के बारे में बात कर रहे थे। वो बात ये थी कि मैं बाहर इस सोच में खड़ा था कि दरवाजा खोलूं या नहीं, और तभी आपकी बातें सुनाई पड़ी जी।
8: छिप छिप कर बातें सुनते हो बदतमीज।
6: क्या हुआ केशव जी?
9: जी
6: आप नाटक पढ़िए ना, लेखक के मुंह से सुनने में कुछ और ही मजा है।
9: जी जी बहुत अच्छा बहुत अच्छा। हाँ तो सुनाता हूँ, लेकिन सुनिए, आप लोग शेखर खोसला को जानते हैं
8: क्या? तुम जानते हो?
9: जरूर जरूर, बहुत अच्छी तरीके से। अरे कुछ ही दिन पहले वो अफ्रीका से आया है।
6: वो शेखर खोसला? आपके शेखर खोसला कोई और ही होंगे।
9: अजी तो आप किस खोसला की बातें कर रहे थे?
6: होगा कोई, छोड़िए नाटक पढ़िए ना।
9: हाँ तो वो नाटक का नाम है रात की रानी।
6: वाह कैसा खूबसूरत नाम है, रात रानी। आगे
9: आगे आगे उसमें पात्र हैं एक लेखक और।
8: आत्मकथा लिख लाए हो?
9: नहीं नहीं, आत्मकथा नहीं लिख लाया। हाँ वैसे देखा जाए तो आत्मकथा ही है।
8: ये क्या झमेला है?
9: हाँ वो मैं ये कह रहा था कि मैं शेखर खोसला नाम के आदमी को जानता हूँ।
8: क्या कहा?
9: आपने पूछा था ना कि मैं शेखर खोसला नाम के आदमी को जानता हूँ या नहीं।
8: तो तुम जानते हो?
6: जानते होंगे, इसमें क्या खास बात है? एक ही नाम के बहुत से लोग हो सकते हैं, इसमें क्या?
9: नहीं नहीं, शेखर खोसला को तो मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। अरे हमने अपने बुरे और अच्छे दिन साथ साथ बिताए थे। हाँ सालों गुजर गए, 5-6 साल पहले हम बंबई की कोठरी में साथ साथ रहते थे। अरे वो बेकार था और मैं भी। फिर वो अफ्रीका चला गया, वहां से बहुत सा धन कमाकर जब लौटा और अरे छोड़िए भी, किस पछड़े में मैं पड़ गया। हाँ अजी वो अब मैं नाटक पढ़ूं?
6: हाँ हाँ पढ़िए ना।
8: नहीं, पहले शेखर खोसला के बारे में सब कुछ बताओ।
9: शेखर खोसला? हाँ शेखर खोसला बड़ा होशियार आदमी था, हाल ही में अखबार में नाम भी छपा था उसका और फोटो के साथ।
8: अच्छा?
9: हाँ, अरे अपनी जात के किसी समारोह में मुख्य अतिथि था वो।
8: उम्र क्या है?
6: सुंदर तुम बेकार परेशान हो रहे हो, केशव जी किसी दूसरे शेखर खोसला की बात कर रहे हैं।
9: मुझसे यही कोई 2 साल बड़ा होगा।
8: मतलब ये कि शेखर खोसला 30-32 का है,
9: ठीक। और वो कहता था, अरे लड़कियां उस पर जान देती हैं जान।
6: और क्या?
9: और मैं सोचता था कि कामनी देसाई का मतलब ये है कि आपका आपका रूप ऐसा है कि
8: क्या
9: कि शेखर इन पर जान दे।
8: शेखर खोसला का रंग कैसा है?
9: ये गोरा।
8: रंग गोरा है, आंखों में भूरापन, काले बाल और चौड़ा माथा। वो आदमी कैसा है?
9: अजी बहुत चालाक। उसी पर तो ये नाटक लिखा है मैंने। हाँ।
8: देखो केशव, मुझसे बाद में मिलना, एक जासूसी कहानी बताऊंगा।
9: अरे अरे, लेकिन भैया ये नाटक पढ़कर तो देखिए।
8: कह दिया ये नहीं चलेगा, नया नाटक तुम्हें सामने बिठाकर लिखवाना पड़ेगा।
9: अच्छी बात है।
8: और इस तरह अपने पास बैठाकर हमने उस बौड़म से नाटक लिखवाया। बाद में कामनी ने माना कि शेखर खोसला ने उसके साथ बलात्कार किया था। कुछ दिनों वो उसके प्रेम में पागल रही और उसने शेखर को बेशुमार पत्र भी लिखे थे। अफ्रीका से लौटने पर शेखर ने कामनी को कीर्ति वैभव के शिखर पर देखा तो उसे अपने वश में रहने के लिए पुरानी बात जाहिर करने की धमकी दी। कामनी ने पाठक के दर से शेखर के सारे पत्र जला दिए। नाटक में पिस्तौल वाला प्रसंग मैंने ही रखवाया था। पता नहीं कैसे कामनी ने उसमें असली गोलियां डाली और शेखर खोसला का खून कर दिया।
1: शेखर खोसला को आप जानती हैं? स्वाति सोनी, बताइए शेखर खोसला के बारे में आप कुछ जानती हैं?
6: मैं जानती हूं, लेकिन ओह, कामिनी को उम्र कैद की सजा हो गई। वो हमारे बीच से चली गई, लेकिन अदालत का ये प्रश्न मेरे दिल में दिमाग में अब भी गूंज रहा है, मुझे बेचैन कर रहा है। हाँ, शेखर खोसला से उसे बदला लेना था। क्या कहा, अब वो तुम्हें ब्लैकमेल कर रहा है?
10: हाँ भाभी।
6: अरे बुद्धू, अगर किसी भी तरह वो तुम्हें ब्लैकमेल करता तो तुम्हारा व्यवहार ऐसा ना होता जैसा है। मुझे तो लगता है तुम कोई धोखा खड़ा कर रही हो।
10: अभी ये धोखा नहीं, हकीकत है। और अब मैं तुम्हें साफ साफ बता दूं, मुझे शेखर खोसला से बदला लेना है।
6: तुम्हारे प्यार को ठुकराया इसलिए? कैसे लोगे बदला?
10: लगता है वो मेरे साथ चाल चल गया।
6: क्यों, तुमसे शादी करने से इनकार कर दिया?
10: लेकिन नहीं, तब वो अफ्रीका जा रहा था। मैंने जब उससे कहा कि मैं उसके साथ किसी भी तरह नहीं चल सकती तो उसने साफ कह दिया, चिंता रहे तो फिर मिलेंगे वरना अलविदा।
6: वो अफ्रीका से लौट आया है?
10: हाँ हाँ भाभी, ये देखो अखबार में छपा हुआ उसका ये फोटो देखो। ये देखो, इस ग्रुप में दाएं से तीसरा यही है शेखर खोसला।
6: हाय, कैसा है?
10: गोरा, पूरी आंखें, चौड़ा माथा, नुकीली नाक, तेज मिजाज, मजबूत जिस्म।
6: तो क्या आप उससे शादी करेगी और उसकी जिंदगी तबाह करके बदला लेगी?
10: क्या करूं भाभी, मेरी कुछ समझ में नहीं आता। भाभी, मेरी कुछ समझ में
6: अरे
10: नहीं आता।
6: ये सब चालबाजियां छोड़ दे, समझी? अब उसे भूल जाओ और पाठक से शादी करके चैन से जिंदगी बसर करो।
10: भाभी, आप समझती क्यों नहीं, जिस आदमी को तुमने उसकी कच्ची सच्ची जवानी में पाया हो और बहुत दिनों अपनी अमानत समझा हो। अब वो आदमी अचानक भव्य पुरुष बन जाए, कसकर तुम्हारी उंगलियों में फंसे शीशे की तरह एकाएक सारी दुनिया का चकमकाता सितारा बन जाए, तो तुम्हें ऐसा नहीं लगेगा कि तुम लुट गई?
11: तुम्हें जो करना है करो, लेकिन कामनी प्लीज मेरे साथ ऐसी बातें ना करो, नहीं तो मुझ पर भी भूत सवार हो जाएगा।
10: अभी मैं बदला लेना चाहती हूँ, मुझे उस आदमी को मिटा देना है।
11: तो शादी कर लो और इस तरह तुम्हारा घायल अहम शांत हो जाएगा, फिर उसे सारी जिंदगी सता कर मारना, तड़पा तड़पा कर खत्म कर देना उसे। लेकिन कामनी को इतना सब्र न था, उसने केशव ठाकर के जरिए शेखर खोसला को नाटक में आने का निमंत्रण भिजवाया और उसे मार कर ही चैन की सांस ली। मैंने ही उस मनुष्य घड़ी में उसे ऐसी बुरी सलाह दी। मैं उस अपराध के लिए जिम्मेदार हूँ, सजा मुझे मिलनी चाहिए, मुझे मिलनी चाहिए सजा, मुझको सजा मिलनी चाहिए, मुझको सजा मिलनी चाहिए, मुझको मुझको सजा मिलनी चाहिए।
1: शेखर खोसला को आप जानते हैं? शेखर खोसला के बारे में आप कुछ जानते हैं? बोलिए जगन्नाथ महाशंकर पाठक, शेखर खोसला को आप जानते हैं?
8: हाँ जानता हूं, लेकिन उस अदालत की आवाज मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ रही?
12: यह आवाज तुम्हारा कभी पीछा नहीं छोड़ेगी, क्योंकि तुम भी अपराधी हो। बचने के लिए तुमने अदालत में छूट दिया। कामनी किसी और से भी प्रेम करती है ये जानकर तुम ईर्ष्या और शक की आग में जल उठे।
8: हाँ, मैं ईर्ष्या की आग में जल उठा था।
10: पाठ्य, एक आदमी मुझे परेशान कर रहा है।
8: कौन है वो? वो लेखक केशव ठाकर?
10: नहीं, उसका एक दोस्त है।
8: कैसे परेशान कर रहा है?
10: वो कहता है तू जगन्नाथ पाठक से शादी कर, नाटक कर, सब ठीक है, लेकिन मुझसे संबंध रख।
8: मतलब
10: वो जब भी चाहे किसी बहाने में उससे मिलूं।
8: और तुम ये सब ना मानो
10: तो वो तुम्हें उड़ा ले जाएगा।
8: उस आदमी का नाम क्या है?
10: शेखर खोसला।
8: शेखर खोसला?
10: हाँ पाठक, पर मैं तुम्हें ये बताती कैसे?
8: कामनी, या तो वो आदमी पागल है या बेवकूफ, या फिर तुम मेरे सामने ढोंग लच रही हो।
10: क्यों?
8: तुम्हारी बात मुझे सच्ची नहीं लगती।
10: तुम डर गए ना, तुम कायर हो, तुम दर्शकों के सामने अपनी महानता सिद्ध करना चाहते हो, शेखर और अपने दोस्तों के सामने तुम दोनों मेरा इस्तेमाल करना चाहते हो, चतुर स्वार्थी नीच कंगाल।
8: एक शब्द भी और कहा तो गला घोटूंगा।
10: वाह मेरे प्रेमी, मुझे बचाने के बदले खुद ही मुझ पर हाथ उठा रहे हो, शक करते हो, और तुम तो मुझसे शादी करना चाहते थे।
8: हाँ, शक के इसी डरावने क्षण में मेरे दिमाग में पिस्तौल के अंदर असली गोलियां भर देने का ख्याल आया, और उस दिन मंच पर नाटक शुरू होने से कोई 15 मिनट पहले मैंने पिस्तौल में चुपके से असली गोलियां भर दी, ये जानते हुए कि कामनी ने एनसीसी में पिस्तौल चलाना सीखा है और हाथ में आते ही वो पिस्तौल चलाएगी, और इस प्रकार

0: देश पांडे की भूमिका करने वाला वो लेखक केशव ठाकर मर जाएगा और ये एक दुर्घटना ही मानी जाएगी। मगर बात झूठी नहीं थी, शेखर खोसला सचमुच जीता जाता इंसान था। कामनी उसे दर्शकों में बैठा देख सुखबुद्ध खो बैठे और उसे गोली का निशाना बना डाला, लेकिन सजा उसे नहीं मुझे मिलनी चाहिए। सजा मुझे मिलनी चाहिए क्योंकि शेखर खोसला की हत्या के लिए जिम्मेदार मैं हूं।
1: शेखर खोसला को आप जानते हैं? केशव ठाकर, आप चुप क्यों हैं? बोलिए, शेखर खोसला के बारे में आप क्या कुछ जानते हैं?
0: ये आवाज कामनी को सजा हो गई, शेखर खोसला हमेशा के लिए खत्म हो गया, लेकिन अदालत की आवाज खत्म नहीं हुई। शेखर खोसला मेरा मित्र था, उससे कई बार रुपए पैसे से मैंने मदद मांगी, लेकिन वो अच्छा आदमी नहीं था, वह बदमाश था। उसने मेरी पत्नी को भी मेरी आंखों में धूल झोंककर अपना बंदी बना लिया था। सुध बुध खत्म कर देने वाले कुत्रों की तरह वो मुझे निकले जा रहा था। उसका दर्द, उसकी छूट किसी दूसरे को दे देने के सिवा मेरे पास कोई चारा नहीं था।
2: केशव जी,
0: कहिए जी।
2: आपको नाटक के लिए कथानक हमेशा जीवन से मिलता है ना?
3: आप नाटक रात की रानी की बात कर रही हैं कामनी जी?
2: आप बता रहे थे ना कि आपने ये नाटक अपने आप, अपनी पत्नी और शेखर खोसला पर लिखा है?
3: और क्या?
2: और ये नया नाटक किसी एक फूल का नाम लो।
3: वो हाँ, वो तो जैसा आप सबने कहा वैसा।
2: बड़े गहरे हैं कवि जी,
0: बड़े गहरे हैं कवि जी। कोकीन जैसा नशा था कामनी के दिमाग में शेखर खोसला की मित का, कहानी का। उसे नशे की आदत पड़ गई थी। रोज रिहर्सल के बाद नृत्य का अभ्यास करते वक्त उच्चारण ठीक रखने के बहाने मुझे बुलाती और मुझसे बातें करती रहती। इसी तरह उसके अहम को संतोष मिलता और पाठक अंधे प्यार के अंधी जलन में दीवाना होकर मुझसे और भी ज्यादा शराफत से पेश आता। उसके कहने से मैंने नाटक में देश पांडे का पाठ करना स्वीकार कर लिया था और फिर नाटक के प्रदर्शन से एक दिन पहले।
2: सुनिए कवि जी,
0: जी
2: कल शो है ना?
0: हाँ।
2: कल पाठक ने सवेरे 10:30 बजे ड्रेस रिहर्सल रखी है, क्या आप उससे 1 घंटा पहले ठीक 9:30 बजे आ सकते हैं?
0: जी,
2: एक जरूरी बात करनी है आपसे।
0: कामनी जी, मैं ठीक 9:30 बजने से 2 मिनट पहले थिएटर हॉल में पहुंच जाऊंगा आपकी खातिर।
2: कवि जी।
0: जी जी,
2: आप आ गए?
0: मैं बिल्कुल आ गया।
4: ये पहले पंक्ति के तो
0: टिकट
4: मैंने खरीदे हैं अपने पैसे से।
0: टिकट किस लिए?
4: ये तो टिकट शेखर खोसला को पहुंचाने की जिम्मेदारी आपकी। सीट नंबर A14 और 15। उससे कहिएगा जरूर आए, नहीं तो उसके घर जाकर मैं उसका खून करूंगी।
0: समझ गया। मतलब ये कि आप शेखर खोसला को देखना चाहती हैं और अपनी मनगढ़ंत कहानी को।
4: हाँ, अपनी मुट्ठी के शीशे को देखना है। देखूं मेरे मन की कल्पना से ज्यादा उजला है या ज्यादा काला। देखूं आपके उस खूबसूरत चित्चोर को।
0: और आपको अपनी खोज भी तो सच्ची कर दिखानी है कामनी जी।
2: आप बड़े गहरे हैं कवि जी।
0: और दूसरे दिन शाम को नाटक शुरू हुआ। पर्दा उठने से कुछ ही देर पहले थिएटर हॉल में शेखर खोसला सबसे अगली पंक्ति की A14 नंबर की सीट पर आकर बैठ गया था। पता नहीं कामनी ने कब और कैसे पिस्तौल में असली गोलियां भरी। कोई नहीं जानता उसे मेरा खून करना था या शेखर का। और शेखर खोसला की हत्या के अपराध में कामनी को उम्र कैद की सजा दी। जेल में मैं उसे देखने गया।
2: शेखर
0: मैंने उसे अजीब हालत में पाया।
2: शेखर खोसला
0: जेल की कोठरी।
2: हाँ पूरा सच।
0: बकली से।
2: सच के सिवा कुछ नहीं।
0: शेखर खोसला की बातें कर रहे हैं।
2: शेखर खोसला झूठ बोलोगे तो जेल की हवा खानी पड़ेगी। बताओ बताओ इस मुलसिमा कामनी देसाई को जानते हैं? जवाब तो हाँ या ना। रात को गर्माई मिली है जिसे तुम गाया प्रेमी चचो भाई और नीच माँ की कैद से छुड़ा लाए उस कामनी देसाई को तुम नहीं जानते? पर शेखर मैं तुम्हें जानती हूँ। मैंने तुम्हारी पूरी पत्नियों में अपना घोंसला बनाया है। तुम्हारी लंबी तीखी नाक से मैंने अपनी जिंदगी में गर्म सांसें ली हैं। तुम्हारी प्यारी मजबूत बाहें पकड़कर तुम्हें मैं आसमान से यहां उतार लाई अपने हाथों में। और अब कहां गई तुम्हारी वो छेदती हुई आंखें? कहां गई तुम्हारी वो खमंड से तनी हुई गर्दन? चुप क्यों हो शिखर? जवाब तो मुझसे बातें करो। मुझसे बातें करो। मुझसे बातें करो शिखर। मुझसे बातें करो।
5: किसी एक फूल का नाम लो। इस नाटक का दूसरा और अंतिम भाग अभी आपने सुना। मूल गुजराती लेखक मधुराय, हिंदी रूपांतरण ज्योति व्यास, संपादन चिरंजीत, निर्देशक सुशील बनर्जी और प्रस्तुति आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र की। हिंदी सिनेमा की कुछ कल्ट फिल्में उनके नाम पर हैं। स्पर्श, कथा, दिशा और चश्मे बद्दू।
6: उन्होंने कहा कि देखो अब सिर्फ हम नौजवान तीनों दिखा रहे हैं, सिर्फ कॉलेज के युवक नहीं, उनके माँ बाप भी आए, उनके चाचा चाची आए, एक दादी माँ डाली, बाप डाला, एक भाई डाला वगैरह वगैरह, एक पान वाला डाला। सईद को पकड़ा लिया और उसने कहा फिर मुझे वी हैव टू गो टू जामा मस्जिद, पुरानी दिल्ली जाना पड़ेगा। मैंने कहा पुरानी दिल्ली क्या करोगे जाके? पान वाले का अगर मुझे करना है रोल तो मुझे देखना नहीं चाहिए पान वाले वगैरह? तो मैंने कहा ये नसीर के बाद ये
7: एक और लग गया तेरे पीछे क्या?
8: अरे ललन मियां आप काट देना रास्ता, अब मेरा काम नहीं होगा।
5: दास्तान सई परांजपे की, उजाले उनकी यादों के, 19 जुलाई से 9 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: उजाले उनकी यादों के। इस कार्यक्रम में आज निर्देशिका और पटकथा लेखिका पद्मभूषण सई परांजपे अपनी यादों के उजाले बिखेरने आई हैं हमारे साथ। आपसे बातचीत की है यूनुस खान ने। पिछले सप्ताह हमने इस लंबी बातचीत की तीसरी कड़ी सुनी थी, आइए आज सुनते हैं चौथी और अंतिम कड़ी।
1: कथा की तरफ आते हैं, कथा फिल्म का प्लॉट कहाँ से आया था?
2: हाँ, कथा का प्लॉट ये एक प्लॉट है कि जो मेरे से नहीं आया,
1: एक किसी और जगह से आया।
2: हाँ, बिल्कुल। ये मैंने एक प्ले देखा, ससा आणि कासव, शंगो साठे करके एक बहुत हमारे लायक मराठी राइटर है थे रादर, और उनका नाटक था जो मैंने मंच पे देखा। अब नाटक मुझे ठीक ही लगा, मतलब जिस तरह से वो आगे चलता गया वो किसी हद तक रूखा लगा थोड़ा सा, और मेरे लिए तो बात नहीं बनी। लेकिन उसकी जो ये थी, क्या कहते हैं, अंडरलाइंग कथा, नहीं कथा से भी उसकी जो प्रेरणा या उसका जो एक मतितार्थ था, हाँ, वो इतना खूबसूरत और इतना सही था कि क्या मैं बताऊं। मतलब उसका कहना था इस नाटक का कि आजकल कंटेंट को कोई कीमत नहीं रही। हाँ, तुम क्या हो इससे ज्यादा तुम कैसा पेश आती हो,
1: दिखावा क्या है,
2: ये दिखावा क्या है, ये माने रखता है आजकल के जिंदगी में। और जो सही है, अफसोस है कि आज भी ये बिल्कुल सही है। और माल को नहीं बल्कि पैकेजिंग को महत्व है। इस तरह वो उसको चांदी के कागज में लपेटा जाता है, उसको रिबन किस तरह से लगाई जाती है और उसमें और चमचम डाली जाती है वगैरह वगैरह। तो इट इज अ वेरी वेरी रियलिस्टिक ऑब्जर्वेशन और बहुत ही बढ़िया मुझे लगा। मैंने कहा वाह वाह वाह, ये क्या बात है। अगर ये मैं लेके, ये तत्व को लेकर मैं एक फिल्म बनाऊं और कहानी मैं पूरी अपनी अलग ही बनाऊं तो चलेगा क्या? मैंने टट्टे साहब से कहा कि आइडिया तो आपका है, आपको पूरी तरह हम क्रेडिट दे देंगे कि आपसे हमने प्रेरणा ली, लेकिन बाद का सब मेरा, चलेगा क्या? उन्होंने कहा जो मर्जी करो। वो अच्छी तरह जानते थे मुझे, बहुत मतलब घरेलू हमारी पहचान और दोस्ती सी थी। तो उन्होंने कहा जो मर्जी करो, ठीक किया, जो मर्जी किया मैंने और पूरा ही वो बदल दिया। उसमें सारे कैरेक्टर्स, वो तो प्ले में नहीं है, जो वो बापू का कैरेक्टर आता है जो घंटी बजाते रहता है, या वो सिंधी नमिया बीबी है, या ये जो डालडा का टमरेल लेके घूमता है वो आदमी, या वो दादी अम्मा किससे सुनाने वाली, वो सब सब सब मेरी कल्पना के बच्चे।
1: और चौल को आपने जिस तरह से पकड़ा अपने सीरियल्स में भी और अपनी फिल्मों में भी, तो वो गुलजार साहब ने जो कहा था द मिनिस्टर ऑफ चौल,
2: आपको मालूम है, वो बहुत ये करते थे, मजाक उड़ाते थे मेरा कि ये सही है, चौल का क्या चक्कर है यार, तुम तो मिनिस्टर ऑफ चौल हो। तो ये मुझे बड़ा बचपन से ही फैसिनेशन रहा है चौल्स का, शायद इसलिए कि हमारे घर में, हमारे बंगले में मैं अकेली, मेरी माँ अकेली, अदाना अकेले, मतलब हम तीनों, तीन जनरेशन के तीन लोग, और बड़े प्यार से हम रह रहे थे। लेकिन मुझे अपने उम्र का या और भी तो जरूरतें होती है ना बच्चे की, तो फिर मैं इधर उधर पड़ोस में, बगल में इधर उधर जाती थी, या हमारे और दूर के कोई रिश्तेदार हो उनके यहाँ जो ढेर सारे बच्चे होते थे, खूब मामा मामियां मौसी चाचियां होती थी, उधर जाती थी। और इतना मुझे वो अच्छा लगता था, उनका आपस में लेन देन सुनना, उनकी नोक झोंक सुनना, उनके झगड़े सुनना, उनका त्योहार मनाना वगैरह वगैरह वगैरह। तो मैं बड़ा जाके उसमें समाने की कोशिश करती थी। और मुझे लगता है ये चौल्स का और ये इकट्ठा रहने का जो फैसिनेशन है ना, कि मतलब अलग अलग बेशक तुम्हारे घर हो, दीवारें अलग अलग हो, लेकिन छप्पर तो एक है।
1: बहुत सुंदर बात। हाँ, वाह।
2: तो इसका मुझे बहुत मोह रहा है बचपन से।
1: गुलजार साहब से जुड़ी एक और घटना है।
2: हाँ,
1: वो भी बताइए।
2: कौन सी?
1: वो डायलॉग सुधरवाने वाली।
2: नहीं, कहीं वो सुन ले तो। नहीं, वो एक जमाना था, वो अफसोस कि इतना मिल नहीं सकते हम, लेकिन तब मैं बार बार उनको कुछ उर्दू लफ्ज अगर मुझे चाहिए होता या किसी उर्दू लफ्ज का सही मतलब चाहिए होता तो मैं उनको फोन करती थी कि साहब इसका क्या मतलब है वगैरह वगैरह। तो एक दिन उन्होंने कहा सही, अब मैंने तय कर लिया, मैंने बहुत सोचा है इस बात पर, बहुत सीरियस लिया कि ये मैं तुम्हें बहुत मुफ्त में सलाह देता रहता हूँ और अब आगे से मैं चार्ज करूंगा। तो और सचमुच फिर वो कहते थे देखो 2 रुपए 50 पैसे हो गए अभी तक, वो कुछ 58 चार्ज होता था। क्या अब
1: एक नहीं? बार की सलाह पे 58 यानी 5 बार की सलाह पे 2.5 रुपए हुए थे।
2: तो वो याद दिलाते थे कि तुमने मेरे पैसे अभी नहीं चुकाए, नहीं वो करो जल्दी, ऐसी बात अच्छी नहीं वगैरह वगैरह। तो वेरी लवली पर्सन, वेरी डिलाइटफुल।
1: ये जो कथा की कास्टिंग आपने की,

0: और ये दूसरा जो है चंट होगा, कि दूसरे को ठगाने वाला, अपनी चलाने वाला वगैरह वगैरह। तो मैंने स्क्रिप्ट दोनों को पढ़ने दिया, दोनों ने कहा बढ़िया स्क्रिप्ट, मजा आ गया मजा आ गया। कब पढ़ो? तो ऑब्वियसली राजा राम मैं हूँ। मैंने कहा ना ऐसा नहीं है, उल्टा है। तो मैंने कहा क्या, जैसे क्या बात कर रही हो, डोंट बी सिली। एंड आई सेड नहीं, आई एम सीरियस, एब्सोल्युटली अफसाइड। और नसीर ने कहा मैं राजा राम, तुम भूल गई हो मैं कितना स्मार्ट बंदा हूँ और कैसे मेरा रॉब है ये फला निमका, क्या लोग मुझे मान लेंगे ये भोला भाला बुद्धू राजा राम? डू यू थिंक एनीवन विल एक्सेप्ट मी एज राजा राम? एंड फारूक ने यही कहा कि तुम बताओ कि मुझमें कहाँ बदमाशी तुम्हें नजर आई, बता तो दो जरा, इतना मैं सीधा साधा नेक आदमी वगैरह वगैरह। तो मैंने कहा यार तुम लोग क्या चाहते हो आखिर, तुम पोस्टर बॉयज हो क्या या एक्टर हो? तुम्हें कोई चैलेंज नहीं चाहिए? वही घिसा पिटा रोल करने में क्या मजा है? हाँ वही करते रहोगे, अच्छा ये भोला भाला दिखता है तो भोला भाला, और तुम शरारती हो तो तुम दो चैलेंज, डोंट यू वांट एनीथिंग मोर एक्साइटिंग इन लाइफ? तो फिर आई डोंट नो, आई मस्ट हैव डन अ गुड जॉब, क्योंकि दोनों मान गए फिर और दोनों ने फिर लाजवाब रोल्स किए।
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: बहुत सुंदर रोल्स।
1: और वहां पर फिर दीप्ति चली आई,
0: दीप्ति चली आई, और दीप्ति को तो लिया ही था चश्मे बद्दू, बाद हमारा बहुत आपस में प्यार भी था। और आई रियलाइज दैट शी इज अ फैंटास्टिक एक्टर, दीप्ति इतनी अच्छी कलाकार है, अरे बाबा बाबा। वो देखो इन दोनों की बड़ी तारीफ हुई, लेकिन दीप्ति को भी देखो ना, तो वो सीधी एकदम चौल में रहने वाली सीधी सी, और इतना प्यार से वो, एक फारूक उसका सीन है कि आजकल देखा नहीं कि लड़कियां कितनी लिबरेटेड है, और आप क्या काकू बन के रहती है? तो दीप्ति कहते हाँ वैसे लिबरेटेड मैं भी हूँ मतलब काफी लिबरेटेड हूँ, ऐसे इतना वो प्यारी
1: मासूम,
0: प्यारा से मासूम।
1: बल्कि एक सीन चश्मे बद्दूर का भी याद आता है, जब वो इसको 5 मिनट के लिए भिगो के रख देते हैं, अब वो 5 मिनट बीत नहीं रहे हैं और वो इधर उधर देख रहे हैं, और वो रेडियो लगता है हम तुम एक कमरे में बंद हो, और वो सुंदर सीन है उसमें जो असहजता है वो दीप्ति जी ने जिस तरह से किया है, कमाल कमाल,
0: बहुत सुंदर किया ना दोनों ने। वो जो प्यार का एक मासूमियत जो प्यार की है
1: जी,
0: इतनी दोनों के तरफ से इतनी सुंदर तरीके से टपकती है, इट्स ब्यूटिफुल। इवन आई लव दिस वन ऑफ माई फेवरेट सीन्स टोटली, माई एंटायर करियर इफ यू आस्क मी नेम 5 सीन्स विच आई फील आर रियली रियली गुड, That's one of them.
1: क्या बढ़िया सीन की बात हुई है। अच्छा फिल्मों की पटकथा कितने दिनों में आप अमूमन लिखा करती थी?
0: अरे बाबा ऐसा नहीं मैं कह सकती, डिपेंड ऑन द फिल्म। जैसा कि दिशा का पूछो, तो दिशा को लिखने में मुझे लगा 17 साल।
1: ओ गॉड
0: मैं मजाक नहीं कर रही, मतलब ये नहीं कि मैं 17 साल हर एक दिन लिखती रही,
1: लेकिन
0: थोड़ा थोड़ा
1: प्रोसेस था।
0: नहीं, लेकिन वो दिशा के लिए एक कुछ देखा, फिर वो जहन में बैठ गया कि इसको कभी ना कभी कहीं ना कहीं इस्तेमाल करना है, तो वो दिमाग के कंप्यूटर में दर्ज हो गया। फिर और कुछ ऐसा ही हुआ, फिर और कुछ, इस तरह छोटा छोटा छोटा छोटा तो वो समेटता गया मेरे अंदर, और फिर एक दिन विस्फोट हुआ और फिर मैं लिखने लगी, और फिर 7 दिन में लिखी। तो टेक योर चॉइस, अगर 17 साल लगे कहो या 7 दिन लगे कहो।
1: वाह ये भी बात है। और जब आपने कहा कि ये कुछ देखा और दिमाग के कंप्यूटर में जमा हो गया, तो मुझे याद आता है कि आपने अभी थोड़ी देर पहले जिक्र किया था कि आप गई ब्लाइंड स्कूल में
0: जी,
1: और वो रस्सा कशी का खेल हो रहा था। वो सीन बाद में स्पर्श में आता है ना, तो कोई कोई चीजें जो दर्ज होती जाती है दिमाग में
0: इसमें वो पटकथा
1: का हिस्सा बनती जाती है।
0: अरे ये रस्सी जाने दो, लेकिन दिशा का एक एस ऑफ स्पेड्स कहो या ट्रम्प्स कहो, क्या है कौन सा सीन? तो वो अंधे बच्चे क्रिकेट खेलते हैं, इससे और क्या चाहिए? अब वो मैं बैठ के थोड़े ना सोचा है वो सीन, वो देखा तो लिख लिया, क्योंकि एक्चुअली वो करते हैं बच्चे वैसे, वो क्रिकेट खेलना चाहते थे, और उनका गेंद क्या है, एक रिंग है, और उस रिंग में उन्होंने बॉटल टॉप्स होते हैं ना सॉफ्ट ड्रिंक्स के, उनको छेद करके उनको पिरोए हैं और रिंग फिर फिक्स कर दी, ताकि वो रिंग में वो सब झुनझुन झुनझुन करके बचते हैं ढक्कन सब, और फिर वो रिंग फेंको तो झुंझुनाती हुई जाती है हवा में झुन झुन झुन झुन झुन। फिर जो बैट्समैन है उसको एक बड़ा सा चौड़ा सा क्रिकेट बैट से भी चौड़ा फट्टा दिया होता है, प्लाईवुड का कहो या लकड़ी का फट्टा, नॉट वेरी हेवी, तो लकड़ी का फट्टा उसकी बैट है। तो ये बॉलर फेंकता है, ये झुनझुना या बॉल कहो, का बॉल है वो, बॉल फेंकता है, ये सुनता है और जैसे पास आया ठाक करके
1: क्या
0: मारता है, तो या तो सिक्सर या तो कैच।

0: वाह
1: और
0: वाह,
1: ये खेल देख के रोंगटे खड़े हो गए। अभी मैं आपको बता रही हूँ तब फिर भी मेरे
0: वो
1: रोंगटे खड़े
0: एहसास हो रहा है।
1: इट इज सो ब्यूटिफुल, इट वॉज सो ब्यूटिफुल। तो बस ये बच्चे खेले सुंदर तरीके से, स्क्रीन पे सैनी ने उनको उतारा और मैंने फिल्म में दिखाया।
0: इसीलिए तो सेल्यूलाइट के पर्दे पर जीवन धड़का
1: जी,
0: क्योंकि जीवन से चीजें निकाली गई थी। मैं एक चीज का और जिक्र करना चाहता हूँ ताकि वो इस इंटरव्यू में दर्ज हो, और वो ये है कि ये जो चॉल है, मिनिस्टर ऑफ चॉल्स ने ये चॉल ढूंढने में जो जमीन आसमान एक किया और वो मुंबई में नहीं मिली।
1: नहीं, क्या मजे की बात है ना, मुंबई की खास चॉल पुणे में। दिस इज फिल्म यार, यू नो फिल्म ए टू जेड फिल्मी एवरीथिंग इज फेक। तो ये भी फेक ही है, चॉल भी फेक है हमारी, लेकिन चॉल फेक नहीं है, पोजीशनिंग फेक है।
0: पोजीशनिंग फेक है कि वो आपको मुंबई में मिलती ही नहीं।
1: नहीं ना, मुंबई में कितनी चॉल है रे बाबा बाबा बाबा, हम पागल हो गए ढूंढते ढूंढते, मतलब दादर से लेके गोरेगांव तक, उधर थाना तक, कहाँ कहाँ नहीं घूमे हम। तो कई चॉल तो होती थी, वहाँ के मालिक बहुत बदतमीज होते थे, बेतहाशा पैसा मांगते थे, या वहाँ सुना कि कोई गुंडागर्दी थी बहुत ज्यादा। कई चॉले थे इतनी खराब थी, मतलब सीढ़ियां लगे पैर रखो तो कब कोलैप्स हो जाए, और कहीं तो इतनी गंदगी थी, कहीं कुछ था, कहीं भीड़ जा ही नहीं पाते थे चॉल तक। तो इस तरह से एक भी चॉल हमें रास नहीं आई, और फिर परेशान हो गए। फिर हमने सोचा चलो किसी स्टूडियो में नकली चॉल बनाते हैं, अब क्या करें। तो मैंने कहा कि अरे ये चॉल करना और वो भी सेट बनाना, हाय हाय, कभी नहीं ये हो सकता, लेकिन क्या करे, मानना पड़े। फिर किसी ने बताया कि पुणे में देखो ना, पुणे में जरूर मिल जाएगी चॉल। तो मैंने कहा नहीं नहीं, बम्बई की चॉल पुणे में क्यों। तो कहता है अच्छा, तुम स्टूडियो में नकली चॉल लगाने को तैयार हो, लेकिन पुणे में असली चॉल नहीं चाहिए क्योंकि वो पुणे में है। मैंने कहा हाँ, ये तुम ठीक कह रहे हो, यू आर राइट। फिर मैं भी समझ गई कि मतलब अड़ियलपना नहीं करना चाहिए ज्यादा। तो फिर हम पुणे गए और पुणे में तो उल्टा ही हुआ, जो चॉल देखो हमें पसंद आए, जो चॉल देखे वो हमें रास आए। तो फिर हमने 5 चॉले शॉर्टलिस्ट की, और फिर एक जो बहुत हमारे मतलब की थी, जो हमारे घर से दूर नहीं थी, सेंट्रल भी थी, जहाँ के लोग भी बड़े माशाल्लाह अच्छे थे वगैरह वगैरह, और वो एक ताड़ुक के चॉल करके केसरी वाड़ा के बिल्कुल करीब में थी, सेंट्रल पुणे में। तो वो बढ़िया चॉल थी, और चारों ओर वो बीच में ये था पूरा एक ग्राउंड था, चॉल के बीच में आंगन, और चारों ओर बैल्कनीज थी, बैलुस्ट्रेड और कटघरे लगे हुए, एक एक एक एक फ्लैट था चॉल का। हाँ, मतलब कोई भी आदमी चॉल वाला किसी भी चॉल वाले को पुकार सकता था अपने घर से। और फिर इतनी वो सुंदर चॉल, और वो क्या चॉल वाले, और वहाँ के बच्चे भी और ये भी, और इतना उन्होंने हमें सहयोग दिया कि मैं क्या बताऊं। फिर हम कुछ बहुत ही ढीठ बन गए कि कहने लगे तात्या कल आपके घर हम आ रहे हैं, हाँ तो वो सब वो तोते का पिंजरा जरूर लगा के रखिए वगैरह वगैरह वगैरह, और बड़े प्यार से फिर हमको सब शूटिंग करने देते, कहीं खुद चले जाते बगल में पड़ोस में।
0: इस तरह पुणे की साड़ुम के चॉल कथा फिल्म में बम्बई की चॉल बनके हमेशा के लिए अमर हो गई, है ना, ये कमाल है। इस फिल्म का वो गाना बजाते हैं,
1: कौन सा,
0: जो हमने तब बजाया था जब आपने विविध भारती की पहली सीडी पे कदम रखा था।
1: प्यारा लगा मुझे, अगर सुनो एक से जल्दी से बताती हूँ कि जिंदगी में प्यारे प्यारे इंसिडेंट्स फिल्मी करियर में मेरे बहुत आए, उसमें से ये एक दर्ज हो गया जो आपने गाना बजाया विविध भारती में।
0: क्या बात है, कौन आया कौन आया। अब अपने सुनने वालों को बता दें कि जब सई जी विविध भारती के स्टूडियो में आ रही थी, तो जैसे ही वो गाड़ी से उतरी और पहले स्टेप पर उन्होंने कदम रखा और तुरंत गाना बजा कौन आया। तो यही गाना सुनते हैं
1: जी।
0: कौन

0: अब दिशा की तरफ चलते हैं, आपकी जिंदगी की आपकी नजर में सबसे महत्वपूर्ण फिल्म है ये,
1: बिल्कुल।
0: और इसका बीज विलासराव सालुंके से मिलके पड़ा था।
1: विलासराव सालुंके वाज द फर्स्ट स्टेप और द फर्स्ट थिंग, ही वेरी डियर फ्रेंड्स ऑफ माइन विजय एंड सरोजा परुलकर, पुणा में, दोनों अब नहीं रहे लेकिन बहुत ही प्यारे दोनों पति पत्नी थे और हमेशा कुछ न कुछ सोशल काम में लगे रहते थे। कहीं कुछ किसी के साथ जाती हो तो ये दोनों वहां हाजिर, लड़ने के लिए, उनको ये दिलवाने के लिए वगैरह वगैरह। तो उन्होंने मुझे कहा कि सही, ये तुमने विलासराव की पानी पंचायत नहीं देखी, उनके गांव में, वो गांव पूरा पानी को उन्होंने अर्पित किया है जैसे, और पानी पर उनका बहुत रिसर्च हो रहा है और उनका कहना है कि बारिश की हर बूंद पर हर गांव वाले का हक होना चाहिए।
0: बहुत बढ़िया बात है।
1: और उन्होंने क्या क्या परियोजनाएं बनाई है। एनीवे, मैं देखने गई
0: जी
1: उनके गांव में,
0: नायगांव,
1: नायगांव, नायगांव गई थी। तो वहां नायगांव में उन्होंने कहा सब पूरा देख लिया, ये हो गया वो गया। उन्होंने कहा अच्छा, एक हस्ती से आप नहीं मिलिए, हमारे नायगांव में एक बड़ा मशहूर आदमी है, मिलवाइए। तो एक किसान सामने आया, दुबला पतला ठिंगना सा, एक टोपी सर पे जिसका ऊपर का हिस्सा पूरा गायब हो गया था, धूप में काम कर करके सिर्फ उसका दे रहा था चारों ओर का, ये है हमारे सोमा। तो मैं जरा सी चौंके, मैंने कहा ये अच्छा, नमस्कार, बड़ी खुशी हुई। सोमा अपना कुआं दिखा दो सही टाई को। तो मुझे सोमा ने अपना कुआं दिखाया, बाकायदा कुआं, पत्थर से चारों ओर बांध बनाया हुआ, ये वो, नीचे पानी, अंदर कुएं में पानी। कहता ये सोमा ने खुद खोद खोद के पानी निकाला। 12 साल सोमा कुआं खोद रहा था, क्योंकि सोमा को पूरा यकीन था कि मेरे खोपटे के बाहर, मेरे झोपड़े के बाहर जो छोटी सी बंजर जमीन है खरकाली, उसके अंदर पानी है। ऐसे उसको पता नहीं कहां और क्यों और कैसे, लेकिन उसको ये पूरी उसकी धारणा थी। और वो उस हिसाब से पूरे दिन काम पे जाता था, बेचारा करेगा क्या, पैसे तो कमाने थे, तो वो काम पे जाता, मेहनत से कमाता रोजी रोटी, घर आके कुआं खोदता। और बीवी उसकी झगड़ा करके कितनी बार पता नहीं मैके चली गई, फिर वापस आ गई, बेचारी जाएगी कहां, बच्चे उसके 3-4, और पूरा गांव सोमा पे हंसता था। उसका नाम था पगला सोमा, क्योंकि सारे देखते देखे सोमा क्या है, अरे खोद रहा होगा और क्या करेगा सोमा। और जब सोमा को पानी मिला तो फिर पूरा गांव पगला गया बिल्कुल। तो ही हैड द लास्ट लाफ। फिर गांव वालों ने आगे बढ़ बढ़ के फिर उसका कुआं बांधा, ये किया वो किया। तो विलासराव ने कहा सही, ये फिल्म बनाने लायक है। मैंने कहा जरूर है, और ये मैं अपने दिमाग में दर्ज कर,
0: इंसान की जुझारूपन की मिसाल,
1: जुझारूपन की क्या मतलब, किस हद तक उफ। और फिर ये जब हुई फिल्म, ओम पुरी ने ये रोल किया
0: जी,
1: और शबाना ने उसकी बीवी का किया, और वो

0: इतना उनके प्यारे सीन्स है, वो कहती है कि अरे इस चुड़ैल को लेके मैं क्या करूं, कोई औरत होती तो मैं देख लेती, लेकिन ऐसी सौत का क्या करूं जो कुआ, मतलब उसकी सौत तो, और हाँ तो वहां से शुरुआत हुई
1: जी।
0: फिर वो कुआ हो गया। लेकिन मैंने सोचा कि ये एक पूरी फिल्म के लिए ये शायद इट्स नॉट मीटी इनफ, नॉट फ्लेशी इनफ। हाँ आगे अपना रोजमर्रा के काम में लग गई और फिर काफी साल गुजरे और मेरी एक बहुत अच्छी दोस्त सुभाषिनी अली,
1: जी जी बिल्कुल बिल्कुल
0: मालूम है, कैप्टन लक्ष्मी की बेटी और खुद मार्क्सिस्ट है, फिर बहुत धड़ल्ले वाली औरत और मेरी बड़ी प्यारी दोस्त है, तो वो बहुत मिल मजदूरों का काम करती थी मुंबई में, और वो एक दिन मेरे घर के पास ही रहती थी तब, तो मेरे घर आई और दो चटाइयां देखी सुभाषिनी ने, कहती है सही दो दो चटाइयां क्या करनी, मैंने कहा है पड़ी है, कहते एक चटाई तो दे दो ना मुझे, मैंने कहा तुम क्या करोगे चटाई लेके, कहते मेरे लिए नहीं रे मुझे अपने गाड़ा में काम आएगी, मैंने कहा क्या कहाँ काम आएगी, कहते गाड़ा गाड़ा गाड़े में जाती हूँ ना मैं, तो गाड़े में काम आएगी, मैंने कहा गाड़ा मतलब क्या बोल रही हो क्या गाड़ा, तो सुभाषिनी ने ऐसी आंखें फाड़ के मुझे देखा, कहती है तुम मराठी औरत अपने आप को डायरेक्टर कहती हो लेखिका कहती हो और तुम्हें गाना नहीं मालूम हाँ बम्बई में रहकर, मैंने कहा नहीं नहीं सच्ची नहीं मालूम मुझे क्या गाना मतलब, कहती है चल मेरे साथ चल, और फिर मैं सुभाषिनी का पल्लू पकड़ के उसके साथ गई और हम चिंचपोकड़ी और यहाँ वहाँ वो सब मिल एरिया में वो मुझे ले गई और गाड़ा देखा मैंने, गाड़ा क्या होता है, इट्स अ डॉर्मेटरी, बड़ा कमरा जिसमें 20 से लेकर 40 बंदे एक साथ रहे,
1: एक लंबा सकरा
0: लंबा बड़ा एक हॉल, हॉल ही गाड़ा मतलब हॉल कमरा हाँ, लेकिन उस कमरे में साथ रहते हैं साथ काम करने वाले मिल मजदूर, 40-40 मिल मजदूर एक कमरे में हाँ, तो वो जैसे मैं दहलीज पर खड़ी हुई, सुभाषिनी तो अंदर गए ठका ठक करके और मैं आंखें फाड़ के देखती रही 40 जने अंदर कमरे में और अलग अलग उनका हर एक का कुछ ना कुछ चल रहा था, कोई पेपर पढ़ रहा था दिन का, कोई लेटर लिख रहा था पोस्ट कार्ड पे, कोई फ्लूट बजा रहा था, चार जने पत्ते खेल रहे थे, ताश खेल रहे थे, एक जन स्टोव पे चाय बना रहा था, एक जन कुछ कुछ भी मतलब अलग अलग अलग अलग उनके सवाल, और बहुतेरे लोग सोए थे चटाइयों पे, गहरी नींद सो रहे थे, चारों तरफ ये झमेला चल रहा है लेकिन बीच बीच में लोग बड़े मजे के खर्राटे भी भर रहे हैं, तो मैं देखती रह गई खड़ी रह गई, फिर उसने कहा अरे आओ ना क्या देख रही हो, फिर मैं अंदर गई और फिर बातें करने लगी लोगों का, वो सब कहते हम अपना देहात छोड़ के आए हैं, अपने माँ बाप अपने बीवी बच्चे अपने घर बार सब छोड़ के हम वो अपने पेट भरने के लिए रोजी ढूंढने के लिए बम्बई शहर में आ गए हैं, लेकिन हमारा दिल तो गाँव में रह गया पीछे, दिल छोड़ के आए हैं बाकी सब लेके आए, तो मैंने कहा तो फिर आपको सिर्फ ये 6 फुट जगह मिलती है, कहते हाँ ये हक की हमारी 6 फुट जगह जहां हम सो सकते हैं आराम की नींद, कहते हाँ सो सकते हैं लेकिन करवट नहीं बदल सकते, मैंने ये फिल्म में डायलॉग इस्तेमाल किया है कि हम सो सकते हैं करवट नहीं बदल सकते, किसी ने मुझे कहा क्या तुम बहुत अच्छा डायलॉग लिखती हो, मैंने कहा मैं डायलॉग चोरी करती हूँ मेरा अपना
1: आम जीवन से आया जी।
0: तो एनीवे तो ये इस तरह वो देख के मैंने कहा ये तो इट्स टू ड्रामेटिक टू फिल्मी टू नॉट डील विथ, तो फिर ये भी वो कुएं के साथ ये
1: जुड़ गया
0: और देन द लास्ट थिंग वॉज विजय सरोजा अगेन दे वर रिटर्निंग फ्रॉम निपानी, निपानी इफ यू नो
1: इंडस्ट्रियल एरिया
0: इज द इंडस्ट्रियल एरिया नोन फॉर बीडी वर्क्स हाँ, निपानी की तंबाकू और निपानी की बीड़ियां मशहूर है, तो वहां औरतों ने एक जंग खड़ा किया था क्योंकि उन पर बहुत अत्याचार हो रहे थे, उनको पैसे ठीक से नहीं दे रहे थे उन पर, वो बहुत ही क्या क्या तरह तरह के जुल्म होते थे वगैरह वगैरह, तो विजय और सरोजा वो के साथ शामिल होने के लिए गए थे निपानी और वहां से लौट रहे थे, और विजय ने मुझे जो किस्से कहानियां सुनाई तो मुझे लगा मैं चारों तरफ मेरे तंबाकू ऐसे
1: उड़ रहा है
0: और मेरा दम घुट रहा है ऐसे, तो ये फिर तंबाकू वाली औरतें भी खड़ी हो गई लाइन में, और फिर देखते ही देखते जैसे जादू हुआ और फिर 7 दिन के अंदर इसका मेल हो गया और फिर पटकथा मेरी बन गई।
1: क्या बात है, और मैंने हमेशा हर जगह ये दिखा है कि आप ये कहती हैं कि आपकी नजर में ये आपकी सबसे अच्छी फिल्म है।
0: जी जी, इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि ये इस तरह कह सकते हैं कि ये परिपूर्ण फिल्म है। इसका अब तक मुझे लगा कि एक तो ये मेरी चौथी पांचवी फिल्म थी, मतलब फीचर फिल्म, बाकी छोटी मोटी छोड़ो, डॉक्यूमेंट्रीज और टेलीफिल्म, लेकिन तब तक मुझे ये मीडियम भी खासा समझ में आया था और लोग भी बहुत बढ़िया मिल गए, एक्टर्स भी, नाना पाटेकर और रघुवीर।

0: यादव, नीरू फुले, शमाना आजमी, ओमपुरी और बाकी सब मिल वाले, एक्चुअल मिल वाले, ऐसे एक से एक बढ़कर लोग मुझे मिल गए फिल्म के लिए। और म्यूजिक के लिए आनंद मोडक ने बहुत बढ़िया एक गाना, जो सबसे मेरा अच्छा गाना मैं सोचती हूँ, लिखा हुआ बम्बई बम,
1: वो आपने खुद लिखा है
0: जी?
1: ये भी कमाल की बात है।
0: मैंने खुद लिखा जी। और दिशा के सारे गाने मैंने लिखे और म्यूजिक उसका आनंद मोडक ने दिया और राहुल रानडे ने बढ़िया पार्श्व संगीत दिया। बैकग्राउंड म्यूजिक भी बहुत बड़ा हिस्सा है उसका, बैकग्राउंड म्यूजिक का इस फिल्म में। और फिर एडिटिंग क्या, फोटोग्राफी क्या, फोटोग्राफी के लिए दो जने थे, गांव की फोटोग्राफी मधु अंबटनी की, केरल का मशहूर कैमरामैन, और जी एस भास्कर ने बंबई की फोटोग्राफी की।
1: क्या
0: तो
1: बात,
0: दोनों
1: है?
0: ने कमाल किया, मतलब इट वाज अ फैंटास्टिक एक्सपीरियंस।
1: जब एक काम की ऊर्जा आगे बढ़ती है तो समान विचार के लोग जुड़ते चले जाते हैं।
0: सही बात है,
1: है ना?
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: जी। यहाँ मैं दो चीजों का जिक्र करना चाहता हूँ, एक तो नाना पाटेकर से हुई लड़ाई और उनकी दादागिरी और दूसरा रघुवीर यादव का आगमन इस फिल्म में।
0: तो नाना की तो दादागिरी क्या बताऊं, कि नाना का मेरा बहुत पुराना परिचय, दोनों थिएटर के बंदे
1: जी।
0: और कभी काम नहीं किया था हालांकि, लेकिन हाँ, नाना का जो फिल्म इंडस्ट्री में पदार्पण हुआ वो मेरी तरफ से है
1: जी जी।
0: हाँ, बिकॉज मुजफ्फर वॉज मेकिंग गमन एंड ही सेड सही, आई वॉन्ट सम अ गुड एक्टर, इट्स नॉट अ बिग रोल बट ही शुड बी हैव अ लॉट ऑफ पैशन, ये वो। सो आई सेड आई गिव यू अ फर्स्ट क्लास एक्टर फॉर द रोल एंड आई गेव हिम नाना पाटेकर। एंड नाना इट वॉज सच अ स्मॉल रोल, वो आया गया ऐसा ही रोल था, कुछ था नहीं उसमें, लेकिन वो पहली बार जो स्क्रीन पे आया वो गमन में आया मुजफ्फर के, और वो मैंने उसको मुजफ्फर से मिलवाया। खैर, लेकिन मेरी अपनी फिल्म में तो कहीं मौका ऐसा लगा नहीं कि उसको लिया जाए। और देन फॉर दिशा आई सेड कि नाना एक्चुअली, सच बताऊं तो मुझे परशुराम के रोल के लिए चाहिए था। परशुराम मतलब कुआं खोदने वाला
1: जी,
0: क्योंकि वो जो उसका एक हल्का सा पागलपन, उसका एक
1: जुनून,
0: एग्जैक्टली उसका जुनून बिल्कुल मुझे नाना में नजर आया कि ये जरूर कुआं खोदेगा 12 साल बिना रुके। तो मैंने नाना को बुलाया, नाना आ गया मेरे घर और चटाई पे लेटे उसने स्क्रिप्ट पढ़ा एक ही दम में, जो एक टांग पे दूसरी टांग लेट के वो पढ़ता गया।
1: ये भी कितना सुंदर दृश्य है।
0: हाँ, और मैं आसपास मैं कुछ अपना करती रही, उसने कहा तुम करो तुम्हारा, मेरी तरफ मत देखो। और फिर पढ़ा उसने, बंद किया, फर्स्ट क्लास बना लो, करना रपन। हाँ, मैं करूंगा। तो मैंने कहा अरे वाह वाह बहुत अच्छा, कहता हाँ लेकिन परशुराम नहीं, मैं वसंत। ऐसे क्या वसंत, कैसे तुम वसंत की तो फिल्म के शुरुआत में शादी होती है और वो बहुत जवान है ये वो। तो नाने ने कहा कि बताओ क्या मैं 30 से ऊपर लगता हूँ। तो मैं चुप रही, फिर हमारी थोड़ी बहसबाजी हुई इस बात को लेकर और आखिर में वसंत का रोल नाना ने किया तो जीत किसकी हुई जाहिर है।
1: मुझे लगता है पहली बार किसी ने आपको हराया होगा।
0: पहली बार तो नहीं, लेकिन हाँ ऐसा कम ही मौका आता है, लेकिन उसने हराया, यस इसमें कोई शक नहीं। लेकिन ये भी मानना पड़ेगा कि ऐसा किसी ने भी नहीं कहा कि अरे वो बहुत बड़ा लगता है उस रोल के लिए, नहीं वो सही लगता है अपनी जगह पे, उसने अच्छा काम किया। लेकिन हुआ क्या कि लोगों ने मुझे फिर बहुत आगाह किया, दादा को ले रही हूँ, देखो तुम्हें मालूम है ना वो झगड़ा करता है, बहुत उल्टी खोपड़ी का आदमी है और कभी कभी गुस्सा आता है तो इतना वो शोर मचाता है, ये करता है वो करता है। मैंने कहा देख लूंगी। और वाकई में फिर एक बार ऐसा हुआ कि बकुरी गांव में हमारा शूटिंग था और वो किसी बात को लेकर खूब बिगड़ गया, खूब चिल्ला चिल्ली ये वो, मैं नहीं करूंगा, मैं जा रहा हूँ फला। तो फिर विनी मेरी बेटी, विनी की नाना की अच्छी दोस्ती थी, तो विनी ने फिर जाके उसको समझाया दादा बाबा करके, फिर वो शाम तक ठंडा हो गया, फिर शूटिंग चालू रही। ऐसे और एक बार कभी हुआ, अब वो मुझे डिटेल याद नहीं है। तो ये दो बार हुआ, दो बार निपटाया, दोनों बार हम बड़े डरे हुए थे और मैंने भी कि नाना ऐसा कहे ये वो, मन में ना होते हुए भी बड़ा प्यार से समझाने की कोशिश की, लेकिन वो ऐसे हुआ। फिर तीसरी बार डबिंग कर रहे थे हम, तैयार हो गई थी, शूटिंग पूरा हुआ था और अब डबिंग बाकी, तो बी आर में डबिंग चल रही थी और किसी बात को लेके वो बिगड़ा, स्क्रिप्ट ये वो करके चिल्लाने लगा। अब मेरा भी माथा ठनका और गुस्सा मेरा भी थोड़ा सा वो
1: खतरनाक वाला है,
0: खतरनाक वाला हो सकता है कभी कभी तो फिर इस बार मेरा भी एकदम से मेरी घंटी बजी। फिर मैंने कहा नाना तुमको इस तरह पेश आना है तो यहाँ जगह नहीं है, बाहर हो जाओ एकदम, यहाँ कोई जगह नहीं है तुम्हारे लिए, और यहाँ अगर रहना है तो तमीज से पेश आना पड़ेगा वगैरह वगैरह जो भी तू तू मैं बहुत हुई। फिर कहता तुम मुझे बाहर निकाल रही हो, मैंने कहा हाँ बिल्कुल, तो गया दरवाजे तक, जा रहा हूँ वापस नहीं आऊँगा, मैंने कहा यही आइडिया है जाओ, तो गया गया और सब हक्का बक्का अंदर 7-8 लोग थे हम, बाकी अब सब एक दूसरे को देख रहे, कह तो दिया जोर से। फिर किसी ने कहा अब क्या होगा, मैंने कहा एनीवे बाकी लोग अभी काम अपने पास है तो काम जारी रखते हैं। नाना फिर आ गया दरवाजा खोल के,
1: कितनी देर बाद,
0: कुछ 20 मिनट बाद, आधा घंटा बाद। मैंने कहा अरे तुम आने वाले नहीं थे आगे, कहते हाँ सुनो इसलिए आया हूँ तुम्हें बताने के लिए कि तुम औरत जात हो इसलिए बच गई, नहीं तो कोई ठिकाना नहीं था।
1: अरे बाप रे,
0: तुम औरत हो इसलिए बच गई करके धड़ाम से बड़ा ड्रामेटिकली निकल गया, तो निकल गया फिर अब चुप
1: ये बहुत ड्रामेटिक सीन था,
0: वेरी ड्रामेटिक। और फिर सबने कहा कि फलाने को कहें जाके, अब क्या दूसरे ने डबी करने का सवाल ही नहीं था और वो ये कर सकता था बिल्कुल कायदे से, कानून के खिलाफ होगा। तो मैंने कहा नहीं सुनो देखते हैं जरा, अभी आज तो कुछ नहीं करेंगे, आज बाकी काम करेंगे देखते हैं। सब घर गए, अब मैंने कहा पता नहीं क्या होगा क्या होगा। सुबह सुबह बड़ी जल्दी फोन आया, फोन उठाया, सही नाना, अगर मैं नाना भूलते, बड़ी मीठी प्यारी आवाज हमेशा वाली, काहे रे नाना, मैं भी उतनी ही मीठी आवाज में, अगर आज कितनी वास्ता शिफ्ट है, कितने बजे की शिफ्ट है आप? तो मैंने कहा दो शिफ्ट है, एक 9 बजे और एक 3 बजे, तुम्हें कौन सी पसंद है? वो कहता मैं 3 बजे आऊं तो चलेगा? मैंने कहा हाँ हाँ जरूर चलेगा, आ जाओ, अच्छा मिलते हैं, बात खत्म।
1: मतलब क्या बात है,
0: प्याले में, मराठी में कहते हैं ना
1: प्याले में तूफान,
0: प्याले में तूफान वैसे वो हुआ, लेकिन ये अच्छा। तो अभी किस्सा खत्म नहीं हुआ
1: जी।
0: अभी फ्लैश फॉरवर्ड तो कुछ मेरे ख्याल से 15 साल बाद की बात होगी, मे बी इवन मोर, अब साल वाल मुझे याद नहीं रहते, लेकिन महाराष्ट्र टाइम्स से मुझे फोन आया कि इस साल का जीवन गौरव पुरस्कार हम नाना पाटेकर को दे रहे हैं।
1: जी जी।
0: मैंने कहा बहुत अच्छी बात है
1: जी।
0: तो मुझे क्यों बता रहे हैं आप? कहते इसलिए कि वो आपके हाथों देने का हमारा इरादा है, हमें बहुत अच्छा लगा, आप देंगी क्या? मैंने कहा दूंगी, जरूर दूंगी। हाँ तो बड़े खुश हुए, अच्छा अच्छा तो फला वक्त ये वो आपको लेने आएंगे वगैरह। तो फिर मैं स्टेज पे गई और मैंने ये किस्सा सुनाया नाना का, मैंने कहा आज मैं हूँ तो एक छोटा सा किस्सा सुनाती हूँ, नाना भी खड़ा पास में। फिर बाद में मैंने कहा कि अंत में मुझे इतना ही कहना है कि देवा परमेश्वरा मला स्त्री जन्माला घातलं से फार उपकार केलेस, कारण आज मी म्हणून नानाला हा मुजरा देऊ शकतो।
1: बहुत शानदार, अद्भुत।
0: नाना लॉफ्ट एंड आई गॉट अ स्टैंडिंग ओवेशन, सब लोग उठ के तालियां बजा रहे और नाना ने जो मुझे जब पिलाई, बहुत हंसा नाना, बहुत हंसे हम दोनों।
1: क्या बात है, उसका हिंदी बता देते हैं कि स्त्री के रूप में जन्म लिया इसलिए आप बच गई और इसीलिए आज नाना को आप जीवन गौरव पुरस्कार दे पा रही
0: हैं। मानती हूँ कि हे भगवान मुझे आपने स्त्री जन्म दिया, इसका लाख लाख शुक्रिया ताकि आज मैं ये दे पाई।
1: बिल्कुल, क्या बात है, बड़े प्रेम से आपने नाना को याद किया। ये गाना सुनते हैं
0: जी, क्या बात।

0: रघुवीर यादव का इस फिल्म में आना भी एक घटना है।
1: रघुवीर यादव का मेरे समझ में नहीं आ रहा कि क्या मतलब है। रघुवीर मेरा हमेशा का बहुत लाडला एक्टर रहा है, बहुत ही प्यारा, एंड आई लव हिम एज अ पर्सन, आई लव हिम एज एन एक्टर। और इसलिए मैंने ये जब लिखी कहानी तो सोमा तो और कोई हो ही नहीं सकता था, रघु तो मतलब ओमपुरी का छोटा भाई
0: जी जी,
1: जो देखता है कि अपना भाई और भाभी कितने परेशान हैं और मैं बोझ बन के रह रहा हूं, इसलिए वो बेचारा छोड़ के जाता है। तो रघु किसी और फिल्म में बिजी था
0: जी,
1: तो उसने कहा सही जी ये तो डेट बिल्कुल नहीं हो सकती किसी तरह, मैं बिल्कुल बुरी तरह फंस गए हो, मैं नहीं मना कर सही ये वो। मैंने कहा नहीं नहीं तुम किसी तरह पटा लो उनको ये वो। कहता हाँ कोशिश करता हूँ, लेकिन फिर मैंने कहा कोशिश मतलब, और नहीं हुआ तो फिर क्या करोगे? कहता है फिर तो आपको पटाऊंगा।
0: बिल्कुल मासूमियत इंटैक्ट।
1: और उसने किया रोल, और क्या रोल, बहुत सुंदर रोल किया, वेरी ही लिव्स द रोल, रियली लिव्स द रोल।
0: जी जी, और ये दिशा जिसकी बात हम कर रहे हैं, सई परांजपे की नजर में उनकी सर्वश्रेष्ठ फिल्म है
1: जी।
0: आपने बीच में एक कहा था कि अगर आपके फिल्माए गए बेस्ट सीन की बात करें तो मैंने चश्मे बद्दूर के जिस सीन का जिक्र किया था वो शामिल है,
1: वो एक है।
0: तो एक सहज जिज्ञासा है कि हाँ, बाकी कौन से सीन है?
1: बाकी दो जो है वो दिशा के ही है
0: जी।
1: हाँ, एक वो है जहाँ परशुराम को पानी लगता है कुएं में।
0: वाह वाह वाह,
1: क्या वो सीन है, मैं बताऊं कि परशुराम खोद रहा है कुदर से और वो देखता है, है, है, है? फिर हाथ डालता है, देखता है तो कीचड़, कहता है पानी पानी, और चिल्लाने लगता पानी लग गया मेरे कुएं में, पानी लग गया, हौसा मतलब बीवी का नाम, बच्चों के नाम। और इधर घर में शबाना मतलब उसकी बीवी हौसा अपने बेटी के बाल बना रही है, वो छोटी कंघी होती है ना वो मराठी, और वो एक हमारा करंडा होता है ये रखने का, वो तो वो लेके बस। तो एक छोटा बच्चा आता है कि कद्दू की माँ कद्दू की माँ, उसके छोटे बच्चे का नाम कद्दू है, कद्दू की माँ कद्दू की माँ, वहां परसा चाचा चिल्ला रहा है कुएं पे पानी लग गया करके। तो ये कहते हे राम मुझे मालूम ही था, पगला ही गया आखिर। और वो बेचारी इतनी वो तैयार है ये झेलने के लिए कि अब मियाँ की तो फाइनली घंटी बज गई, इज गॉन मैड। तो वो उठती है उसके पीछे बच्चे और दौड़ दौड़ के, वो कांटे कटोरे में वो कांटे लगता रहता है, दौड़ के बेचारे जा रहे कुएं की तरफ, और फिर वो देखते हैं नीचे और वो फिर दिखाता है कीचड़, और ये कहते हैं कुआ, एंड देन दे कांट बिलीव इट, एंड देन दे गो इन, एंड देन यू नो वो पानी लेके पहले तो अपना
0: माथे
1: पे लगाती है, फिर बच्चे एक दूसरे को लगाते हैं, पानी डालते हैं एक दूसरे पे, और फिर रघुवीर को पोस्टकार्ड एक आता है, और वो पोस्टकार्ड के जैसे हमारे यहाँ शुभ तिलक करके केसर का लगाते हैं किसी की शादी का ये बताना हो या कुछ है केसर का, तो इसे मिट्टी का लगाया हुआ है किसी के, कि ये जो शुभ तिलक है ये अपने कुएं की मिट्टी का है पानी तो, और फिर वो कुएं का ये होता है। तो फिर शबाना जो आज तक गालियां देती है कुएं को, वो कहती है कुआं माता आपको हमारी वगैरह वगैरह करके बोलती है, तो वो छोटा बच्चा कहता है कि बाबा सौत माता बन गई।
0: छोटा बच्चा कहता कितना सुंदर, कितना सुंदर।
1: दैट्स सो आई जस्ट लव दिस फिल्म बिकॉज आई थिंक इट्स अ वेरी ट्रू फिल्म एंड इट कीप्स यू एब्सॉर्ब्ड एंड इट्स अ वेरी सीरियस सब्जेक्ट बट इट इज सो एंटरटेनिंग इन द राइट सेंस, आई मीन यू नो उसमें बहुत हंसी मजाक भी है, बहुत ह्यूमन गिव एंड टेक है, बहुत चीजें हैं। मैं सोचती हूँ उसमें सचमुच मैंने अपना सब कुछ डाला है दिशा
0: जी। एक और किसी दृश्य की बात आप करना चाह रही थी।
1: हाँ, वो दृश्य बहुत ही कमाल का दृश्य है कि एक दिन ऐसा आता है कि नाना भी अब पहुंच गया है, नाना मतलब वसंत और सोमा अब दोनों दोस्त बंबई पहुंच गए हैं, और वसंत की बेचारे की नई नई शादी हुई है लेकिन उसको छोड़ना पड़ता है गाँव, पैसे ही नहीं है, और वो तरसता रहता है बीवी के लिए, बहुत प्यार करता है उससे। फिर एक उनका मिल वाला है जिसका एक छोटा कमरा होता है कहीं, तो वो कोई कहता है कि अरे वो बापू का एक कमरा है, वो कभी कभी दे देते हैं किसी को जरूरतमंद को, तुम क्यों नहीं भाभी को बुलाता यहाँ वगैरह वगैरह। तो बापू को पूछता है, कहता है हाँ हाँ बुलाओ बेशक बीवी को। तो एनी वे वो आती है फूलवंती उसकी बीवी, वो आती है और एक शाम को फिर वो कमरा उसका हाँ, और वो दिखाता है जो बहुत अच्छा एक्टर है जिन्होंने कमरे का मालिक बताया, वो किशोर नांदलस्कर
0: जी,
1: हाँ, जी ग्रेट कॉमेडियन. तो किशोर नांदलस्कर ही हैज द कमरा. ही सेज कि हाँ भाभी पानी आता है सुबह 4 बजे हाँ, और फिर वो निकल जाता है. फिर ये दोनों बहुत मशगूल किए प्राइवेसी और इतने दिनों बाद वगैरह वगैरह, और वो दोनों लेटते हैं इतने में खट खट खट खट खट खट, तो दरवाजा खोलो खोलो दरवाजा. तो कि कौन है रात के इस वक्त, तो कौन है हमें और कौन है. तो जिसका कमरा है उसकी बहन कोल्हापुर से आई है अपने बच्चे लेकर, और टू कट अ लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट इन दोनों को खाली करना पड़ता है फिर. और अब दिस इज द सीन दैट आई एम टॉकिंग अबाउट.
0: जी
1: दे रीच द गाड़ा. गाला के बाहर एक गली सी है छोटी, बहुत पतली गली, वहां वो फुलवंती सर पे पल्लू और उसके साथ ट्रंक उसका छोटा बसंत और सोमा भी साथ है, और वो रो रही है. और वो कहते कि 40 बंदों के साथ एक कमरे में मैं सोऊं, तो वो कहता है सोमा और चारा भी तो नहीं है ना भाभी. शीशे और कुछ तो चारा होगा. तो वसंत कहता है सड़क पे सोना होगा, फुटपाथ पे सो सकते हैं वगैरह. तो सोमा कहता है रुको. अंदर आता है और अंदर पर एकदम सब बंदे कोई ये बनियान पहना हुआ, तो छोटी छोटी अपने कच्चे में है चड्डियां पहने, और वो सब चिल्ला चिल्ली तो कहता है क्या एक औरत यहाँ, ये कैसे हो सकता है, नहीं हम ये नहीं होने देंगे, आज एक आई ये कल ये दूसरा कोई ले आएगा वगैरह वगैरह. फिर वो सयाजी शिंदे भी है उन गाले वाले में, वो कहते हैं अरे लानत भेजी तुम पर, तुम अपनी गांव की बहन को सड़क पे सोने दोगे वगैरह वगैरह. कहते हैं लेकिन जगह कहाँ है. तो फिर सोमा कहता है मैं बाहर सो रहा हूँ तुम मेरी जगह वगैरह वगैरह. फिर सब मानते हैं, कहते हैं रुको रुको रुको. और फिर हमने ऊपर कैमरा लगाया था क्योंकि एक वहां ये था जहां कैमरा रख के हम ऊपर से देख रहे थे हा? तो टॉप शॉट था और सब ये लोग आधे लोग सोए हुए हैं हा? और ये भगदौड़ मची है कि अब औरत आएगी तो कोई पैजामा पहन रहा है, कोई ये डाल रहा है, कोई एक लुंगी के लिए दोना खींचा खींचा होती है. एक जना तो एक सोया हुआ आदमी उसको उठो उठो कहते हैं वो गहरी नींद सोया, तो उसका चटाई के साथ उसको ऐसे ऐसे से ये दोना लेते हैं. इट्स अ ब्यूटिफुल, इट्स अ वेरी फनी दिस थिंग. तो ये सब होके फिर नाना और ये दोनों चुपके से अंदर आते हैं, सब सन्नाटा, अब सब लेट जाते हैं. और फिर नाना सोता है, वो भी सोती है. और जैसे दोनों सोते हैं उनके बगल में एक बुजुर्ग उनमें से जो है वो उनकी तरफ पीठ करता है और साइड वाले को इशारा करता है, फिर वो भी पीठ करता है और सब लोग उनकी तरफ पीठ करते हैं ताकि थोड़ी प्रिवेसी उनको मिले. मतलब ये क्या चाहे की प्रिवेसी है पीठ करने से, लेकिन उतने में वो कोशिश करते हैं अपनी तरफ से शराफत दिखाना. तो सब एक एक एक एक करके ऐसे, इट्स अ वेरी ब्यूटिफुल, यू सीइंग इट फ्रॉम द टॉप, सब एक करते हैं और फिर सन्नाटा है. ठीक, आई थिंक दैट्स वन ऑफ माई फेवरेट शॉट्स.
0: क्या बात, अद्भुत दृश्य. राजश्री सावंत थी वो एक्ट्रेस.
1: राजश्री सावंत थी
0: जी, कमाल. अब पपीहा है जो चिपको आंदोलन पर बनी हाँ. तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि पपीहा का जिक्र करें.
1: तो पपीहा का जल्दी जल्दी मैं बताती हूँ. ये फिल्म कह सकते हैं कि अपने भारत के वन अरण्य हाँ जंगल और आदिवासी इनको ये मेरा एक सलाम है.
0: वाह
1: हाँ, इसका ये पढ़ के
0: चिपको आंदोलन की
1: आंदोलन का मैंने कहा ये तो कुछ इसको तो करना ही चाहिए. तो मैंने सोचा कि क्यों नहीं अपन एक फेरी टेल फॉर एडल्ट्स करें, हाँ, बड़ों के लिए एक परी कथा हाँ. तो अभी तक मैंने कभी प्यार का ट्रायंगल नहीं हैंडल किया था. तो एक प्यार का ट्रायंगल करें. एक कोना फॉरेस्ट ऑफिसर हीरो, जिसके लिए वन और जंगल और उनकी रक्षा यही सब कुछ है, ही इज ऑन अ मिशन, मिलिंद गुना जी. देन द गर्ल विनी माय डॉटर हु इज अ सोशल एंथ्रोपोलॉजिस्ट हु इज स्टडिंग समाज
0: मानवी की
1: हाँ, लेकिन आदिवासियों की
0: जी.
1: शी स्टडिंग ट्राइबल्स और इसलिए वो इस जंगल में आई है. और तीसरा एंगल है फॉरेस्ट खुद जंगल. तो ये इन तीनों को लेके ये ऐसे कहानी ये की और बहुत आदिवासी है उसमें नेचुरली. तो अब उस पर एक जैसे प्रॉब्लम्स आते हैं और वो कैसे सुलझते हैं, ये भी एक मजे का बता सकती हूँ इस फिल्म को लेकर, कि हमने सोचा कि ये आदिवासी तो दिखाया है बड़े चाव से कि हाँ आदिवासी है, लेकिन अब कौन से आदिवासी, देर आर 300 आदिवासी ट्राइब्स इन इंडिया, भील या डागर या महादेव कोड़ी या वारली या कौन, मतलब इतने हैं और उनकी भाषाएं अलग हैं थोड़ी सी, उनके रिवाज अलग हैं, तो क्या करे फिर, बहुत है। और गलत भी नहीं करना चाहिए, इफ यू आर मेकिंग अ फिल्म यू कांट टेक लिबर्टीज विथ एक्चुअल फैक्ट। फिर सोचा कि कह तो रहे हैं कि ये परिकथा है बड़ों के लिए
0: जी,
1: तो व्हाई नॉट टेक लिबर्टी एंड हैव एन जेनेरिक ट्राइबल, यू ना भींड है ना भील है ना महादेव कोड़ी है, वो ट्राइबल है बस। एंड ट्राइबल्स हैव अ वेरी यूनिक कॉमन फैक्टर, दे आर ऑल वेरी इनोसेंट, they are all very believing, and they are all very scared, insecure, and they are all very helpful and very loving. तो ये सब जो है, तो वो सब लेके हमने ट्राइबल्स तो बना दिए, और जंगल को भी जूटी बूटी का जंगल किया, मंतरबन नाम दिया जंगल को मंतरबन
0: जी।
1: और फिर भाषा, भाषा क्या करें, फिर ये सोचा कि एक नई भाषा बनाई जाए, क्योंकि वो जो हर कहीं हम गए और आदिवासियों से बोले तो उनकी भाषा समझ में आती थी, बेशक अपने में अलग अलग हो लेकिन समझ में इसलिए आती थी कि बहुत मराठी की झाग थी उसमें,
0: बिल्कुल,
1: मतलब मराठी को ही ट्विस्ट करके कुछ उन्होंने अपना बनाया था। तो हमने कहा हम भी क्यों नहीं ऐसा ही करें, फिर हमने अपनी भाषा बनाई, और मेरे दो फैंटास्टिक असिस्टेंट्स, एक सुहेल अब्बासी,
0: अरे वाह,
1: और एक श्रीधर रंगायन, फैंटास्टिक दोनों, इतने मजे के, तो उन्होंने ये भाषा को लेके तो वो बहुत ही मतलब पगला गए, और उन्होंने फिर बहुत ये सब लिखा पढ़ी कि ये किया, उसका व्याकरण बनाया, और फिर वो तो इतना मुझे इरिटेशन है, तो गलतियां निकालते थे, नहीं नहीं सही, वो न्यूट्रल है, ये नहीं स्त्रीलिंग ही नहीं है पुलिस, अरे चुप कर यार, इसे सही भाषा थोड़ी ना
0: गजब गजब गजब,
1: इतना सीरियसली वो लेते थे, अरे नहीं नहीं वो गलत बोला गलत बोला, मैंने कहा भाषा ही गलत है तो क्या गलत है। तो एनीवे, तो बहुत मजा आता था वो सब, हम जंगल में वो किया, और वो फैंटास्टिक, इट वाज अ ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस, इट वेंट टू वन फेस्टिवल इन इटली, बट अनफॉर्चुनेटली प्रोडक्शन में लकीली मेरा जेब का पैसा नहीं खर्च हुआ, लेकिन हमको मिनिस्ट्री ने दिया काफी, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट, दैट वेंट ऑफ वेरी वेल, एंड इट हैड अ लॉन्च ऑन दिल्ली दूरदर्शन
0: जी।
1: तो वो जेब से गया नहीं, लेकिन फिल्म ने कमाया नहीं कुछ और दिखाई भी नहीं गई, लेकिन उसकी कैसेट्स बिकती थी, बहुत कैसेट्स तरह तरह के वन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट्स में या फॉरेस्ट के शिक्षा केंद्रों में या स्कूलों में कॉलेजों में, ऐसे बहुत कैसेट्स खरीदे लोगों ने
0: जी।
1: और द फिल्म वाज यूज्ड फॉर वर्कशॉप्स।
0: ये गाना सुनते
1: जी, क्या बात।

0: जीवन की नाटकीयता की एक मिसाल और है इस फिल्म से जुड़ी हुई, और वो ये है कि चुनाव में जिस व्यक्ति ने आपको हराया था।
1: यस यस।
0: मैं पूरी नहीं करूंगा ये बात, आप ही बताएंगे।
1: जब कॉलेज में मैं थी तो पहली बार मैंने जो एक प्ले डायरेक्ट किया, अंग्रेजी प्ले था डियर डिपार्टेड, विच वन द बेस्ट इंटर कॉलेजिएट प्राइज फॉर द बेस्ट प्ले। आई वन द बेस्ट डायरेक्टर अवार्ड एंड आई ऑल्सो आई एक्टेड इन दैट प्ले, आई वन द बेस्ट एक्ट्रेस। तो ये हो गया। तो एनीवे तब थोड़ा सा हौसला बढ़ गया। मैंने कहा दे यूज टू बी डिफरेंट इलेक्शंस इन द कॉलेज, हाँ, फॉर डिफरेंट पोस्ट, लाइक स्पोर्ट्स सेक्रेटरी, फाइनेंस सेक्रेटरी, लेडीज रिप्रेजेंटेटिव, फाइनेंस का। सो देयर वाज अ पोस्ट कॉल्ड सेक्रेटरी एंटरटेनमेंट। हाँ, सो आई सेड आई वांट टू स्टैंड फॉर दैट। तो लोग हक्का बक्का नहीं, लेकिन आज तक कोई लड़की नहीं कभी ये पोस्ट के लिए खड़ी। मैंने कहा क्यों, क्या ऐसा कानून थोड़ा है कि लड़की नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं, लेकिन लेडीज रिप्रेजेंटेटिव है ना, तो उसके लिए खड़ी रहो। मैंने कहा मुझे नहीं लेडीज रिप्रेजेंटेटिव है ना, ये दिस इज कंसर्निंग द वर्क दैट आई डू, प्लेज वगैरह, सो आई वॉन्ट टू स्टैंड फॉर दैट। एंड आई गॉट इलेक्टेड इन अ वेरी थम्पिंग मेजोरिटी। बहुत अजूबा था ना उन दिनों, लड़की खड़ी वगैरह वगैरह, और मेरा ये प्ले भी जीता था। तो ये हुआ। अच्छा, उससे एक बड़ी पोस्ट थी ड्रामा सेक्रेटरी। तो अगले साल मैंने कहा ड्रामा सेक्रेटरी के लिए
0: चुनाव लड़ा जाए,
1: तो वो नाम दिया। और अब पूरा मामला पलट गया, सब लड़के कहने लगे ये लड़कियां सर पे बैठ जाती है, जरा सा मौका दो तो। अब ये ड्रामा सेक्रेटरी बनेगी, तो देन देयर वाज अ हवा चलती है ना, जैसे हवा चली कि इसको हराना है। तो मुझे अच्छी मेजोरिटी से हराया, बहुत बुरी तरह पिटाई हुई मेरी। तो अब फ्लैश फॉरवर्ड, और ये हम इसका कर रहे थे, एंड मिनिस्ट्री हैड गिवन अस देयर ब्लेसिंग्स कि करो फिल्म वगैरह,
0: पपीहा बनाओ।
1: और मैं फिर जंगल का सबसे कौन फॉरेस्ट ऑफिसर, सबसे नंबर वन था माशेलकर, उनके पास पहुंच गई। तो बड़ा सीनियर सा आदमी और बहुत तमीज वाला वगैरह वगैरह, हमारे अच्छी बातें हुई। फिर उन्होंने कहा पहचाना नहीं? मैंने कहा नहीं पहचाना। ही सेड क्यों पहचानोगी? क्या ही सेड वो फर्ग्यूसन कॉलेज अबू कमक साल, हो मी तुमच्याच वर्गात होतो, मैं आप ही के बैच में था, आप ही के क्लास में मैं। ओह, मैंने कहा। ही सेड येस ऑफ कोर्स, एंड ही सेड यू वर स्टैंडिंग फॉर द ड्रामा पोस्ट, एंड ही सेड समवन फॉरगेट हिज नेम स्टूड ऑपोजिट मी हु वन। He said, I was his number one supporter.

0: हाँ, तो एंड वी सॉ टू इट दैट यू लॉस्ट, सो आई सेड अच्छा तो ये है वगैरह, फिर बड़ी हंसी मजाक की बातें हुई. ही सेड अच्छा तो मुझे अब कुछ पापक शालन करना चाहिए, आई हैव टू मेक अप फॉर दैट. सो आई सेड हाँ करो. He made everything possible. Wherever we went, we had the forest guest house to stay. We had a forest expert committee to guide us. We had a forest retinue, huh? Bodyguards, etc. We had jeeps. क्या नहीं बोलो, and permission everywhere. ताड़ोबा जाना है जाओ, संजय गांधी उद्यान जाओ, महाबलेश्वर जाना है जाओ, नागजीरा जाना है जाओ, you know. So we shot all over, fantastic, and it really went up very well.
1: क्या बात है.
0: It's sad that the film didn't. People have not seen it so much.
1: जी जी जी. अभी हाल ही में आपको जी गौरव अवार्ड मिला आपके नाट्यकर्म के लिए. आपने अभूतपूर्व काम किया है, अप्रतिम काम किया है. मुझे लगता है कि इस लंबी बातचीत के आखिर में कुछ बातें आपके बहुत महत्वपूर्ण नाटकों की कर ली जाए.
0: बात यह है यूनुस कि ये मेरे नाटकों के बारे में मैंने बहुत अच्छा लिखा है, और क्यों नहीं आप वो पढ़ते हैं, ये मैं रिक्वेस्ट करूंगी. और अब मेरी ये जो किताब है, जो मेरे क्या कहते हैं, जो मेरे क्रिएटिव एक्सपीरियंस पे लिखी है, तो वो अब हिंदी में छप रही है
1: जी.
0: और वो पब्लिकेशंस डिवीजन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा छपी जाएगी. तो मैं आपसे बहुत प्यार से रिक्वेस्ट करती हूँ, बल्कि इनवाइट करती हूँ आपको कि आप उसमें पढ़ें. मैंने बहुत तफसील से लिखा है.
1: बिल्कुल बिल्कुल. और हम अपने सुनने वालों को ये भी बताना चाहते हैं कि ये जो आपकी किताब है ये मराठी में उपलब्ध है, और उसके अलावा ये किताब अंग्रेजी में भी उपलब्ध है
0: जी,
1: और अब हिंदी वर्जन भी आ रहा है.
0: हाँ, मराठी में उसका नाम है सय, हाँ, जो राजहंस प्रकाशन ने किया है. फिर अंग्रेजी हार्पर कॉलिंस की छपी है. इट्स कॉल्ड अ पैचवर्क क्विल्ट. अ पैचवर्क क्विल्ट इसलिए कि वो टुकड़े टुकड़े जोड़ के क्विल्ट बनाया जाता है ना, सुंदर सा.
1: जी, जी.
0: तो मेरी माँ कहती थी हमेशा कि तुम एक चीज पे क्यों नहीं ध्यान देती हो, आज नाटक, कल टेलीविजन, परसों फिल्म. हाँ, ये 50 एक ना भर मारा भर चिंदिया, दैट मीन्स ना एक कुछ ठीक से करती है, ये टुकड़े टुकड़े जमा कर बैठती है. तो इसलिए मैंने कहा कि ये टुकड़े जोड़कर मैंने ये क्विल्ट बनाया है, तो पैचवर्क क्विल्ट. और अब ये हिंदी में जो छपरी है उसके दो टाइटल्स हैं, अभी पक्का नहीं तय हुआ. आप बताओ कौन सा आपको अच्छा लगता है. एक है सही नामा या सही नामा, और दूसरा है सही बात या सही बात.
1: क्या बात है, अब ये तो बड़ा मुश्किल है. हम अपने श्रोताओं से कहते हैं कि वो तय करेंगे.
0: लवली,
1: क्या नाम होगा.
0: आई लव टू हियर व्हाट दे फील. आई ट्रूली वुड सिंसियरली, एंड थैंक यू सो मच फॉर योर पेशेंस.
1: जी सही जी, एक बात कहना चाहता हूँ.
0: जी,
1: आज से तकरीबन 20 बरस पहले मैंने बड़े डरते डरते आपसे फोन पर बात की थी, और आपसे इंटरव्यू चाहा था. तब मैं बहुत नया था और तब भी आपसे डरता था, अब भी डरता हूँ.
0: तो मैं ये कहूंगी कि ऐसे ही आप डरते रहिए, अच्छी बात है. ये अच्छा लगा कि कोई मुझसे डरता है.
1: जी, तो आपने कहा था कि इंटरव्यू करने का अभी मन नहीं है,
0: बर
1: आगे कभी बात करेंगे.
0: तो किए ना.
1: मुझे पता नहीं,
0: वादा निभाया
1: कि 20 साल इस वादे में लग जाएंगे. मैं बहुत खुश हूँ कि आपने इतनी लंबी बात इतने धीरज के साथ की. थोड़ी ज्यादा है इतने
0: अच्छा
1: सारे
0: लगा.
1: सवाल कर बहुत बहुत शुक्रिया.
2: नमस्कार श्रोताओं, FM 102.5 मेगाहर्ट्ज़ और न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर यह है आकाशवाणी उज्जैन. शाम के 5 बज चुके हैं. मैं आपकी रेडियो साथी दृष्टि स्वागत करती हूं सभी श्रोताओं का युवा संवाद, युवा सोच और युवा जोश से सजे कार्यक्रम युववाणी में. आज युववाणी प्रस्तुत करता है अनुष्का अग्रवाल और अंकिता शर्मा.

0: नमस्कार, आकाशवाणी उज्जैन के युवा कार्यक्रम युवाणी में आप सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं अंकिता।
1: और मैं हूं अनुष्का।
0: दोस्तों, उम्मीद है कि आप सभी स्वस्थ, प्रसन्न और अपने परिवार के साथ खुशहाल होंगे। बारिश का मौसम अपने पूरे शबाब पर है। कहीं रिमझिम फुहारे हैं तो कहीं बादलों की गड़गड़ाहट, तो कहीं गर्मा गर्म चाय और पकौड़ों का स्वाद। ऐसे मौसम में अगर साथ हो आपका अपना आकाशवाणी तो फिर बात ही कुछ और हो जाती है ना अनुष्का?
1: बिल्कुल अंकिता, रेडियो का यही तो खासियत है। ये मनोरंजन का माध्यम ही नहीं बल्कि जानकारी, प्रेरणा और अपनेपन का भी एक सुंदर साथी है। जहाँ गीतों की मिठास है वहीं ज्ञान की बातें भी हैं, और सबसे बढ़कर है आप सभी श्रोताओं का स्नेह जो हमें हर सप्ताह आपसे जोड़ता है।
0: बिल्कुल। तो दोस्तों, कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी है और अब समय है हमारे पहले सुरीले गीत का।

0: दोस्तों, अभी जो आपने गाना सुना वो था फिल्म जीरो से, जिसे गाया था अभय ने और संगीतकार थे विजय दयाल और गीतकार थे इशाद कामिल। दोस्तों, आज का युवाणी भी कुछ खास होने वाला है। आज हम बात करेंगे ऐसे विषयों की जो हमारे इतिहास, समाज, पर्यावरण और युवाओं के भविष्य से जुड़े हुए हैं।
1: सबसे पहले जानेंगे विश्व जनजातीय दिवस के बारे में, जो हमें भारत की समृद्ध जनजातीय संस्कृति और परंपराओं से परिचित कराता है।
0: इसके बाद बात होगी नागासाकी दिवस की, जो हमें शांति, मानवता और विश्व भाईचारे का संदेश देता है।
1: फिर याद करेंगे भारत छोड़ो आंदोलन की, जिसने हमारे स्वतंत्रता संग्राम को नई दिशा दी और पूरे देश को आजादी के लिए एकजुट कर दिया।
0: बिल्कुल, इसके बाद चर्चा

0: वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे सो इजी
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए आरबीआई कहता है
2: जानकार बनिए सतर्क रहिए
3: अभी आपने सुना ऊंची ऊंची दीवारें जिसे गाया है अरिजीत सिंह ने संगीत दिया है मनन भारद्वाज ने फिल्म यारियां 2 से
4: दोस्तों इस खूबसूरत गीत के बाद अब बात करते हैं विश्व जनजातीय दिवस की। हर वर्ष 9 अगस्त को पूरी दुनिया में ये दिवस मनाया जाता है। इसकी शुरुआत संयुक्त राष्ट्र संघ ने वर्ष 1994 में की थी। इसका उद्देश्य दुनिया भर के आदिवासी समुदायों की संस्कृति परंपराओं भाषाओं और उनके अधिकारों के प्रति लोगों को जागरूक

0: करना था।
1: बिल्कुल अंकिता, भारत की पहचान उसकी विविधता में एकता है और इस विविधता को सबसे खूबसूरत रंग देने का काम हमारे जनजातीय समाज ने किया है। भारत में 700 से अधिक अनुसूचित जनजातियां हैं जो देश को कुल आबादी का लगभग 9% हिस्सा होती है। हर जनजाति का अपना अलग रहन सहन, भाषा, लोक कला और प्रकृति से जुड़ी जीवन शैली भी है।
0: बिल्कुल अनुष्का, और अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो ये देश के सबसे बड़े जनजातीय आबादी वाले राज्यों में से एक है। यहाँ भील, गोंड, बैगा, कोरकू, सहरिया, भारिया, भिलाला और कौल जैसी अनेक जनजातियाँ निवास करती है। इनकी परंपराएं, लोकगीत, लोक नृत्य और हस्तशिल्प हमारी सांस्कृतिक विरासत को समृद्ध बनाते हैं। अनुष्का,
1: क्या आप जानते हैं मध्य प्रदेश प्रधान, मतलब मध्य प्रदेश की प्रधान जो जनजाति है ना,
0: प्रधान जी, आप प्रधान गौंड चित्रकला आज पूरी दुनिया में अपनी अलग पहचान बना चुकी है। वहीं भील चित्रकला अपनी रंग बिरंगी बिंदुओं और पारंपरिक शैली के लिए प्रसिद्ध है। आज इन कलाओं को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी सराहा जा रहा है। अनुष्का, अनुष्का अब और बात करेंगे जनजातीय दिवस के बारे में, लेकिन उससे पहले हम सुन लेते हैं हमारा अगला गीत।

0: बुकिंग सिर्फ अपने ही कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें। हाँ, ये खाने की चैंपियनशिप थी क्या? RBI कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
1: दोस्तों, अभी आपने एक खूबसूरत गाना सुना था फिल्म कुछ ना कहो से, जिसे अपनी आवाज़ दी थी कविता कृष्णमूर्ति, उदित नारायण ने संगीत दिया था, शंकर एहसान लॉय ने, और गीतकार थे जावेद अख्तर। दोस्तों, हम जनजातीय दिवस के बारे में बात कर रहे थे और हमारी आदिवासी समाज केवल संस्कृति का ही नहीं बल्कि प्रकृति संरक्षण का भी एक बड़ा उदाहरण है। सदियों से ये समुदाय जंगलों, नदियों और जैव विविधता के साथ संतुलित जीवन जीते आए हैं। पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में उनकी पारंपरिक जानकारी आज भी बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। अनुष्का,
2: बिल्कुल अंकिता, और जब देश की आज़ादी की बात आती है तब भी आदिवासी समाज का योगदान कभी भुलाया नहीं जा सकता। धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा ने अंग्रेजी शासन के खिलाफ उलगुलान आंदोलन का नेतृत्व किया। वहीं मध्य प्रदेश के अमर क्रांतिकारी टंटिया मामा भील, जिन्हें भारतीय रॉबिनहुड भी कहा जाता है, इन्होंने आदिवासी समाज के अधिकारों और स्वतंत्रता के लिए संघर्ष बहुत सारा किया है।
1: बिल्कुल अनुष्का, इसके अलावा रानी दुर्गावती का साहस और बलिदान भी भारतीय इतिहासों में स्वर्ण अक्षरों में दर्ज है। उन्होंने अपने राज्य और स्वाभिमान की रक्षा के लिए मुगल सेना का डटकर सामना किया। उनके जीवन से हमें साहस, नेतृत्व और आत्मसम्मान की प्रेरणा मिलती है।
2: आज केंद्र और राज्य सरकारें जनजातीय समाज का शिक्षा, स्वास्थ्य, कौशल विकास और स्वरोजगार के लिए अनेक योजनाएं चला रही है। एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय, वन धन विकास केंद्र, छात्रवृत्ति योजनाओं और कौशल प्रशिक्षण जैसे कई प्रयास जनजातीय युवाओं को आगे बढ़ने का अवसर भी दे रहे हैं।
1: बिल्कुल, विश्व आदिवासी दिवस हमें ये याद दिलाता है कि विकास तभी सार्थक है जब समाज का हर वर्ग उसके साथ आगे बढ़े। हमारी जनजातीय संस्कृति केवल इतिहास नहीं बल्कि भारत का जीवंत पहचान है।
2: आइए इस अवसर पर हम सभी अपनी जनजातीय विरासत को सम्मान करें, उनकी संस्कृति को जाने और प्रकृति के साथ संतुलित जीवन जीने की उन्हें सीख को अपने जीवन में अपनाने का प्रयास करें। अंकिता,
1: बिल्कुल, और इसी सुंदर संदेश के साथ अब समय है हमारे अगले मधुर गीत का।
2: गीत के बाद फिर लौटेंगे।

0: अभी आपने सुना अरे रे अरे लता मंगेशकर उदित नारायण की आवाज में, जिसे लिखा है आनंद बख्शी ने और फिल्म है दिल तो पागल है।
1: दोस्तों, इस खूबसूरत गीत के बाद अब हम बात करते हैं 9 अगस्त से जुड़े एक ऐसे दिवस की जो पूरी दुनिया को शांति, मानवता और युद्ध के दुष्परिणामों की याद दिलाता है। हम बात कर रहे हैं नागासाकी दिवस की।
0: जी हाँ अंकिता, वर्ष 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध अपने अंतिम चरण में था। 6 अगस्त को जापान में हिरोशिमा पर पहला परमाणु बम गिराया गया और उसके ठीक 3 दिन बाद 9 अगस्त 1945 को जापान के नागासाकी शहर पर दूसरा परमाणु बम फिर से गिराया गया।
1: जी हाँ, इस बम का नाम था फैट मैन। विस्फोट इतना भीषण था कि कुछ ही क्षणों में पूरा शहर तबाह हो गया। लगभग 40,000 लोगों की तत्काल मृत्यु हो गई और वर्ष के अंत तक विवीकरण और गंभीर चोटों के कारण ये संख्या 70,000 से अधिक हो गई।
0: इतना ही नहीं, इस परमाणु हमले का असर कई वर्षों तक देखने को भी मिला अंकिता। विकिरण के कारण हजारों लोगों को गंभीर बीमारियां हुई, कई बच्चों का जन्म शारीरिक समस्याओं के साथ हुआ। ये ही कारण था कि नागासाकी दिवस केवल एक ऐतिहासिक घटना नहीं बल्कि पूरी मानवता के लिए एक चेतावनी भी है।
1: बिल्कुल, और एक रोचक तथ्य ये भी है अनुष्का कि नागासाकी उस दिन मूल लक्ष्य नहीं था। अमेरिकी विमान पहले कोकुरा शहर की ओर जा रहा था, लेकिन बादलों और धुएं के कारण लक्ष्य स्पष्ट दिखाई नहीं दिया। इसके बाद विमान नागासाकी की ओर मुड़ गया और इतिहास ने एक दुखद मोड़ ले लिया अनुष्का।
0: आज नागासाकी में पीस पार्क और पीस मेमोरियल बनाए गए हैं अंकिता, जहां हर वर्ष 9 अगस्त को सुबह 11:02 पर, यानी उसी समय जब विस्फोट हुआ था, 2 मिनट तक मौन रखकर सभी पीड़ितों को श्रद्धांजलि दी जाती है।
1: दोस्तों, भारत की संस्कृति हमेशा से अहिंसा, शांति और वसुदेव कुटुंबकम की राह है। महात्मा गांधी ने भी दुनिया को यही संदेश दिया कि हिंसा कभी किसी समस्या का स्थायी समाधान नहीं हो सकती। संवाद, सहयोग और आपसी विश्वास ही बेहतर भविष्य का रास्ता है।
0: आज विज्ञान और तकनीक ने मानव जीवन को बहुत आगे बढ़ा दिया है, लेकिन तकनीक कभी भी सार्थक है जब उसका उपयोग मानव कल्याण के लिए किया जाए। ऊर्जा, चिकित्सा, कृषि और अनुसंधान के क्षेत्र में परमाणु विज्ञान का उपयोग समाज के विकास के लिए किया जा सकता है, लेकिन युद्ध में इसका पूरा उपयोग मानवता के लिए विनाशकारी साबित होता है।
1: बिल्कुल अनुष्का, नागासाकी दिवस हमें यही सिखाता है कि शांति केवल सरकारों की जिम्मेदारी नहीं है। हम सभी अपने व्यवहार, विचार और आपसी संबंधों में सहिष्णुता, सम्मान और सद्भाव को अपनाकर एक बेहतर समाज के निर्माण में योगदान दे सकते हैं।
0: आइए इस नागासाकी दिवस पर हम सभी ये संकल्प लें कि मतभेद चाहे कितना भी हो, उनका समाधान हमेशा बातचीत, सहयोग और शांति के रास्ते में ही खोजेंगे।
1: बिल्कुल, और इसी सकारात्मक संदेश के साथ अब समय है हमारे अगले मधुर गीत का।

0: अभी आपने सुना ये गीत फिल्म क्रू से, जिसे गाया था बादशाह और भार्ग ने। संगीतकार थे भार्ग और रॉ और गीतकार थे भार्ग, रॉ और बादशाह। दोस्तों, कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाते हैं और अब हम बात करते हैं भारत के स्वतंत्रता संग्राम के एक ऐसे अध्याय की जिसने पूरे देश में आज़ादी की लौ को और प्रज्वलित कर दिया। हम बात कर रहे हैं भारत छोड़ो आंदोलन की, जिसकी शुरुआत 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी ने मुंबई के गोवलिया टैंक मैदान, जिसे आज अगस्त क्रांति मैदान के नाम से जाना जाता है, से की थी।
1: बिल्कुल अंकिता, उस समय भारत अंग्रेजी शासन के अधीन था और द्वितीय विश्व युद्ध भी चल रहा था। ऐसे में महात्मा गांधी ने देशवासियों को एक स्पष्ट संदेश दिया, करो या मरो। ये केवल एक नारा नहीं था बल्कि स्वतंत्रता प्राप्ति का एक दृढ़ संकल्प था।
0: बिल्कुल अनुष्का, इस आंदोलन की सबसे बड़ी विशेषता ये थी कि इसमें केवल बड़े नेता ही नहीं बल्कि विद्यार्थी, किसान, मजदूर, महिलाएं और युवा भी बड़ी संख्या में शामिल हुए। आंदोलन शुरू होते ही महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल और कई अन्य नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन जनता का उत्साह कम नहीं हुआ।
1: मध्य प्रदेश ने भी इस आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, उज्जैन, सागर और रीवा सहित प्रदेश के कई शहरों में युवाओं ने रैलियां निकाली और स्वतंत्रता आंदोलन को मजबूत बनाया। अनेक लोगों ने जेल यात्राएं की और अंग्रेजी शासन का डट कर सामना किया। अंकिता,
0: बिल्कुल, और आज जब हम आजाद भारत में खुलकर अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं और अपने अधिकारों का उपयोग कर सकते हैं, तो ये उन स्वतंत्रता सेनानियों के त्याग का ही परिणाम है। अनुष्का,
1: तो आइए भारत छोड़ो आंदोलन की वर्षगांठ पर हम अपने सभी स्वतंत्रता सेनानियों को नमन करें और एक जागरूक, जिम्मेदार और सशक्त नागरिक बनने का संकल्प भी लें।
0: बिल्कुल, और अब इसी देशभक्ति की भावना के साथ सुनते हैं अगला

0: तो दोस्तों, अभी आपने सुना फिल्म दिल चाहता है से, कोई कहे कहता रहे, जिसे गाया है शंकर महादेवन शान केके ने और संगीत दिया है शंकर एहसान लॉय ने।
1: दोस्तों, अब बात करते हैं मध्य प्रदेश सरकार की एक ऐसी पहल की जो युवाओं को केवल रोजगार ही नहीं बल्कि कौशल और अनुभव भी प्रदान कर रही है। हम बात कर रहे हैं मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना की।
0: जी हाँ अंकिता, इस योजना की शुरुआत इस सोच के साथ की गई थी कि पढ़ाई पूरी करने के बाद युवाओं को उद्योगों और संस्थानों में व्यवहारिक प्रशिक्षण मिले ताकि वे नौकरी के लिए पहले से तैयार हो सके।
1: जी हाँ, इस योजना के तहत प्रदेश के 18 से 29 वर्ष के युवा जिन्होंने 12वीं, ITI, डिप्लोमा, स्नातक या उच्च शिक्षा प्राप्त की है पंजीकरण करा सकते हैं। प्रशिक्षण के दौरान उन्हें उनकी शैक्षणिक योग्यता के अनुसार मासिक स्टाइपेंड भी दिया जाता है।
0: इस योजना की खास बात यह है अंकिता कि प्रशिक्षण केवल सरकारी संस्थानों में नहीं बल्कि पंजीकृत निजी उद्योगों और प्रतिष्ठानों में भी किया जाता है। इससे युवाओं को वास्तविक कार्यस्थल का अनुभव मिलता है और रोजगार पाने में संभावनाएं बढ़ जाती है।
1: बिल्कुल अनुषा, और इच्छुक युवा mmskyway.mp.gov.in पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन पंजीकरण कर सकते हैं। वहीं उद्योग और संस्थान भी इस पोर्टल पर पंजीकरण कर प्रशिक्षुओं का चयन कर सकते हैं।
0: अगर आप भी पढ़ाई पूरी कर चुके हैं और अपने कौशल को निखारते हुए आगे बेहतर करियर बनाना चाहते हैं तो मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना आपके लिए एक बेहतरीन अवसर हो सकता है।
1: बिल्कुल, और अधिक जानकारी के लिए mmsky.mp.gov.in पर विजिट करें और समय समय पर जारी होने वाली अधिसूचना पर नजर डालें।
0: अब बढ़ते हैं अंकिता एक अगले सुरीले गीत की ओर।

0: अभी आपने सुना फिल्म दिल्ली सिक्स का ये गीत, जिसे अपनी खूबसूरत आवाज़ दी थी मोहित चौहान ने, संगीत दिया था एआर रहमान ने और गीतकार थे प्रसून जोशी। दोस्तों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और अब समय है रोजगार समाचार का। अगर आप मध्य प्रदेश में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए एक महत्वपूर्ण अपडेट है।
1: मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल यानी कि MPESB ने ग्रुप 2 उपसमूह 4 संयुक्त भर्ती परीक्षा 2026 के तहत 2306 पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए हैं।
0: जी, इन पदों पर आवेदन करने के लिए अभ्यर्थी का स्नातक होना आवश्यक है। हालांकि कुछ पदों के लिए अतिरिक्त योग्यता भी निर्धारित की गई है, जिसकी जानकारी आधिकारिक अधिसूचना में देखी जा सकती है।
1: इच्छुक अभ्यर्थी 18 अगस्त 2026 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। वहीं इस भर्ती की परीक्षा 22 सितंबर 2026 से आयोजित की जाएगी।
0: जी हां, आवेदन करने और विस्तृत जानकारी प्राप्त करने के लिए MPESB की आधिकारिक वेबसाइट esb.mp.gov.in पर विजिट जरूर करें।
1: दोस्तों, आवेदन करने से पहले पात्रता, आयु सीमा और अन्य आवश्यक शर्तों को ध्यानपूर्वक पढ़ें। साथ ही आवेदन की तिथियों में परिवर्तन संभव भी हो सकता है, इसीलिए आधिकारिक वेबसाइट पर नियमित रूप से अपडेट देखते रहें।
0: दोस्तों, समय पर आवेदन करें, पूरी तैयारी के साथ परीक्षा दें और अपने उज्जवल भविष्य की ओर आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़े। हमारी ओर से आप सभी को शुभकामनाएं। दोस्तों, इस महत्वपूर्ण जानकारी के बाद हम बढ़ते हैं हमारे अगले गीत की ओर।

0: अभी आपने सुना ले डूबा, सुनिधि चौहान की आवाज़ में जिसे संगीत दिया है रोचक कोहली ने फिल्म अयारी से।
1: दोस्तों, आज के युवाणी के इस अंक में हमने विश्व जनजातीय दिवस के माध्यम से भारत की समृद्ध जनजातियाँ, संस्कृति और परंपराओं को जाना। नागासाकी दिवस के अवसर पर विश्व शांति और मानवता का संदेश समझा और भारत छोड़ो आंदोलन के जरिए हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के अदम्य साहस को नमन किया।
0: साथ ही हमने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना की जानकारी साझा की और हमारे युवा साथियों के लिए रोजगार समाचार के अंतर्गत महत्वपूर्ण सरकारी भर्तियों की जानकारी भी आप तक पहुंचाई। उम्मीद है कि आज का ये कार्यक्रम आपके लिए उपयोगी और ज्ञानवर्धक रहा होगा।
1: दोस्तों, हमारा प्रयास हमेशा यही रहता है कि मनोरंजन के साथ साथ आपके लिए ऐसी जानकारियाँ लेकर आएं जो आपके जीवन और भविष्य दोनों के लिए लाभदायक हो।
0: अब समय है आज के इस अगले गीत का। गीत के बाद हम आपसे एक और बात करना चाहेंगे।
1: बिल्कुल बिल्कुल अनुष्का।

0: दोस्तों, अभी आपने गाना सुना था फिल्म आंखों की गुस्ताखिया से, जिसे गाया और संगीत दिया था विशाल मिश्रा ने। दोस्तों, पूरे सप्ताह आकाशवाणी उज्जैन का कार्यक्रम युवाणी आपके लिए शिक्षा, करियर, संस्कृति, सामाजिक विषयों पर, मनोरंजन पर कार्यक्रम लेकर आते हैं।
1: और अगर आप भी हमारे कार्यक्रम का हिस्सा बनना चाहते हैं तो हर सोमवार से शुक्रवार तक आयोजित होने वाले फोन इन कार्यक्रम से हमसे जुड़े रहें। हमारे साथ अपने विचार साझा कीजिए, सवाल पूछिए और अपने पसंदीदा गीतों को फरमाइश भी कर सकते हैं।
0: जी बिल्कुल, हमारा दूरभाष क्रमांक है 0734-405-4191। हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।

श्रोताओं, FM 102.5 मेगाहर्ट्ज़ और न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर यह है आकाशवाणी उज्जैन और आप सुन रहे थे कार्यक्रम युववाणी। सुनते रहिए और जुड़े रहिए आकाशवाणी उज्जैन के साथ।

नमस्कार श्रोताओं, FM 102.5 MHz और न्यूज ऑन AIR ऐप पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी उज्जैन कार्यक्रम भजन संध्या में आपका सादर अभिनंदन करती हूं। मैं आपकी रेडियो साथी दृष्टि। श्रावण मास का प्रत्येक दिन अपने साथ भक्ति, आस्था और आत्मचिंतन का संदेश लेकर आता है। इन्हीं पावन दिनों में आती है कामिक एकादशी, जो भगवान श्री हरि विष्णु की आराधना और मन की शुद्धि का विशेष पर्व मानी जाती है। श्रोताओं, शास्त्रों में भी कहा गया है कि इस दिन श्रद्धा और भक्ति से किया गया स्मरण, जप और सेवा जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाती है। आइए आज के इस आध्यात्मिक सफर में हम आज कामिक एकादशी के महत्व पर और उससे मिलने वाले मार्गदर्शन पर बात करेंगे। तो शुरू करते हैं मधुर भजनों के साथ आज की यह भजन संध्या।

श्रोताओं, श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को कामिक एकादशी कहा जाता है। यह दिन भगवान विष्णु के श्रीधर स्वरूप की उपासना के लिए समर्पित माना गया। भारतीय परंपरा में एकादशी केवल उपवास का दिन नहीं, बल्कि मन, वचन और कर्म को पवित्र बनाने का अवसर भी है। इस दिन लोग अपने भीतर के क्रोध, अहंकार और नकारात्मक विचारों को छोड़ने का संकल्प लेते हैं और कहा जाता है कि सच्चे मन से श्री हरि का स्मरण करने से आत्मबल बढ़ता है और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। कामिका एकादशी हमें यह संदेश देती है कि ईश्वर तक पहुंचने का सबसे सरल मार्ग श्रद्धा, सादगी और भक्ति ही है। आइए श्रोताओं, सुनते हैं इसी के साथ श्री हरि की महिमा का यह सुंदर भजन।

श्रोताओं, आज की तेज़ रफ्तार ज़िंदगी में मन अक्सर अशांत हो जाता है। ऐसे समय में एकादशी हमें थोड़ी देर रुककर स्वयं से मिलने का अवसर देती है। व्रत का वास्तविक अर्थ केवल भोजन का त्याग नहीं, बल्कि बुरे विचारों का त्याग भी है। यदि हम अपने व्यवहार में मधुरता, दूसरों के प्रति सम्मान और ईश्वर के प्रति विश्वास बनाए रखें, तो वही सच्ची साधना है। कामिका एकादशी हमें सिखाती है कि संयम ही जीवन की सबसे बड़ी शक्ति है। जब मन शांत होता है, तभी सही निर्णय लेने की क्षमता विकसित होती है। यही आध्यात्मिकता का सरल और सुंदर संदेश है। आइए श्रोताओं, इसी भावना के साथ सुनते हैं भक्ति रस से भरपूर यह अगला भजन।

श्रोताओं, कामिका एकादशी पर भगवान विष्णु की पूजा में तुलसी का विशेष महत्व बताया गया। तुलसी को भारतीय संस्कृति में पवित्रता, स्वास्थ्य और सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक माना गया है। श्रद्धा से तुलसी दल अर्पित करना केवल एक धार्मिक परंपरा नहीं, बल्कि प्रकृति के प्रति सम्मान को व्यक्त करने का भी माध्यम है। आज के दिन दीप प्रज्वलित कर भगवान का नाम स्मरण करना और भजन कीर्तन कर घर में आध्यात्मिक वातावरण बनाए रखना सकारात्मकता के लिए अति आवश्यक है। छोटी छोटी श्रद्धा से ही की गई पूजा ईश्वर को प्रिय होती है और यही संदेश कामिका एकादशी हमें सहज रूप में देती है। भक्ति में दिखावा नहीं, बल्कि सच्चा भाव ही महत्वपूर्ण है। आइए इसी भाव के साथ सुनते हैं अगला मनभावन भजन।

श्रोताओं, हर व्रत या पर्व एक सामाजिक संदेश लेकर आता है। कामिका एकादशी हमें प्रेरित करती है कि हम जरूरतमंदों की सहायता करें, मधुर वाणी बोलें और अपने आसपास सौहार्द का वातावरण बनाए रखें। यदि हम किसी दुखी व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कान ला सकें तो वही सबसे बड़ा पुण्य है। परिवार के साथ समय बिताना, बड़ों का सम्मान करना और प्रकृति के प्रति कृतज्ञ रहना, यह भी इस पर्व की भावना से जुड़ा है। ईश्वर की सच्ची आराधना तभी पूर्ण होती है जब हमारे व्यवहार में करुणा और सेवा दिखाई दे। यही जीवन को सुंदर और सार्थक बनाता है। आइए श्रोताओं, इसी के साथ सुनते हैं यह अगला भजन।

श्रोताओं, कामिका एकादशी केवल पंचांग की एक तिथि नहीं बल्कि आत्मचिंतन का एक सुंदर अवसर है। जीवन की वास्तविक समृद्धि धन वैभव से नहीं बल्कि संतोष, श्रद्धा और अच्छे कर्मों से मिलती है। और यदि हम प्रतिदिन कुछ समय ईश्वर के स्मरण, अच्छे विचार और सकारात्मक कार्यों के लिए निकालें तो जीवन स्वतः ही आनंदमय बन जाता है। आइए इस पावन अवसर पर हम सभी संकल्प लें कि मन में प्रेम, व्यवहार में विनम्रता और जीवन में सदाचार को स्थान देंगे। और इसी एकादशी के संदेश के साथ सुनते हैं यह अगला भजन।

श्रोताओं, आज भजन संध्या को यहीं विराम देते हैं। भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा आप सभी पर बनी रहे और जीवन में सुख शांति संतोष और सद्भाव का प्रकाश बना रहे। श्रावण का यह पावन समय आपके मन को भक्ति से और जीवन को सकारात्मक ऊर्जा से भर दे, इसी मंगल कामना के साथ आपकी रेडियो मित्र दृष्टि को दीजिए अनुमति। FM 102.5 MHz और न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी उज्जैन। नमस्कार।

नमस्कार श्रोताओं, FM 102.5 MHz और न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर यह है आकाशवाणी का उज्जैन केंद्र। शाम के 6:30 हो चुके हैं। फिल्म संगीत के सुरीले सफ़र में मैं आपकी रेडियो साथी दृष्टि स्वागत करती हूँ सभी श्रोताओं का। आज की है शाम, समर्पित है उन सच्चे दोस्तों के नाम जो कभी शिकायत नहीं करते, कभी साथ नहीं छोड़ते और हर बार कुछ नया सिखा कर जाते हैं। जी हाँ, किताबें। 9 अगस्त को दुनिया भर में राष्ट्रीय पुस्तक प्रेमी दिवस मनाया जाता है। यह दिन हमें याद दिलाता है कि किताबें केवल कागज़ और शब्दों का संग्रह नहीं, बल्कि अनुभव, कल्पना, संवेदना और जीवन की अनमोल धरोहर है। बचपन की पाठ्य पुस्तकों से लेकर दादी नानी की कहानियों तक, पुस्तक मेले की रौनक से लेकर लाइब्रेरी की शांत गलियों तक, किताबों की खुशबू हम सभी की यादों में कहीं ना कहीं आज भी बसती है। आज इस विशेष अंक में हम बात करेंगे किताबों, महान साहित्यकारों, यादगार रचनाओं और हिंदी सिनेमा के कुछ उन गीतों की जिनमें किताबों, किस्सों और शब्दों की मिठास झलकती है। तो आइए श्रोताओं, शुरू करते हैं आज फिल्म संगीत का यह खूबसूरत सफ़र।

श्रोताओं, कहा जाता है कि अच्छे मित्र जीवन बदल देते हैं और अच्छी किताबें सोच बदल देती हैं। बचपन में जब पहली बार किसी कहानी की किताब हाथ में आई होगी, तब शायद किसी ने नहीं सोचा होगा कि वही छोटी सी कहानी जीवन भर साथ चलेगी। कभी पंचतंत्र की कहानियाँ, कभी अकबर बिरबल की चतुराई, तो कभी तेनालीराम की बुद्धिमानी। इन किस्सों ने हमें मुस्कुराना भी सिखाया और सही गलत का अंतर भी। स्कूल की लाइब्रेरी में नई किताब मिलने की खुशी आज भी याद है। पन्ने पलटने की हल्की सी आवाज़ और नई किताब की महक आज भी मन को सुकून देती है। किताबें हमें बिना कहीं जाए पूरी दुनिया की सैर करा देती हैं, और शायद यही कारण है कि कहा जाता है कि जिस घर में किताबें होती हैं वहाँ

चार कभी अकेले नहीं होते। इन्हीं खूबसूरत यादों के साथ आइए सुनते हैं कैसा गीत जिसमें इन्हीं किताबों का एक प्यारा सा एहसास छुपा है।

श्रोताओं, जब हिंदी साहित्य की बात होती है तो सबसे पहले स्मरण होता है मुंशी प्रेमचंद का। उनकी रचनाएं गोदान, गबन, निर्मला और कफन आज भी समाज का सजीव चित्र प्रस्तुत करती हैं। महादेवी वर्मा की संवेदनशील लेखनी ने हिंदी साहित्य को नई ऊंचाइयां दी हैं। वहीं हरिवंश राय बच्चन की मधुशाला आज भी हर पीढ़ी के पाठकों को आकर्षित करती है। रामधारी सिंह दिनकर की रश्मि रथी वीरता और कर्तव्य का अद्भुत संदेश देती है। धर्मवीर

भारती की गुनाहों का देवता आज भी युवाओं की प्रिय कृतियों में गिनी जाती हैं। शिवानी, अमृतलाल नागर, फणीश्वर नाथ रेणु और सुभद्रा कुमारी चौहान जैसे साहित्यकारों ने हिंदी भाषा को समृद्ध बनाया। इनकी किताबें केवल पढ़ी नहीं जाती बल्कि महसूस की जाती हैं। इन्हीं शब्दों की दुनिया को सलाम करते हुए आइए बढ़ते हैं अगले गीत की ओर।

श्रोताओं, ये गीत आप सुन रहे हैं फिल्म बाजीगर से गायक आशा भोसले और विनोद राठौर की आवाज, संगीत अनु मलिक का और गीतकार जफर गोरखपुरी के बोल।

श्रोताओं, भारतीय सिनेमा में किताबें कई बार कहानी का महत्वपूर्ण हिस्सा बनी हैं। कभी कॉलेज की लाइब्रेरी में मिलते किरदार, तो कभी किताबों के सहारे अपने सपनों को उड़ान देते युवा। कई फिल्मों में नायक नायिका को किताबें पढ़ते, डायरी लिखते या पत्रों के माध्यम से भावनाएं व्यक्त करते हुए दिखाया गया। इन दृश्यों ने यह संदेश दिया कि ज्ञान और संवेदनशीलता हमेशा आकर्षक होती है। किताबें केवल परीक्षा पास करने का माध्यम नहीं, बल्कि जीवन को समझने का भी माध्यम है। कई यादगार गीतों में किताब, कहानी, किस्सा और अफसाना जैसे शब्द सुनाई देते हैं, जो गीतों को और भी अर्थपूर्ण बना देते हैं। फिल्मी गीतों और साहित्य का यह रिश्ता हमेशा से बेहद खूबसूरत रहा। आइए साथियों, सुनते हैं ऐसा ही एक गीत जो शब्दों और कहानियों की दुनिया से जुड़ा है।

श्रोताओं, ये गीत आप सुन रहे हैं फिल्म इजाजत से। गायक आशा भोसले की आवाज़, गीतकार गुलजार के बोल और संगीत आर डी बर्मन का।

श्रोताओं, आज मोबाइल, इंटरनेट और ई बुक्स का दौर है। जानकारी पहले से कहीं अधिक आसान हो गई है, लेकिन कागज़ की किताब हाथ में लेकर पढ़ने का जो आनंद है, उसका अपना अलग ही जादू है। शांत कमरे में बैठकर धीरे धीरे पन्ने पलटना और हर अध्याय के साथ नई दुनिया में खो जाना, यह एक अनमोल अनुभव है। आज भी देश भर के पुस्तक मेले, पुस्तकालय और साहित्य का आयोजन हजारों पाठकों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। नई पीढ़ी भी कहानी, कविता, जीवनी और विज्ञान की किताबों में रुचि ले रही है। एक अच्छी किताब समय के साथ पुरानी नहीं होती, बल्कि हर बार पढ़ने का एक नया अर्थ देती है। राष्ट्रीय पुस्तक प्रेमी दिवस हमें यही याद दिलाता है कि पढ़ने की आदत सबसे सुंदर आदतों में से एक है। इसी विचार के साथ आइए सुनते हैं यह अगला मधुर गीत।

श्रोताओं, ये गीत आप सुन रहे हैं फिल्म वेकअप सेट से। गायक कविता सेठ और अमिताभ भट्टाचार्य की आवाज़, गीतकार जावेद अख्तर के बोल और संगीत अमित त्रिवेदी का।

श्रोताओं, किताबें कई बार केवल कहानी नहीं सुनाती, जीवन की दिशा भी बदल देती हैं। किसी को प्रेरणा किसी के जीवन से मिलती है, किसी को कविता से और किसी को किसी उपन्यास के पात्र से। यही तो किताबों की सबसे बड़ी ताकत है कि वे हर पाठक से अलग अलग तरीके से संवाद करती हैं। आज की शाम यदि आप भी अपनी अलमारी से कोई पुरानी किताब निकालें तो शायद उसके पन्नों के साथ कई पुरानी यादें भी मुस्कुरा उठें। अपने बच्चों को किताबें उपहार में दीजिए, घर में एक छोटा सा पुस्तकों का कोना बनाइए और रोज कुछ पन्ने पढ़ने की आदत अपनाइए, क्योंकि पढ़ने वाला मन हमेशा सीखता है और समझता है और आगे बढ़ता रहता है। राष्ट्रीय पुस्तक प्रेमी दिवस पर यही सबसे सुंदर संकल्प हो सकता है। आइए इस खूबसूरत सफर को एक यादगार गीत के साथ आगे बढ़ाते हैं।

0: श्रोताओं, ये गीत आप सुन रहे थे फिल्म द ग्रेट गैम्बलर से। गायक आशा भोसले और शरद कुमार की आवाज़, गीतकार आनंद बख्शी के बोल और संगीत आरडी बर्मन का। श्रोताओं, आज की शब्दों से सजी, किताबों के पन्नों से महकती और सुरों से सजी शाम यहीं तक। उम्मीद है कि आज आपको अपनी किसी पुरानी किताब, किसी भूली बिसरी कहानी या लाइब्रेरी की उन शांत दोपहर की याद ज़रूर आई होगी। किताबें हमें केवल पढ़ना नहीं सिखाती बल्कि जीवन को समझना भी सिखाती हैं। आइए, आज राष्ट्रीय पुस्तक प्रेमी दिवस पर हम फिर से किताबों से दोस्ती करें और एक छोटा सा संकल्प लें कि फिर किताबों के साथ अपने जीवन की यादों को पलटते रहेंगे। इसी उम्मीद के साथ रेडियो साथी दृष्टि को दीजिए अनुमति। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और आकाशवाणी उज्जैन FM 102.5 MHz और न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर सुनते रहिए।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं नवीन सक्सेना। हर घर तिरंगा अभियान आज से शुरू हो गया है। 17 अगस्त तक चलने वाले इस अभियान का उद्देश्य देशवासियों को अपने घरों पर तिरंगा फहराने और देशभक्ति तथा राष्ट्रीय एकता से जुड़े कार्यक्रमों में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करना है। इस वर्ष यह अभियान राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ के साथ मनाया जा रहा है। देशभर में वंदे मातरम का सामूहिक गायन भी होगा। दुनिया भर में 200 से अधिक भारतीय दूतावास, उच्चायोग और वाणिज्य दूतावास भी अभियान के अंतर्गत कार्यक्रम आयोजित करेंगे। इस वर्ष सूर्य पथ तिरंगा डिजिटल रिले भी आयोजित होगी। इसमें 54 भारतीय राजनयिक मिशन और केंद्र शामिल होंगे। ये रिले 15 अगस्त को फिजी से शुरू होकर सैन फ्रांसिस्को में समाप्त होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से इस अभियान में उत्साह के साथ शामिल होने और विकसित भारत के निर्माण में योगदान देने का संकल्प फिर से लेने की अपील की है। प्रधानमंत्री ने कहा कि तिरंगा देश का गौरव है। उन्होंने इस बात पर प्रसन्नता व्यक्त की कि इस वर्ष का अभियान वंदे मातरम को समर्पित है। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने आज अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी श्री विजयपुरम में राष्ट्रीय ध्वज फहराया। गृहमंत्री अमित शाह ने पुद्दुचेरी से हर घर तिरंगा यात्रा को रवाना किया। हजारों लोग इस यात्रा में तिरंगे के साथ शामिल हुए। इससे पहले गृहमंत्री पुद्दुचेरी पुलिस को राष्ट्रपति का पुलिस ध्वज प्रदान किए जाने के समारोह में शामिल हुए। श्री शाह ने कहा कि राष्ट्रपति का पुलिस ध्वज प्राप्त करना किसी भी अनुशासित पुलिस बल के जीवन के सबसे गौरवशाली क्षणों में से है। गृहमंत्री ने कहा कि मोदी सरकार द्वारा औपनिवेशिक काल के कानूनों की जगह लाए गए 3 नए आपराधिक कानूनों का उद्देश्य प्रौद्योगिकी आधारित और समयबद्ध प्रणाली के माध्यम से नागरिकों को समयबद्ध न्याय सुनिश्चित करना है। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने आज एक उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक की। बैठक में वर्तमान चीनी के मौसम के लिए चीनी के भंडार की स्थिति, उत्पादन और जरूरतों का आकलन किया गया। श्री जोशी ने चीनी का पर्याप्त भंडार बनाए रखने के लिए इसकी उपलब्धता की सघन निगरानी और समय समय पर आवश्यक उपाय करने पर बल दिया ताकि पूरे मौसम के दौरान चीनी की स्थायी आपूर्ति सुनिश्चित हो सके। शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने आज राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA से संबंधित मामलों को लेकर शिक्षा मंत्रालय के सचिव और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। श्री जोशी ने संस्थागत व्यवस्था को मजबूत करने, प्रक्रिया सुचारू बनाने और विद्यार्थियों के प्रति जवाबदेही सुनिश्चित करने से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दों पर विचार विमर्श किया। श्री जोशी ने कहा कि सरकार का मुख्य ध्यान मजबूत, पारदर्शी और विश्वसनीय परीक्षा व्यवस्था बनाने पर है ताकि प्रत्येक विद्यार्थी की आकांक्षा पूरी हो सके। आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने कहा है कि PM आवास योजना शहरी और दूसरे चरण की PM आवास योजना शहरी के अंतर्गत अब तक 1,25,00,000 से अधिक मकानों को मंजूरी दी जा चुकी है। इनमें से 1,00,00,000 से ज्यादा मकान बनकर तैयार हो चुके हैं और लाभार्थियों को सौंपे जा चुके हैं। इनमें करीब 1,00,00,000 मकान महिलाओं को आवंटित किए गए हैं। योजना के दूसरे चरण के अंतर्गत 16 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए 2,09,000 से ज्यादा मकानों को मंजूरी दी गई है। नागर विमानन मंत्रालय ने कहा है कि विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो फुकेट से दिल्ली आ रही एयर इंडिया की उड़ान में हुई दुर्घटना की जांच कर रहा है। इसे गंभीर घटना के रूप में दर्ज किया गया है। दोनों पायलटों की मादक पदार्थों के सेवन की जांच की गई। जांच पूरी होने तक दोनों पायलटों को ड्यूटी से हटा दिया गया है। मंत्रालय ने कहा है कि जांच और अंतिम रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। जनजातीय लोगों के अधिकारों, संस्कृति, परंपरा और योगदान को मान्यता देने के लिए आज दुनिया भर में विश्व जनजातीय दिवस मनाया जा रहा है। इस वर्ष का विषय है जनजातीय धाय सम्मान, जीवन और देखभाल का संरक्षण। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

FM 102.5 MHz और न्यूज ऑन AIR ऐप पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी उज्जैन। शाम के 7:05 हुए हैं। श्रोताओं, आइए आपको आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों की जानकारी देते हैं। शाम 7:21 पर आकाशवाणी उज्जैन केंद्र से सुनिए खास मालवी कार्यक्रम मालवी गीतारी गूंज। रात 8:00 सुनिए कार्यक्रम सुर्खियों में। रात 8:15 पर कार्यक्रम डगर विकास की। रात 8:30 पर आकाशवाणी उज्जैन केंद्र से सुनिए फिल्म संगीत का कार्यक्रम। रात 8:45 पर दिल्ली से अनुप्रसारित कार्यक्रम समाचार संध्या। रात 9:00 सुनिए कार्यक्रम News@9। रात 9:15 पर सुनिए उर्दू समाचार। रात 9:30 पर आप सुन सकेंगे रूपकों का अखिल भारतीय कार्यक्रम। रात 10:00 सुनिए अखिल भारतीय रविवासरीय संगीत सभा। रात 11:00 आकाशवाणी दिल्ली केंद्र से समाचार अनुप्रसारित होंगे और रात 11:10 से आप सुन सकेंगे FM गोल्ड के कार्यक्रम। श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों की जानकारी। आइए आपको कल दिनांक 10 अगस्त सन 2026 सोमवार को प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी देते हैं। ठीक सुबह 5:50 पर प्रातःकालीन सभा आरंभ होगी। प्रातः 6:00 दिल्ली केंद्र से समाचार अनुप्रसारित होंगे। सुबह 6:05 पर विविध भारतीय मुंबई से सुनिएगा कार्यक्रम वंदनवार। सुबह 6:35 पर आप सुन सकेंगे रामचरितमानस गान और ठीक 6:45 पर कार्यक्रम संगीत सरिता। प्रातः 7:00 आकाशवाणी उज्जैन केंद्र से सुनिए महाकाल वंदन। सुबह 7:20 पर सुनिए आकाशवाणी उज्जैन केंद्र से अनुप्रसारित प्रातःकालीन सूचना परक कार्यक्रम सुप्रभात उज्जैन। ठीक 8:00 सुनिएगा दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित समाचार प्रभात। कल सुबह 8:15 पर सुनिए मॉर्निंग न्यूज। ठीक 8:30 पर आप सुन सकेंगे आकाशवाणी उज्जैन केंद्र से फिल्म संगीत विशेष कार्यक्रम उज्जैनी RJ। सुबह 9:30 पर सुनिए नए फिल्मी गीतों का कार्यक्रम बॉलीवुड बीट्स। सुबह 10:00 आकाशवाणी उज्जैन केंद्र से सुनिए महाकाल की द्वितीय सवारी पर केंद्रित विशेष प्रस्तुति उज्जैन दर्शन। और सुबह 10:30 पर आकाशवाणी उज्जैन केंद्र से सुनिए महिला सभा।

कल दिन में 11 बजे विविध भारतीय मुंबई से सुनिए कार्यक्रम रंग तरंग, दिन में 12 बजे सुनिए हिंदी न्यूज़ बुलेटिन और दिन 12:05 पर आप सुन सकेंगे विविध भारतीय मुंबई से यादों की महफिल। दोपहर 1 बजे सुनिए

0: आकाशवाणी उज्जैन केंद्र से सुनिए युवा श्रोताओं का पसंद का कार्यक्रम युववाणी। शाम 6 बजे सुनिए भक्तिमय कार्यक्रम भजन संध्या। शाम 6:30 पर सुनिए फिल्म संगीत का कार्यक्रम। शाम 6:40 पर सुनिए क्षेत्रीय समाचार एकांश भोपाल का कार्यक्रम आजकल। शाम 7:21 पर आकाशवाणी उज्जैन केंद्र से सुनिए कार्यक्रम माटेरी बात। रात 8 बजे दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित संसद समीक्षा। रात 8:15 पर सुनिए कार्यक्रम सुर्खियों में। रात 8:30 पर आकाशवाणी उज्जैन केंद्र से अनुप्रसारित फिल्म संगीत। रात 8:45 पर आप सुन सकेंगे समाचार संध्या। रात 9 बजे सुनिए कार्यक्रम News@9। रात 9:15 पर कार्यक्रम उर्दू समाचार। और रात 9:30 पर आप सुन सकेंगे पब्लिक स्पीक दिल्ली से रिले। रात 10 बजे सुनिए संसद में प्रश्नकाल की रिकॉर्डिंग। कल रात 10:30 पर भोपाल से अनुप्रसारित कार्यक्रम सुनिए राग रजनी शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम। कल रात 11 बजे दिल्ली से समाचार अनुप्रसारित होंगे। और रात 11:10 से आप सुन सकेंगे FM गोल्ड के कार्यक्रम। ये आकाशवाणी का उज्जैन केंद्र है। शाम के 7:10 होने को हैं और थोड़ी ही देर में प्रादेशिक समाचारों का अनुप्रसारण आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से किया जाएगा। कृपया प्रतीक्षा करें।
1: अरे रीमा, सोलर पैनल लगवा ले।
2: कब से मुझे सारे दोस्त बोलते थे, पर मैंने माना जब प्रधानमंत्री जी ने कहा
3: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
2: मैंने प्रधानमंत्री जी के कहने पर सोलर पैनल लगवाया और मेरा बिजली बिल जीरो आया। आप भी लगवा लो।
4: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें PM सूर्य घर.gov.in पर। सूर्य घर।
5: बंधु, नई कार जीतने का मौका। वाओ, पापा को सरप्राइज दूंगी। बस थोड़ी सी तो उनकी डिटेल भरनी है।
6: रुक जा बुद्धू।
7: व्हाट? ऐसे पॉपअप से सावधान रहो, स्कैमर्स पर्सनल डिटेल्स का गलत यूज कर सकते हैं।
5: तो समझ गई ना, रिलैक्स। पर कार जीत जाते तो पापा होमवर्क नहीं कराते।
7: RBI कहता है स्मार्ट बनो, कूल रहो।
8: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं धारणा सचदेव। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से हर घर तिरंगा अभियान में उत्साह से भाग लेने की अपील की। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भोपाल से 4 नई हवाई सेवाओं की शुरुआत की। विश्व आदिवासी दिवस पर प्रदेश में रैलियों और पौधारोपण के जरिए संस्कृति और पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया गया। और प्रदेश में मॉनसून फिर सक्रिय, दतिया रीवा और सीधी में भारी बारिश का अलर्ट। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से हर घर तिरंगा अभियान में उत्साहपूर्वक भाग लेने की अपील की है। प्रधानमंत्री ने कहा कि तिरंगा देश का गौरव और राष्ट्र के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ देने की निरंतर प्रेरणा है। उन्होंने कहा कि इस वर्ष हर घर तिरंगा अभियान को वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ को समर्पित किया गया है। संस्कृति मंत्रालय के अनुसार अभियान के तहत तिरंगा रैलियों, यात्राओं, संगीत कार्यक्रमों और सामूहिक वंदे मातरम गायन का आयोजन किया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज भोपाल के टीटी नगर स्टेडियम से हर घर तिरंगा अभियान और तिरंगा यात्रा का शुभारंभ किया। इससे पहले उन्होंने मुख्यमंत्री निवास पर तिरंगा फहराया और तिरंगा लेकर स्टेडियम के लिए रवाना हुए। तिरंगा यात्रा में बड़ी संख्या में स्कूली बच्चे, NCC कैडेट्स, स्वयंसेवी संगठनों के सदस्य, वरिष्ठ नागरिक और स्थानीय लोग शामिल हुए। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने प्रदेशवासियों से अपने अपने घरों पर तिरंगा लगाने और अभियान में उत्साह के साथ भाग लेने का आह्वान किया। प्रदेश में आज 4 नई सीधी हवाई सेवाओं की शुरुआत हुई। भोपाल के राजा भोज एयरपोर्ट पर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने भोपाल से रीवा, भोपाल से पटना, रीवा से कोलकाता और जबलपुर से कोलकाता उड़ानों का शुभारंभ किया। इस अवसर पर केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में आने वाले समय में करीब 10 नए एयरपोर्ट भी विकसित किए जाएंगे।

0: रहेंगे। उन्होंने बताया कि आने वाले समय में भोपाल से शारजहां की सीधी उड़ान शुरू होने वाली है।
1: 2 महीने बाद शारजहां की उड़ान यहाँ से चालू होने वाली है। ये अंतर्राष्ट्रीय उड़ान एक तरह से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारे अपने विमानतल का उपयोग होगा, जिसके कारण से राज्य की प्रगति में ये बड़ी भूमिका रहेगी। अब हमको दिल्ली मुंबई ऐसे बड़ी जगह जाने की जरूरत नहीं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी जाना है तो हम अपने नगरों से जा सकते।
0: केंद्रीय शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने आज राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA से संबंधित मामलों को लेकर शिक्षा मंत्रालय के सचिव और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। श्री जोशी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि उन्होंने संस्थागत व्यवस्था को मजबूत करने, प्रक्रिया सुचारू बनाने और विद्यार्थियों के प्रति जवाबदेही सुनिश्चित करने से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दों पर विचार विमर्श किया। श्री जोशी ने कहा कि सरकार का मुख्य ध्यान मजबूत, पारदर्शी और विश्वसनीय परीक्षा व्यवस्था बनाने पर है, ताकि प्रत्येक की आकांक्षा पूरी हो सके। मुख्य सचिव अशोक वर्णवाल ने आज मुख्यमंत्री जन विश्वास अभियान की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को जन समस्याओं का त्वरित निराकरण करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने लोक सेवा प्रदाय गारंटी अधिनियम और CM हेल्पलाइन से जुड़ी शिकायतों के निराकरण को सर्वोच्च प्राथमिकता देने को कहा। मुख्य सचिव ने खराब ट्रांसफार्मर, हैंडपंप, 108 एम्बुलेंस सेवा और विद्यालयों से ड्रॉप आउट बच्चों से संबंधित शिकायतों का भी प्राथमिकता से समाधान करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि शासन की सेवाओं और योजनाओं का लाभ आम जन तक आसानी से पहुंचना चाहिए। अभियान के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए करीब 50 बिंदु निर्धारित किए गए हैं।
2: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और Facebook साथ ही X प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: समाचारों में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने आज राजगढ़ जिले में आयोजित बलराम कृषि महोत्सव में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सहभागिता की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि बलराम कृषि महोत्सव किसानों को आधुनिक तकनीक और वैज्ञानिक पद्धतियों से जोड़कर आत्मनिर्भर और समृद्ध बनाने का सशक्त अभियान है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार किसानों की आय बढ़ाने और उन्हें हर संभव सहयोग देने के लिए प्रतिबद्ध है। विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर प्रदेश में आदिवासी समाज की संस्कृति, एकता और प्रकृति से जुड़ाव की तस्वीर देखने को मिली। ग्वालियर में आदिवासी संगठनों ने विशाल रैली निकालकर शिक्षा, सामाजिक जागरूकता और संस्कृति संरक्षण का संदेश दिया। रैली में युवा, महिलाएं और बुजुर्ग पारंपरिक वेशभूषा में शामिल हुए और ढोल नगाड़ों की थाप पर पारंपरिक नृत्य किया। इंदौर में भी आदिवासी समाज की ओर से विशाल रैली निकाली गई। वहीं बुरहानपुर के पीपल गांव में पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संकल्प लिया गया। एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत लगाए गए पौधों की सुरक्षा और सिंचाई की जिम्मेदारी भी ग्रामीणों ने ली। विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर झाबुआ, धार, खरगोन सहित विभिन्न जिलों में कार्यक्रम आयोजित किए गए। धार जिले के बदनावर में आज हुए भीषण सड़क हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल है। राहगीरों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस करीब 10 मिनट में मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने कार की खिड़की का कांच तोड़कर अंदर से शवों को बाहर निकाला। धार के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विजय डावर ने बताया कि उज्जैन में महाकाल के दर्शन कर गुजरात लौट रहे श्रद्धालुओं की इको वैन को गलत दिशा से आ रहे कंटेनर ट्रक ने टक्कर मार दी।
3: बदनावर में एक दुखद सड़क दुर्घटना हुई, जिसमें 6 लोगों की मृत्यु हुई। प्रथम जानकारी जो प्राप्त हुई उसके अनुसार एक परिवार दाहोद का रहने वाला था, जो उज्जैन महाकालेश्वर दर्शन करके लौट रहा था। उसी दौरान रोंग साइड से आने वाले कंटेनर के द्वारा उसको सामने से टक्कर मारी गई, जिसमें 6 लोगों की मृत्यु हुई। एक घायल है, हॉस्पिटलाइज है, उसकी स्थिति भी गंभीर बनी हुई है। और प्रथम दृष्टया जो जानकारी मिली उसमें कंटेनर का जो ड्राइवर था उसके द्वारा एल्कोहलिक होना पाया गया है। इसमें उसकी MLC कराई जाएगी और उसमें गंभीर धाराओं में अपराध पंजीबद्ध कर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी।
0: भारत ने गैर जीवाश्म ईंधन आधारित स्थापित विद्युत उत्पादन क्षमता में 300 गीगावाट का आंकड़ा पार कर लिया है। 31 जुलाई को हासिल की गई ये उपलब्धि वर्ष 2030 के लिए निर्धारित 500 गीगावाट क्षमता के लक्ष्य का 60% से अधिक है। नवीन और नवकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने बताया है कि देश की कुल स्थापित विद्युत उत्पादन क्षमता में गैर जीवाश्म ईंधन आधारित विद्युत क्षमता की हिस्सेदारी 54% से अधिक हो गई है। बात मौसम की। प्रदेश में मॉनसून एक बार फिर सक्रिय हो रहा है। मौसम विभाग ने आज दतिया, रीवा और सीधी जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। इन जिलों में अगले 24 घंटे के दौरान 4 इंच तक बारिश होने की संभावना है। वहीं भोपाल, इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर और जबलपुर सहित प्रदेश के कई हिस्सों में हल्की बारिश या बूंदाबांदी हो सकती है। मौसम विभाग के मुताबिक प्रदेश में अब तक औसतन 17.2 इंच बारिश हुई है, जो सामान्य से करीब 20% कम है। पूर्वी मध्य प्रदेश में 23 और पश्चिमी हिस्से में 18% बारिश की कमी दर्ज की गई है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। प्रदेश के स्कूलों में पढ़ाई की व्यवस्था और अनुशासन को बेहतर बनाने के लिए शिक्षा विभाग ने स्कूलों में छात्र छात्राओं की भी ऑनलाइन हाजिरी के लिए आदेश जारी किए हैं। नर्मदापुरम जिले में नागद्वारी की यात्रा शुरू हो गई है। श्रद्धालुओं के आगमन को देखते हुए जिला प्रशासन और मेला समिति ने सुरक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता, पेयजल और यातायात की व्यवस्था की है। आगरमालवा में श्रावण माह के द्वितीय सोमवार पर कल 51,000 कलश यात्रा निकाली जाएगी और नीमच में नियंत्रक खाद्य और औषधि प्रशासन द्वारा वीर पार्क रोड स्थित दुकानों का आकस्मिक निरीक्षण किया गया। अंत में बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से हर घर तिरंगा अभियान में उत्साह से भाग लेने की अपील की। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने भोपाल से 4 नई हवाई सेवाओं की शुरुआत की। विश्व आदिवासी दिवस पर प्रदेश में रैलियों और पौधारोपण के जरिए संस्कृति और पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया गया और प्रदेश में मॉनसून फिर सक्रिय, दतिया, रीवा और सीधी में भारी बारिश का अलर्ट। इस बुलेटिन में इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए सुबह 7:10 पर। नमस्कार।

0: पीएम फसल बीमा योजना से करीब 2,00,000 करोड़ रुपए।
1: नमस्कार श्रोताओं, एफएम 102.5 मेगाहर्ट्ज और न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर ये है आकाशवाणी उज्जैन। शाम के 7:21 हो चुके हैं। मैं आपकी रेडियो साथी दृष्टि स्वागत करती हूँ सभी श्रोताओं का। समय हो चला है मालवा के सुरों से सजे कार्यक्रम मालवी गीतारी गूंज का। आज प्रस्तुत करता है कुलदीप शर्मा।

तो राम राम महारा मालवा का भाई बहनों अने सबके जय श्री महाकाल। तो कैसा हो तुम सब, मजे में ने मौज मस्ती में तो हो नी। हूँ तमारो भाई कुलदीप शर्मा एक बार फिर तमारो सबको स्वागत करूँ अपना इना विशेष कार्यक्रम मालवी गीतारी गूंज में। तो भाई बहनों, मालवा की धरती अपने आप में प्रकृति और संस्कृति को सुंदर संगम है, और जब सावन को महीनों आए तब इन धरती को रूप और भी निखरी जाई है। रिमझिम बरसात की बूंद हुणो जद सूखी धरती के छुई है, तो खेत खलियान हरियाली की चादर उड़ी ले है। दूर दूर तक लहराती फसल, भीगी मिट्टी की सौंधी खुशबू, पेड़ पौधा उनकी हरियाली और ठंडी हवा का झोंका मन के एक अलग ही आनंद और सुकून दे है। गाँव हुण में सावन की रौनक देखते नहीं बने हैं, कहीं मोर अपना पंख फैले के नाचतो नजर आए, तो कहीं कोयल की मीठी कूक वातावरण में मिठास घोली दे है। पीपल और बरगद का पेड़ हुन पे पड़िया झूला, सावन का लोकगीत और हंसता खेलता लोक जीवन इना महीना के और भी खास बने दे है। अब देखो, ये सब बात तो अपनी चलती ही रहेगा, पर क्यों नहीं होगा पहला अपने मालवा का अने देश प्रदेश का हाल जानना, यानी अपना मालवी समाचार सुनना। तो आकाशवाणी उज्जैन से प्रस्तुत है मालवी समाचार।

तो नमस्कार, राम राम। समाचार उनका साथे हूँ, तमारो भाई कुलदीप शर्मा। सबसे पहला इन बुलेटिन का खास समाचार। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भोपाल से तिरंगा यात्रा को शुभारंभ करियो। प्रदेश में 4 नई सीधी हवाई सेवा हुन की शुरुआत। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव अने केंद्रीय मंत्री राम मोहन नायडू ने करियो शुभारंभ। विश्व आदिवासी दिवस पे प्रदेश में रैली हुन अने पौधारोपण का जरिए संस्कृति संरक्षण अने पर्यावरण को संदेश दियो गयो। अब ये समाचार विस्तार से। हर घर तिरंगा अभियान आज से 17 अगस्त तक चलेगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज भोपाल का टीटी नगर स्टेडियम से हर घर तिरंगा यात्रा अभियान अने तिरंगा यात्रा को शुभारंभ करियो। इससे पहला उन्हें मुख्यमंत्री निवास पे तिरंगो ले फहरायो अने तिरंगा के लेके स्टेडियम का लिए रवाना हुआ। तिरंगा यात्रा में बड़ी संख्या में स्कूली बच्चा, एनसीसी कैडेट, स्वयंसेवी संगठन हुन का सदस्य, वरिष्ठ नागरिक अने स्थायी लोग हुन शामिल हुआ। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने प्रदेशवासी हुन से अपना अपना घर पे तिरंगा लगावा अने अभियान में उत्साह का साथे भाग लेवा को आह्वान करियो। प्रदेश में आज 4 नई सीधी हवाई सेवा हुन की शुरुआत हुई। भोपाल का राजा भोज एयरपोर्ट पे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भोपाल रीवा, भोपाल पटना रीवा कोलकाता अने जबलपुर कोलकाता उड़ान हुन को शुभारंभ करियो। इन अवसर पे केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू भी मौजूद रहा। मुख्यमंत्री ने बोलियो कि प्रदेश में आवा वाला टेम में करीब 10 नया एयरपोर्ट भी विकसित किया जाएगा। मुख्य सचिव अशोक वर्णवाल ने आज मुख्यमंत्री जन विश्वास अभियान की समीक्षा करता हुई अधिकारी हुन के जन समस्या के त्वरित निराकरण करवा को निर्देश दियो। उन्हें लोक सेवा प्रदाय गारंटी अधिनियम अने सीएम हेल्पलाइन से जुड़ी शिकायत हुन का निराकरण के सर्वोच्च प्राथमिकता से देवा को निर्देश दियो। मुख्य सचिव ने खराब ट्रांसफार्मर, हेडपंप, 108 एम्बुलेंस सेवा अने विद्यालय हुन से ड्रॉप आउट बच्चा हुन से संबंधित शिकायत हुन के भी प्राथमिकता से समाधान करवा को निर्देश दियो। उन्हें बोलियो कि शासन की सेवा हुन अने योजना हुन का लाभ आम जन तक आसानी से पहुंचना चाहिए। अभियान का प्रभावी क्रियान्वयन का लिए करीब 50 बिंदु हुन निर्धारित करी गई है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने आज राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA से संबंधित मामला हुन के लेके शिक्षा मंत्रालय का सचिव अने वरिष्ठ अधिकारी हुन का साथे बैठक करी। श्री जोशी ने सोशल मीडिया पोस्ट में बोलियो कि उनने संस्थागत व्यवस्था के मजबूत करवा, प्रक्रिया सुचारू बनावा अने विद्यार्थी हुन का प्रति जवाबदेही सुनिश्चित करवा संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दा हुन पे विचार विमर्श करियो। श्री जोशी ने बोलियो कि सरकार को मुख्य ध्यान मजबूत, पारदर्शी अने विश्वसनीय परीक्षा व्यवस्था बनाने पे है ताकि प्रत्येक विद्यार्थी की आकांक्षा पूरी हुई सके। बड़वानी का आशाग्रह में आज श्रावण मास का अवसर पे उपचारित मनोरोगी हुन ने कांवड़ यात्रा का साथे तिरंगा यात्रा निकाली के धर्म अने राष्ट्रप्रेम को संदेश दियो। यात्रा आशा आश्रय गृह से शुरू हुई के कुष्ठ पुनर्वास केंद्र गांधी चौक होते हुए मृत्युंजय मंदिर पहुंची। यहाँ मां नर्मदा का जल से भगवान मृत्युंजय महादेव को अभिषेक अने पूजन अर्चन करियो गयो। वहीं हर घर तिरंगा अभियान का तहत तिरंगा यात्रा भी निकाली गई। यात्रा में दिव्यांगजन हुन, महिला हुन अने बड़ी संख्या में आम लोग हुन ने भाग लियो। विश्व आदिवासी दिवस का अवसर पे प्रदेश में आदिवासी समाज की संस्कृति, एकता अने प्रकृति से जुड़ाव की तस्वीर देखवा के मिली। ग्वालियर में आदिवासी संगठन हुन ने विशाल रैली निकाली के शिक्षा, सामाजिक जागरूकता अने संस्कृति संरक्षण को संदेश दियो। रैली में युवा, महिला हुन अने बुजुर्ग हुन ने पारंपरिक नृत्य भी करियो। इंदौर में भी आदिवासी समाज की ओर से विशाल रैली निकाली गई। वहीं बुरहानपुर का गांव पीपल गांव में पौधारोपण करी के पर्यावरण संरक्षण को संकल्प भी लियो गयो। एक पेड़ माँ का नाम अभियान का तहत लगाया गया पौधा हुन की सुरक्षा अने सिंचाई की जिम्मेदारी ग्रामीण हुन ने ली। आयोजक हुन ने बतायो कि पौधा लगानो शुरुआत है, उनके वृक्ष बनानो सामूहिक जिम्मेदारी है। भारत ने गैर जीवाश्म ईंधन आधारित स्थापित विद्युत उत्पादन क्षमता में 300 गीगावाट को आंकड़ों पार कर लियो है। 31 जुलाई के हासिल करी गई यह उपलब्धि वर्ष 2030 का लिए निर्धारित 500 गीगावाट क्षमता का लक्ष्य को 60% से अधिक है। नवीन अने नवीनीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने बतायो है कि देश की कुल स्थापित विद्युत उत्पादन क्षमता में गैर जीवाश्म ईंधन पर आधारित विद्युत क्षमता में गैर जीवाश्म ईंधन आधारित विद्युत क्षमता की हिस्सेदारी 54% से ज्यादा हुई गई है। प्रदेश में मानसून एक बार फिर सक्रिय हुई रही है। मौसम विभाग ने आज दतिया, रीवा अने सीधी जिला हुन में भारी बारिश को अलर्ट जारी करियो है। इन जिला हुन में अगला 24 घंटा का दौरान 4 इंच तक बारिश होवा की संभावना है। वहीं भोपाल, इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर अने जबलपुर समेत प्रदेश का घना हिस्सा हुन में हल्की बारिश या बूंदाबांदी हुई सकती है।
मौसम विभाग का मुताबिक प्रदेश में अभी तक औसतन 17.2 इंच बारिश हुई है, जो सामान्य से करीब 20 प्रतिशत

0: तो भाई बहनों, सावन में ऐसो लागे जैसे प्रकृति खुद हरियाली की चुनर ओढ़ी के सावन को स्वागत करी रही है। यो पावन महीनों केवल मौसम को बदलाव नहीं है, बल्कि अपनी परंपरा, संस्कृति और आस्था से जुड़वा को भी अवसर है। और जब बात सावन की होए तो भगवान भोलेनाथ और बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन को स्मरण अपना आप ही हुई जाए। वो सावन को महीनों जितरो प्रकृति और लोक जीवन का लिए खास मान्यो जाए है, उतरो ही भगवान शिव की भक्ति और आस्था का लिए भी पवित्र मान्यो जाए है। सनातन परंपरा और पुराण का में सावन माह को महत्व घणो विस्तार से बताया गयो है। आखिर यो महीनो भगवान भोलेनाथ के इतरो प्रिय क्यों है? आओ अब इका पीछे जुड़ी धार्मिक मान्यता उनके भी जानी ला। पुराण उनमें बताया गयो है कि समुद्र मंथन का समय जब कालकूट विष निकलो थो, तब देवता और दानव कोई भी उन विष के धारण करने के लिए तैयार नहीं था। सृष्टि के बचाने के लिए भगवान शिव ने वो विष अपना कंठ में धारण कर लियो। विष की गर्मी शांत करने के लिए देवता हुन ने भगवान शिव के जल चढ़ायो। तभी से सावन मास में जलाभिषेक, दुग्ध अभिषेक अन्य बेलपत्र चढ़ावा की परंपरा चलती आई रही है। सावन मास में एक और विशेष मान्यता है कि वह है चतुर्मास से जुड़ी हुई। देवशनि एकादशी से भगवान विष्णु चार महीना की योग निंद्रा में विराजमान हुई जाए है। अन्य ऐसी लोक मान्यता है कि इना समय सृष्टि को संचालन और धरती को भार भगवान शिव खुद संभाले है, और इन्हीं कारण सावन को महीनों भगवान शिव की आराधना के लिए और शुभ मान्य जाए है। सावन महीना में श्रद्धालु सोमवार को व्रत रखे है, ओम नमः शिवाय मंत्र को जाप करे है, महामृत्युंजय मंत्र बोले है, शिव पुराण सुने और भगवान भोलेनाथ पे जल, दूध, दही, शहद, गंगा जल, बेलपत्र, धतूरा और भांग श्रद्धा से अर्पित करे है। ऐसी धार्मिक मान्यता है कि सच्चा मन से की गई भगवान शिव की पूजा भी जरूर स्वीकारे है और अपना भक्त उनकी मनोकामना भी पूरी करे है। भाई बहनों, सावन मास भगवान शिव की आराधना, आस्था और भक्ति का सबसे पावन समय मान्यो जाए है। बाबा महाकाल की नगरी में इना महीना का दौरान श्रद्धा और उत्सव अपने चरम पे हुई है। विशेष सावन को सोमवार निकले, जिनमें बाबा महाकाल की सवारी खाली धार्मिक परंपरा नहीं है, बल्कि मालवा की संस्कृति, लोक आस्था और सनातन परंपरा को अद्भुत स्वरूप है। आखिर सावन मास में धार्मिक महत्व कहीं है? बाबा महाकाल की सवारी की जो परंपरा है वह कच्छ चली आई रही है, और इना सवारी को आध्यात्मिक संदेश कहीं है? इना सब विषय पे अपन बात करांगा। आज अपना साथ मौजूद है श्री महाकालेश्वर मंदिर उज्जैन का पुजारी श्री आशीष गुरु जी। तो आओ सुना उनसे हुई अपनी यह भेंट वार्ता, जिनमें उन्होंने बताया अपने सावन मास के बारे में।
1: सर्वप्रथम आकाशवाणी उज्जैन में आपका बहुत बहुत स्वागत है पंडित जी। सबसे पहले मैं जानना चाहता हूँ, सनातन परंपरा में श्रावण मास का आध्यात्मिक और धार्मिक महत्व क्या है?
2: जय महाकाल। श्रावण का महीना भगवान शिव का महीना, आध्यात्मिक दृष्टि से और परंपरा की दृष्टि से श्रावण का महीना काफी पुण्य का महीना कहलाता है। उसका सबसे बड़ा कारण है कि यह प्रकृति की छटाव का महीना होता है। शिव जल प्रिय है, और श्रावण के महीने में चारों तरफ वर्षा ऋतु रहती है, चारों तरफ हरियाली रहती है, चारों तरफ झरनों की वर्षाएं रहती है। माँ गंगा स्वयं गली गली नगरों के अंदर चली जाती है आकाश के माध्यम से, जल के माध्यम से, और भगवान शिव को जल प्रिय है। जल प्रिय होने के कारण श्रावण का महीना काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। भगवान शिव ने विषपान किया था, जब विष पिया था तो उसकी शांति के लिए, उसके घर कंठ की शांति के लिए भगवान शिव को भक्त तो लोगों ने आह्वान किया कि हे महादेव, आप कृपा करिए, आपका जो रूप रुद्र रूप है वो शांत हो। तो भगवान शिव ने जलों के माध्यम से भगवान पे कुंटलों जलों के जल भगवान पर अर्पण किया गया था, जिसके भगवान महादेव की जो अंदर की जो ज्वाला है, जो नीलकंठ जो कहलाते हैं, वो शांत हुआ था।
1: आगे मैं जानना चाहता हूँ गुरु जी की श्रावण मास को भगवान शिव का प्रिय महीना क्यों माना जाता है? इसके पीछे पौराणिक मान्यता है।
2: देखिए, शिव प्रकृति है, शिव निराकार है, शिव साकार है, शिव जल है
1: जी।
2: क्योंकि शिव का कोई आकार नहीं है, उसी प्रकार जल का कोई आकार नहीं है। जल को आप गिलास रख दो तो गिलास का जल हो जाता है, वही जल को आप फ्रिज में रख देते हैं तो वो बर्फ बन जाता है, उसी बर्फ को वापस आप बाहर निकाल लेते हैं तो वापस जल बन जाता है। अतः निराकार से साकार रूप धारण करता पूरा निराकार हो जाता है। और ये जो महीना है ये भी निराकार और साकार का महीना है। वर्षाएं चारों तरफ प्रलय आता है, चारों तरफ बरसातें होती है, नदियों की बाढ़ आती है, पर कुछ घंटों के बाद में वापस से सामान्य हो जाती है। तो भगवान

0: का प्रकृति का महीना होने के कारण श्रावण भगवान शिव को श्रावण का महीना बड़ा प्रिय महीना कहलाता है।
1: उज्जैन में श्रावण मास के दौरान भगवान श्री महाकालेश्वर की सवारी निकलने की परंपरा कब से चली आ रही है और इसका क्या महत्व है?
0: देखिए, भगवान शिव यहाँ राजा रूप में विराजमान है। राजा होने के कारण श्रावण के सोमवार के दिन जो भक्त लोग उपास व्रत रखते हैं और किसी कारण से मंदिर में नहीं आ सकते हैं दर्शन करने के लिए, तो भगवान स्वयं उनको दर्शन करने के लिए नगर भ्रमण के लिए जाते हैं। एक राजा के रूप में प्रजा का हालचाल देखने के लिए जाते हैं, इसलिए श्रावण के महीने में भगवान शिव की सवारी का बड़ा महत्व होता है, क्योंकि इसी श्रावण के सोमवार से सोमवार के व्रत चालू होते हैं, उपास चालू होता है, व्रत चालू होता है, तो ये सबका जो चालू करने की परंपरा है लोगों की भगवान के दर्शन करके ही तोड़ते हैं। तो इसी प्रकार बाबा जब सवारी के लिए नगर भ्रमण के लिए लेकर आते हैं तो भक्त लोग उनके दर्शन करके अपने उपास और व्रत तोड़ते हैं।
1: जी, आगे मैं जानना चाहता हूँ गुरु जी के श्रावण और भाद्रपद की प्रत्येक सवारी में बाबा महाकाल किस किस स्वरूप में दर्शन देते हैं, आप सभी स्वरूपों और उनके महत्व के बारे में थोड़ा सा विस्तार से।
0: देखिए, भगवान शिव सबसे पहले मन महेश के रूप में पालकी में सवार होकर निकलते हैं, मन को जो मोल है वो मन महेश है। दूसरे स्वरूप में चंद्र मोलेश्वर के रूप में रहते हैं, अर्थात भगवान के मुखारविंद के चंद्र के समान होता है, चंद्र धारण हो जाता है। तीसरे में भगवान शिव तांडव स्वरूप के अंदर भक्त लोगों को दर्शन देते हैं। चौथे में शिव जी के साथ माँ पार्वती गोद में विराजमान हो जाती है, अर्थात उमा महेश के रूप में दर्शन देते हैं। सातवें में भगवान शिव जो है सप्त धान्य का होलकर का सप्त धान्य का मुगाटा होता है, जो भगवान की सप्त धातुओं से बना हुआ होता है, जिसके दर्शन करने से समस्त प्रकार के पापों का क्षय होता है, और होलकर के मुगाटे में राजा के रूप में भक्त लोगों को दर्शन देते हैं। भगवान शिव की जब सभा मंडप में बाबा महाकाल पालकी में विराजमान होते हैं तो बांड लिंग की पूजन की जाती है। बांड लिंग भगवान शिव का प्रतिनिधित्व होता है, पुनः सवारी वापिस आती तो पुनः उनकी पूजन की जाती है। उसके पीछे सबसे बड़ा रीजन ये होता है कि ऐसा कहा जाता है कि भगवान महाकाल जब सवारी में जा रहे हैं तो उनके जो गर्भगृह में जो भगवान शिव है उनके जो तत्व प्राण है उस मूर्ति में आ जाते हैं, और वो मूर्ति नगर भ्रमण के लिए जाती है तो तब पुनः वापस आती है, तो फिर पुनः वापस से पूजन की जाती है और उसके बाद भगवान महाकाल के लोग दर्शन करते हैं।
1: गुरु जी, जो हर सवारी में जो मुखट निकलते हैं हर सवारी की विधि सेम ही होती है?
0: सेम ही होती है।
1: जी, आगे मैं जानना चाहता हूँ गुरु जी के राम घाट पे भी पूजन की विधियाँ होती है तो उसका क्या महत्व होता है?
0: भगवान के राम घाट का जो जगह है वह भगवान माँ शिप्रा का स्थान है, वहाँ शिप्रा बाबा महाकाल की पूजन होती है, मतलब भगवान स्वयं प्रकृति की तरफ जाते हैं, माँ शिप्रा किनारे जाते हैं, वहाँ पर शिप्रा मैया की पूजन। जैसे राजा होता है, राजा जब प्रजा का हालचाल जानता है तो वो बावड़िया है, नदी है, कुएं, वो सब जगह देखने के लिए जाते हैं, उसी प्रकार भगवान स्वयं माँ शिप्रा किनारे जाकर माँ शिप्रा की पूजन करते हैं।
1: गुरु जी, आगे मैं जानना चाहता हूँ कि श्रावण की सवारी के समय श्रद्धालु में जो विशेष आस्था और उत्साह दिखाई देता है उसे आप किस प्रकार देखते हैं?
0: देखिए, भगवान के प्रति उत्साह और आनंद होना ये भक्तों की अपार श्रद्धा का विषय है। लाखों भक्त लोग बाबा की एक झलक पाकर अपने आप को धन्य मान लेते हैं, घंटों तक इंतजार करते हैं, जब उनको एक झलक बाबा की मिलती है तो वो धन्य हो जाते हैं। इसलिए बाबा महाकाल के दरबार में जो भक्त आता है वो आनंद और उत्साह के दर्शन करने के लिए आता है।
1: जो श्रद्धालु पहली बार बाबा महाकाल की सवारी में शामिल हो रहे हैं उन्हें किन बातों का विशेष ध्यान?
0: देखिए, बाबा की सवारी में जो भक्त लोग शामिल हो रहे हैं उन्हें मंदिर की परंपरा और सवारी की परंपरा का ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि लाखों की भीड़ होती है, ज्यादा भीड़ के अंदर आगे ना आए, केले हैं, नींद नारियल है, प्रसाद ये भगवान के ऊपर ना फेंके किसी प्रकार से, मालाओं चलाने के लिए मंदिर के पालकी के पास तक ना आए, और अपनी स्वयं का ध्यान रखे, क्योंकि भीड़ बहुत रहती है, चोर उचे भी बहुत रहते हैं उस समय पे, तो अपना ध्यान रखे, भगवान की पालकी के दर्शन करें, और भगवान का जो मुखारविंद है वो दूसरी सवारी से हाथी के ऊपर आ जाता है तो हाथी पर भगवान के दर्शन करें और पालकी के दूर से ही दर्शन कर अपने आप को सुरक्षित रखें, किसी प्रकार से कोई भी ऐसी चीज भगवान की पालकी की तरफ ना फेंके जिससे मूर्ति को या वहाँ पे जो खड़े लोग हैं उनको नुकसान पहुंच सके, भगवान को दूर से ही दर्शन करें।
1: जी, आगे मैं जानना चाहता हूँ कि श्रावण मास में शिव भक्तों के लिए पूजा अभिषेक जप और व्रत का क्या महत्व है, आप कुछ सरल उपाय भी बताना चाहेंगे?
0: भगवान शिव है एक लोटा जल समस्त समस्याओं का हल, भगवान शिव को एक लोटा जल चढ़ाइए, प्रकृति का बिल पत्र इस बार काफी अच्छा आता है, भगवान को बिल पत्र अर्पण करिए, उपास व्रत करिए। यह महीना जो होता है उपास और व्रत का महीना होता है, उपास व्रत करने से मंदिर के अंतर मात्रिका जो होती है वो शुद्ध हो जाती है, इसलिए लोग चातुर्मास का जो प्रारंभ है वो इसी महीने से प्रारंभ होता है, होता है। तो यह महीना काफी यम नियम संयम का महीना होता है। यदि इस महीने में हमने यम नियम संयम का पालन कर लेते हैं तो साल भर तक बहुत सारे कष्टों से हमारी रक्षा होती है। भगवान शिव की लिखना अपरंपार है, जो भगवान शिव को भज लेता है उसको दुनिया में किसी और को भजने की जरूरत नहीं रहती है। इसलिए शिव सबसे सरल देवता है, शिव जल प्रिय है, शिव को भोलेनाथ भी कहा गया है, इसीलिए कहा गया कि वो भोला है। उसे जिस तरह से भी उन्होंने राक्षसों ने उसे पूजा तो उसे वर दे दिया, गंधर्वों ने पूजा तो उसको वर दे दिया, देवताओं ने पूजा तो उसको वर प्राप्त कर दिया। इसलिए भगवान शिव की साधना काफी सरल साधना है। ओम नमः शिवाय का महामंत्र है, जो भक्त लोग शिव के ओम नमः शिवाय का महामंत्र का जाप करता है उसको समस्त प्रकार के आनंद की प्राप्ति होती है। इसलिए भगवान शिव के दरबार के अंदर, शिव के मंदिरों के अंदर भक्त लोग जाते हैं, उनकी आराधना करते हैं, साधना करते हैं, ओम नमः शिवाय का महामंत्र का जाप करते हैं। यह मंत्र पंचाक्षरी मंत्र है, भगवान शिव का सबसे महत्वपूर्ण मंत्र है। इसलिए श्रावण के महीने में भक्त लोग शिव के महामंत्र का जाप करें, पार्थिव शिवलिंग को बनाए कि भैया की मिट्टी लें, उससे भगवान शिवलिंग बनाए, उनकी पूजन करें, उसके बाद सायंकाल उनकी पूजन पाठ करने विसर्जन करें। तो भगवान शिव की जितनी भी महत्व है, शिव पुराण का अध्ययन करें, शिव पुराण बाचे इस महीने के अंदर, इस महीने के अंदर दान करें, पुण्य करें, महामृत्युंजय जप करें, इस तरह की प्रक्रिया जो भक्त लोग करता है तो उसे बहुत प्रकार की धर्म की आध्यात्मिक शक्ति प्रदान होती है, जो आने वाले समय में उस भक्तों को काम आती है। इसलिए शिव के दरबार में जो भक्त लोग जाते हैं तो चारों तरफ ओम नमः शिवाय का उद्घोष हमें देखने को मिलता है। जब बाबा की पालकी चल रही है उस समय भी सब लोग ओम नमः शिवाय कहता है, कोई कहता आ रही है पालकी बाबा महाकाल की। उसका अर्थ यही है कि आप पालकी के दर्शन करिए और बाबा महाकाल के दर्शन हाथी पे करिए। इस तरह से भगवान शिव की जो लीला है वो अपरंपार है। भगवान शिव ने हर चीज धारण करने के पीछे कोई वैज्ञानिक अर्थ छिपा हुआ होता है। भगवान ने चंद्र धारण करा है, वह शीतलता का प्रतीक है। भगवान ने त्रिशूल धारण करा है, भगवान के तीन काम क्रोध और लोभ तीनों बुराइयों पर भगवान का काबू है। भगवान ने भस्म धारण करी है, संसार को नाशवान होने का बोधक बताया है। भगवान शिव ने नंदी की सवारी करी है, सत्य दया दान और तप चार नंदी के चरण है, वो साक्षात धर्म का प्रतीक है। इसलिए अच्छे कार्य के लिए जाए तो धर्म को साथ लेकर जाएं, यदि हम धर्म को साथ लेकर जाएंगे तो बुरे कर्मों से बचेंगे। इसलिए भगवान शिव ने भस्म धारण करी, नंदी की सवारी करी, त्रिशूल धारण करा, चंद्र धारण करी, नाग धारण करा, ज्यादा आसक्ति बंधन का कारण बन सकती है। इसलिए भगवान शिव ने इन सब चीजों को धारण करके हमें संसार को एक ज्ञान दिया है।
1: जी गुरु जी, आगे मैं जानना चाहता हूँ कि महाकाल की नगरी उज्जैन का आध्यात्मिक महत्व पूरे देश और दुनिया के लिए किस प्रकार विशेष है।
0: अवंतिका की जो नगरी है वो सप्तपुरियों में एक तिल बड़ी है, जो सात पूरी भारत वर्षों में सबसे बड़ी अवंतिका पूरी कला, अयोध्या मथुरा माया काशी कांची पूरी अवंतिका। तो ये जो सात पूरी है अवंतिका है, वाराणसी है, इलाहाबाद है, ये सबके अंदर अवंतिका की जो नगरी वो एक तील बड़ी नगरी है। यहाँ सिंहस्थ का कुंभ भराता है, यहाँ महाकाल है, यहाँ हरसिद्धि पीठ है, यहाँ काल भैरव है, यहाँ पांच ऊसर है, मृत्यु के उपरांत यहाँ पे पूर्ण जन्म लोगों का नहीं होता है, यहाँ पर मंगल की जन्म स्थली है। इसके कारण यह नगरी इसे ग्रीन बीच की उपाधि प्राप्त है। यह नगरी में सर्वश्रेष्ठ नगरियों के अंदर है, इसलिए अनादिकाल में यह भारतवर्ष की राजधानी हुआ करती थी।
1: जी, अंत में आकाशवाणी उज्जैन के श्रोताओं के लिए श्रावण मास और बाबा महाकाल के संदर्भ में आपका क्या संदेश है।
0: मेरा यही संदेश है कि जहां से भी भक्त लोग हैं भगवान के आग बंद करके साधना करें, तपस्या करें, योग करें एवं उपास व्रत करें, जहां तक हो सके पूरे महीने तामसी चीजों से बचें, अपने मुखारविंद से शिवमयी गाथाएं गाएं और अच्छे संस्कार प्राप्त करें, बाबा के दरबार में जाते हैं तो वहां पर नियमों का पालन करें, और बाबा का जो ये जो महीना है प्रकृति का महीना है, वर्षा ऋतु का महीना है, इसलिए इसमें यम नियम संयम से यदि व्यक्ति पालन करता है तो उसे समस्त कामनाएं पूर्ण होती है। जय माता।
2: तो जैसे तुमने सुनियो गुरु जी से कि अगर श्रावण मास की बात हुई रही है तो अपना उज्जैन को नाम नहीं आए तो बात ही अधूरी रह जाए। बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन जो कि 12 ज्योतिर्लिंग हुन में से एकमात्र दक्षिण मुखी ज्योतिर्लिंग को धाम है, सदी हुन में या नगरी या जो धर्म आध्यात्म और अपनी संस्कृति को केंद्र लिए हुई है। श्रावण में तो पूरा उज्जैन शिवमय हुई जाए है, मंदिर में रोज भस्मा आरती, रुद्र अभिषेक, महापूजन, जल अभिषेक और श्रावण में विशेष श्रृंगार हुई है। लाखों श्रद्धालु देश विदेश से बाबा महाकाल का दर्शन करने आई है। श्रावण का सोमवार उनकी तो बात ही निराली है। बाबा महाकाल राजा धीराज का स्वरूप में जो चांदी की पालकी में विराजमान हुई के आए है, नगर भ्रमण पे जो निकले है, तो उकी तो बात अलग है। मान्यता है कि उज्जैन का राजा कोई मनुष्य नहीं है बल्कि स्वयं बाबा महाकाल है। सवारी का मार्ग में श्रद्धालुओं फूल बरसाए है, आरती उतारे है, भजन गाए है और हर हर महादेव जय श्री महाकाल का जयकारा से पूरा शहर गुंजी उठे है। ऐसी मान्यता है कि बाबा महाकाल इन सवारी द्वारा अपना भक्त हूं और अपनी प्रजा को हालचाल लेवा निकले है। जदे बाबा चांदी की भव्य पालकी में विराजमान हुई के नगर भ्रमण करे है तब हर भक्त के ऐसो अनुभव हुई है जैसे स्वयं महाकाल उनका आंगन घर आंगन में पधारी गया है। लाखों श्रद्धालु बाबा की

एक झलक पाने का लिए घनी देर पेला से सवारी मार्ग पे खड़ा रहे। जदे पाल के निकले तब पूरो वातावरण शिव भक्ति में डूबी जाए। श्रावण का मार्ग सवारी का मार्ग पे घर घर दुकान दुकान और चौक चौराया पे फूल हुन ध्वज हुन और रंगोली हुन सजाई जाए है। जहां भी नजर आ जाए माँ काली बाबा महाकाल को जयकारो और श्रद्धा को सागर उमड़तो नजर आए है। सवारी मतलब खाली दर्शन को अवसर नहीं है बल्कि मालवा की संस्कृति परंपरा और आस्था को अद्भुत संगम है। बाबा महाकाल की पालकी का आगे आगे शंखनाथ की मंगल ध्वनि गुंजे, ढोल नगाड़ा हूं का जो ताल है उसका वातावरण से भक्तिमय हुई जाए है। पुलिस बैंड अपने मधुर वादन से सवारी की गरिमा के और भी बढ़ाए है। शाही अखाड़ा हूं की पारंपरिक प्रदर्शन, धार्मिक झांकी हूं और भजन मंडली हूं दिव्य यात्रा के और भी भव्य करते है। जहाँ से सवारी गुजरे है वहाँ श्रद्धालु फूल हूं की वर्षा करे है, आरती उतारे है और हाथ जोड़ी के अपना बाबा महाकाल को स्वागत करे है। जब बाबा की सवारी रामघाट पे पहुंचे तब माँ शिवपुरा का पावन तट पे विशेष पूजन अर्चन और आरती संपन्न हुई। यह दृश्य श्रद्धालु उनका लिए बहुत ही भावुक हुई है। शिवपुरा तट पे गुंजता शंखनाद महादेव का जयकारा और हजारों श्रद्धालु हूं की एक साथ उमड़ती आस्था इन पल के और भी दिव्य बनाई दे। जब बाबा फिर मंदिर की तरफ पधारे तब ऐसो लागे जैसे राजा धीराज अपना सगड़ा भक्त के आशीर्वाद दे के वापस अपना दरबार में विराजमान हुई रहा है। और इन्हीं बात का साथे सावन का इन्हीं मौका का पावन अवसर का साथे अपन बाबा का भजन भी सुनना। तो आओ सुना बाबा भोलेनाथ को यो भजन, जिका बाद अपने अपनी बात करांगा।

देखियो जाए तो सावन को महीनों हमारे केवल पूजा पाठ करवा को संदेश नहीं दे है, बल्कि जीवन जीवा को सच्चो रास्तों भी बताए है। जैसे बरसात सूखी धरती पे हरियाली से भरी दे है, वैसे ही सावन अपना मन के श्रद्धा, प्रेम, सेवा, दया और विश्वास से भरवा की प्रेरणा दे है। भगवान शिव सादगी, त्याग, धैर्य, करुणा और समानता का प्रतीक माना जाए है। अगर हम उनका गुण अपना जीवन में उतार लें तो जीवन की हर कठिन रस्तों भी आसान हो जाएगा। सावन हमारे प्रकृति से जुड़वा को, पानी बचाने को, पर्यावरण को सम्मान करने को, स्वच्छता अपनाने को और आपस में प्रेम बढ़ावा को भी संदेश दे है। मंदिर होए, नदी घाट होए, अपनो गाँव होए या अपनो शहर, इन सब के साफ सुथरा रखना भी अपनी जिम्मेदारी है। जब हम प्रकृति और अपना आसपास के स्वच्छ रखांगा तो यह भी अपने भगवान शिव की सच्ची सेवा और आराधना मानी जाएगी। साथ ही समाज में भाईचारा, अपनोपन और सहयोग की भावना के भी मजबूत बनाना भी सावन मास को सच्चो संदेश है। आओ इन पावन सावन मास में हम यो संकल्प लें कि प्रकृति को सम्मान करांगा, जल को संरक्षण करांगा, स्वच्छता के अपनी आदत बनाएंगा और अपना संस्कार, संस्कृति और परंपरा के सहेजी के रखांगा। प्रेम, सेवा, करुणा और सद्भाव से समाज और मजबूत बनेगा। बाबा महाकाल का आशीर्वाद सगड़ा पे बने थको रे। हर घर सुख शांति, हर परिवार में प्रेम, हर मन में विश्वास और हर जीवन में नई उमंग जागती रहे। अपना मालवा सहित पूरा देश खुशहाली, स्वस्थ और समृद्धि की राह पे आगे बढ़तो रहे और साथे सुनतो रहे हमारा मालवी का प्यारा प्यारा गीत। तो अब सुना यो गीत।

अब आओ अपना कार्यक्रम में एक नज़र अपना मंडी भाव पे भी देखी ला। अब आज तो मंडी की छुट्टी थी तो अपना कालकाज भाव पाछा जान ला। तो शुरुआत करा अपने गांव से। गांव को भाव आज 2462 से लगे के 2986 तक। उसके बाद अपने दूसरी फसल को भाव करा तो देसी चना को भाव देखा अपने 5130 से लगे के 8211 तक। डालर चना को भाव देखा 4570 से लगे के 5600 तक। सोयाबीन की बात करा अपने तो 3536 से लगे के 7381 तक। अब दूसरी फसल आड़ी भी देखी ना, सरसों को भाव 7050, मसूर को 5801 से लगे के 7271 तक, तिल्ली को 10491 से लगे के 11001 तक। अब दूसरी फसल को भाव बात करा अपने तो आलू की बात कर ला 400 से लई के 1000 तक, प्याज की बात करा तो 700 से लई के 2401 तक। और साथ साथ अपने दूसरी बात करा अपने तो अपनी बात करा काल की सवारी की। तो काल है भैया 10 तारीख और काल है सवारी। तो काल पालकी में रहेगा श्री चंद्रमोलेश्वर और हाथी पे रहेगा मन महेश जी। जिसका बाद सवारी रहेगा 17 अगस्त का दिन, फिर 24 अगस्त के, फिर 31 के और फिर 7 सितंबर का दिन राजसी सवारी। अब देखो तुम्हारे इतनी तो जानकारी मैंने नहीं दी है, अगली जानकारी हूँ तुम्हारे अगला कार्यक्रम में दे दूंगा। अब देखो घड़ी ने इशारों तो कर दियो है जावा को। अब हूँ भी देखूँ भैया अपनो रस्तों नापी लूँ है कि तमाम मालूम ही है कि घड़ी में बजा वाला है 8 और हूँ भी नापी लूँ मारी बाट। तो

मिलांगा तुम्हारे से अगला कार्यक्रम में, तब तक स्वस्थ रहो, मस्त रहो, स्वच्छता बनाई के रखो, काल आराम से पालकी का दर्शन करो, बाबा महाकाल का दर्शन करो और आशीर्वाद लेके आओ और अपने सुरक्षा बनाई के रखो। अने तमारा भाई कुलदीप शर्मा के दो विधा, राम राम, जय श्री महाकाल, अने शुभ रात्रि।

0: श्रोताओं, एफएम 102.5 मेगाहर्ट्ज़ और न्यूज़ ऑन एआईआर ऐप पर आकाशवाणी उज्जैन से आप सुन रहे थे कार्यक्रम मालवी गीतारी गूंज। सुनते रहिए और जुड़े रहिए आकाशवाणी उज्जैन के साथ। श्रोताओं, रात के 8 बजने को हैं और कुछ ही देर में आकाशवाणी भोपाल केंद्र से कार्यक्रम सुर्खियों में अनुप्रसारित किया जाएगा, कृपया प्रतीक्षा करें। सुन रहे थे ग्राम सभा कार्यक्रम आकाशवाणी भोपाल से। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में।
1: सुर्खियों में ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए हर घर तिरंगा, देशभक्ति और राष्ट्रीय एकता की भावना के उत्सव पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं राजनीतिक विश्लेषक अशोक टंडन। कार्यक्रम का संचालन कर रही हैं सोनू सूद।
2: आगामी 15 अगस्त को भारत के 80वें स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में आज हर घर तिरंगा 2026 अभियान का शुभारंभ हुआ और 17 अगस्त तक इस राष्ट्रव्यापी जन आंदोलन के तहत करोड़ों भारतवासी हमारी एकता, अखंडता और संप्रभुता दर्शाने वाले राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे को गर्व और उल्लास से फहराएंगे। इस वर्ष हर घर तिरंगा अभियान और भी खास है क्योंकि वह हमारे राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ को समर्पित है। हर घर तिरंगा 2026 अभियान के महत्व और विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश डालने के लिए राजनीतिक विश्लेषक अशोक टंडन जी हमारे साथ जुड़े हैं। अशोक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत आकाशवाणी में।
3: नमस्कार।
2: अशोक जी, सरकार ने 2022 में हर घर तिरंगा के तहत जो हर नागरिक को राष्ट्रीय ध्वज अपने घर पर या अपने कार्यालय पर फहराने का जो अधिकार दिया है, उसे आप कितना महत्वपूर्ण समावेशी पहल मानते हैं और भावनात्मक रूप में ये कैसे सभी भारतवासियों को जोड़ता है?
3: जैसे आपने कहा कि 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस कार्यक्रम को चलाया था और लोगों से आह्वान भी किया था, और इस बार भी अगर मैं कहूं तो 26 जुलाई 2026 को जो प्रसारित मन की बात के 136वें एपिसोड में भी प्रधानमंत्री ने फिर से भारतवासियों को, भारतवंशी जो विदेश में रहते हैं, उन सबको स्वतंत्रता दिवस को लेकर हर घर तिरंगा अभियान को फिर से इस बार भी पूरे उत्साह के साथ आगे बढ़ाने का आह्वान किया था। और उन्होंने कहा था कि ये तिरंगा हमारे संविधान के आदर्शों को संजोए हुए है और ये देश को एकजुट करता है। तो इस आह्वान का अर्थ यही था कि लोगों को याद कराना कि जब इस बार 9 अगस्त आज से और 17 अगस्त तक ये जो हर घर तिरंगा अभियान चलेगा, इसमें लोग बढ़ चढ़ कर भाग लें और इस वर्ष अपने घरों पर तिरंगा फहराने और उत्सव को भव्य बनाने की अपील भी की थी कि लोगों से तिरंगे के साथ अपनी तस्वीर को सोशल मीडिया पर करके और अपनी प्रोफाइल पिक्चर को बदलने का आग्रह प्रधानमंत्री हर साल करते हैं। तो इस बार की कुछ विशेषताएं जिनकी ओर आपने भी ध्यान दिला वो ये है कि ये अभियान राष्ट्रव्यापी जो है 9 अगस्त से 17 अगस्त तक चलेगा और इसको, जैसे आपने भी कहा, कि वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ के साथ भी इसको जोड़कर इस बार मनाया जाएगा। तो गीत के बोल और धुन हमारी तस्वीर पर खुद ब खुद जुड़ जाएंगे, ये एक विशेष फीचर इस बार है। कुल मिलाकर जो 9 दिन ये चलेगा और उसकी जो सूत्रधार होते हैं वो हमारी कल्चर मिनिस्ट्री जो होती है वो इसका अभियान करती है। और एक और महत्वपूर्ण पहलू इस बार जोड़ा गया है।
2: इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, जो आपने अभी जिक्र किया कि बहुत सारी कल्चरल एक्टिविटीज भी तिरंगा के आसपास प्लान की गई है, यात्राज, रैलीज, कॉन्सर्ट्स, एग्जीबिशंस और क्विज भी है। सो केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने इस अभियान का जब शुभारंभ किया तो उन्होंने नागरिकों से इन गतिविधियों में सक्रियता से भाग लेने का भी आह्वान दिया। सो आपको लगता है इससे एक जागरूकता फैलेगी सब नागरिकों में, जो अतीत का हमारा गौरव है, वर्तमान की जो कर्तव्य निष्ठा की आवश्यकता है और भविष्य के सपनों का जो एक प्रतीक बना है तिरंगा, उसके बारे में ज्यादा जागरूकता फैलेगी?
3: कि देश के हर जिले और ब्लॉक में स्तर पर स्थानीय सांसदों, विधायकों और सामाजिक संगठनों के नेतृत्व में विशाल तिरंगा यात्राएं निकाली जा रही हैं, जिनमें युवाओं, जेंजी को बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने का एक तरह से मौका मिलेगा। और इस बार इस बात का भी विशेष ध्यान दिया गया है कि झंडा फहराने के दौरान और अभियान खत्म होने के बाद तक झंडे को उतारते समय जो है हमको कई नियमों का पालन करना होगा। और इसीलिए जब हम इसको राष्ट्रव्यापी आंदोलन कहते हैं तो इसका मुख्य देश भारत की स्वतंत्रता दिवस के जो अवसर पर प्रत्येक नागरिक जो है वो इसमें उसका जुड़ाव हो। और एक और बहुत महत्वपूर्ण पहल इस बार की गई है कि उसका नाम रखा गया है सूर्य पथ तिरंगा, यानी विदेश मंत्रालय के सहयोग से एक अनोखी एक पहल शुरू की जा रही है। दुनिया के 54 देशों में मौजूद जो भारतीय दूतावास या हाई कमीशन हैं या कॉन्सुलेट हैं, वो उगते सूरज की दिशा के अनुसार पूर्व से पश्चिम की ओर एक के बाद एक तिरंगा फहराएंगे। यानी जो हमारा पूर्व में सबसे फिजी देश है, वहां पर जो हमारा एम्बेसी है वो झंडा फहराने की शुरुआत करेगी। और जो जो सूर्य आगे बढ़ेगा तो सैन फ्रांसिस्को में जो अमेरिका का बिल्कुल पश्चिमी शोर है वहां पर सूर्य अस्त के समय तक ये झंडा फहराया जाएगा। तो ये एक हमारा जो डायस्पोरा है उनको साथ जोड़ने की भी बात है। और हमारे जो डिप्लोमेटिक मिशन है वो दुनिया भर के देशों को भी एक संदेश देना की कोशिश होगी कि जो हमारे देश में स्वतंत्रता का दिवस है उसको हम कितने ढंग से मनाते हैं। और उसका एक हिस्सा हमारा बन गया है हर घर तिरंगा। हमारे जो लोग जैसे संस्कृति मंत्रालय है उसका जो पोर्टल है उस पर पहली बार एक तकनीकी टूल को जोड़ा गया है। यानी देश के नागरिक राष्ट्रगीत वंदे मातरम को सही धुन में गाने के लिए उनको ऑनलाइन ट्यूटोरियल दिए गए हैं और वोकल गाइडेंस दिया गया है कि आपको राष्ट्रगीत सचमुच में ठीक ढंग से कैसे गाना चाहिए। तो इसके साथ एक और बड़ी महत्वपूर्ण चीज है कि पिछले कुछ वर्षों से प्रधानमंत्री के इनिशिएटिव पर अब दिल्ली, कलकत्ता और अमृतसर जैसे प्रमुख शहरों में मौन जुलूस निकाले जाते हैं, क्योंकि इसको विभाजन की त्रासदी पर आधारित डॉक्यूमेंट्री फिल्में भी स्क्रीन की जाती हैं। क्योंकि अब ये केवल दो ही इसके महत्व नहीं है, यानी हर घर तिरंगा हो और वंदे मातरम हो, साथ में जो विभाजन की विभीषिका थी उसको भी लोगों तक पहुंचाकर कैसे जिस तरह से भारत का विभाजन हुआ और उसमें से कैसी विभीषिका हुई उसको भी इस बार से कुछ सालों से ये लोगों के साथ नई पौध के साथ नई जनरेशन के साथ उसको जोड़ने की दृष्टि से भी ये कार्यक्रम साथ में लिया गया है। तो ये लोगों की सक्रिय भागीदारी करना, उनके साथ उनको ये पता चलना चाहिए कि ये सब कुछ हम लोग क्यों करते हैं। हमारी नई पीढ़ी जो है उसको ये जानकारी रहनी चाहिए कि कितनी कठिनाइयों के बाद भारत ने स्वतंत्रता हासिल की थी, कितने लोगों ने बलिदान दिया था और कैसे विभाजन के दौरान एक बड़ी भारी विभीषिका हुई जिसमें लाखों लोगों को जान गंवानी पड़ी।
2: पार्टीशन हॉरर्स रिमेम्बरेंस डे भी मनाया जा रहा है 14 अगस्त को, ताकि प्रेरणा मिले कि हम किस संघर्ष और बलिदान से आजादी हमने प्राप्त की है उसका मूल्य हम समझें। तो आपको लगता है इससे प्रेरणा मिलेगी सब नागरिकों को, खासकर युवाओं को, कि राष्ट्र निर्माण में यथा योग्य जितना भी कर सकें योगदान करें और अलगाववाद से बचें?
3: बिल्कुल, देखिए पहले के कई दशकों तक न तो कभी तिरंगा का महत्व समझाया गया था हमारी पीढ़ी को स्वतंत्रता के बाद, और ना ही कोई जो विभाजन की विभीषिका है उसके बारे में बताया गया था। नई जनरेशन को मालूम ही नहीं था कि कितने हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने बलिदान दिए और वो किस किस तरह के बलिदान थे, उसमें भगत सिंह की बात आती है। लेकिन ये जो विभीषिका हुई पार्टीशन की इसके बारे में कोई चर्चा नहीं होती थी। अब कुछ वर्षों से इसके बारे में इसलिए उसकी प्रदर्शनियां लगाई जा रही हैं, उसकी फीचर फिल्म बन रही हैं और लगातार एक अभियान के तहत

0: सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक जिम्मेवारी भी आती है कि जो हमें आजादी हमें मिली है इतनी मुश्किल से, उसको हमें संभाल के रखना है और हमें अपनी समृद्धि को आगे बढ़ाना है। और जो हमारी फ्रीडम फाइटर्स हैं, जैसा आपने कहा स्वतंत्रता सेनानी या जो आंदोलनकारी रहे जिनके संघर्ष से हमें आजादी मिली, उनके अलावा जो वर्तमान सशस्त्र बल हैं जो रक्षा करते हैं हमारी, उनके प्रति भी एक आदर भाव सम्मान जागता है।
1: बिल्कुल, क्योंकि जो स्वतंत्रता के बाद बलिदान हुए हैं वो युद्ध में लड़ाइयों में हमारे जो वीर सैनिक जवान, उन्होंने जो शहादत दी है उसको भी याद करने का एक यही अवसर होता है। और इसीलिए ये जो हर घर तिरंगा है ये केवल आजादी के परवानों की याद नहीं दिलाता, बल्कि उसके बाद आजादी को बनाए रखने में इन वीर सेनानियों कि जो इसमें बलिदान होता है, जो शहीद होते हैं और लगातार आतंकवाद से लड़ते हुए भी शहीद होते हैं, तो उनके प्रति भी श्रद्धांजलि का एक प्रतीक बनता है। और इसीलिए हर घर तिरंगा के साथ साथ जो इसके साथ वंदे मातरम को जोड़ा गया है, क्योंकि वंदे मातरम भी स्वतंत्रता संग्राम के समय हमारे स्वतंत्रता सेनानियों को बहुत प्रोत्साहित करता था और एक जोश भरता था। और उसके साथ राष्ट्रीय गान के साथ जैसे उसको अब जोड़ दिया गया है, तो इससे हमारे सेनानियों को भी एक आत्मविश्वास बढ़ता है कि वो जो पहरेदारी कर रहे हैं वो देश को एक सुरक्षित रखने के लिए, और हम लोग भी अपने घरों में रात को इसीलिए सो पाते हैं कि देश सुरक्षित हाथों में है, तो ये हमारे जवानों के प्रति भी एक श्रद्धांजलि का बहुत बड़ा अवसर है।
0: सो अशोक जी, एक सामूहिक पहचान है हम सभी की, प्रत्येक भारतवासी के लिए तिरंगा और हमारा राष्ट्रीय गीत, राष्ट्रध्वज दोनों एक कहें कि ड्यूअल सेलिब्रेशन है। और अगर हम देखें कोई भी प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय आयोजन होता है या खेल आयोजित होते हैं तो हरेक देश जो उनका ध्वज है और उनका राष्ट्रीय गीत है वो बहुत महत्व रखता है। सो उस संदर्भ में भी एक अपनी पहचान बनाने के लिए और पूरा जो हमारा विविध देश है, इतना बड़ा देश है, उसको एक सूत्र में बांधने के लिए आपको लगता है कि इस तरह के आयोजन बहुत महत्वपूर्ण है?
1: बिल्कुल, देखिए एक भारत श्रेष्ठ भारत का जब हम बात करते हैं तो उसमें वो जो एक भारत है तो उसमें एकता बहुत आवश्यक है। तो जितनी भी देश में विविधता है उनके रहते हुए भी अनेकता में एकता भारत की विशेषता, ये जो एक मंत्र है और ये भारत के हर क्षेत्र को, चाहे वो नॉर्थ ईस्ट हो चाहे दक्षिण राज्य हो, इन सबको एक माला में पिरोए रखता है। और इसी तरह भाषा और जाति और धर्म, इन सब को मिलाकर रखना बहुत बड़ी महत्वपूर्ण बात है। तो उसके लिए देशभक्ति की भावना जगाने का लिए जो प्रतीक है वो राष्ट्रीय ध्वज ही है। तो उसके प्रति सम्मान को अगर हम और गहरा करेंगे, उसके साथ हम राष्ट्र गीत के साथ राष्ट्र गान को भी हम बढ़ावा देंगे, तो कोई कारण नहीं है कि ये जो अभियान है ये पूरे देश और समाज को एक सूत्र में पिरोने में और अधिक योगदान करेगा।
0: अशोक जी, पहले तो बहुत ही फॉर्मल और ऑफिशियल ही लहराया जाता था हमारा ध्वज, लेकिन अब जिस तरह से सब नागरिकों को ये अधिकार प्राप्त हुआ है, जैसा आपने भी अभी थोड़ी देर पहले मेंशन किया था कि जो ध्वज है उसकी गरिमा और उसको लहराने के कुछ नियम, अगर आप संक्षेप में जो प्रमुख गाइडलाइंस हैं वो बता सकें।
1: हाँ बिल्कुल, देखिए इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि लोग अपने घरों, निजी प्रतिष्ठानों, सरकारी गैर सरकारी कार्यालयों में तिरंगा फहराएंगे, और इसको फहराते समय जो एक ध्वज संहिता में संशोधन किया गया, यानी फ्लैग कोड जो है उसमें भी बदलाव किया गया है, यानी अब यदि झंडा खुले आसमान में हो या किसी घर पर हो तो उसे दिन और रात 24 घंटे फहराया जा सकता है। पहले ऐसे माना जाता था कि दिन में फहराकर उसको जो है रात को उतार लिया जाए, तो ये अभी बदलाव किया गया है कि नागरिक जो है वो आधिकारिक जो वेबसाइट पर डिजिटल रूप से भी अपना झंडा पिन कर सकते हैं, तिरंगे के साथ सेल्फी अपलोड कर सकते हैं, और उससे उनको भागीदारी का प्रमाण पत्र भी मिलेगा, वो भी उसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये कुछ एक चीजें इसमें जोड़ी गई है, और मैं समझता हूँ कि जो ये अभियान है ये नागरिकों के दिलों में राष्ट्रीयता और देशभक्ति की भावना को और ज्यादा गहरा करेगा और जागरूकता बढ़ाएगा, विशेष तौर से नई पीढ़ी के मन में, क्योंकि उनको जब तक हम लगातार अपने देश की विविधता को भुलाकर सभी में राष्ट्रीय गौरव एक साझा प्रतीक के रूप में एकजुट करेंगे नहीं, तो कोई कारण नहीं है कि ये जो हमारी नई पीढ़ी है वो इससे वंचित रहे। इसलिए उनको जोड़ के रखने के लिए ये आयोजन और ये अभियान बहुत ही आवश्यक है, और उसी तरफ देश अब चल भी रहा है।
0: अशोक जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हर घर तिरंगा अभियान 2026 के महत्व और विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश डालने के लिए।
1: धन्यवाद।
2: अभी आप सुन रहे थे हर घर तिरंगा।

0: देशभक्ति और राष्ट्रीय एकता की भावना के उत्सव पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे राजनीतिक विश्लेषक अशोक टंडन। कार्यक्रम का संचालन कर रही थी सोनू सूद। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsdtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044।
1: सुर्खियों में
2: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुर्खियों में। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम डगर विकास की। प्रस्तुति है आकाशवाणी छतरपुर की। विषय है दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना।

0: डगर विकास की कार्यक्रम के सभी श्रोताओं को हमारा प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, आज के कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री जी की हमारे युवाओं के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है, प्रधानमंत्री दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल विकास योजना 2.0, जिसका प्रमुख उद्देश्य ग्रामीण विकास को सुदृढ़ करना है, जिसके माध्यम से ग्रामीण युवाओं को उनके सपनों तक पहुँचाया जा रहा है। श्रोताओं, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल विकास योजना में कैसे हमारे युवाओं को प्रशिक्षण उपरांत उन्हें स्वरोजगार से जोड़ा जा रहा है, इस योजना में क्या बेहतर रूप से काम किए जा रहे हैं, इस संबंध में आज हम आपको जानकारी दे रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी की दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल विकास योजना 2.0 के क्रियान्वयन और प्रशिक्षण के संबंध में हमें जानकारी देते हुए आप हैं सेडमैप के जिला समन्वयक श्री एम के श्रीवास।
1: डीडीयू बाई के एक महत्वाकांक्षी स्वरोजगार उन्मूलन योजना है कौशल विकास की दिशा में। इसमें ग्रामीण और शहरी युवाओं को कौशल दक्ष बनाने का प्रयास किया जाता है। इसमें 18 से 35 वर्ष के आयु के युवाओं को विभिन्न स्कीमों के माध्यम से, मुख्यतः शहरी क्षेत्र में राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन और ग्रामीण क्षेत्र में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के माध्यम से विभिन्न ट्रेडों पर प्रशिक्षण प्रदान किए जाते हैं। इसमें योग्यता शिक्षा के आधार पर उनके कौशल को अलग अलग तरह से दक्ष प्रशिक्षित किया जाता है, साथ ही उन्हें NSDC के माध्यम से उनको सर्टिफाइड भी किया जाता है और इसके लिए शासन अलग अलग तरह से ट्रेड के अनुसार उनको आर्थिक सहायता भी देती है और दक्ष युवाओं को रोजगार और स्वरोजगार से जोड़ने का प्रयास भी करती है। विभिन्न स्वरोजगार योजना है जिनमें स्वरोजगार के लिए प्रकरण बनाकर उनको शासन की वित्तीय सहायता भी दिलाते हैं तथा कुछ इंटर्नशिप स्कीम है उसके माध्यम से भी उसमें लिंक करने का प्रयास करते हैं और विभिन्न तरह के कौशल के माध्यम से लोगों के हुनर को सृजन करके उनके हुनर को परिष्कृत करके आज के वर्तमान परिवेश में दक्ष करने का प्रयास किया जाता है।
2: सर, इस योजना में जो हितग्राही होते हैं प्रशिक्षण उपरांत उनको जो रोजगार से जोड़ते हैं स्वरोजगार से, उसके लिए क्या पात्रता होती है ग्रामीण और शहरी युवाओं के लिए? क्या कुछ उनके पास अर्हता होनी चाहिए या कोई डिप्लोमा सर्टिफाइड होना चाहिए?
1: इसमें डिप्लोमा सर्टिफाई की आवश्यकता नहीं होती है। ग्रामीण युवाओं जो खासतौर से गरीब तबके के जो लोग हैं उस श्रेणी में आना चाहिए। खासतौर से BPL के लोगों को, BPL नहीं है तो खाद्यान्न पर्ची की पात्र हितग्राहियों को, कुल मिला के आर्थिक रूप से कमजोर युवाओं के लिए स्कीम है और इसमें शिक्षा की कोई विशेष आवश्यकता नहीं है। शिक्षा व्यक्ति के लिए जो अलग अलग सब्जेक्ट हैं उसके अनुसार शिक्षा है और व्यक्ति की शिक्षा के अनुसार अलग अलग प्रकार के ट्रेड हैं। साक्षर हैं तब भी, पांचवी पास हैं तब भी, दसवीं पास हैं तब भी, बारहवीं पास हैं तब भी आप इस कार्यक्रम में भाग ले सकते हैं। नगर पालिका और जनपद पंचायतों के माध्यम से अपने आवेदन पंजीयन करा सकते हैं वहाँ से और इसमें अनेक लोगों ने

0: लिया है, अपने हुनर प्राप्त किए हैं।
1: सर, हम ये भी जानना चाहेंगे इस योजना का प्रमुख उद्देश्य क्या है?
0: इसका प्रमुख उद्देश्य है युवाओं को वर्तमान परिवेश के अनुसार हुनर में दक्ष करना, ताकि बच्चे अपने कौशल के बारे में आत्मनिर्भर बने और रोजगार स्वरोजगार के लिए दक्ष होकर रोजगार और स्वरोजगार प्राप्त करें।
1: हमारे युवा भाई बहनों से क्या कुछ कहना चाहेंगे आप, वो इस योजना का लाभ लें, क्या कहेंगे?
0: योजना के लिए मैं भाई बहनों से कहना चाहूंगा, यदि आपको जीवन में कुछ करना है और जीवन में आगे बढ़ना है, तो जीवन में एक हुनर को अपना दोस्त साथी बनाएं। हुनर ही व्यक्ति का सबसे सच्चा मित्र होता है और हुनर को परिष्कृत करने के लिए योजना बहुत महत्वपूर्ण है और दक्ष है, जो आपको हुनर से रोजगार और स्वरोजगार दे सकती है। तो इस योजना में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए और एक हुनर कम से कम अपन को धारण करके उस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए।
2: दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल विकास योजना 2.0 ग्रामीण युवाओं के लिए वरदान साबित हो रही है। इस योजना के माध्यम से गांव-गांव तक भारत सरकार पहुंच रही है और युवाओं को प्रशिक्षण उपरांत उन्हें स्वरोजगार उपलब्ध करवाया जा रहा है। साथ ही इस योजना में और भी महत्वपूर्ण पहलुओं को जोड़ा जा रहा है। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल विकास योजना 2.0 और इस योजना के क्रियान्वयन में भारत सरकार के और राज्य सरकार के प्रशिक्षण संस्थानों की क्या भूमिका है और प्लेसमेंट किस तरह से होता है, इस योजना के संबंध में हमें जानकारी दे रहे हैं आप शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान शासकीय ITI छतरपुर के प्राचार्य श्री RS जादौन।
3: ITI जनरली इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है। यहाँ ट्रेनिंग दी जाती है, इंडस्ट्री से रिलेटेड ट्रेनिंग दी जाती है। यहाँ विभिन्न प्रकार के ट्रेड हैं, जैसे कि हमारे यहाँ हमारे खुद के संस्थान में 8 ट्रेड हैं और पूरे जिले में 8 ट्रेड ऐसे चल रहे हैं जो कि जनरली हमारे यहाँ भी चल रहे हैं। एक एक्स्ट्रा ट्रेड चंदला में चल रहा है, RAC रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग। चूंकि यहाँ पे पूरे छतरपुर जिले में 5 गवर्नमेंट ITI हैं, यहाँ पे विभिन्न प्रकार के ट्रेड हैं और कहीं 6 ट्रेड हैं, कहीं 7 ट्रेड है, वर्तमान में 2 जगह एक एक ट्रेड भी है। और जो कंपनी में एक ऑपरेटर होता है जो कि इंजीनियर के नीचे होता है, तो उसके लिए क्या होता है, कंपनी जो भी मशीनरी ऑपरेशन हुआ, कंप्यूटर ऑपरेटर हुआ और विभिन्न प्रकार के, जैसे भी आज का प्रेजेंट में डिफरेंट डिफरेंट टाइप की मशीन्स आती हैं, उनको ऑपरेट करने के लिए विभिन्न लोगों की जरूरत होती है। ऑटोमोबाइल सेक्टर है, कंप्यूटर सेक्टर है, डिफरेंट टाइप के सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग हुआ, सब में एक मैन फोर्स की जरूरत होती है जो कि स्किल्ड हो। जनरली 3 टाइप के लोग पाए जाते हैं, एक अनस्किल्ड होते हैं, एक सेमी स्किल्ड होते हैं और एक स्किल्ड होते हैं। हम लोग अनस्किल्ड को सेमी स्किल्ड बनाने का कार्य करते हैं और उसके बाद जब बच्चा ट्रेंड होके और OJT कर लेता है, ऑन जॉब ट्रेनिंग कर लेता है, तो उसको स्किल्ड पर्सन मानने लगते हैं। अगर हम बात करें विभिन्न ट्रेडों की, तो यहाँ पे हमारे यहाँ कोपा है, कंप्यूटर ऑपरेटर का जो ट्रेड है हमारे यहाँ, उसमें हम पाइथन लैंग्वेज हुआ और AI से रिलेटेड टूल्स हुए और हार्डवेयर सॉफ्टवेयर की जानकारी देते हैं, जिसमें उनको विभिन्न प्रकार की कंपनियों में उनका प्लेसमेंट होता है। और जहाँ पे ऑटोमोबाइल से रिलेटेड जो टूल इक्विपमेंट हैं उनकी इन्फॉर्मेशन दी जाती है, मशीनरी जैसे लेथ मशीन हुई, हाइड्रोलिक हुई, न्यूमेटिक हुई, इन मशीन्स की जानकारी दी जाती है। हम कोशिश करते हैं कि CNC DNC मशीन की भी जानकारी उनको दी जाए। अगर सब अच्छा रहा इस साल, तो हमारा ये भी विचार है कि बच्चे को कहीं ना कहीं सॉफ्टवेयर जैसे AutoCAD जैसे सॉफ्टवेयर, इनकी भी जानकारी हम उस ट्रेड में देना चाहेंगे। उसके बाद सर, जो हमारे यहाँ पे एक ट्रेड है वेल्डर, जहाँ हम विभिन्न प्रकार की वेल्डिंग के बारे में बताते हैं। तो वेल्डिंग में जैसे कि स्पॉट वेल्डिंग हुई, आर्क वेल्डिंग हुई, टिक वेल्डिंग हुई, मिग वेल्डिंग हुई, ऐसे बहुत सारे स्टेंस वेल्डिंग हुई, इन सारी वेल्डिंग्स के बारे में हम उनको बताते हैं बच्चों को, और जो मैकेनिकल रिलेटेड टूल इक्विपमेंट हैं उनके बारे में भी इन्फॉर्मेशन देते हैं।
1: अब हम ये जानना चाहेंगे, जैसा कि ग्रामीण युवाओं में कौशल को बढ़ावा देना ये माननीय प्रधानमंत्री जी की महत्वपूर्ण इच्छा रही है, उस पर काम भी हो रहा है युवाओं के लिए, खासकर ग्रामीण युवाओं के लिए, ताकि उन्हें आगे उनका काम मिल पाए और स्वरोजगार से वो जुड़ पाए।
3: हमने अपने यहाँ पे एक ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट सेल को ओपन कर रखी हुई है। उसमें क्या है कि बच्चों को स्वरोजगार रोजगार दोनों के बारे में बताया जाता है। जरूरी नहीं कि वो बच्चा हमारे यहाँ का हो, वो कहीं का हो, पूरे जिले में कहीं का बच्चा है, तो हम उसको स्वरोजगार की भी जानकारी देते हैं कि प्रेजेंट में यहाँ पे हमारे क्षेत्र में ये चीज अवेलेबल है, आप इसमें इतना कर सकते हैं। और जो बच्चे यहाँ आते हैं, जितने भी ट्रेड हैं, वो ग्रामीण के लिए भी बराबर से खुले हुए हैं, सारे बच्चे एक जैसे हैं, सारे बच्चों की एजुकेशन लगभग एक सी रहती है। ऐसी योजनाएं बना के गवर्नमेंट बच्चों लोगों को आगे बढ़ाना चाहती है। जो युवा पीढ़ी आ रही है वो भविष्य में मतलब एक भारत निर्माण, भारत के एक विकसित निर्माण के लिए कार्यरत हो। 2047 का एक लक्ष्य रखा गया है कि विकसित भारत बने, तो वो ऐसे ही बनेगा जिसमें बच्चा स्वरोजगार और रोजगार दोनों से कंटिन्यू जुड़ता जाएगा योजनाओं के थ्रू।
2: दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल विकास योजना 2.0 हमारे ग्रामीण और शहरी युवाओं को एक बेहतर अवसर उपलब्ध करवाने के लिए काम कर रही है। इस योजना और योजना से जुड़े हुए प्लेसमेंट में रोजगार

0: कार्यालयों की क्या भूमिका है इस संबंध में हमें बताते हुए आप हैं छतरपुर के जिला रोजगार अधिकारी श्री SK जैन।
1: शासन के द्वारा जो भी रोजगारी योजनाएं हैं या स्वरोजगारी योजनाएं हैं, इनको एकीकृत एक छत के नीचे लाने, बच्चे को एक ही टाइम पर सभी अवसर सभी जानकारी मिल सके, इसके लिए एक युवा संगम कार्यक्रम हम प्रत्येक माह आयोजित करते हैं। छतरपुर जिले के लिए वो निर्धारित है, चतुर्थ बुधवार को हम लोग करते हैं। उसमें हम इसको रोजगार स्वरोजगार और अप्रेंटिसशिप मेला और युवा संगम इसको कहते हैं। तो इसमें रोजगार मेले में जो कंपनीज आती हैं, जो डायरेक्टर मतलब प्लेसमेंट करती हैं बच्चों का, जो डायरेक्टर ऑन जॉब रोल रखती हैं, वो कंपनीज हम बाहर से बुलाते हैं। उसमें देश की प्रदेश की विभिन्न कंपनी रहती हैं, उसमें उनकी रिक्वायरमेंट जो रहती है उसके आधार पर हम जिले में प्रचार प्रसार कराते हैं कि इस तरह की कंपनी आ रही है, पेपर में एडवर्टाइजमेंट देते हैं, बच्चों को पता चलता है। इसके अलावा दूसरा जो रहता है इसका एक एस्पेक्ट, जो अप्रेंटिसशिप करना चाहते हैं ITI के बच्चे, तो वो भी ITI की तरफ से अप्रेंटिसशिप की कंपनीज बुलाई जाती हैं। तो अप्रेंटिसशिप मेला भी इसमें कम्बाइंड रहता है, उसमें अप्रेंटिसशिप के लिए भी कंपनीज आती हैं। तो इस तरह से कंपनीज आती हैं और स्वरोजगारी योजनाएं जो भी चल रही होती हैं उसके स्वरोजगार के हम विभागों को से कोऑर्डिनेट करते हैं, लीड बैंक अधिकारी से भी कोऑर्डिनेट करते हैं। तो जिन्होंने भी अपने ऋण योजनाओं के लिए आवेदन किया है या आवेदन करना चाहते हैं या जानकारी चाहते हैं और किस तरह से मार्केट में मतलब वो अपना स्वरोजगार स्थापित कर सकते हैं, तो एक होलिस्टिक अप्रोच से हम लोग मतलब वर्क करते हैं कि इतना पढ़ने के बाद या कुशलता के बाद उसको उसके अनुरूप कार्य मिल सके। मतलब वो चाहे आपका रोजगार हो, चाहे वो मतलब अप्रेंटिसशिप हो, चाहे स्वरोजगार हो, हमारा बेसिक उद्देश्य उसके लाइवलीहुड को उसको प्रदान करना और उसके पुनर्वास में और उनके जीवन स्तर को निर्वाह स्तर को ऊपर उठाना है। ये हमारे मध्य प्रदेश शासन की और माननीय प्रधानमंत्री जी की मंशा है, उसके अनुरूप हम लोग काम कर रहे हैं।
0: जी जी, हम अगर आंकड़ों की बात करें तो पिछले वित्त वर्ष में कई युवाओं को रोजगार से जुड़ा है, ग्रामीण जो सर्वे हुए हैं वहाँ भी खूब उनको किट्स भी मिली हुई हैं और प्रशिक्षण और साथ ही साथ उनको कुछ स्टाइपेंड भी मिला हुआ है। रोजगार कार्यालय और क्या भूमिका निभाता है, जैसे प्लेसमेंट की अगर हम बात करें तो कौशल से जो स्किल्ड जो बच्चे होते हैं कौशल विकास योजना के, तो उन्हें कैसे रोजगार मिलता है या किन किन कंपनियों में मूल रूप से प्रयास रहता है कि ताकि वो रोजगार से जुड़ पाए?
1: देखिए, जो रोजगार की कंपनियां हैं उसमें हम स्किल्ड बच्चों के लिए फोकस करते हैं, इसके साथ साथ हम अनस्किल्ड बच्चों पर भी फोकस करते हैं। दूसरा हमारा फोकस रहता है क्षेत्र का, कुछ जैसे बच्चे बाहर नहीं जा सकते तो हम कोशिश करते हैं कि आसपास की कंपनीज बुलाएं। तीसरा फोकस हमारा रहता है डिफरेंट सेक्टर्स का, किस सेक्टर में बच्चा जाना चाहता है। जैसे कुछ लोग चाहते हैं कि सिक्योरिटी उनको अच्छा लगता है, कुछ कमीशन बेस्ड कंपनीज हैं उनमें जाना चाहते हैं, कुछ प्रोडक्शन में जाना चाहते हैं। तो हम सभी से अप्रोच करते हैं और कोशिश करते हैं कि लगभग हर एक फील्ड की एक एक कंपनी कम से कम आए, जिससे बच्चों को वैरायटी कंपनीज मिल सके उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। बाकी मतलब ये भी कोशिश करते हैं कि अगर अनस्किल्ड ही है बच्चा तो भी मतलब उसको बिल्कुल अपने लाइवलीहुड के लिए मतलब अधिकार है कि वो मतलब अगर उसको थोड़ा सा ट्रेनिंग हम पुश कर सकें। जैसे सर ने बताया है कि 7 दिन की ट्रेनिंग कुछ RPL होती है, जैसे उनके पास स्किल है लेकिन उनके पास सर्टिफिकेशन नहीं है, तो इस तरह से हम मतलब उस कुशलता को वो पहचानते हैं और उनको इंटरव्यूअर जो आते हैं कंपनी के उनके सामने मतलब हम प्रस्तुत करते हैं बच्चों को। इस तरह से हम मतलब लगभग और डिफरेंट वो उसमें करते हैं जिससे बच्चे को कहीं ना कहीं उसमें लाभ मिल सके।
0: श्रोताओ, भारत सरकार की दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल विकास योजना 2.2 बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है। इस योजना में मुफ्त प्रशिक्षण और सुविधाएं ग्रामीण युवाओं को मिल रही हैं, साथ ही उन्हें भोजन के साथ साथ स्टाइपेंड भी उपलब्ध करवाया जा रहा है। तो आप सभी इस महत्वपूर्ण योजना से जुड़ जाइए और भारत के विकास में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाइए। इसी के साथ डगर विकास के कार्यक्रम का आज का ये अंक अब यहीं संपन्न हुआ। सहयोगी राजेंद्र अहिरवार और प्रस्तुतकर्ता रविन्द्र कुमार प्रजापति, अब हमें अनुमति दीजिए। नमस्कार। इस कार्यक्रम के लिए योगदान आकाशवाणी छतरपुर का।

नमस्कार श्रोताओं, एफएम 102.5 मेगाहर्ट्ज और न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी उज्जैन। मैं आपकी रेडियो साथी दृष्टि स्वागत करती हूं सभी श्रोताओं का फिल्म संगीत के सुमधुर सफर में। श्रोताओं, आज फिल्म संगीत में सुनते हैं पहला गीत फिल्म चोरी चोरी से, गायक लता मंगेशकर और मन्ना डे की आवाज़, गीतकार हसरत जयपुरी के बोल और संगीत शंकर जयकिशन का।

श्रोताओं, आइए सुनते हैं अगला गीत फिल्म अनारी से। गायक लता मंगेशकर और मुकेश की आवाज़, गीतकार हसरत जयपुरी के बोल और संगीत निर्देशन शंकर जयकिशन का।

श्रोताओं, फिल्म संगीत में अंतिम गीत है फिल्म मेरा साया से। गायक लता मंगेशकर की मधुर आवाज और गीतकार रजा मेहंदी अली खान के बोल, संगीत निर्देशन मदन मोहन का।

0: श्रोताओं, FM 102.5 MHz और न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी उज्जैन। फिल्म संगीत के सुरीले सफर को यहीं विराम देते हैं। आपकी रेडियो साथी दृष्टि को दीजिए अनुमति, सुनते रहिए और जुड़े रहिए आकाशवाणी उज्जैन के साथ। श्रोताओं, रात के 8:45 होने को हैं और कुछ ही देर में कार्यक्रम समाचार संध्या का अनुप्रसारण आकाशवाणी दिल्ली केंद्र से किया जाएगा। कृपया प्रतीक्षा करें।
1: परेशानियों से घिरे हैं, मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं सरफिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेल के पदक विजेताओं से बातचीत की, लोगों से भारतीय खिलाड़ियों का हमेशा उत्साहवर्धन करने का आग्रह किया। देश भर में कई कार्यक्रमों के साथ हर घर तिरंगा अभियान शुरू, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने लोगों से अभियान में शामिल होकर विकसित भारत के लिए फिर से संकल्प लेने की अपील की। झारखंड सरकार अनियमितताओं के आरोपों के बाद JPSC प्रारंभिक परीक्षा रद्द करने पर सहमत, प्रदर्शनकारी छात्रों ने कहा आंदोलन जारी रहेगा, JPSC के 3 सदस्यों ने इस्तीफा दिया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा ऑपरेशन सिंदूर ने दुनिया को स्पष्ट संदेश दिया कि भारत आतंकवाद कतई बर्दाश्त न करने की नीति के तहत देशवासियों की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जाएगा। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी ने लाभार्थियों को 1 करोड़ से अधिक घर सौंप कर महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की। और तूफान डॉल्फिन चीन के पूर्वी तट पर पहुंचा, 1300 से अधिक उड़ानें रद्द और 3 लाख लोग विस्थापित। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली स्थित अपने आवास पर इस वर्ष के राष्ट्रमंडल खेलों के पदक विजेताओं से मुलाकात की। प्रधानमंत्री ने कहा कि जो लोग खेलों से जुड़ते हैं वे जीवन में आगे बढ़ते हैं। उन्होंने देशवासियों से खिलाड़ियों का हमेशा उत्साह बढ़ाने की अपील की।
3: जो खेलेगा वो खिलेगा। ऑलवेज चीयर फॉर भारत। भारत माता की
4: जय।
3: भारत माता की
4: जय।
3: भारत माता की
4: जय।
2: स्कॉटलैंड के ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों में भारत 13 स्वर्ण, 17 रजत और 9 कांस्य सहित कुल 39 पदक जीतकर पदक तालिका में 4th स्थान पर था। हर घर तिरंगा अभियान आज से शुरू हो गया है। 17 अगस्त तक चलने वाले इस अभियान का उद्देश्य देशवासियों को अपने घरों पर तिरंगा फहराने और देशभक्ति तथा राष्ट्रीय एकता से जुड़े कार्यक्रमों में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करना है।
5: आसमान को पाना है, आसमान से आगे जाना है।
2: इस वर्ष ये अभियान राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ के साथ मनाया जा रहा है। देश भर में वंदे मातरम का सामूहिक गायन भी होगा। दुनिया भर में 200 से अधिक भारतीय दूतावास, उच्चायोग और वाणिज्य दूतावास भी अभियान के अंतर्गत कार्यक्रम आयोजित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से इस अभियान में उत्साह के साथ शामिल होने और विकसित भारत के निर्माण में योगदान देने का संकल्प फिर से लेने की अपील की है। प्रधानमंत्री ने कहा कि तिरंगा देश का गौरव है। उन्होंने इस बात पर प्रसन्नता व्यक्त की कि इस वर्ष का अभियान वंदे मातरम को समर्पित है। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने आज अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी श्री विजयपुरम में राष्ट्रीय ध्वज फहराया। उन्होंने वीर स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि अर्पित की। उपराष्ट्रपति वंदे मातरम पर तिरंगा संगीत कार्यक्रम में भी शामिल हुए। उन्होंने देश के स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े भारत छोड़ो आंदोलन का स्मरण किया।
6: To launch this campaign today on the August Gandhi Divas as we commemorate the Quit India Movement of 1942. Millions of Indians responded.

0: having resolve of do or die on this day. It is therefore deeply significant that we launch the Har Ghar Tiranga campaign from the historic islands on this historic day.
1: गृह मंत्री अमित शाह ने पुदुचेरी में तिरंगा यात्रा को रवाना किया। हजारों लोगों ने इस यात्रा में तिरंगे के साथ भागीदारी की। मध्य प्रदेश और जम्मू कश्मीर सहित देश भर में आज से हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत सप्ताह भर के कार्यक्रम शुरू हुए। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। झारखंड सरकार और प्रदर्शनकारी छात्रों के बीच झारखंड लोक सेवा आयोग JPSC और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग JSSC परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर छात्रों की अधिकतर मांगों पर सहमति बन गई है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
2: झारखंड सरकार ने आंदोलनरत छात्रों की अधिकांश मांगों पर सहमति जताई है। राज्य के मंत्री सुदेव कुमार सोनू ने कहा कि सरकार 14वीं JPSC प्रारंभिक परीक्षा और वर्ष 2023 से 25 की बैकलॉग परीक्षाओं को रद्द करने पर सहमत है। आज सरकार और छात्रों के बीच हुई वार्ता के बाद में मंत्री ने कहा कि कथित वित्तीय अनियमितताओं की ED जांच और आपराधिक मामलों की CID जांच कराई जाएगी। साथ ही 90 दिनों के भीतर आरोप पत्र दाखिल करने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट गठित करने की भी बात कही गई है। परीक्षा व्यवस्था में व्यापक सुधार के लिए IIT ISM IIM रांची और XLRI के विशेषज्ञों की एक समिति गठित की जाएगी। छात्रों ने कहा कि CBI जांच की मांग पर कोई समझौता नहीं होगा। इस बीच झारखंड लोक सेवा आयोग के 3 मौजूदा सदस्यों ने अपने पदों से इस्तीफा दे दिया है। तीनों को CID ने कल पूछताछ के लिए तलब किया है। महविश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
1: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर ने दुनिया को ये स्पष्ट संदेश दिया कि भारत अपने नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। नई दिल्ली में रक्षा मंत्री ने एक कार्यक्रम में ये बात कही।
3: पहलगाम में धर्म पूछ कर हमारे निर्दोष नागरिकों पर कायराना आतंकी हमला हुआ था, तो उसके बाद हमारी बहादुर सेनाओं ने ऑपरेशन सिंदूर की शुरुआत की थी। हमने पाकिस्तान में बैठे आतंकियों और उनके सरपरस्तों को नेस्त नाबूद कर दिया और सारी दुनिया को यह बता दिया कि भारत अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए वह किसी हद तक जा सकता है। ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से हमने दुनिया को बताया कि हमारी नारी शक्ति के सिंदूर की रक्षा करने के लिए हम किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं।
1: गृह मंत्री अमित शाह पुदुचेरी पुलिस को राष्ट्रपति का पुलिस ध्वज प्रदान किए जाने के समारोह में शामिल हुए। श्री शाह ने कहा कि राष्ट्रपति का पुलिस ध्वज प्राप्त करना किसी भी अनुशासित पुलिस बल के जीवन के सबसे गौरवशाली क्षणों में से है। गृह मंत्री ने कहा कि मोदी सरकार द्वारा औपनिवेशिक काल के कानूनों की जगह लाए गए 3 नए आपराधिक कानूनों का उद्देश्य प्रौद्योगिकी आधारित और समयबद्ध प्रणाली के माध्यम से नागरिकों को समयबद्ध न्याय निश्चित करना है।
4: ये न्याय संहिताओं की सोच दंड आधारित नहीं है। ये न्याय संहिताओं की सोच नागरिकों को न्याय दिलाने के लिए केंद्रित, तकनीक सक्षम और समयबद्ध बनाने की है। ये तीनों न्याय संहिताएं टेक्नोलॉजी, टाइमलाइन और ट्रस्ट, ये 3 पिलर पर खड़ी की गई है।
1: उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रह्लाद जोशी ने आज एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। बैठक में वर्तमान चीनी मौसम के लिए चीनी के भंडार की स्थिति, उत्पादन और जरूरतों का आकलन किया गया। श्री जोशी ने चीनी का पर्याप्त भंडार बनाए रखने के लिए इसकी उपलब्धता की सघन निगरानी और समय समय पर आवश्यक उपाय करने पर बल दिया ताकि पूरे मौसम के दौरान चीनी की स्थायी आपूर्ति सुनिश्चित हो सके। शिक्षा मंत्री प्रह्लाद जोशी ने आज राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA से संबंधित मामलों को लेकर शिक्षा मंत्रालय के सचिव और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। श्री जोशी ने संस्थागत व्यवस्था को मजबूत करने, प्रक्रिया सुचारू बनाने और विद्यार्थियों के प्रति जवाबदेही सुनिश्चित करने से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दों पर विचार विमर्श किया। श्री जोशी ने कहा कि सरकार का मुख्य ध्यान मजबूत, पारदर्शी और विश्वसनीय परीक्षा व्यवस्था बनाने पर है ताकि प्रत्येक विद्यार्थी की आकांक्षा पूरी हो सके। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप NewsOnAIR पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है।

0: आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने कहा है कि पीएम आवास योजना शहरी और दूसरे चरण की पीएम आवास योजना शहरी के अंतर्गत अब तक 1,25,00,000 से अधिक मकानों को मंजूरी दी जा चुकी है। इनमें से 1 करोड़ से ज्यादा मकान बनकर तैयार हो चुके हैं और लाभार्थियों को सौंपे जा चुके हैं। इनमें करीब 1 करोड़ मकान महिलाओं को आवंटित किए गए हैं। एक रिपोर्ट।
1: दूसरे चरण की पीएम आवास योजना शहरी में स्वीकृत 2,09,000 आवासों में से 2,03,000 से अधिक आवास महिलाओं को आवंटित किए गए हैं। वहीं वरिष्ठ नागरिकों के लिए 16,600 से अधिक आवास स्वीकृत किए गए हैं, जबकि करीब 22,000 आवास अनुसूचित जाति, 14,000 से अधिक अनुसूचित जनजाति और 75,000 से अधिक आवास अन्य पिछड़ा वर्ग के लाभार्थियों को आवंटित किए गए हैं। इस योजना में आवासों के स्वामित्व में महिलाओं को प्राथमिकता दी गई है। पीएम आवास योजना शहरी की शुरुआत वर्ष 2015 में पात्र शहरी लाभार्थियों को बुनियादी नागरिक सुविधाओं से युक्त हर मौसम के लिए उपयुक्त पक्के मकान उपलब्ध कराने के उद्देश्य से की गई थी। आनंद कुमार के साथ सौम्य शरण, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: भारत ने गैर जीवाश्म ईंधन आधारित स्थापित विद्युत उत्पादन क्षमता में 300 गीगावाट का आंकड़ा पार कर लिया है। 31 जुलाई को हासिल की गई ये उपलब्धि वर्ष 2030 के लिए निर्धारित 500 गीगावाट क्षमता के लक्ष्य का 60% से अधिक है। सौर ऊर्जा प्रमुख विकास इंजन बनी हुई है। इसकी वर्तमान स्थापित क्षमता लगभग 165 गीगावाट है, जो वर्ष 2014 में मात्र 2.8 गीगावाट थी। नागर विमानन मंत्रालय ने कहा है कि विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो फुकेट से दिल्ली आ रही एयर इंडिया की उड़ान में हुई घटना की जांच कर रहा है। इसे गंभीर घटना के रूप में दर्ज किया गया है। दोनों पायलट की मादक पदार्थों के सेवन की जांच की गई। जांच पूरी होने तक दोनों पायलट को ड्यूटी से हटा दिया गया है। मंत्रालय ने कहा कि जांच और अंतिम रिपोर्ट के आधार पर आगे कार्रवाई की जाएगी। जनजातीय लोगों के अधिकारों, संस्कृति, परंपरा और योगदान को मान्यता देने के लिए आज दुनिया भर में विश्व जनजातीय दिवस मनाया जा रहा है। संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 1994 में जनजातीय लोगों के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए इस दिवस की शुरुआत की थी। इस वर्ष का विषय है जनजातीय धाय सम्मान, जीवन और देखभाल का संरक्षण। इस अवसर पर देश भर में कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। हरियाणा में संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज की 650वीं जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित पवित्र कलश वंदन यात्रा आज कंबोपुरा गांव पहुंची। बड़ी संख्या में लोगों ने संत श्री रविदास मंदिर में यात्रा का स्वागत किया। ये यात्रा गुरु रविदास की जन्मभूमि उत्तर प्रदेश के काशी स्थित सीर गोवर्धनपुर से शुरू हुई थी। मौसम विभाग ने पूर्वी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और पश्चिमी मध्य प्रदेश में कल मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अगले 2 दिनों के दौरान दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, आसाम, मेघालय, पूर्वी मध्य प्रदेश, जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख में भी तेज बारिश हो सकती है। ओडिशा में एक बार फिर तेज बारिश होने के बाद बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। एक रिपोर्ट।
2: उड़ीसा में लगातार भारी बारिश हो रही है, जिससे कई जिलों में एक बार फिर बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। इस सीजन में बैतरणी नदी में तीसरी बार बाढ़ आई है, जिससे जाजपुर और भद्रक जिलों के कुछ हिस्सों में फिर से पानी भर गया है, जबकि बैतरणी की एक शाखा कानी नदी के कारण जाजपुर जिले में फिर से बाढ़ आ गई है। IMD ने पूरे राज्य के लिए येलो वार्निंग जारी की है और अनुमान लगाया है कि उत्तरी उड़ीसा, पश्चिम उड़ीसा के कुछ हिस्सों और पश्चिम बंगाल के आसपास के इलाके में कम दबाव वाले सिस्टम के कारण भारी बारिश होगी। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: चीन के पूर्वी तट से तूफान डॉल्फिन के टकराने से झेजियांग और फुजियान प्रांत प्रभावित हुए हैं। मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। इस बीच शंघाई के दोनों हवाई अड्डों ने 1300 से अधिक उड़ानें रद्द कर दी हैं और 3,00,000 लोग विस्थापित हुए हैं। तूफान के तट से टकराने के बाद उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ने और धीरे धीरे कमजोर पड़ने की संभावना है। उज्बेकिस्तान में एशियाई जूनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप में महाराजन अरुमुंग पंडियन ने 65 किलो वर्ग में रजत पदक जीत लिया है। महाराजन ने आज कुल 285 किलो का भार उठाकर अपना व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेल के पदक विजेताओं से बातचीत की, लोगों से भारतीय खिलाड़ियों का हमेशा उत्साहवर्धन करने का आग्रह किया। देश भर में कई कार्यक्रमों के साथ हर घर तिरंगा अभियान शुरू, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने लोगों से अभियान में शामिल होकर विकसित भारत के लिए फिर से संकल्प लेने की

0: अपील की। झारखंड सरकार अनियमितताओं के आरोपों के बाद जेपीएससी प्रारंभिक परीक्षा रद्द करने पर सहमत। प्रदर्शनकारी छात्रों ने कहा, आंदोलन जारी रहेगा। जेपीएससी के 3 सदस्यों ने इस्तीफा दिया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, ऑपरेशन सिंदूर ने दुनिया को स्पष्ट संदेश दिया कि भारत आतंकवाद कतई बर्दाश्त न करने की नीति के तहत देशवासियों की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जाएगा। और तूफान डॉल्फिन चीन के पूर्वी तट पर पहुंचा, 1300 से अधिक उड़ानें रद्द और 3,00,000 लोग विस्थापित। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम निशित कुमार विद द न्यूज एट 9। The headlines. Prime Minister Narendra Modi interacts with medal winners of Commonwealth Games 2026, urges citizens to always cheer for Bharat. Har Ghar Tiranga campaign begins with multiple events across the country. Vice President and Prime Minister appeal to people to renew commitment to Viksit Bharat by joining this movement. Jharkhand government agrees to scrap JPAC preliminary exam over allegations of irregularities. Protesting students say agitation will continue. 3 JPSC members resign from their posts. Defence Minister Rajnath Singh asserts Operation Sindoor sent global message that India will go to any extent to protect its citizens with zero tolerance approach to terrorism. Pradhan Mantri Awas Yojana Urban has crossed major milestone with over 1 crore houses handed over to beneficiaries so far. And Typhoon Dolphin hits China's eastern coast, over 1,300 flights cancelled, while 3,00,000 people relocated. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi today met the medal winners of the Commonwealth Games 2026 at his residence in New Delhi. Sharing a video message, Mr. Modi said that those who participate in sports will prosper in life and urge citizens to always cheer for Bharat.
2: जो खेलेगा वो खिलेगा। ऑलवेज चीयर फॉर भारत। भारत माता की
3: जय।
2: भारत माता की
3: जय।
2: भारत माता की
3: जय।
1: इंडिया फिनिश्ड एट द फोर्थ स्पॉट ऑन द मेडल्स टेबल एट द गेम्स हेल्ड इन ग्लासगो स्कॉटलैंड बिटवीन 23rd ऑफ जुलाई एंड द 2nd ऑफ ऑगस्ट। इंडियन एथलीट्स won 39 मेडल्स इंक्लूडिंग 13 गोल्ड 17 सिल्वर एंड 9 ब्रॉन्ज अक्रॉस वेरियस स्पॉटिंग डिसिप्लिन्स। The Har Ghar Tiranga campaign is being celebrated nationwide to foster a sense of patriotism among citizens, strengthen national unity, and promote India's cultural heritage.

0: आदाब, ये आकाशवाणी है, खबरों के साथ मैं अब्दुल वाहिद। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने दौलत मुश्तरका गेम्स 2026 में तमगे हासिल करने वाले खिलाड़ियों के साथ बातचीत की। उन्होंने शहरियों पर जोर दिया कि वो भारत के लिए हमेशा खिलाड़ियों की हिम्मत अफजाई करें। मुल्क भर में मुख्तलिफ तकरीबात के साथ हर घर तिरंगा मुहिम का आगाज हो गया है। वज़ीर आज़म ने लोगों से अपील की है कि वो इस तहरीक में शिरकत करके विकसित भारत के अहद का एआदा करें। झारखंड की सरकार ने इल्जामात और बेजाब्तगियों पर JPSC इब्तदाई इम्तिहानात को मनसूख करने से इतफाक कर लिया। एहतजाज करने वाले तलबा ने कहा है कि एहतजाज जारी रहेगा। JPSC के 3 अराकीन ने अपने ओहदों से इस्तीफा दे दिया है। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने जोर देकर कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर ने आलमी पैमाने पर यह पैगाम दिया है कि भारत दहशतगर्दी के तई सिफर बर्दाश्त के साथ अपने शहरियों को तहफ़ फराहम करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी ने अभी तक मुस्तफिदीन को 1 करोड़ मकानात से ज्यादा सुपुर्द करने के साथ अहम संग मील पार कर लिया है और शदीद तूफान डॉल्फिन चीन के मशरकी साहिल पर पहुंच गया है। रेड अलर्ट जारी किया गया है। 1300 से ज्यादा परवाजें मनसूख की गई हैं, जबकि 3 लाख अफराद को महफूज जगह पहुंचाया गया है। अब खबरें तफसील से। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में अपनी रिहायशगाह पर दौलत मुश्तरका गेम्स 2026 में तमगे हासिल करने वाले खिलाड़ियों से मुलाकात की। एक वीडियो पैगाम शेयर करते हुए जनाब मोदी ने कहा कि जो खेलकूद में शिरकत करते हैं वो तरक्की करेंगे। उन्होंने शहरियों पर जोर दिया कि वो भारत के लिए हमेशा खिलाड़ियों की हिम्मत अफजाई करें।
1: जो खेलेगा वो खिलेगा। ऑलवेज चीयर फॉर भारत। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की।
0: 23 जुलाई से 2 अगस्त के दरमियान स्कॉटलैंड के शहर ग्लासगो में मुनक़िदा खेलकूद मुकाबलों में भारत तमगों की फहरिस्त में 4th मकाम पर रहा। भारतीय खिलाड़ियों ने मुख्तलिफ खेलकूद मुकाबलों में मजमूई तौर पर 39 तमगे हासिल किए। इनमें सोने के 13, चांदी के 17 और कांसे के 9 तमगे शामिल हैं। शहरियों के माबैन हुब्बुल वतनी को फरोग देने, कौमी यकजहती को मुस्तहकम करने और भारत की सकाफती विरासत को फरोग देने के लिए मुल्क भर में हर घर तिरंगा मुहिम की तकरीबात मनाई जा रही हैं।

0: ये मुहिम हर घर तिरंगा पहल का पांचवा साल है, जिसका आगाज 2022 में हुआ था। ने जब से ये मुल्क की अवामी शिरकत की सबसे बड़ी तहरीकों में से एक बन गई है। वज़ीरे आज़म नरेंद्र मोदी ने हर घर तिरंगा मुहिम में जोशो खरोश के साथ शिरकत करने और विकसित भारत की तामीर के तई अपने तआवुन के इज्तिमाई अहद का अयादा करने के लिए लोगों से अपील की है। सोशल मीडिया की एक पोस्ट में जनाब मोदी ने कहा कि तिरंगा मुल्क की शान है, नेज़ मुल्क के लिए हमेशा अव्वलीन तरजीह देने की तहरीक का एक जामे जरिया है। वज़ीरे आज़म ने यह कहते हुए इजहार मसर्रत किया कि इस साल की काविशें वंदे मातरम के लिए वक्फ हैं, क्योंकि ये इसकी 150वीं सालगिरह है। जम्मू कश्मीर में आज से तमाम 20 अजला में जज्बे हुब्बुल वतनी नुमाया तौर पर नजर आ रहा है, क्योंकि हर घर तिरंगा मुहिम के तहत एक हफ्ते तवील प्रोग्रामों के सिलसिलों का आगाज हो गया है। इस साल की मुहिम खास तौर पर अहम है, क्योंकि ये भारत के कौमी गीत वंदे मातरम की 150वीं सालगिरह के साथ आया है। ये तकरीबात 17 अगस्त तक जारी रहेंगी, जिनका मकसद हुब्बुल वतनी और कौमी फख्र को फरोग देना है। पेश है एक रिपोर्ट।
1: ये तकरीबात कौमी यकजहती को फरोग देने, नेज आज़ादी की मुहिम और कौमी अलामत के बारे में काबिले कदर मालूमात हासिल करने में एक नुमाया संग मील की हैसियत रखती है। बड़े पैमाने पर वंदे मातरम पर दस्तखत करने, तिरंगे की रैलियां, नुमाइशें, सकाफती प्रोग्राम मरकज

0: के ज़ेर इंतज़ाम इलाके में मुनक़िद किए जाएंगे। मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाके में हुब्बुल वतनी और अवामी शिरकत की सरगर्मियाँ ज़िला हेडक्वार्टर्स, सब डिवीजन्स, तहसीलों, ब्लॉकों और पंचायत सतहों पर मुनक़िद करने की मनसूबाबंदी की गई है। जम्मू से गुलशन रैना की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं तनवीर।
1: JPSC और JSSC इम्तिहानात में मुबैना बेजाब्तगियों के खिलाफ एहतजाज करने वाले तलबा के ज्यादातर मुतालबात झारखंड सरकार ने मान लिए हैं। इस सिलसिले में एक माहदे पर इतफाक हो गया है। रियासती वजीर सुदिव्य कुमार सोनू ने कहा कि हुकूमत ने 14वें JPSC के इब्तदाई इम्तहानात और 2023-25 के बैकलॉग इम्तहानात मनसूख करने से इतफाक किया है। वजीर मौसूफ ने यह बात आज रियासती हुकूमत और एहतजाजी तलबा के दरमियान बातचीत के बाद मीडिया से कही। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने इन्फोर्समेंट डायरेक्ट्रेट से मुबैना माली बेजाब्तगियों की तहकीकात, मुजरिमाना पहलुओं की CID तहकीकात और 90 दिनों के अंदर चार्ज शीट दाखिल करने को यकीनी बनाने के लिए एक फास्ट ट्रैक अदालत के क्याम पर भी इत्तेफाक किया है। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने आज कहा कि ऑपरेशन सिंदूर ने दुनिया को यह वाज़े पैगाम दिया है कि भारत अपने शहरियों और मुल्क की ख्वातीन के माथे के सिंदूर के तहफ्फुज को यकीनी बनाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है।
2: पहलगाम में धर्म पूछकर हमारे निर्दोष नागरिकों पर कायराना आतंकी हमला हुआ था तो उसके बाद हमारी बहादुर सेनाओं ने ऑपरेशन सिंदूर की शुरुआत की थी। हमने पाकिस्तान में बैठे आतंकियों और उनके सरपरस्तों को नेस्त नाबूद कर दिया और सारी दुनिया को यह बता दिया कि भारत अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए वह किसी हद तक जा सकता है। ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से हमने दुनिया को बताया कि हमारी नारी शक्ति के सिंदूर की रक्षा करने के लिए हम किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं।
1: वजीर दिफा ने यह बात नई दिल्ली के बेस अस्पताल में सिंदूर महारक्तदान यात्रा के कैंप का इफ्तिताह करते हुए कही। उन्होंने भारतीय फौज की तारीफ करते हुए कहा कि उन्होंने पाकिस्तान में मौजूद दहशतगर्दों और उनके सरपरस्तों का सफाया किया और भारत पर बुरी नजर रखने वालों को संगीन नतायज का सामना करना पड़ा। सिंदूर महारक्तदान यात्रा का जिक्र करते हुए वजीर दिफा ने कहा कि जहां ऑपरेशन सिंदूर ने भारत की शुजात मंदी का मुजाहरा किया है, वहीं खून का अतिया देने का ये कैंप हमदर्दी और इंसानियत की अलामत है। उन्होंने बताया कि कैंप में महाराष्ट्र के तकरीबन 1000 पहलवानों और खिलाड़ियों ने खून अतिया किया। उन्होंने कहा कि इकदाम बेलौज खिदमत और मुसल्लह अफवाज के साथ यकजहती के जज्बे की अक्कासी करता है। वजीर दिफा ने कहा कि खून अतिया करने वाला और खून हासिल करने वाला हर शख्स अपने अपने तरीके से मुल्क की खिदमत कर रहा है। उन्होंने खासतौर पर नौजवानों से अपील की कि वह खून अतिया करने वालों को एक बाकायदा अमल बनाएं। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। हाउसिंग और शहरी उमूर की वजारत ने कहा है कि प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी PMAYU और PMAYU 2.0 के तहत अब तक 1,25,00,000 से ज्यादा मकानों को मंजूरी दी जा चुकी है। उनमें से 1,00,00,000 से ज्यादा मकानात की तामीर मुकम्मल हो गई है, नेज उन्हें मुल्क भर में मुस्तफिदीन के हवाले किया जा चुका है। तकरीबन 1,00,00,000 मकानात खवातीन को अलाट किए गए हैं। हाउसिंग और शहरी उमूर के सेक्रेटरी सत्येंद्र सिंह की सरबराही में मुनक़िदा मंजूरी देने और निगरानी की मरकजी कमेटी की मीटिंग के दौरान 16 रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों में माशी तौर पर कमजोर तबके के कुनबों के लिए PMAYU 2.0 के तहत 2,09,000 से ज्यादा मकानों की मंजूरी दी गई थी। इनमें आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, गुजरात, जम्मू कश्मीर, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, उड़ीसा, राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड शामिल हैं। पेश है एक रिपोर्ट।
3: मंजूर किए गए 2,09,000 मकानात में से 2,03,000 मकानात खवातीन को अलाट किए गए हैं। इसके अलावा 16,600 से ज्यादा मकानात बुजुर्ग शहरियों को, जबकि तकरीबन 22,000 मकानात दर्ज फेरिस्तजात के अफराद के लिए, 14,000 से ज्यादा दर्ज फेरिस्त कबाइल और 75,000 से ज्यादा मकानात दीगर पसमानदा तबकात के अफराद के लिए मंजूर किए गए हैं। स्कीम के तहत मकानात की मिल्कियत खवातीन के नाम करने को तरजीह दी गई है, जिसका मकसद खवातीन को माली तहफ्फुज़ फराहम करना, समाजी तौर पर बाख्तियार बनाना और घर के फैसलों में उनकी ज्यादा से ज्यादा शमूलियत को यकीनी बनाना है। PMAYU का आगाज 2015 में किया गया था, जिसका मकसद अहल शहरी मुस्तहकीन को बुनियादी सहूलियात के साथ हर मौसम के एतबार से पक्के मकानात फराहम करना था। PMAYU

0: यू के नफा से हासिल होने वाले तजुर्बात की बिना पर हुकूमत ने इसमें तरमीम की और यकुम सितंबर 2024 को PMAYU 2.0 सबके लिए मकानात मिशन का आगाज किया। सौम्या शरण की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मोहम्मद शहजाद।
1: शदीद तूफान डॉल्फिन आज तीसरे पहर चीन के मशरकी साहिल पर पहुंच गया, जिससे जीजियांग और फुजान सूबे मुतासर हुए हैं। इस तूफान के आने के बाद मुल्क के मौसमियात के कौमी मरकज ने मुल्क में शदीद बारिश के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। इस दौरान शंघाई के दो हवाई अड्डों पर 1,300 परवाजें मनसूख कर दी गई हैं, जबकि हुक्काम ने आसपास के इलाकों में तकरीबन 3,00,000 अफराद को महफूज जगह पहुंचाया है। बुध के रोज तक शदीद बारिश होने की तवक्को है कि यह तूफान शुमाल मगरिब की जानी बढ़ जाएगा और वहां पहुंचने के बाद यह बतदरीज कमजोर पड़ जाएगा। ईरान के वज़ीर ख़ारिजा सैयद अब्बास अराग़ची ने आज कहा कि इस वक्त उनका मुल्क अमरीका के साथ बराह रास्त मुज़ाकरात नहीं कर रहा है, अलबत्ता दोनों ममालिक के दरमियान सालिसों के तवस्सुत से पैगामात का तबादला किया जा रहा है। ईरान के सरकारी मीडिया के जरिए जारी किए गए उनके बयान के मुताबिक जनाब अराग़ची ने कहा कि बहुत से ममालिक ईरान और अमरीका के दरमियान मुज़ाकरात दोबारा करने के लिए साजगार माहौल वज़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। रूस और यूक्रेन ने रात के दौरान एक दूसरे पर हमले किए, जिसके नतीजे में दोनों मुल्कों में बहुत से शहरी हलाक और जख्मी हो गए। रूस के बेलगोरोद इलाके में यूक्रेन के ड्रोन के हमले में 5 अफराद हलाक, जबकि दिगर 2 दर्जन से ज्यादा लोग जख्मी हो गए, जिनमें 4 साल का एक बच्चा भी शामिल है। शहरी हवाबाजी की वजारत ने बताया है कि एयर इंडिया की फुकेट से दिल्ली जाने वाली परवाज के हालिया वाकये की तहकीकात हवाई जहाज के हादसात के तहकीकाती ब्यूरो की जानिब से की जा रही है। वजारत ने इस वाकये को एक संगीन वाकया करार दिया है। ये वाकया इस माह की 4 तारीख को पेश आया, जब परवाज के दौरान तैयारा अचानक हवा के दबाव की कमी के बायस तकरीबन 300 फीट नीचे आ गया था। भारतीय बहरिया और अमरीकी बहरिया की जानिब से धमाका खेज मवाद को नाकारा बनाने से मुतालिक मुश्तरका मश्क EOD 2026 कल से 14 अगस्त तक कोची में वाक़े जुनूबी बहरी कमान में मुनक़िद की जाएगी। वजारत दिफा के मुताबिक इस बाहमी मश्क का मकसद दोनों बहरी अफवाज के माहिर गोताखोर और धमाका खेज मवाद को नाकारा बनाने वाली टीमों के दरमियान बाहमी तआवुन और अमली हमाहंगी को मजीद मुस्तहकम करना है। भारत की तनसीब शुदा गैर रवायती ईंधन पर मबनी बिजली पैदा करने की सलाहियत 300 गीगावाट के हदफ से तजावज कर गई है। गुज़िश्ता माह की 31 तारीख को हासिल करदा ये बड़ी कामयाबी 2030 के लिए 500 गीगावाट सलाहियत के हदफ का 60% ज्यादा है। भारतीय महकमे मौसमियात ने मशरकी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और मगरबी मध्य प्रदेश में कल के लिए शदीद से इंतहाई शदीद बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। आखिर में खास खास खबरें एक मरतबा फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने दौलत मुश्तरका गेम्स 2026 में तमगे हासिल करने वाले खिलाड़ियों के साथ बातचीत की। उन्होंने शहरियों पर जोर दिया कि वो भारत के लिए हमेशा खिलाड़ियों की हिम्मत अफजाई करें। मुल्क भर में मुख्तलिफ तकरीबात के साथ हर घर तिरंगा मुहिम का आगाज हो गया है। वजीर आजम ने लोगों से अपील की है कि वो इस तहरीक में शिरकत करके विकसित भारत के अहद का इयादा करें। झारखंड की सरकार ने इल्जामात और बेजाब्तगियों पर JPSC इब्तदाई इम्तहान को मनसूख करने से इतफाक कर लिया। एहतजाज करने वाले तलबा ने कहा है कि एहतजाज जारी रहेगा। JPSC के 3 अराकीन ने अपने ओहदों से इस्तीफा दे दिया है। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने जोर देकर कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर ने आलमी पैमाने पर यह पैगाम दिया है कि भारत दहशतगर्दी के तई सिफर बर्दाश्त के साथ अपने शहरियों को तहफ़ फराहम करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी ने अभी तक मुस्तफिदीन को 1 करोड़ मकानात से ज्यादा सुपुर्द करने के साथ अहम संगमील अबूर कर लिया है। और शदीद तूफान डॉल्फिन चीन के मशरकी साहिल पर पहुंच गया है, रेड अलर्ट जारी किया गया है। 1,300 से ज्यादा परवाजें मनसूख की गई हैं, जबकि 3,00,000 अफराद को महफूज जगह पहुंचाया गया है। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने अमरीकी शहर ओरिगन में हुई 2026 वर्ल्ड एथलीट्स अंडर 20 चैंपियनशिप में शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले एथलीटों को मुबारकबाद दी है। इसी के साथ खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ।

ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए प्रस्तुत है फिल्मी फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम आपकी फरमाइश। आपकी फरमाइश कार्यक्रम में हमने कार्यक्रम में पहला गीत लिया है फिल्म तराना से, जिसे गाया है शैलेंद्र ने। गीत लिखा है रविंद्र रावल ने और संगीत है राम लक्ष्मण का। इस गीत को सुनना चाहे आप सभी ने बाबा बैजनाथ धाम से मनोज केसरी, पूजा केसरी, महादेव केसरी, श्रद्धानंद केसरी और रोशनी केसरी ने। इसी गीत को पसंद किया है छत्तीसगढ़ देवरी भाटापारा से गन्नू लाल रजक के आर एस साहू, अश्विनी वर्मा और गणेश मिस्त्री ने। इसी गीत के लिए हम तक फरमाइश लिख भेजिए आज़ाद नगर लक्सर हरिद्वार से ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही और महराज जहाँ ने।

आपकी फरमाइश कार्यक्रम में अगला गीत हमने लिया है फिल्म सिलसिला से। स्वर हैं लता मंगेशकर, किशोर कुमार और साथियों के। शब्द रचना है जावेद अख्तर की और संगीत है शिवहरी का। इस गीत को पसंद किया है आप सभी श्रोताओं ने। थाना रोड बक्सर से ज्योत गुप्ता, आशीष गुप्ता, सतीश गुप्ता, आयुष, आयुषी और सानवी ने इसी गीत को सुनना चाहा है। गांधी चौक रोपड़ पंजाब से हरदेव मीका, बलविंदर बिरक, जयतेक बिरक और मीका बिरक ने इसी गीत के लिए हम तक पसंद लिख भेजी। सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, जयवीर सिंह ठाकुर और अमनदीप, अनिल शर्मा और कालका से शुभ चंद्र बजाज, बिट्टा बजाज और साहिल बजाज ने। तो आप सभी की पसंद पर सुनते हैं ये बहुत खूबसूरत सा गीत।

कार्यक्रम की अगली फरमाइश फिल्म लव स्टोरी से, सुमधुर आवाज लता मंगेशकर और अमित कुमार की, शब्द रचना आनंद बख्शी की है और संगीत है राहुल देव बर्मन का। पसंद हम तक लिखी भेजी है सभी श्रोताओं ने। पाकीजा रेडियो श्रोता संघ वैष्णव कॉलोनी सनावत मध्य प्रदेश से मोहम्मद सादिक, मोहम्मद मुश्ताक अहमद, मोहम्मद शाकिर, मोहम्मद अलकमा खत्री, मोहम्मद अल्तमश खत्री, रमेश गौड़ और मोहम्मद शादाब खत्री ने। इसी गीत को सुना चाहे गोला बाजार बक्सर से श्रद्धानंद आर्य, अभयनंद आर्य, परमानंद आर्य, पंकज प्रमोद, रोहित और मोहित ने। और इसी गीत को पसंद किया है इचल करंजी महाराष्ट्र से बसंत जी हजारे, प्रमोद हजारे और परिवार की सभी सदस्यों ने। तो आइए आप सभी की पसंद पर सुनते हैं ये गीत।

ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, आप सुन रहे हैं फिल्मी फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम आपकी फरमाइश। आपकी फरमाइश कार्यक्रम में अगला गीत हमने लिया है फिल्म एक दूजे के लिए। इस गीत को गाया है लता मंगेशकर और एसपी बाला सुब्रमण्यम ने। शब्द रचना है आनंद बख्शी की और संगीत है लक्ष्मीकांत परेलाल का। इस गीत को पसंद किया है आप सभी ने। रिंगिनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा और करुणा वर्मा ने। इसी गीत को सुनना चाहा है यादव मोहल्ला सनावत से दिलीप मालाकार, योगेश मालाकार, सुनीता मालाकार, मुस्कान मालाकार, जितेंद्र धर्मेंद्र और इनका पूरा परिवार। इसी गीत को पसंद किया है कंवर कॉलोनी बड़वाह से श्री प्रवीण शिवाली, मीना शिवाली, आदित्य, अदिति, शिवानी, मीनूराज और इनका पूरा शिवाली परिवार। आइए सुनते हैं आप सभी की पसंद पर ये प्यारा सा गीत।

कार्यक्रम की अगली फरमाइश सरोज चौक अमरापति महाराष्ट्र से कमरुल्ला ठेकेदार नसीम बेगम, आयशा खान, हदिया खान, अस्मा, सालिया, शोएब खान, सायमा खान, मुश्तवा खान, पोत्री अफिया खान, गांधी बाग अकोला से रमेश कटनकर और वैशाली कटनकर। इसी गीत को पसंद किया है घंटाघर चौक खंडवा से संजय पंचोलिया, प्रियंका पंचोलिया, गुनगुन, संप्रीत, हेमेंद्र और सन्मति पंचोलिया ने। आपने भी इसी गीत को पसंद किया है छत्तीसगढ़ के दतरेंगी से भागवत वर्मा, लेवई से गुलाबदास मानिकपुरी, लच्छनपुर से विश्वनाथ साहू और चर डोंगरी पिपरिया से दुर्गाराम साहू। आप सभी ने सुनना चाहा है फिल्म आप तो ऐसे न थे का ये गीत। स्वर है हेमलता की, गीत लिखा है निदा फाजली ने और संगीत है उषा खन्ना का।

इसी गीत के साथ आपकी फरमाइश कार्यक्रम अब यहीं संपन्न हुआ। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। अगला प्रसारण आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: ये आकाशवाणी है। रवि वास्त्री अखिल भारतीय संगीत सभा में आज रात के कार्यक्रम में हम आपके लिए श्रीमती सात्विका मोहन का गायन प्रस्तुत करते हैं।
1: दिस इज आकाशवाणी इंटरनेट ब्रॉडकास्ट ऑफ रवि वास्त्री अखिल भारतीय संगीत सभा। वी ब्रिंग यू ए वोकल रिसाइटल बाय श्रीमती सात्विका मोहन।
0: श्रीमती सात्विका मोहन आकाशवाणी और दूरदर्शन की ए ग्रेड कलाकार हैं और एक सुशिक्षित कर्नाटक क्लासिकल गायिका और वायोलिन वादक हैं। इन्होंने अपनी प्राथमिक संगीत शिक्षा श्रीमती वी ललिता से शुरू की और विष्णु वटला सिस्टर्स नाम से प्रसिद्ध बहनों में विदुषी श्रीमती विष्णु वटला कृष्णवेणी के साथ आगे का अभ्यास जारी रखा। बाद में इन्होंने सुप्रसिद्ध हैदराबाद ब्रदर्स में से विद्वान डी राघवाचारी के मार्गदर्शन में अपने कौशल को निखारा। 6 साल की छोटी उम्र में प्रथम प्रदर्शन देने वाली इस बाल कलाकार ने आंध्र प्रदेश के सरकार से प्रतिष्ठात्मक बाल रत्न पुरस्कार प्राप्त किया है। इन्होंने कर्नाटक गायन में भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय के CCRT के द्वारा वरिष्ठ छात्रवृत्ति प्राप्त किया। उसी वर्ष में आकाशवाणी के राष्ट्रीय संगीत प्रतियोगिता में शास्त्रीय भक्ति संगीत में प्रथम पुरस्कार और कर्नाटक शास्त्रीय गायन में द्वितीय पुरस्कार भी प्राप्त किया है। ये आकाशवाणी में पुरस्कार प्राप्त करने वाली दूसरी पीढ़ी की गायिका हैं। इन्होंने प्रख्यात सभाओं में, प्रतिष्ठात्मक संगीत उत्सवों में और भारत के अग्रगामी सांस्कृतिक संस्थानों में प्रदर्शन दिया है। इन्होंने कर्नाटक गायन में और वायलिन में डिप्लोमा के साथ साथ संगीत में MA डिग्री हासिल की है और IIT खड़गपुर में MBA डिग्री भी प्राप्त की है।
1: श्रीमती सात्विका मोहन इज एन ए ग्रेड आर्टिस्ट ऑफ आकाशवाणी एंड दूरदर्शन एंड एन अकम्प्लिश्ड कर्नाटिक क्लासिकल वोकलिस्ट एंड वायलिनिस्ट। शी रिसीव्ड हर इनिशियल ट्रेनिंग अंडर श्रीमती वी ललिता फॉलोड बाई अडवांस्ड ट्यूटेलेज अंडर विदुषी श्रीमती विष्णु भट्ल कृष्णवेणी ऑफ द रिनाउंड विष्णु भट्ल सिस्टर्स and further advanced guidance from Vidwan Sri D. Raghavachari of the illustrious Hyderabad Brothers, a child prodigy who presented her maiden concert at the age of 6. She was conferred the prestigious Balaratna title by the government of Andhra Pradesh. She is a recipient of the senior scholarship in Carnatic vocal music awarded by the CCRT, Ministry of Culture, Government of India, and achieved national distinction by securing first prize in classical devotional music and second prize in Carnatic classical vocal music at the All India Radio National Music Competitions in the same year. Becoming a second generation Akashwani National Prize winner, she has performed extensively at eminent sabhas, prestigious music festivals and leading cultural institutions across India. She holds diploma in Carnatic vocal and violin, an MA in music and an MBA in human resource management from IIT Kharagpur.
0: आज रात के इस कार्यक्रम में आपके साथ संगत करने वाले कलाकार हैं वायलिन पर श्री ओ राजशेखर, मृदंगम पर विद्वान पीरवली जय भास्कर और घटम पर श्री एम चंद्रकांत।
1: In tonight's broadcast, श्रीमती सात्विका मोहन is accompanied on violin by श्री ओ राजशेखर, on मृदंगम by विद्वान पीरवली जय भास्कर and on ghatam by Sri M. Chandrakant.
0: Shrimati Satvika Mohan apne gayan ka aarambh Tyagraj ki ek kriti se kar rahi hai, jo raag Hamsad Dhwani tatha Adi Taal mein nibadh hai.
1: Shrimati Satvika Mohan begins her vocal recital with a composition of Tyagaraja Swami in the raag Hamsad Dhwani set to Adi Taal.

0: अब आप सुनेंगे त्यागराज स्वामी की एक कृति जो राग आनंद भैरवी तथा आदि ताल में निबद्ध है।
1: यू विल नाउ लिसन टू ए कंपोजिशन ऑफ त्यागराज स्वामी इन द राग आनंद भैरवी सेट टू आदि ताल।

0: श्रीमती सात्विका मोहन अपना गायन जारी रखते हुए अब प्रस्तुत करेंगी नारायण तीर्थ द्वारा रचित एक तरंगम, जो राग बिलहरी तथा आदि ताल में निबद्ध है।
1: कंटिन्यूइंग हर वोकल रिसाइटल, श्रीमती सात्विका मोहन विल नाउ प्रेजेंट ए नारायण तीर्थ तरंगम इन द राग बिलहरी सेट टू आदि ताल।

0: अब आप सुनेंगे मैसूर वासुदेवाचार्य की एक रचना जो राग सिम्हेंद्र मध्यमम तथा मिश्र चापू ताल में निबद्ध है।
1: यू विल नाउ लिसन टू ए कंपोजिशन ऑफ मैसूर वासुदेवाचार्य इन द राग सिम्हेंद्र मध्यमम सेट टू मिश्र चापू ताल।

0: वो था तन्यावर्तनम, जिसे मृदंगम पर विद्वान पीरवली जय भास्कर और घटम पर श्री एम चंद्रकांत ने प्रस्तुत किया।
1: दैट वाज द तन्यावर्तनम प्लेड ऑन मृदंगम बाय विद्वान पीरवली जय भास्कर एंड ऑन घटम बाय श्री एम चंद्रकांत।
0: श्रीमती सात्विका मोहन अपने गायन का समापन श्री कनक दास की एक कृति के साथ कर रही हैं, जो राग सिंध भैरवी तथा खंड चापू ताल में निबद्ध है।
1: श्रीमती सात्विका मोहन कंक्लूड।

0: इसी के साथ हम रविवासर अखिल भारतीय संगीत सभा में श्रीमती सात्विका मोहन का गायन समाप्त करते हैं। आज की सभा में उनके साथ वायलिन पर थे श्री ओ राजशेखर, मृदंगम पर विद्वान पेरवली जय भास्कर और घटम पर श्री एम चंद्रकांत। रविवासर अखिल भारतीय संगीत सभा के लिए आकाशवाणी हैदराबाद के प्रसारण कक्ष में इस संगीत कार्यक्रम का ध्वनियांकन किया गया है। ये कार्यक्रम आपके लिए आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रस्तुत किया गया है।
1: With that, we conclude the vocal recital by Srimati Satvika Mohan in the broadcast of Ravivasriya Akhil Bharati Sangeet Sabha. She was accompanied on violin by Sri O. Rajshekar, on mridangam by Vidwan Peravalli Jayabhaskar and on ghatam by Sri M. Chandrakant. This concert was recorded at the studios of Akashvani Hyderabad for Ravivasriya Akhil Bharati Sangeet Sabha and brought to you from the Delhi station of Akashvani.

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अरुण कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में अपने आवास पर राष्ट्रमंडल खेल 2026 के पदक विजेताओं से मुलाकात की। पदक विजेताओं ने प्रधानमंत्री के साथ बातचीत के दौरान खेलों से जुड़े अपने अनुभव साझा किए। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि सभी खिलाड़ियों ने अपने शानदार प्रदर्शन से देश का मान बढ़ाया है और उनकी सफलता कई युवाओं को प्रेरित करेगी। श्री मोदी ने एक वीडियो संदेश साझा करते हुए कहा कि जो खेलेंगे वे आगे बढ़ेंगे,

0: उन्होंने नागरिकों से हमेशा भारत का उत्साह बढ़ाने की अपील की।
1: जो खेलेगा वो खिलेगा। ऑलवेज चीयर फॉर भारत। भारत माता की
2: जय।
1: भारत माता की
2: जय।
1: भारत माता की
2: जय।
0: इस मौके पर युवा मामले और खेल मंत्री मनसुख मांडविया और युवा मामले और खेल राज्य मंत्री रक्षा निखिल खड़से मौजूद थे। स्कॉटलैंड के ग्लासगो में 23 जुलाई से 2 अगस्त तक आयोजित हुए इन खेलों में भारत पदक तालिका में चौथे स्थान पर रहा। भारतीय खिलाड़ियों ने विभिन्न खेलों में कुल 39 पदक जीते, जिनमें 13 स्वर्ण, 17 रजत और 9 कांस्य पदक शामिल हैं। हर घर तिरंगा अभियान आज से शुरू हो गया है। 17 अगस्त तक चलने वाले इस अभियान का उद्देश्य देशवासियों को अपने घरों पर तिरंगा फहराने और देशभक्ति तथा राष्ट्रीय एकता से जुड़े कार्यक्रमों में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करना है।
3: घर, घर।

0: इस वर्ष ये अभियान राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ के साथ मनाया जा रहा है। देश भर में वंदे मातरम का सामूहिक गायन भी होगा। दुनिया भर में 200 से अधिक भारतीय दूतावास, उच्चायोग और वाणिज्य दूतावास भी अभियान के अंतर्गत कार्यक्रम आयोजित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से इस अभियान में उत्साह के साथ शामिल होने और विकसित भारत के निर्माण में योगदान देने का संकल्प फिर से लेने की अपील की है। प्रधानमंत्री ने कहा कि तिरंगा देश का गौरव है। उन्होंने इस बात पर प्रसन्नता व्यक्त की कि इस वर्ष का अभियान वंदे मातरम को समर्पित है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर ने दुनिया को यह स्पष्ट संदेश दिया है कि भारत अपने नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। नई दिल्ली में रक्षा मंत्री ने एक कार्यक्रम में ये बात कही। श्री सिंह ने भारतीय रक्षा बलों की सराहना करते हुए कहा कि उन्होंने पाकिस्तान में मौजूद आतंकवादियों और उनके आकाओं का सफाया किया और भारत पर बुरी नजर डालने वालों को गंभीर परिणाम भुगतने पड़े। आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने कहा है कि पीएम आवास योजना शहरी और दूसरे चरण की पीएम आवास योजना शहरी के अंतर्गत अब तक 1,25,00,000 से अधिक मकानों को मंजूरी दी जा चुकी है। इनमें से 1,00,00,000 से ज्यादा मकान बनकर तैयार हो चुके हैं और लाभार्थियों को सौंपे जा चुके हैं। इनमें करीब 1,00,00,000 मकान महिलाओं को आवंटित किए गए हैं। झारखंड सरकार और प्रदर्शनकारी छात्रों के बीच झारखंड लोक सेवा आयोग JPSSC और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग JSSC परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर छात्रों की अधिकतर मांगों पर सहमति बन गई है। राज्य के मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू ने कहा कि सरकार 14वीं JPSC प्रारंभिक परीक्षा और वर्ष 2023-25 की बैकलॉग परीक्षाओं को रद्द करने पर सहमत है। आज सरकार और छात्रों के बीच हुई वार्ता के बाद मंत्री ने कहा कि कथित वित्तीय अनियमितताओं की ED जांच और आपराधिक मामलों की CID जांच कराई जाएगी। साथ ही 90 दिनों के भीतर आरोप पत्र दाखिल करने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट गठित करने की भी बात कही गई है। सरकार ने प्रवर्तन निदेशालय ED के निदेशक राहुल नवीन का कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया है। ये कार्यकाल इस महीने की 13 तारीख से शुरू होकर अगले वर्ष 13 अगस्त तक रहेगा। सेवा में ये विस्तार 31 जुलाई 2027 को उनकी तय सेवा निवृत्ति के बाद भी जारी रहेगी। कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने राहुल नवीन का कार्यकाल बढ़ाने को मंजूरी दी है। वे 1993 बैच के भारतीय राजस्व सेवा के अधिकारी हैं। मौसम विभाग ने पूर्वी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और पश्चिमी मध्य प्रदेश में कल मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अगले 2 दिनों के दौरान दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, असम, मेघालय, पूर्वी मध्य प्रदेश, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में भी तेज बारिश हो सकती है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय अभिनीत शुक्ला। Prime Minister Narendra Modi today met the medal winners of the Commonwealth Games 2026 at his residence in New Delhi. During the interaction, the medal winners shared their experiences from the Games with the Prime Minister. In a social media post, Mr. Modi said that each one of them has made the nation proud through their exceptional performances and their success will motivate many youngsters. India finished at the 4th spot on the medal table at the Games held in Glasgow, Scotland between 23rd of July to